0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वरंजनी, जिसमें आपने सुना शहनाई पर राग ललित। सुबह के 6 बजने को है, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा करेंगे। ध्वजारोहण के साथ 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 5,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। उन्होंने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया।
2: हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने भावी पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया।
2: प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की स्वीकृति दी। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल हैं। अमेरिका के सीनेटरों और नेताओं ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा कि दोनों देशों की भागीदारी मजबूत है और भारत की उपलब्धियां तथा भारत के लोग विश्व को प्रेरित करते रहते हैं। न्यूयॉर्क से लेकर सिएटल तक अमेरिका के राज्यों के गवर्नर और सीनेटरों ने कहा है कि उनके यहां 15 अगस्त का दिन भारत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने फिर कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हो रहे अत्याचार और सीमा पार आतंकवाद के लिए इसका इस्तेमाल किए जाने पर चिंता व्यक्त करनी चाहिए। एक प्रश्न के उत्तर में श्री जायसवाल ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में भारत ने अफगानिस्तान के साथ कई बैठकें की हैं। अफगानिस्तान के कई मंत्री भारत के दौरे पर आए हैं, जिनसे विकास, सहयोग, व्यापार और संपर्क जैसे क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत हुई है। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित परिवारों को मुआवजा या पुनर्वास न मिलने के आरोप गलत और भ्रामक हैं। मंत्रालय ने कहा है कि अधिकांश पात्र परिवारों को पूरा मुआवजा और पुनर्वास लाभ मिल चुका है और कुछ मामलों में केवल प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं शेष हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना उद्योग की अपेक्षाओं और नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के कौशल के बीच की दूरी कम करने में मदद के लिए तैयार की गई है। 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पात्र हैं

और उन्हें इंटर्नशिप करने पर प्रतिमाह न्यूनतम 9,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलती है। दिल्ली की विशेष फास्ट ट्रैक अदालत ने नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को आगे की जांच करने की अनुमति दे दी है। ब्यूरो ने इस मामले में 13 आरोपियों के अलावा अन्य साजिशकर्ताओं की जांच जारी रखने की अनुमति मांग की थी, जिनके विरुद्ध पहले ही आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:10 और ठीक 20 सेकंड हुए हैं और अब वक्त है भक्ति गीतों के कार्यक्रम वंदना का। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले श्रोताओं, हम आपको शुभकामनाएं दे दें, स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। तो चलिए कार्यक्रम का आगाज करते हैं देशभक्ति गीत से।

श्रोताओं, हनुमान जी केवल बल और पराक्रम के प्रतीक नहीं बल्कि विनम्रता, सेवा और सच्ची भक्ति की मिसाल है। उन्होंने हमें सिखाया है कि जब मन में प्रभु के प्रति अटूट विश्वास हो तो बड़ी से बड़ी बाधा भी छोटी लगने लगती है। कहा भी गया है ना कि रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा।

इसी के साथ आज का वंदना कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 300

0: 66.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन।
1: आज स्वतंत्रता दिवस है, आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। कितने सपने कितने अरमान हुए कुर्बान, तब हमने पाया आजादी का ये मान। क्या ये बातें क्या ये चर्चा हम अपने परिवार में मिल बैठकर करते हैं। आज ही का पावन दिन है और ये पावन भारत भूमि जिसमें योगी अरविंद घोष का जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा से लेकर आईसीएस के द्वितीय वर्ष तक की शिक्षा उन्होंने इंग्लैंड में प्राप्त की। श्री अरविंद घोष ने इंग्लैंड में रहकर अंग्रेजी, फ्रेंच तथा लैटिन भविष्य के साहित्य का गहन अध्ययन किया, पर जब उन्होंने भारत की संस्कृति एवं साहित्य का अध्ययन किया तो उन्हें ऐसा लगा जैसे अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश में आ गए हो। यही प्रभाव था कि उन्होंने माना कि मैं अपने देश की भूमि, पहाड़, नदियों तथा वनों को मात्र भौगोलिक सत्ता नहीं मानता, बल्कि समस्त जड़ चेतन प्रकृति को माता मानता हूँ, उसकी पूजा उपासना करता हूँ। श्री अरविंद का मानना था कि आदमी को केवल विज्ञान से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, उसे उस शक्ति का भी संधान करना चाहिए जो विज्ञान से भी बड़ी है, जिसकी एक चिंगारी से विज्ञान का विकास हुआ है। उनका निश्चित मत था कि इलेक्ट्रॉन के प्रज्वलित रथ पर शिव सवार हैं। उन्होंने कहा कि मैटर के साथ साथ हमें आत्मा को भी स्वीकारना है। उनका मानना था कि आत्मा की स्वीकृति के लिए मैटर का त्याग जरूरी नहीं है। विज्ञान के उत्थान में मनुष्य को भौतिक सिद्धि प्रदान करने वाले मार्क्स ने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि आत्मा विज्ञान की प्रयोगशाला में प्रमाणित नहीं की जा सकती। वे केवल मैटर की बात करते रहे, मगर श्री अरविंद ने कहा कि आत्मा की स्वीकृति के लिए मैटर का त्याग जरूरी नहीं है। श्री अरविंद ने आत्मा के साथ मैटर को स्वीकार किया और कहा कि तुम यद्यपि प्रकृति के अब तक के निवासियों में सबसे श्रेष्ठ हो, किंतु विकास के क्रम में अभी हमने आधी दूरी तय की है। मन सबसे बड़ा यंत्र है, इससे भी सूक्ष्मतर यंत्रों की संभावनाएं भीतर छिपी हैं। मन के धरातल से ऊपर उठने का प्रयास करो और उन शक्तियों को प्राप्त करो जो मन की सीमा से परे तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। यही थी उनकी असीम संकल्प शक्ति कि जब बंग भंग की भेरी बजी तो योगी अरविंद ने बड़ौदा कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल पद से इस्तीफा दे दिया, तमाम सुख सुविधाएं त्याग दी। मामूली वेतन की नौकरी की उन्होंने कलकत्ता के नेशनल कॉलेज में, ताकि देश की वैज्ञानिक सेवा कर सके। यहां से उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए दहकते हुए उल्कापिंड की तरह वंदे मातरम पत्र निकाला, जिसके कारण ब्रिटिश साम्राज्य ने उन्हें एक वर्ष के कारावास में भेज दिया। जब वो बाहर निकले तो उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपनी समग्र मानवीय शक्तियों को आत्मा में एकीभूत कर मातृभूमि की रक्षा में नियोजित करेंगे। आज हम आजाद देश के आजाद नागरिक हैं, मगर इस आजादी में महर्षि अरविंद का योगदान सदा स्मरणीय रहेगा। उनका मार्गदर्शन हमेशा सूर्य की तरह हमें राह दिखाता रहेगा, ताकि जहां हम भटकें, जहां हमारा रास्ता छूटे, वो हमारे समक्ष एक आदर्श बनकर रहें। योगी, कवि एवं वैज्ञानिक तीनों का अद्भुत समन्वय थे योगी अरविंद घोष, और वे सब के सब एक ही लक्ष्य की ओर गतिशील थे। वे लक्ष्य था भारत की स्वतंत्रता।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं रामचरितमानस से अयोध्याकांड का भाग 18।

भरत को अयोध्या के राजपथ के साथ श्री राम को 14 वर्षों का वनवास देने की कैकेयी की वरदान याचना से अयोध्यावासी स्तब्ध हैं। श्री राम के चरणों में भरत की प्रीति जग विदित है। चंद्रमा की शीतल किरणों से आग की चिंगारियां भले ही बरसने लगें, किंतु भरत स्वप्न में भी श्री राम का विरोध नहीं कर सकते। राज परिवार का हितैषी नारी समाज कैकेयी को तरह तरह से समझाने की चेष्टा कर रहा है। अनुनय विनय के साथ साथ कुछ लोग रानी कैकेयी की कठोरता की भर्त्सना कर रहे हैं, कुछ व्यक्ति कटु वचन भी बोल रहे हैं। सबके मन में आशंका है कि क्या राम की अनुपस्थिति में भरत अवध के राज्य का सुख भोगना स्वीकार करेंगे? क्या राजा दशरथ पुत्र का वियोग सहन कर सकेंगे? क्या राम, लक्ष्मण, सीता और स्वयं दशरथ जी के बिना सब कुछ उजड़ नहीं जाएगा?

रामचरितमानस से अयोध्या कांड का भाग 18 अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 6:55 होने को है।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अब हम आपको लाल किला लिए चलते हैं, जहां से आप भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को संबोधन का सजीव प्रसारण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं श्री जैनेन्द्र सिंह, सुश्री नीलम मलकानिया और श्री देवेंद्र त्रिपाठी।
1: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।
4: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रति वर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
5: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-4-5-5-5।
4: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी।

0: बचाए।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में ना हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
2: आइए लाल किला चले।
3: वंदे मातरम। स्वतंत्र भारत देश के 79 वर्षों की गौरवशाली यात्रा और इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले भारत भूमि के वीरों और वीरांगनाओं द्वारा किए गए बलिदान का स्मरणोत्सव। श्रोताओं, ये स्वतंत्रता दिवस समारोह जिनके अद्वितीय बलिदान का प्रतिफल है ये दिवस। नमन ऐसे लाखों ज्ञात अज्ञात सेनानियों को, नमन राष्ट्र नायकों और राष्ट्र निर्माताओं को जिनके दूरदर्शी नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज भारत दुनिया की चौथे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सका है और पूरे विश्व में भारत की पहचान और प्रतिष्ठा बढ़ी है। ऐसे राष्ट्र नायकों को भी नमन है आज के इस अवसर पर। गौरव के इन पलों में श्रोताओं, आप सभी को देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। दिल्ली स्थित लाल किले के प्राचीर से मैं जैनेन्द्र अपने साथी कमेंटेटर्स नीलम मलकानिया, देवेंद्र त्रिपाठी और आकाशवाणी की पूरी टीम के साथ आप सभी का इस विशेष प्रसारण में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं।
4: वंदे मातरम। लाल किले की इस ऐतिहासिक प्राचीर से आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 2026 की ये सुनहरी सुबह भारत के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ने जा रही है। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि आज पूरे गर्व और उल्लास के साथ अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रही है। कोटि कोटि कंठ आज वंदे मातरम, जय हिंद और भारत माता की जय का उद्गार कर रहे हैं। देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम और उत्साह के रंग में रंगे हुए भारतीय और भारतवंशी देश विदेश में विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। साथियों, आप जानते ही हैं कि मुख्य आयोजन यहां लाल किले पर हो रहा है, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री स्वयं राष्ट्र का नेतृत्व करते हुए प्राचीर पर बने ध्वज स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। आकाशवाणी की तकनीकी और कार्यक्रम टीम यहां से आंखों देखा हाल आप तक पहुंचाने के लिए तैयार है। आज तो किले की छटा ही निराली है, जैसे ये स्वयं पर इठलाता हो कि यहीं से हर वर्ष हमारे इस राष्ट्रीय पर्व ने देश दुनिया को एक नई राह दिखलाई है। चहुं ओर भक्ति भाव और उत्साह का भाव परिलक्षित हो रहा है। किले की विशाल और शक्तिशाली दीवारें रंग बिरंगे पुष्पों और पताकाओं से सजाई गई हैं। स्वतंत्रता दिवस की बधाई वाले होर्डिंग्स हैं, बैनर हैं, पोस्टर्स लगे हैं तो सुरुचिपूर्ण पुष्प सज्जा भी की गई है। इस बार के आयोजन की थीम है वंदे मातरम। हमारे इस राष्ट्रीय गीत के 150 गौरवशाली वर्षों को याद करते हुए आज वंदे मातरम की गूंज यहां बार बार सुनाई दे रही है। ज्ञान पथ के सामने किले की विशाल दीवार पर ताजे पुष्पों से वंदे मातरम लिखा गया है। प्रेरणादायी संवर्धन ये है कि पहली बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी गूंजेगा। किले की बाहरी दीवार पर लगे कटआउट्स परमाणु और अंतरिक्ष तकनीक में भारत की प्रगति को दर्शा रहे हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, मातृभूमि का वंदन करते हुए, नमन करते हुए, मातृभूमि के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हुए यहाँ पर अनेक प्रतीक चिन्ह हैं। हम आपको बताएं कि लाल किले की भव्य प्राचीर पर दोनों ओर दो बड़े बुर्ज हैं, इन्हीं से सटा हुआ हमारा कमेंट्री बूथ है। प्राचीर के ठीक बीच में कुछ ऊंचाई पर ध्वज स्थल है जो हमारे दाहिनी ओर है और इस समय ताजे फूलों से सजा हुआ है। ध्वज दंड को भी फूलों की लड़ियों से सजाया गया है। खुशनुमा मौसम में सुबह की मध्यम बहती मंद बयार के साथ ताजे फूलों की गंध हमारी उत्सव धर्मिता में शामिल हो रही है। आज वैसे भी तीज है, आप सभी को तीज पर्व की भी शुभकामनाएं। और तीज को माना जाता है बहुत ही शुभ अवसर, क्योंकि त्योहारों की शुरुआत इससे होती है। ऐसे में तीज के अवसर पर जब हमारा राष्ट्रीय पर्व है तो हमारे राष्ट्रीय पर्व ने अनेक पर्वों की गरिमा साथ ही बढ़ा दी है। ध्वज स्थल के दोनों ओर दर्शक दीर्घा बनाई गई है। लाल रंग की कुर्सियां करीने से सजी हुई हैं और उन पर आमंत्रित अतिथि गणों के नाम भी लिखे हैं। दाहिनी ओर की दर्शक दीर्घा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश हैं तथा पद्म पुरस्कार विजेता अन्य अतिथि हैं। और बाईं ओर की जो दर्शक दीर्घा है उसमें केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति है। हम आपको बताएं कि यहां से हम देख सकते हैं उपस्थिति है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की, श्री पीयूष गोयल हैं, श्री नितिन नवीन यहाँ से हम देख सकते हैं, श्री हरदीप सिंह जी की उपस्थिति है, श्री मनसुख मांडविया जी हैं, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, डॉक्टर जयशंकर उपस्थित हैं, श्री गिरिराज सिंह जी हैं, श्री नितिन गडकरी जी हैं, श्री अश्वनवी वैष्णव जी हैं, दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधु जी की भी गरिमा में उपस्थिति यहाँ पर है। वर्दी पहने सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति है तो आकर्षक परिधानों में उल्लासित बच्चे भी हमें दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ से।
3: माननीय प्रधानमंत्री महोदय कुछ ही देर में यहाँ लाल किले के प्राचीर पर पहुंचेंगे और जब वे प्राचीर के ऊपर बने ध्वज स्थल पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले राष्ट्रगीत, पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहला अवसर होगा जब स्वतंत्रता दिवस के समारोह में राष्ट्रीय गीत की धुन और स्वर यहाँ पर गूंजेगा। राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी। यहाँ आने से पहले माननीय प्रधानमंत्री महोदय राजघाट पहुंचकर वहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद यहाँ के लिए वो प्रस्थान करेंगे। लाल किले के ये प्राचीर और ये पूरा परिदृश्य अद्भुत है। इस समय ईश्वर की कृपा भी है क्योंकि मौसम बहुत खुशनुमा है, आसमान घने बादलों से ढका हुआ है, इसलिए धूप की रश्मियाँ जो हैं वो धरती तक नहीं पहुँच पा रही हैं और लोग बहुत ही सुखद वातावरण में यहाँ बैठे हुए हैं। लगभग 27 डिग्री का यहाँ तापमान हम समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, लगभग इतना ही यहाँ पर तापमान है और पक्षियों के कलरों के साथ हल्की हल्की बयार के साथ जो पताकाएं लगी हैं वो लहरा रही हैं हवा के साथ। हमारे राष्ट्रीय ध्वज जहां जहां तक हमारी दृष्टि जाती है वहां तक लगे हुए हैं, वो भी लहराते हुए एक नई ऊर्जा का संचार हम सबके भीतर कर रहे हैं। वैसे भोर तो हर सुबह हर रोज होती है लेकिन आज की भोर सामान्य दिनों से बिल्कुल हटकर है क्योंकि भारतवासियों के लिए बहुत विशेष है। हो भी क्यों ना, आज ही के दिन तो 15 अगस्त को सन 1947 में दुनिया के मानचित्र पर स्वतंत्र देश के रूप में भारत का उदय हुआ था। वही भारत जिसके बारे में विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुदस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद् भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग है उसे भारत कहते हैं और हम स्वयं को भारतीय कहते हैं। मंच की सज्जा को आपने जाना, अनुभव किया होगा, अपने अपने कल्पना में उसे सजीव भी किया होगा आपने। मंच के ठीक सामने जो ज्ञानपथ का क्षेत्र है वहाँ सबसे पहले हमारी दृष्टि जहां जाती है वो है राष्ट्रीय सलामी गारद जो वहां पर उपस्थित है ठीक सामने। इसमें सेना के तीनों अंगों और दिल्ली पुलिस की टुकड़ियां शामिल हैं। प्रत्येक टुकड़ी में 32 सैनिक हैं और एक अधिकारी उसमें शामिल हैं। राष्ट्रीय सलामी गारद का नेतृत्व कर रहे हैं मेजर लोकेंद्र सिंह, सेना की अपनी यूनिफॉर्म में, वर्दी में सजे धजे, गर्व से सीना तरा हुआ। सेना की टुकड़ी की कमान मेजर विकास यादव के हाथों में है जबकि लेफ्टिनेंट कमांडर अभिलाष नौसेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं अपने सफेद यूनिफॉर्म में और पीकैप के साथ। वायुसेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर उमेश जी और एडिशनल डीसीपी विकास मीणा।

दिल्ली की टुकड़ी, दिल्ली पुलिस की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं। और हमारे ठीक सामने उस राष्ट्रीय सलामी गारद के दाहिनी हिस्से में वहां पर बैंड दल उपस्थित है जो राष्ट्रीय सलामी के समय राष्ट्रीय धुन बजाएगा और उसके पहले राष्ट्रीय गीत यहां पर बजाएगा। लेकिन उनके पीछे भी एक ऊर्जा का अनुभव, अद्भुत दृश्य हम देख पा रहे हैं श्रोताओं, क्योंकि ये इस बार का आयोजन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से प्रदर्शित

0: क्षण की जब पहली बार यहां से उसे उसे बजाया जाएगा और गाया जाएगा, उसके साथ साथ बड़ी संख्या में युवा शक्ति यहां पर एक नई ऊर्जा का प्रतिबिंब लेकर उपस्थित है। और इसमें सामने जो दृश्य हम देख पा रहे हैं ज्ञानपथ पर, वहां लगभग 2500 की संख्या ऐसे विद्यार्थियों की है जो एनसीसी से संबंधित रखते हैं, एनसीसी के तीनों विंग से संबंधित रखते हैं, और उसके साथ साथ हमारे माई भारत वॉलंटियर स्वयंसेवक भी इसमें शामिल हैं। और इन्होंने जो अधिसंख्य हैं, बहुसंख्यक हैं, उसमें उन्होंने सफेद रंग की वेशभूषा पहन रखी है, ज्यादातर जिनकी संख्या है, लेकिन बीच में कुछ ऐसा रंग है जो हमारी केसरिया रंग यानी हमारे बलिदान का भी प्रतीक है, और उसी रंग के साथ केसरिया रंगों की वेशभूषा के साथ उन्होंने यहाँ रचा है वंदे मातरम। क्योंकि वंदे मातरम इस बार, इस पहली बार इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में गूंजेगा
1: जी। उत्तर से लेके दक्षिणी लकीर तक, पूर्वा से लेके पश्चिमी समीर तक, सागरों से लेके नदियों के तीर तक, पर्वतों से लेके घाटियों के तीर तक, आत्मा से लेके नश्वर शरीर तक, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, चाहे जिंदा रहें चाहे मर जाएं, हम गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। देश की संचयी शक्ति जो देश का इतिहास अपने आप में समेटे है, एक अभिवादन भी है, सम्मान भी है, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की पहचान भी है। ये दो शब्द जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में देशवासियों को एकजुट किया और आज़ाद भारत को भी सदा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। हम आपको बताएं साथियों, वंदे मातरम जो यहाँ से हम देख रहे हैं, एनसीसी कैडेट्स ने जो मानव संरचना में लिखा है, बेहद प्रेरक, बेहद खूबसूरत यहाँ से जान पड़ रहा है। और साथ ही जो अन्य यहाँ पर बच्चे हैं वो उत्सुकता से एक टक इन बच्चों को निहार रहे हैं। आज के आयोजन के लिए राजधानी में परिवहन व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। वैकल्पिक मार्गों के बारे में काफी पहले से ही जानकारी साझा की गई है। कई दिन पहले से ही सभी प्रमुख चौक चौराहों पर, महत्वपूर्ण भवनों पर रंग बिरंगी प्रकाश सज्जा की गई है। साथ ही जन समुदाय की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है। राजधानी को गति देने वाली मेट्रो भी हमारे इस राष्ट्रीय पर्व का आज हिस्सा है, अपनी सेवा देते हुए आज सुबह 4 बजे से सरपट दौड़ रही है। यहाँ आयोजन स्थल के आसपास ब्लॉक रूम, व्हीलचेयर और पेयजल की व्यवस्था की गई है। लगभग 23,000 आगंतुकों को इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। अपनी सजीली सैन्य वर्दी पहने अधिकारी हैं, आकर्षक परिधानों में यहाँ पर सामान्य जन हैं, एनसीसी कैडेट्स हैं, माई भारत स्वयं सेवकों ने जो संरचना बनाई है, हमने आपको बताया कि बेहद यहाँ पर आकर्षक है। सीढ़ीदार व्यवस्था में इनके दोनों ओर दर्शक दीर्घा बनाई गई है। एक ओर विद्यालय के छात्र छात्राएं अपने शिक्षकों के साथ बैठे हैं, अन्य आगंतुक हैं, तो दूसरी ओर भी सीढ़ीदार व्यवस्था में कुर्सियां करीने से लगाई गई हैं। हल्के जामुनी रंग की दरी पर, हरे रंग की कुर्सियों पर आगंतुक आज के अवसर के लिए विशेष तौर से हमारे तिरंगे के जो तीन प्रधान रंग हैं उनके परिधान पहने हुए हैं। आज का ये आयोजन अलग अलग क्षेत्रों में हमारे युवाओं की उपलब्धियों को भी उजागर कर रहा है। इंटरनेशनल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ओलंपियाड में मेडल विजेता युवाओं को भी आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। नेशनल इनोवेशन कार्यक्रम से जुड़े युवा हैं, पीएम इंटर्नशिप योजना के छात्र हैं, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चयनित बेहतरीन स्टार्टअप के तहत चुने गए श्रेष्ठ प्रतिभागी हैं, माई भारत के स्वयंसेवक हैं, दिल्ली के विभिन्न विद्यालयों में हुई परीक्षाओं और प्रतियोगिताओं के विजेता विद्यार्थी भी इस समय यहाँ बैठे हैं। इस अवसर पर देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दिल्ली में रहने वाले 1500 से ज्यादा ऐसे लोगों को भी आमंत्रित किया गया है जो इस समय अपनी पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ बैठे हैं और लघु भारत का दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और एक खास बात ये है कि हमारी जल शक्ति का सम्मान रखते हुए इस बार जो प्रांगण घेरे हैं, एनक्लोजर्स हैं, इनके नाम प्रमुख झीलों के नाम पर रखे गए हैं। भीमताल, चंद्रताल, दूध सागर, रोबिंद्र सरोवर, रुद्र सागर, चिलिका, हाफलोंग नाम रखे गए हैं। हमें यहाँ दिखाई दे रहा है वो भारत जो समृद्ध है, जो संपन्न है, साथ ही जो संकल्पित है आगे बढ़ने के लिए, और साथ ही विकसित भारत 2047 का लक्ष्य लिए, जिसमें हर उम्र का देशवासी अपनी ओर से योगदान करने के लिए तैयार है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये स्वतंत्रता जिसने पराधीन भारत में जब देशवासियों को पुकारा तो अपनी जान की परवाह न करते हुए देशवासी जुट गए कि भारत माँ को हमें परतंत्रता की बेड़ियों से आज़ाद करवाना है। और अब यही स्वतंत्रता हमें ये

0: प्रेरणा देती है कि लगातार आगे बढ़ते हुए हम जहां हैं, जो कर सकते हैं, देश प्रेम मन में रखे हुए, संजोए हुए, देश को विकसित करने की ओर लगातार बढ़े, अपना योगदान करें।
1: निश्चित रूप से, और इसीलिए भारत के भविष्य को लेकर जो संकल्पना है, विजन है, विशेष तौर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जिस गति से आगे बढ़ते हुए वर्ष 2047 तक यानी 100 वर्षों के स्वतंत्र भारत की यात्रा को पूरा करते हुए एक विकसित भारत के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके, उसका भी यहाँ दृश्य हमें साफ नजर आता है। यहाँ लाहौरी गेट पर प्रधानमंत्री महोदय का आगमन कुछ ही पलों में होने जा रहा है। वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और साथ ही रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह वहां पर उपस्थित हैं। साथ ही दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग भी वहां पर उपस्थित हैं, जो वहां प्रधानमंत्री महोदय की अगवानी करेंगे और वहां माननीय प्रधानमंत्री महोदय को सलामी दी जाएगी और उसके बाद सलामी गारद का वो निरीक्षण करने के बाद लाल किले के प्राचीर पर पहुंचेंगे और आगे का जो कार्यक्रम है वो यहां आरंभ होगा। इस रूप में बिगुल वादन के साथ इस बात का संकेत मिल चुका है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के वाहनों का काफिला यहां प्रवेश कर रहा है। आइए आपको आगे के विवरण के लिए सीधे लिए चलते हैं देवेंद्र के पास, जो लाहौरी गेट पर उपस्थित हैं।
2: धन्यवाद जैनेन्द्र। मैं देवेंद्र त्रिपाठी आप सभी श्रोताओं का लाल किले के ऐतिहासिक प्रांगण में लाहौरी गेट से स्वागत करता हूं। इस द्वार के समक्ष होने वाली सभी गतिविधियों की जानकारी आपसे साझा करूंगा, जहां माननीय प्रधानमंत्री को तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस की संयुक्त सलामी दी जाएगी। प्रधानमंत्री सम्मान गारद का निरीक्षण करेंगे, उसके बाद ऐतिहासिक 13वीं बार ध्वज फहराएंगे और देश और दुनिया को संबोधित करेंगे। आजादी का ये दिन 15 अगस्त भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित, ना जाने कितने रक्तों से रंजित। ये स्वाधीनता का ही उत्सव नहीं, ये अवसर है माँ भारती के वीर बलिदानियों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने का भी, उन्हें ये विश्वास दिलाने का कि आपके बलिदानों का ऋण हम माँ भारती की सेवा करके चुकाएंगे। ये वीर शहीदों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है, जिनके त्याग और बलिदान से ये प्रतिफल आज हमें मिला। श्रोताओं, माननीय प्रधानमंत्री के वाहनों का काफिला प्रांगण में प्रवेश कर रहा है और यहाँ का पूरा परिदृश्य नई ऊर्जा से ओतप्रोत। माँ भारती का वंदन और वीर बलिदानियों का अभिनंदन करने के इस पावन आयोजन में उत्साह, उल्लास और श्रद्धा का भाव। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन लाहौरी गेट के समक्ष सलामी मंच पर हो रहा है, जहां उनकी अगवानी के लिए उपस्थित हैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, माननीय रक्षा मंत्री राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी। श्रोताओं, सलामी मंच के सामने तीनों सेनाएं और दिल्ली पुलिस तथा नौसेना बैंड वादकों का दस्ता, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सलामी देने के लिए सभी मुस्तैद। दस्तों के पृष्ठभाग में लगा है तीन रंगों में बैनर, जिस पर झलक है विकसित भारत और विविध भारत की। अंतर सेना सम्मान गारद का जिम्मा इस बार थल सेना को दिया गया है, कमान है लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह के हाथों और सलामी मंच के दोनों ओर खड़े हैं कैप्टन विक्की मेहता और प्रथम नेगी। प्रधानमंत्री के वाहनों का काफिला पहुंचा है सलामी मंच के पास और माननीय प्रधानमंत्री अपने वाहन से उतरते हुए लाल रंग का साफा और ब्राउन यानी भूरे रंग की सदरी, सफेद रंग का कुर्ता पैजामा माननीय प्रधानमंत्री श्री राजनाथ सिंह, श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री और रक्षा सचिव का अभिवादन स्वीकार करते हुए और रक्षा सचिव जीओसी दिल्ली एरिया राजेश सेठी से परिचय कराते हुए अब माननीय प्रधानमंत्री पहुंचे हैं सलामी मंच की ओर, जहां उन्हें अंतर सेना पुलिस सम्मान गारद सलामी देगी, कमान लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह के हाथों में।

संयुक्त कमांडर के नेतृत्व में चतुरों की सलामी। भारतीय सैन्य बलों के पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन लाल किले की इस प्रांगण में। अब संयुक्त कमांडर सलामी मंच की ओर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री जी से सम्मान गर टुकड़ियों का निरीक्षण करने के लिए आग्रहपूर्ण अनुमति लेंगे। सधे हुए कदमों से, हाथों में तलवार लिए और जोश भारतीय सैन्य बलों का जो झलक रहा है। प्रधानमंत्री जी ने सहमति दी और सलामी मंच से नीचे उतरते हुए मंच के बाईं ओर से बिछा है रेड कार्पेट, जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री के स्वागत में अपनी लालिमा से इस स्थल को और गौरव प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री के दाईं ओर दो कदम पीछे, हाथों में तलवार और भारतीय सैन्य बलों का शौर्य लिए चल रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह। प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं नौसेना बैंड दस्ते के पास। बैंड

0: मास्टर डी सेल्वम के नेतृत्व में नौसेना का ये बैंड आनंद लोके की धुन बजाएगा, जिसे तैयार किया बैंड मास्टर जे रोड्रिक्स ने, और बच्चों की आवाजें आप सुन पा रहे हैं। यहाँ मौजूद उपस्थित बच्चे माननीय प्रधानमंत्री का अपनी आवाज के साथ स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री के अब का आगमन हुआ है थलसेना की टुकड़ी के पास। 25 जवान नेतृत्व मेजर आदित्य शर्मा के हाथों में, प्रधानमंत्री के समक्ष पूरी नम्रता लेकिन अभिमान का अभामंडल देश के वीर सैनिकों के मुख पर, ये विश्वास दिलाते हुए मां भारती की रक्षा में सदैव तत्पर। नौसेना की कमान लेफ्टिनेंट कमांडर अरुण कलमाड़ी के हाथों में तीनों सेनाएं देशवासियों को विश्वास दिलाती हुई, हम है भारत के प्रहरी, हम है मां भारती के सेवक और रक्षक। और अब प्रधानमंत्री वायुसेना के दस्ते के समक्ष 24 जवानों की टुकड़ी भारतीय वायुसेना का प्रतिनिधित्व 80वें स्वतंत्रता दिवस पर करती हुई, कमान स्क्वाड्रन लीडर विपिन कुमार के हाथों में, दिल्ली पुलिस का नेतृत्व एडिशनल डीसीपी विनीत कुमार कर रहे हैं। सभी ने अपने भावों से माननीय प्रधानमंत्री को विश्वास दिलाया मां भारती के रक्षक सदैव तत्पर। और अब लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह परेड कमांडर माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद प्रकट करते हुए, और अब लाहौरी गेट से माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं समारोह स्थल लाल किले की प्राचीर की ओर, जो 1947 से हर वर्ष केंद्र बना है भारत के स्वाधीनता उत्सव का। प्रधानमंत्री के साथ हैं जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी। लाहौरी गेट, लाल किले की प्राचीर और दोनों गुंबद साक्षी हैं भारत के स्वाधीन होने, विकासशील से विकसित बनने के अमृतकाल के। स्वाधीन 79 वर्षों में भारत ने अपने विकास की लंबी यात्रा तय की है श्रोताओं। 2026 का भारत विश्व पटल पर भी अपनी छाप छोड़ रहा है। भारत के विचार दुनिया के लिए मायने रखते हैं, जो समाधानों के लिए आज भारत की ओर देखते हैं, क्योंकि भारत की नीतियों के मूल में है वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श और भारत का उत्कर्ष। विकास भी और विरासत भी भारत की विचारधारा, और भारत, हमारा प्यारा भारत बढ़ रहा आगे। एक तरफ अपने हृदय में संजो रहा अपने पूर्वजों के बलिदानों को, तो दूसरी ओर माथे पर चंदन की तरह बिठा रहा युवाओं को, जो भविष्य के भारत की गाथा लिखने को तत्पर। एक ओर इंडियन नॉलेज सिस्टम का सम्मान, दूसरी ओर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घोष भी। 80वां स्वाधीनता दिवस अवसर है अपने पूर्वजों को प्रणाम करने का, उनके प्रति श्रद्धावनत होने का, जिन्होंने तन मन और धन से मां भारती की सेवा की। 21वीं सदी का सबल भारत वीर बलिदानियों का ऋणी है, जिनके समर्पण और बलिदान से हमें आज का यह सौभाग्य मिला। और श्रोताओं, मुख्य समारोह स्थल की ओर चलते हैं, लाल किले की प्राचीर पर, जहां 150 वर्ष वंदे मातरम के पूर्ण होने के अवसर पर इस बार पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम की धुन आप सुनेंगे, उसके बाद ध्वज फहराया जाएगा और फिर राष्ट्रगान होगा और प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। और विवरण के लिए हम लाल किले की प्राचीर कमेंट्री बूथ पर लिए चलते हैं अपने साथी कमेंटेटर नीलम और जैनेन्द्र के पास।
1: धन्यवाद देवेंद्र। साथियों, कुछ ही देर में ये पावन और ऐतिहासिक क्षण आएगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर ध्वज फहराने के लिए लाल किले की प्राचीर पर बने ध्वज स्थल की ओर आएंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ध्वज स्थल पर पहुंचेंगे, तब भारतीय सेना का बैंड वंदे मातरम की धुन बजाएगा। अपने राष्ट्रगीत के सम्मान में हम सावधान मुद्रा में खड़े होंगे। प्रधानमंत्री जी भारत माँ की अस्मिता के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को जब फहराएंगे, तब राष्ट्रगान होगा, साथ ही तिरंगे को सलामी भी दी जाएगी। आर्मी सिग्नल कोर से कैप्टन रितिका खरेटा माननीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग करेंगी ध्वज फहराने में। 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और साथ ही भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर आकाश से झंडा वंदन करते हुए पुष्प वर्षा करेंगे। ध्वज फॉर्मेशन का नेतृत्व करते हुए कमान अधिकारी विंग कमांडर ऋषिकांत के साथ को पायलट स्क्वाड्रन लीडर मोहित सिंह राष्ट्रीय ध्वज वहन किए हुए आएंगे। दूसरा हेलीकॉप्टर वंदे मातरम का ध्वज लिए हुए आगे बढ़ेगा और स्क्वाड्रन लीडर पुनीत यादव पुष्प वर्षा करेंगे, इस तरह से अपनी ओर से झंडा वंदन भी करेंगे और साथ ही यहाँ बैठे उत्साहित देशवासियों पर भी पंखुड़ियाँ जब गिरेंगी तो वो दृश्य देखने लायक होता है। बच्चे बेहद उत्साहित हो जाते हैं इसे देखते हुए, और आप जानते ही हैं कि अब राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों के सम्मान में हम सावधान मुद्रा में खड़े होते हैं। इस तरह से अपने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों को, राष्ट्र को प्रेरणा देने वाले इन गीतों को हम सम्मान देते हैं। मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, भगत सिंह की फांसी, मैं बापू की अंगड़ाई हूँ, हूँ जलियांवाला बाग भी मैं, पानीपत का पानी हूँ, ऊधम की पिस्तौल भी मैं, झांसी वाली रानी हूँ, रंग दे बसंती चोला, मैं गुरु गोविंद सिंह का बलिदान हूँ, चेतक की हुंकार में ही मैं राणा प्रताप की शान हूँ, मैं छुपा बोस किनारों में, मैं जंग लगी तलवारों में, मैं इनकलाब की बोली हूँ, आज़ाद की आखिरी गोली हूँ, मैं भारत का हर भाव चंगा हूँ, मैं सबका पूज्य तिरंगा हूँ। इसी तिरंगे के सम्मान में पूरा आयोजन यहाँ का हो रहा है और यहाँ पर जो सलामी गारद है वो भी जब राष्ट्र

0: ध्वज फहराया जाएगा उस समय राष्ट्रीय सलामी देगी।
1: निश्चित रूप से, और सभी को उस पल की प्रतीक्षा है। श्रोताओं, लाल किले के प्राचीर से जब हमारी दृष्टि सामने इस पूरे क्षेत्र की तरफ जाती है, चांदनी चौक की तरफ जाती है, तो अनायास ही बहुत सारे ऐसे इतिहास के पन्ने अपने आप सजीव होने लगते हैं जो हमारे पूरे राष्ट्र के लिए, देश के लिए संघर्ष का एक बहुत कठिन दौर रहा है जिससे देश गुजरा है। धर्मांधता और बलपूर्वक धर्मांतरण के वो विभत्स और क्रूर घटनाएं दृश्य आंखों के सामने सजीव होने लगते हैं। आपको मालूम ही है, लाल किले के प्राचीर के सामने चांदनी चौक में ही स्थित है गुरुद्वारा सीसगंज। सन 1675 में 24 नवंबर की वो तारीख थी जब यहीं हमारे नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर का सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। गुरु साहब ने बलिदान से पहले, गुरु साहब के बलिदान से पहले उनके शिष्य भाई मतीदास, भाई दयाला और भाई सतीदास के ऊपर भी बर्बरता भला कौन भूल सकता है। देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में भी ये दिल्ली स्थित चांदनी चौक एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक केंद्र रहा है। 1857 की क्रांति का दमन करने के लिए ब्रिटिश सेना ने यहाँ की मुख्य सड़कों और कोतवाली के आसपास के क्षेत्रों में अपना दमन चक्र चलाया। क्रांतिकारियों को खुलेआम फांसी दी गई। 1857 में आपको याद होगा, ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने वाले, जिन्हें दिल्ली का आयरन वॉल कहा जाता था, बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह को 9 जनवरी 1858 में 32 साल की मात्र उनकी उम्र थी, तब उनको इसी चांदनी चौक में फांसी पर लटकाया गया था खुले में। 23 दिसंबर 1912 को जब ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली को राजधानी बनाने के उपलक्ष्य में इसी चांदनी चौक से होकर शाही जुलूस निकाल रहा था, तब यहां घंटाघर के पास क्रांतिकारियों ने उस पर बम फेंका। और उस हमले की योजना राजबिहारी बोस ने बनाई थी, उसमें मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद जी और बसंत कुमार विश्वास जैसे क्रांतिकारी शामिल थे। बाद में बाल मुकुंद और बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई थी, जबकि राजबिहारी बोस वेश बदलकर देश से बाहर निकल गए और जापान पहुंचकर आजाद हिंद फौज की स्थापना की, और उसके आगे का इतिहास आप सबको विदित है। सन 1915 से 1934 के बीच महात्मा गांधी ने चांदनी चौक में कई ऐतिहासिक बैठकें की थी। यहाँ की मारवाड़ी पब्लिक लाइब्रेरी हो, गांधी मैदान हो, ये सब क्रांतिकारियों और देशभक्तों की बैठकों का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। अंग्रेजों के दमनकारी कानून रॉलट एक्ट के को लेकर जब देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, तब 1919 में ही स्वामी श्रद्धानंद जी ने चांदनी चौक के घंटाघर पर पुलिस की संगीनों के सामने खड़े होकर निडरता से रॉलट एक्ट का विरोध किया था। कोतवाली के सामने का जो क्षेत्र है, इसी चांदनी चौक की एक गली में क्रांतिवीर स्वतंत्रता संग्राम के पर्चे और बुलेटिन चुपके चुपके छापा करते थे और पूरे शहर में बांटकर स्वतंत्रता की अलख जगाया करते थे। यहाँ चाहे वो कटरा नील हो, खारी बावली हो, दरीबा कला हो, इन सभी क्षेत्रों के व्यापारी और आम नागरिक भी इस लड़ाई में शामिल थे। और इस समय जबकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आगमन के साथ जब शुरू होगा यहाँ का मुख्य आयोजन और वंदे मातरम के स्वर गूंजेंगे, उसकी उत्कंठा में और उल्लास में बहुत बड़ी संख्या में जो यहाँ उपस्थित जनसमुदाय है, विशेष रूप से बच्चे अपने अपने स्थान पर खड़े होकर हाथ हिला रहे हैं। प्राचीर की तरफ देख कर उनके उत्साह और उमंग की अभिव्यक्ति उनके चेहरे पर साफ नजर आती है, और जो पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं, उनके स्वर, उनकी पहचान और उनकी आभा जो व्यक्तित्व की है वो भी बहुत आकर्षित कर रही है।
0: बिल्कुल जानेंद्र जी, और मैं देख पा रही हूँ कि बच्चे जो हैं वो बार बार टुकड़ टुकड़ निहार रहे हैं यहाँ ध्वज स्थल की ओर, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पूरे विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय और सम्मानित प्रधानमंत्री जी का आगमन होने जा रहा है। साथियों, आज का दिन हम अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए, उनकी स्मृति को नमन करने के लिए भी विशेष तौर पर मनाते हैं। विशेष तौर पर आज का दिन हमें ये अवसर देता है, क्योंकि हम जानते हैं, तुम न समझो देश को स्वाधीनता यूं ही मिली है, हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है। स्वतंत्रता संग्राम के चिर परिचित सेनानियों के साथ ही गुमनाम नायकों के प्रति आज कृतज्ञता का भाव है, तो आज़ाद भारत के उन वीरों का गुणगान भी है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन किया है। मंगल पांडे की पहली चिंगारी से लेकर रानी लक्ष्मीबाई का दम्य साहस, सब कुछ हमें प्रेरित करता है। और हम देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है इस समय ध्वज स्थल पर।

0: माननीय प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए।
1: Let's get through! Come on!

0: Minneapolis Marlins! Rangers! Yes!
1: और इस समय आकाश में जो स्वर हमें सुनाई दे रहे, ध्वनि सुनाई दे रही है, वो उन हेलीकॉप्टर्स की है जो पुष्प वर्षा करते हुए लाल किले के प्राचीर के ऊपर से गुजर रहे हैं और लोगों की निगाह उसी आसमान की तरफ है। एक हेलीकॉप्टर, ये Mi-17 हेलीकॉप्टर्स हैं भारतीय वायुसेना के, जिसमें एक हेलीकॉप्टर में राष्ट्रीय ध्वज उसमें दिखाई दे रहा है हवा के साथ अटखेलिया करता हुआ, और दूसरे हेलीकॉप्टर में नीचे लिखा है वंदे मातरम और पुष्प वर्षा करते हुए ये सभी यहां से हमारी बाई तरफ से दाहिनी तरफ आसमान में आगे बढ़ते हुए। बच्चों के बीच खासतौर पर उल्लास और फूलों की पंखुड़ियां यहां चारों तरफ बिखरी दिखाई देती है। खासतौर पर जो सफेद वेशभूषा में बच्चे बैठे हुए हैं वहां ठीक सामने उन

0: के कपड़ों पर सफेद रंग पर जो पुष्प है, पंखुड़ियां है पीले रंग की, वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आनंदित करने वाली लग रही है
1: जी। और जनेंद्र किस तरह से बच्चे उल्लासित होकर प्रधानमंत्री जी को भी निहार रहे हैं, और उनकी कोशिश है कि एक दो पंखुड़ी को वो कैच कर पाए, और ये पंखुड़ियां इस समय हमारे बूथ की ओर भी आई, बेहद रमणीय दृश्य है ये
0: जी। और राष्ट्रीय सलामी गारद अब राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के बाद और राष्ट्रीय सलामी देने के बाद यहाँ से प्रस्थान करती हुई सेना के बैंड कुमायूं रेजिमेंट सेंटर जो इसमें शामिल थे, जिसने आज पहली बार ये इतिहास रचा गया, स्वतंत्रता दिवस के आयोजन में पहली बार यहाँ राष्ट्रगीत वंदे मातरम की धुन बजी, लेकिन सस्वर यहाँ उपस्थित हजारों लोगों ने उस गीत को अपने मुखारबिंदु से गाया है, चाहे वो प्राचीर के ऊपर बैठे हुए हमारे सभी अतिथियों दर्शक दीर्घाओं में, या ठीक सामने हमारे बाईं और दाहिनी तरफ बड़ी संख्या में जो दर्शक दीर्घा में हजारों की संख्या में देश भर से पधारे हमारे दर्शक हैं, विशेष मेहमान हैं, दिल्ली वासी हैं, अलग अलग प्रदेशों के और केंद्र शासित प्रदेशों के वासी हैं, उन सबने अपने वेशभूषा में, जिसमें बहुत सारे लोग हैं पारंपरिक वेशभूषा में, खड़े होकर बड़े गर्व के साथ इस बार पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया। इस समय परेड कमांडर मेजर लोकेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में राष्ट्रीय सलामी गारद जो है हमारी दाहिनी तरफ, जो उनका स्थल है इकट्ठे होने का, वहां आगे की तरफ लाल किले के प्राचीर से ज्ञानपथ से होते हुए यहां से प्रस्थान करते हुए, और आतुरता से यहां उपस्थित हजारों की संख्या में उपस्थित जनसमुदाय, देश के 145 करोड़ जनता और दुनिया भर के लोग आतुरता से इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लाल किले की ये प्राचीर, जिसने पिछले 12 वर्षों में विकास के नए नए प्रतिमानों का बीजारोपण जहां से हुआ है लाल किले के प्राचीर से, और इस प्राचीर से विकसित भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचने और जन जन की प्रेरणा प्राप्त करने का अवसर मिला है। राष्ट्र को जब प्रधानमंत्री महोदय संबोधित करते हैं तो उसे सभी सुनते हैं, सभी प्रेरणा लेते हैं, सभी उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि आज राष्ट्र की प्रति सोच, राष्ट्र के प्रति हमारी संवेदनाएं अपनी गहनता के शिखर पर हैं, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, विकसित भारत बनना है। श्रोताओं,
2: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम सब 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम के नाद से गूंज रही है। आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है, और देश उत्साह और उमंग के साथ नए संकल्पों को लेकर के आज आगे बढ़ रहा है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश आज उन महान सपूतों का पुण्य स्मरण करती है जिन्होंने देश की आजादी के लिए त्याग बलिदान की पराकाष्ठा की। अपने तप, त्याग और बलिदान से आजादी के एकमात्र लक्ष्य को लेकर के अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। पूज्य बापू समेत सभी स्वातंत्र सेनानियों को बलिदान की महान परंपरा जगाने वाले महान क्रांतिकारियों को आज मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज जो इस समारोह में उपस्थित है, उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है।

आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए। उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपनी सिद्धियों को प्राप्त करता है, जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं है, हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं, हमारी सोच की क्षितिज को विस्तृत करते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे संकल्प भी ऊंचे होने चाहिए, क्योंकि जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं, तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है, और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, अब भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा, दृढ़ संकल्प के साथ देखा है, नई ऊंचाइयों को छूने के लिए देखा है। और वो सपना है, जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे, 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है, ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है। दुनिया हमारी तरफ देखने का नजरिया बदलने के लिए मजबूर हो जाती है। अरे देशवासियों, और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ, समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। उनके इस प्रयासों का

आदर पूर्वक स्वीकार करता है और उसी का परिणाम है इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले हैं। उन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल फाइव में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं। साथियों, देश आजाद हुआ, बहुत सारे सपने लेकर के आजाद हुआ, लेकिन हम गति नहीं पकड़ पाए, रफ्तार नहीं पकड़ पाए। होती है, चलती है, हो जाएगा, देखा जाएगा, उसी में खोए रहे। 2014 तक आते आते तो पूरे विश्व ने हमें फ्रेजाइल फाइव के उस डंप कर दिया था। ऐसे समय पिछले 12 साल में भारत ने एक नई रफ्तार पकड़ी है, तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं और देशवासियों का संकल्प है कि आप 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को, सामर्थ्य को रोकना नामुमकिन है। अरे देशवासियों, पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना हुआ, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। इतना ही नहीं, आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट कंज्यूमर करीब करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़े। सामान्य मानवीय की सुविधाओं की तरफ भी हमने उतना ही गंभीरता से काम किया। हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए। हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए। हर साल 4 गुनी रफ्तार से गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया। हर साल 3 गुना ज्यादा तेजी से गरीबों को घर देने का काम किया। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया, हजारों की संख्या में कंप्लायंसेज खत्म किए, सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए। पिछली शताब्दी के कानूनों से 21वीं शताब्दी की मार्च नहीं हो सकती। हमने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेट्रो का विस्तार किया, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ताकत दी। जिस स्पीड से काम, जिस स्केल पर काम किया, ये सब, ये रफ्तार, ये विस्तार, ये अचीवमेंट आजादी के बाद पहली बार पिछले एक दशक ने देखा है। और जब इतनी सारी सिद्धियां हमारे सामने हो, इतनी तेज गति दिखाई देती हो, देशवासियों का सामर्थ्य पल पल प्रकट होता है, तब तो 2047 में विकसित भारत बनने का संकल्प कभी भी अधूरा नहीं रह सकता है। ये सारे आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि हम आगे बढ़ने वाले हैं, मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन उसके लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है, आत्मगौरव की जरूरत होती है और साथ साथ आत्मनिर्भर भारत होना भी बहुत जरूरी होता है। और इसलिए बीते वर्षों में हमारा कन्विक्शन रहा है

हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता है, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है। और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, अपने हितों की सुरक्षा हमें खुद को करनी है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प बहुत दृढ़ता के साथ हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेक इन इंडिया, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, इन सारे क्षेत्रों में आज हर भारतीय का मन जुड़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं सेमीकंडक्टर का। देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी थी, हमारे यहां भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है? आज की डिजिटल दुनिया में, आज की टेक्नोलॉजी में चिप का महात्म्य हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है। और इसे चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है। इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लान, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लान, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं। और मुझे बताया गया है कि वहां जो प्रोडक्शन हो रहा है वह एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, आने वाले 7-8 वर्ष में और 5, 7 या 8 सेमीकंडक्टर प्लांट बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं। यह आत्मनिर्भर भारत हमें विकसित भारत की दिशा में जाने का मार्ग देते। मेरे प्यारे देशवासियों, वैसी यह चर्चा क्रिटिकल मिनरल की हो रही है, पूरी टेक्नोलॉजी क्रिटिकल मिनरल पर निर्भर है, भारत इसमें भी अपने आप को सुरक्षित करने में जुटा हुआ है। ये क्रिटिकल मिनरल का लक्ष्य साझा किया जाए, नेशनल क्रिटिकल मिनरल ये हमने लॉन्च किया। बजट में क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर की हमने घोषणा की है, कई देशों के साथ एग्रीमेंट हो रहे हैं। विश्व के कई देश अब इस क्रिटिकल मिनरल के विषय में भारत के पर भरोसा करने लगे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जैसे सेमीकंडक्टर की बात हो, क्रिटिकल मिनरल की बात हो, वैसे ही इस टेक्नोलॉजी की दिशा में हम जा रहे हैं, दुनिया जा रही है, उसमें एनर्जी का महत्व और बढ़ता चला जा रहा है। तो एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है। और इसलिए हमें चिप हो, एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है। और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।

इसी एक दशक में हम 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इस वर्ष भारत ने 5 ब्रीडर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करके एक अहम पड़ाव पार किया है और इसके कारण परमाणु ईंधन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हमें एक बहुत बड़ा सफलता का कदम हमने रखा है। मेरे प्यारे देशवासियों, कई बार संसाधनों की कमी के कारण देश रुकता नहीं है, लेकिन रुकने का कारण सोच की सीमाएं होती है। जब सोच बंद जाती है, सीमाओं में पड़ने लग जाती है, तब हम अपने सामर्थ्य को भी पहचान नहीं पाते। देश को आज कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ रहा है और हमारी गलत सोच के कारण है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, हमने समुद्री तट पे 99% हमारा समुद्री तट का पूरा हिस्सा ऐसी सोच के कारण नो गो एरिया घोषित करके रखा। हमने ही समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र्य था, हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया और अब हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले वर्ष उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखते हुए समुद्र मंथन की घोषणा की थी और पिछले दिनों हमने 85,000 करोड़ रुपए इस काम के लिए आवंटित करके काम को गति देने का निर्णय कर लिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, एनर्जी सिक्योरिटी, इसका मैंने कहा कि हमें अल्टरनेट स्रोतों की तरफ भी पूरी शक्ति लगाना बहुत जरूरी है और इसलिए ऊर्जा का सही इस्तेमाल बढ़ाते हुए भारत इसी दिशा में आज तेजी से काम कर रहा है। 2014 से पहले, मतलब आज से 12 साल पहले, हमारे देश में सिर्फ 70 शहरों में पाइप से गैस की व्यवस्था थी, पाइप से गैस डिस्ट्रीब्यूशन होता था। 12 साल में इन 70 शहरों को हमने 700 शहरों तक पहुंचा दिया है। ये होती है रफ्तार, ये होता है विस्तार। 2014 के पहले मुश्किल से 20-22 लाख घरों में पाइप से गैस पहुंचता था, आज 2.25 करोड़ घरों में पाइप से गैस पहुंचाने का काम हो रहा है। 12 वर्ष पहले देश में सोलर एनर्जी की कैपेसिटी सिर्फ 2 गीगावाट थी, 2 गीगावाट, आज 160 गीगावाट हमने प्राप्त किया है लक्ष्य। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं एक और जानकारी देता हूं, हमने इसका लाभ देश के मध्यम वर्ग को, सामान्य परिवार को मिले, इस तरफ भी उतना ही ध्यान केंद्रित किया। हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना चालू की, आज मुझे संतोष है कि इतने कम समय में 50 लाख घरों का सोलर एनर्जी का काम हम आंकड़ा पार कर चुके हैं, तेजी से चल रहा है और इसके कारण
हजारों घरों का बिजली बिल जीरो हो गया है, हजारों घर अपनी बिजली का उपयोग करने से अतिरिक्त बिजली आज बेच करके कमाई कर रहे हैं। हर परिवार को हम इस काम के लिए 80,000 रुपया सरकार की तरफ से एक एक परिवार को मदद दी जा रही है, तब जाकर के हम इस काम को पूरा कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आपको जानकर के हैरानी होगी, ये जो हमारी रेलवे है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हमारे देश में 1925 में शुरू हुआ था। 1925 में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू हुआ, लेकिन 90 साल में, 1925 से लेकर के 90 साल में सिर्फ 30% रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। यानी 90 साल में 30%। हमारी रफ्तार देखिए, लक्ष्य को पाने के लिए हमारी दौड़ देख लीजिए। हमें इन एक दशक के अंदर 70% काम पूरा कर दिया। 90 साल में 30%, 10 साल में 70%, ये होता है काम। और इसके कारण डीजल जो हमें बाहर से लाना पड़ता है उसकी बचत हुई, बिजली से हमारी ट्रेनें चली, पर्यावरण को फायदा होने लगा। मेरे प्यारे देशवासियों, यहां तो नहीं रुके हैं, हम दुनिया के अंदर पीछे रहना नहीं चाहते। इतने दिनों आपने खबर सुनी होगी, भारत ने ईंधन का एक नया क्षेत्र को भी छू लिया है। देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी है, और मुझे खुशी है ये सबसे लंबी ट्रेन है और सबसे ताकतवर ट्रेन है। और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया। मेरे देशवासियों, पिछले 10-12 साल हम लगातार 2047 के लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ रहे हैं, एक के बाद एक उपाय सिद्ध कर रहे हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि हमें इसमें भी कुछ मुसीबतों का झेलना पड़ेगा। पिछले 10-12 वर्ष में इतने संकटों का सामना करना पड़ा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया, सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई। कोरोना से बाहर निकले, युद्ध की विभीषा की खबरें आने लगी, कहीं यूक्रेन कहीं पश्चिम एशिया, हर जगह पर तनाव का माहौल। और पता नहीं भविष्यवेत्ताओं ने तो न जाने क्या क्या घोषणाएं कर दी थी। देश को डराना, देश को भयभीत रखना, देश को चिंतित रखना, इसी में कुछ लोगों को आनंद आता है। वैक्सीन नहीं मिलेगी, कोविड में लोग बचेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला, ईस्ट एशिया का क्राइसिस आया, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा, सारी दुनिया भर की अफवाहें फैला कर भारत के लोगों को भयभीत करने का, डराने का, चिंता के अंदर डुबो देने का कुछ लोगों को आनंद आ रहा था। लेकिन देश ने देख लिया कि पिछले 10-12 साल की सुविचारित योजनाएं रंग ला रही है, और हम इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था। सोचा नहीं था यह संकट आएगा, लेकिन संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई। और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है, हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे। मेरे प्यारे देशवासियों,
दुनिया के इन संकटों का प्रभाव हर किसी पर हुआ, हम भी अछूते नहीं। यूरिया के दाम दुनिया में 3,000 रुपया पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है। और दुनिया से जो 3,000 रुपया में यूरिया का बोरा हमें मिलता है, वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में दे पाते हैं। इतना ही नहीं, डीएपी आज दुनिया में बाजार 5,000 पहुंच चुका है, लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए 1,350 रुपये में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एक समय था जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था तो कुछ लोग एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ करके सोचने वाले लोग हमें बता रहे थे ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा, लेकिन दुनिया देख रही है कि पिछले एक दशक में ऐसा लग रहा है कि दुनिया ने ग्लोबलाइजेशन बोलना ही बंद कर दिया। जहां से ग्लोबलाइजेशन की आवाज आती थी वह बंद सुनाई नहीं देती। दुनिया का हर देश अपनी अपनी संभालों के मिजाज की तरफ गया है, लेकिन दुर्भाग्य से इस संकट के कालखंड में कुछ लोगों ने अपना रुतबा दिखाने के लिए संसाधनों को वेपनाइज करने का खेल खेला है। दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है, संसाधनों का वेपनाइज, रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर्स, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चिप्स। इतना ही नहीं, भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भरता मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कैसे करते। और हमारी तैयारियां निरंतर बढ़ती जा रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, दूसरी तरफ आज भारत का प्रोफाइल पूरी तरफ बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया के लिए एक स्वीकृत और सम्मानीय देश के रूप में बन रहा है। भारत के पास स्थिर पॉलिटिकल मैंडेट है, स्थिर सरकार है, भारत का वाइब्रेंट लोकतंत्र है, भारत का मजबूत न्याय तंत्र है, और हम सबको दिशा देने वाला भारत का संविधान है। और अब दुनिया हमारे इन सामर्थ्य को पहचानने लगी है, और इसलिए 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा एफटीए एग्रीमेंट हो रहा है। अब देखिए कितना बड़ा अवसर आया है। लेकिन मैं ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं ये बहुत बड़ा अवसर है, और इसलिए खास करके मैं मेरे एमएसएमईज को कहना चाहूंगा कि हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है। दुनिया में हमें पहुंचना है, भारत के उत्पाद की हर चीज विश्व के बाजार में पहुंचे, और हमारा टेक्सटाइल हो, हमारी मशीनरी हो, हमने दवाइयां हो, हमने मौका छोड़ना नहीं है। लेकिन वैश्विक जो पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर को हमें पार करना होगा। हमें दुनिया से जो मिलता है उसे अच्छा देना पड़ेगा, दुनिया में जो मिलता है उसे सस्ता देना पड़ेगा। पंजाब के लुधियाना से लेकर के तमिलनाडु के तिरुपुर तक हमारा टेक्सटाइल सेक्टर दुनिया में पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, केरलम से लेकर के गुजरात और तमिलनाडु से लेकर के बंगाल, ये हमारा समुद्री तट, हमारे मछुआरे भाई बहन आज इस एफटीए के कारण हमारे श्रीप यानी झींगा उसके एक्सपोर्ट की बहुत संभावना बनी है, हमारे सी फूड की दुनिया में पहुंच बनने की संभावना पड़ी हुई है। और इसलिए मैं चाहूंगा हमें इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए हम आगे चलते हुए हम इन कामों को पार करने के लिए प्रयास करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने जो भूमिका आपके सामने रखी है

उसके पीछे 2047 का लक्ष्य इन मजबूत नींव पर खड़ा है। 2047 विकसित भारत का लक्ष्य हमने पिछले 10-12 साल में देशवासियों ने जो सामर्थ्य दिखाया है उस सामर्थ्य का हिस्सा है, और इसलिए

सभी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है और अगला एक चौथाई हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम रुक नहीं सकते हैं, हमारी गति नहीं रुक सकती है, हमारी दिशा तय हो चुकी है, हमें प्राप्त करके रहना है। और इसके लिए हमें अपना वर्क कल्चर बदलना होगा, हमारे वर्क कल्चर को बदलते हुए हमें हमारी सोच को भी बदलना होगा, हमें हमारे काम की गति को भी बदलना होगा। जो काम पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए हैं, वो काम हमें आने वाले 5-7 साल में करने हैं। और मेरा भरोसा है मेरे देश की युवा शक्ति पर, मेरे देश के नौजवानों पर, मेरे देश की माताओं को बहनों पर, मेरे देश के किसानों पर, मेरे देश के मजदूरों पर, कि हम इस सपने को साकार कर सकते हैं। और इसलिए हमें रिफॉर्म की गति को भी आगे बढ़ाना है। और जब मैं रिफॉर्म की बात कर रहा हूं, रिफॉर्म नहीं हमारे लिए कोई कंपल्शन है, नहीं रिफॉर्म ये हमारे के लिए कोई बजबण है, हमारे लिए रिफॉर्म ये कन्विक्शन है। आउट ऑफ कन्विक्शन हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं और हम आने वाले दिनों में भी नेक्स्ट लेवल रिफॉर्म की ओर बढ़ने वाले हैं। और इसलिए सरकार, समाज, उद्योग, उत्पादक, किसान, हर किसी ने अपनी ट्रेडिशनल व्यवस्थाओं में रिफॉर्म करना पड़ेगा, सोच में रिफॉर्म करना होगा, अपने लक्ष्यों को रिफॉर्म करना होगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, हमें एक निश्चित दिशा में को लेकर के चलना होगा। मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा, उनकी शक्ति जोड़ी जाएगी। आने वाले दिनों में मैं सप्त धारा की बात करता हूं, सप्त धारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे ऊर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं। पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए और उसे लेकर के चलना। हमें कंपोनेंट भी चाहिए और हमें कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, कंप्लीट प्रोडक्ट भी चाहिए। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसामंद केंद्र बनना होगा। इसके लिए मैं 3 चीजों पर विशेष जोर देना चाहता हूं। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो मेरे भाई बहन हैं, ये समय का ये अवसर है, इस अवसर को जाने मत दें। और इसके लिए हमें कॉस्ट, क्वालिटी और स्केल, इसके विषय में वैश्विक मानदंडों से खरा उतरना पड़ेगा। हमारी फैक्ट्रीज कॉम्पिटिटिव हो, हमारे प्रोडक्ट्स यूजर फ्रेंडली हो, हमारा पैकेजिंग दुनिया के लोगों को लुभावने वाला हो, आकर्षित करने वाला हो, हमारा जीरो डिफेक्ट प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग ये हमारी पहचान बनना चाहिए। हर मैन्युफैक्चरर, हर एंटरप्रेनर, हर एमएसएमई से मैं कहना चाहता हूं, ग्लोबल मार्केट में हमारी पहचान विश्वसनीयता और गुणवत्ता के आधार पर होनी चाहिए, क्वालिटी के संबंध में नो कॉम्प्रोमाइज। और इसलिए हमारा

मंत्र क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी होना चाहिए, यही हमारा ग्लोबल ब्रांड वैल्यू बनेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने, दुनिया के बाजार खुल चुके हैं, एफपी के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है, हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है, हमें खेत से लेकर हमें एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। हमारे पारंपरिक खान पान हो, हमारे मिलेट्स हो, हमारे मसाला हो, हमारे फल हो, फूल हो, क्या कुछ नहीं है हमारे पास, तो ग्लोबल ब्रांड्स बनने चाहिए। हमारे किसान केमिकल फ्री खेती को बल देंगे, दुनिया में इनकी मांग और बढ़ने वाली है। और जो ग्लोबल पैरामीटर्स के अंदर हर प्रकार से सिद्ध होने वाले हमारे एग्रो प्रोडक्ट होंगे, तो दुनिया में हम आसानी से पहुंच पाएंगे। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है, पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है, और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मनवा लिया है, हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है। अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजीज, उसको भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। भारत को नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लीड करना है। मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए और हमें उस पर तेजी करनी चाहिए, और इसके लिए हमारा प्रयास कम नहीं होना चाहिए। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गतिशक्ति। ये गतिशक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा। मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलैंड वाटरवेज चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की व्यवस्था चाहिए। हमें पोर्ट को सिर्फ सामान उतारना चढ़ाने की जगह नहीं, दुनिया के शिफ्ट आकर के लंगर हो जाए इतना नहीं, हमें हमारे पोर्ट को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। अरे रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है। मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना तो भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है, इसके बिना कोई चारा नहीं है। विश्व जब अपनी अपनी ही सोच रहा है, तब भारत विश्व के लिए बाजार बन करके नहीं रह सकता है। हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना हुआ, नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है। हमें ड्रोन काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा, और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी। आज वो साइबर सुरक्षा भी हर घर के लिए एक समस्या बन रही है, वो भी एक रक्षा का क्षेत्र है, जिसमें हमारे युवाओं की जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का उपयोग हम देश के और दुनिया के लिए कर सकते हैं। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, इन ग्लोबल स्केल हमें पाकर के रहना है। हमें दुनिया में, दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है, हम रास्ते खोजते रहते हैं, हम समस्याओं का समाधान दे रहे हैं, और भारत ये ग्रीन मूवमेंट का बहुत बड़ा सामर्थ्य लेकर के चलिए। भारत के पास ब्लू इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा लंबा हमारा कोस्ट लाइन है, ब्लू इकोनॉमी के लिए बहुत बड़े अवसर है, फिशरीज है, कोस्टल टूरिज्म है, ओशन टेक्नोलॉजी है, ऐसे कितने ही क्षेत्र हैं जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं।

मेरे प्यारे देशवासियों, भारत सप्तधारा की जब बात करके लेकर चला है तो हमारी सातवीं धारा है, दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है, वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। आज योग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है। योग दुनिया के लिए एक ऊर्जा बनता जा रहा है, भारत के लिए विश्वास का बड़ा कारण बनता जा रहा है। जिस भारत के पास आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो, जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो, हील इन इंडिया का मूवमेंट हो, हम दुनिया के अंदर हमारे सामर्थ्य को लेकर के जा सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट हो, संस्कृति हो, हमारी फिल्में हो, हमारा क्रिएटिव वर्ल्ड हो, वीएफएक्स हो, हमारा एनिमेशन हो, हमारे गेमिंग हो, डिजिटल कंटेंट हो, क्रिएटिव वर्ल्ड के अंदर भारत अपना रुतबा दिखा सकता है। हमने उसको वैश्विक सामर्थ्य के रूप में विकसित करना होगा। आज भारत ने वेव समिट को एक बहुत बड़ी ताकत दी है। दुनिया धीरे धीरे भारत का ये जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है उसकी राह देखता रहता है, और वो भारत के सॉफ्ट पावर को, भारत के क्रिएटिव दुनिया को परिचित करेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के पास विशाल वन्य संपदाएं हैं, हमारे पास 100 से ज्यादा नेशनल पार्क है। क्षमता बहुत है, लेकिन विदेशी टूरिस्टों को आकर्षित करने में हम कम पड़े हैं। हमें मौका है हमारे सॉफ्ट पावर के माध्यम से दुनिया के टूरिस्टों को भारत के लिए आकर्षित करने का। हमारा सामर्थ्य हमें दुनिया को दिखाना है। हम ये काम आरा से करें और हम जल्द से जल्द हम इन लोगों आज दुनिया में स्पोर्ट्स की जो है वो भी एक बहुत बड़ा भारत के प्रति आकर्षण का केंद्र। दुनिया के स्पोर्ट्स इवेंट भारत में क्यों ना हो। कंसर्ट इकोनॉमी बहुत बढ़ रही है, देश के नौजवानों का आकर्षण है। विश्व का हर कोई कलाकार चाहता है कभी न कभी भारत की धरती पर अपना कॉन्सर्ट करे। ये बहुत बड़ा अवसर है, हमें इसको मोबिलाइज करने के लिए व्यवस्थाएं खड़ी करनी होगी। साथियों, सप्तधारा की इन सप्त शक्तियां उद्देश्य सिर्फ एक सेक्टर में प्रगति करने का नहीं है। एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमें राष्ट्र को जो लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं, जो एम्बिशन लेकर के चल रहे हैं, उस स्केल को हमें पार करने की दिशा में काम करना है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ चीजें मैंने बताई हैं, लेकिन मैं इससे भी आगे सोचता हूं। मैं जरा देश को झकझोरना चाहता हूं, मैं देश की शक्ति को भी झकझोरना चाहता हूं। देश यानी सिर्फ सरकार नहीं होती है, देश यानी हर नागरिक जुड़ता है। क्या हम सोच नहीं सकते कि फॉर्च्यून 500 की चर्चा तो बहुत सुनते हैं, आने वाले एक दशक में इन फॉर्च्यून 500 में 50 कंपनियां भारत की क्यों न हो, ये लक्ष्य हमारा क्यों न होना चाहिए। आज बैंकिंग सेक्टर फल फूल रहा है। दुनिया की टॉप बैंक के अंदर भारत की बैंक का झंडा भी क्यों न फहरता हो, भारत की बैंक भी टॉप बैंक 5 बैंक में भारत की भी एक बैंक होनी चाहिए। भारत की फार्मा की दिशा में हमने बहुत काम किया है, लेकिन समय की मांग है कि दुनिया की 5 बड़ी फार्मा कंपनियों में भारत की भी 1-2 फार्मा कंपनियों का नाम गूंजना चाहिए, भारत उसमें अपना स्थान बनाना चाहिए। लॉ फर्म्स होते हैं, रेटिंग एजेंसी होती है, क्या समय की मांग नहीं है कि ग्लोबल लीडरशिप अब हमारे हाथ में होनी चाहिए। टैलेंट है, सामर्थ्य है, हमारा लंबा इतिहास भी है, भाषाओं पर हमारा प्रभुत्व है, हमें विश्व में पहुंचना चाहिए। हमारी कोई कंसल्टिंग फर्म, अकाउंटिंग फर्म दुनिया के टॉप फर्म्स के अंदर क्यों नहीं होनी चाहिए। भारत की टेक्नोलॉजी कंपनियां दुनिया के अंदर सिरमौर हो, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारे ऐसे ब्रांड हो जिससे दुनिया आकर्षित होती हो, हमारे ब्रांड हमारे देश की पहचान हो और विश्व के लिए एक डेस्टिनेशन बन जाए, उस दिशा में हमें काम करना है। और इसके लिए मैं राज्य सरकारों को कहना चाहता हूं, मैं स्थानीय स्वराज की संस्थाओं को कहना चाहता हूं,

सरकार का भी यह दायित्व है कि हमें हमारे रिफॉर्म की गति बढ़ानी होगी, हमें 2047 के लक्ष्य के अनुरूप हमारी व्यवस्थाओं को विकसित करना होगा। हमें बीते हुए काल के नीति नियमों से नहीं चल सकते, हमें आने वाले सपनों के हिसाब से नीति नियमों को गढ़ना होगा। और इसको अगर हम पढ़ेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है और मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, इसी रास्ते मेहनत में कोई कमी न करते हुए हम विकसित भारत का सपना पार करके रहेंगे। हमें सबको मिलकर के चलना है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इंडस्ट्री हो, हम सब ने मिलकर के आगे बढ़ना है। हमें रिफॉर्म्स करते रहना है, रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाते रहना है। और मैंने पहले भी कहा था, हम रिफॉर्म कंपल्शन से नहीं, कन्विक्शन से कर रहे हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है। और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथियों, पिछले 10-12 साल में इस दिशा में बहुत कुछ हुआ है। स्टार्टअप इंडिया अभियान, आज पूरे देश में 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप बन गए। देश के नौजवान खुद तो काम कर रहे हैं, अनेकों को रोजगार दे रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया इनोवेशन फंड भारत सरकार ने घोषित किया है। मैं देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों को लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। रिसर्च के नए अवसर मिले, डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डेटा युवाओं को सशक्त किया। दुनिया में सस्ता डेटा कहीं है तो भारत की धरती पर। देश के नौजवानों ने नौजवानों को नवी ताकत दी है। स्किल इंडिया हमने नेशनल प्रोग्राम बनाया है, स्पेस सेक्टर को हमने ओपन कर दिया, नेशनल ड्रोन पॉलिसी हमने बनाई है, खेलो इंडिया पॉलिसी बनाई है। 35 वर्षों तक एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं और उसका फायदा मिडिल क्लास के परिवारों को हुआ है। साथियों, 2004 से 2014 आंकड़े मुझे देना चाहिए आपको, 2004 से 2014 हमारे देश में 350 से भी कम यूनिवर्सिटी थी और आज 10-12 साल के भीतर भीतर करीब 650 नई यूनिवर्सिटी जुड़ चुकी है, करीब 1000 का आंकड़ा हम पहुंच रहे हैं। 2014 के पहले मेडिकल की सिर्फ 400 सीटें हुआ करती थी, आज करीब करीब 850 सीटें मेडिकल की हो रही है। इतना ही नहीं, अब विदेशी यूनिवर्सिटी भी भारत की धरती पर आ रही है। भारत के अंदर विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री मेरे नौजवान को मिले, इसका प्रबंध भी हो चुका है। हमारे देश के युवा मन बचपन से ही टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और इसलिए हमने करीब 10,000 से अधिक अटल टिंकर की लैब छोटे छोटे बच्चों के हवाले कर दी है, ताकि उनका इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर उनका मन बने। 12 वर्ष युवा, हमने अनेक रास्ते खोले, हम स्टार्टअप ओपन कर दिया। आपने देखा होगा भारत के प्राइवेट स्टार्टअप 28 साल के एवरेज उम्र के बच्चों ने, नौजवानों ने दुनिया में पहले ही ट्रायल में अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और रॉकेट लॉन्च कर दिया उन्होंने। बहुत बड़ा काम कर दिया साथियों, आज करीब 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था, एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं,
हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य है। मेरे साथियों, वो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है। एक समय था 2014 के पहले सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का बायो इकोनॉमी का काम होता था। मेरे देश के नौजवान, आपने क्या कमाल कर दिया है। देखिए, नीतियां जब सही होती है, लक्ष्य जब साफ होता है, तो मेरे देश के नौजवान कैसा करके थे। बायो इकोनॉमी में देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी का, बायो इकोनॉमी 20,00,000 करोड़ पहुंच चुकी है। दोस्तों, दो हजार 9-10 का कालखंड था, सिर्फ 25,00,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे 2009-10 में, 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल। इस 25-26 में 25,00,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके। मेरे प्यारे देशवासियों, एविएशन सेक्टर भी मेरे नौजवानों के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। नए एयरपोर्ट, नए रूट, नए नए रोजगार के अवसर बना रहे हैं। मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग, इसके भी कारण देश में बहुत बड़ी मात्रा में स्किल मैन पावर को काम मिल रहा है। मेड इन इंडिया हवाई जहाज बनाने की दिशा में हमने सफलता पाई है। मेड इन इंडिया डिफेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 ऑलरेडी अपनी उड़ान भर चुका है, सफल उड़ान भर चुका है। ये देश के नौजवानों के लिए। मेरे साथियों, ड्रोन ने भी बहुत बड़ा काम किया है। स्वामित्व योजना गांव में ड्रोन से स्वामित्व योजना सफल हो रही है। करीब 3.25 करोड़ परिवारों को स्वामित्व योजना का लाभ मिला है, और इसके कारण 140,00,000 करोड़ रुपए जैसी संपत्ति अनलॉक हुई है, जिसके कारण बैंक से लोन मिल सकता है, लोग अपना कारोबार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे मध्यम वर्ग के परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए, हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है, वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए, और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले। मैं खेले वो खिले की बात कर रहा हूं तब, मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। अब खेल के पोडियम में भारत का राष्ट्रगीत सुनाई देता है, भारत का राजगान सुनाई देता है, भारत का तिरंगा झंडा लहराता दिखाई नजर आ रहा है। ऑप्स योजना ने बहुत बड़ी सफलता पाई है। खेलो इंडिया गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, बीच गेम्स, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स के लिए न्यूट्रिशन, इन सारे विषयों में भारत अब महारत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नौजवानों के लिए पूरा नया क्षेत्र, खिलाड़ी न बन सके तो उसकी सपोर्ट सिस्टम में भी बहुत बड़ा क्षेत्र खुल रहा है। स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है, और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं, और 2030 में

कॉमनवेल्थ गेम्स का वो भारत होस्ट करने वाला है। और मेरे साथियों, दुनिया में जो ओलंपिक के खेल होते हैं, करीब 40 प्रकार के गेम होते हैं और करीब 350-350 स्पर्धाएं होती है ओलंपिक में। और आपको जानकर के दुख होगा मेरे देशवासियों, मेरे नौजवानों, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आह्वान करता हूं, मैं आपकी मदद चाहता हूं। 350 जितने स्पर्धाओं में भारत दो तिहाई खेलों में कहीं होता ही नहीं, हमारी मौजूदगी नहीं होती, हम क्वालिफाई नहीं होते हैं। हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, हम चाहते हैं कि वो भारत में हो, लेकिन 2036 में जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, जिन स्पर्धाओं में भारत ने छोड़ के रखा है, 3/4 हिस्सा हमारे इंतजार कर रहा है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल 10 साल 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव शहर शहर स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा, बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग देकर के देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे। मेरे प्यारे युवा, देश के सामने, देश के नौजवानों के सामने नशा एक बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। नशा मुक्त भारत ये हम सबका सामूहिक दायित्व तो होना चाहिए। हमारे उज्जवल भविष्य के लिए हमारी युवा पीढ़ी मजबूत हो, हमारा युवा सामर्थ्य हम हमारे देश के लिए काम आए, इसलिए नशा मुक्त भारत। पिछले दिनों माय भारत के वॉलेंटियर्स ने, देश के एनजीओज ने, देश के सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने, देश के आध्यात्मिक पुरुषों ने मिलकर के नशा मुक्त भारत का 100 सप्ताह का एक कार्यक्रम तय किया है। 100 सप्ताह तक एक अभियान चलने वाला है। मैं हर परिवार को कहना चाहता हूं कि आप भी इस अभियान का हिस्सा बने, आप इसके साथ जुड़िए और देश के नशा मुक्त भारत के सपने को पूरा करने के लिए आप आगे आइए। मेरे प्यारे देशवासियों, 21वीं सदी में दशकों पुरानी जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को खत्म करना बहुत अनिवार्य है। नक्सलवाद, माओवाद लाखों युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया, अनेक माताओं के दुर्बल नौजवानों को छीन लिया, बर्बाद कर दिया और मां बाप के सपनों को चूर चूर कर दिया। इस नक्सलवाद ने 4-4 दशक तक हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को, बहुत बड़ी आबादी को दबोच करके रखा था, बंदूक के नोक पर दबोच करके रखा था, संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी और देश के सामान्य नागरिकों की रक्षा में 3,500 से ज्यादा हमारी पुलिस के सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी ताकि देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा मिले। इन नक्सलवाद ने धरती को लहू लुहान कर दिया था। 2014 में आपने जब हमें मौका दिया, उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे। आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस शायद रहने की अब तो ताकत नहीं रही है, पूरी तरह उसे खत्म करने की दिशा में जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में, उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों,
लेकिन इस चुनौती को हमने कम नहीं आंकड़ा, इस चुनौती से हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे, सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, सुरक्षित भारत बनाना हम सबका दायित्व है। चुनौती सीमा के भीतर हो या सरहद से बाहर, भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। अब युद्ध का नेचर बदल रहा है, अब युद्ध सीमा पर ही होता है गारंटी नहीं है, युद्ध सीमा के अंदर कहीं रिफाइनरी पे जाकर के, कहीं बैंकिंग सेक्टर को जाकर के, डेटा सेंटर को जाकर के, एक प्रकार से लड़ाई का नया रूप इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़े जा रहे हैं, फैक्ट्रियां तोड़ी जा रही है। मिशन सुदर्शन चक्र की पिछले सालों घोषणा की, बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है। डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा करीब 50 गुना बढ़ा है, करीब 100 देशों में हमारे अस्त्र शस्त्र पहुंच रहे हैं, वैश्विक पटल पर भारत की प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ रही है। बदलते हुए समय में अस्त्र शस्त्र की तरफ काम करना है, सैन्य बलों का सामर्थ्य बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ नागरिकों को भी तैयार करना होगा। पिछली शताब्दी के युद्धों के अनुरूप जो सिविल डिफेंस की व्यवस्थाएं हमारे देश में विकसित हुई है वो कालबाह्य हो चुकी है, और इसलिए मैं आज लाल किले से घोषणा कर रहा हूं कि हम आने वाले दिनों में सिविल डिफेंस का एक वाइब्रेंट नेटवर्क खड़ा करेंगे, आधुनिक व्यवस्थाओं से उनको परिचित कराएंगे, आधुनिक संकटों से नागरिकों को रक्षा करने की क्या व्यवस्था हो सकती है, एक बहुत बड़ा वॉलेंटरी फोर्स सिविल डिफेंस का आधुनिक चुनौतियों को पार करने वाला हम बनाने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, राष्ट्र के निर्माण में आज हमारी बहनों बेटियों का योगदान हम सबके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का कारण बना हुआ है। फाइटर जेट हो या सिविल एविएशन, हमारी बेटियां सबसे आगे दिखाई दे रही है। खेलकूद का मैदान हो, हमारी बेटियां आगे दिखाई दे रही है। सेम एजुकेशन में भर्ती होने की प्रक्रिया हो, सबसे ज्यादा हमारी बेटियां आगे दिख रही है। आज सेना में भी एनडीए से जो बेटियां निकली हैं, तो बड़े रौब के साथ देश की सेना का नेतृत्व करने का सामर्थ्य दिखाने लगी। मेरी बेटियों की ताकत कैसी है, मैं पिछले दिनों सारण में एक सेमीकंडक्टर प्लांट में गया, वहां आदिवासी बेटियां देश के अलग अलग कोने से आई हुई बेटियां काम कर रही, वो उस गांव से आई थी जिन्होंने पासपोर्ट क्या होता है पता तक नहीं था, वो बेटियां विदेशों में गई ट्रेनिंग लेकर के आई और आज चिप निर्माण का काम कर रही है, और बड़े कॉन्फिडेंस, मैं जो उनका कॉन्फिडेंस देखा मैं सचमुच में बहुत प्रभावित हुआ था। तीन करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगर पालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन करें।
समस्याओं का समाधान

कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से यह सपना हमेशा राजनीति के अखाड़े का शिकार हो गया है। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं, नहीं उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 35% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। 2014 से पहले सिर्फ 25 करोड़ लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी का कवर था, सिर्फ 25 करोड़ का। साथियों, पिछले 5-7 दशक में सिर्फ 25 करोड़, हमने एक दशक के भीतर भीतर 100 करोड़ देशवासियों को सोशल सिक्योरिटी का कवच दिया है। आयुष्मान भारत योजना से 70 साल की उम्र के बुजुर्गों से भी आज 5 लाख रुपए तक मुफ्त दवाई की व्यवस्था हो रही है। करोड़ों करोड़ों परिवारों को इसके कारण बहुत बड़ी सुविधा मिली है। और इस आयुष्मान कार्ड के कारण 2 लाख करोड़ रुपया जो दवाई और ऑपरेशन के पीछे खर्च होना था, वो मेरे परिवारों के बच्चे हैं, गरीब परिवार है, वो मध्यम वर्ग के परिवार है, उनको इतनी बजी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मुझे एक काम के लिए आपकी मदद चाहिए। मैं आप सबसे एक मदद मांग रहा हूं। सभी नौजवानों से मैं चाहता हूं कि आप इसका नेतृत्व करिए। आपका 1 या 2 घंटे देश को बहुत बड़ी शक्ति देने वाला। आपको लगेगा ये 1-2 घंटे में मैं देश की क्या शक्ति, मैं बताता हूं, आप बहुत बड़ी शक्ति बनने वाले। और इसलिए हर घर में वातावरण बने, इन दिनों देश में जनगणना का काम हो रहा है, सेंसस का काम हो रहा है, गिनती चल रही है। और गिनती सिर्फ आंकड़ों से बात बनती नहीं है, उसकी बारीकियों से नीतियां बनती, योजनाएं बनती हैं, देश आगे बढ़ने की अपनी रूपरेखा तैयार करता है। और इसलिए सटीक जानकारियां होना बहुत जरूरी है। कभी कभी जो सरकार की तरफ से प्रतिनिधि आते हैं वो इतनी जल्दी में होते हैं, कभी स्पेलिंग एक लिख देते हैं, कभी अलग लिख देते हैं, और इसके कारण अल्टीमेट परिणाम हमें सही मिलने में दिक्कतें आती है। अब जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और इस बार निर्णय किया है, आप स्वयं भी जनगणना में अपनी जानकारियां अपने मोबाइल फोन से भर करके दे सकते हैं। बाद में कोई बाबू आएंगे, कोई प्रतिनिधि आएंगे, आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन आप परिवार के सब बैठ करके अगर डिजिटली अपना रजिस्ट्री करवा दे, थोड़ी बारीकियां स्पेलिंग में भी गलती ना हो, कोई भी जानकारियों में गलती ना हो, आप जितनी परफेक्ट जानकारी देंगे देश को आगे बढ़ने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और इसलिए मैं देश के नौजवानों कहता हूं कि आप अपने परिवार के लोगों को बिठा करके पूरे फॉर्म को समझिए, पहले कागज पे फॉर्म को भर दीजिए, कोई गलती है तो करेक्ट कर लीजिए, और फिर टेक्नोलॉजिकली उसको डिजिटली इसको अपलोड कर दीजिए। आप देखिए इतना बड़ा काम देश कर लेगा और देश का समय और शक्ति सही काम के लिए उपयोग आएगा। और इसलिए मेरे देश के नौजवानों को जनगणना के इस काम में सक्रियता से जुड़ने के लिए मैं

आग्रह करता हूं मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने लाल किले से पंच प्राण की बात कही। इस पंच प्राण ने देश को अपने आत्म गौरव की ओर लेकर के आगे बढ़ने का, लक्ष्यों को पार करने के सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा संबल दिया है। हमें गुलामी की मानसिकता हर पल मिटाते ही रहना है। इस भारत का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, पंडित नेहरू ने देखा था, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु ने देखा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, भगवान बिरसा मुंडा ने देखा था, ज्योतिबा फुले ने देखा था। उन सबसे प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़े। इस आइए इस संकल्प को हम दोहराए, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो और कर्तव्य ही हमारी पहचान हो। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है। आइए सपनों को संकल्प बनाए, संकल्प को सामर्थ्य बनाए और सामर्थ्य को सफलता में बदल के रहे। आइए हर कदम को विकास का कदम बनाए, कदम से कदम मिलाए, मन से मन मिलाए, लक्ष्य से जुड़े रहे। एक दीप से जले दीप हजारों, आओ मिलकर विकसित भारत बनाए। इसी एक भावना के साथ इस मंगल पर्व पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बहुत बहुत आभार महोदय। और वो सामने
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अभी लाल किले की प्राचीर पर बने ध्वज स्थल से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रेरणादायी वक्तव्य आपके जो लंबे समय तक सभी को प्रेरित करते रहेंगे। और इस समय हम देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया है, शान से वो लहराता हुआ, और हमारे दाहिनी ओर से तीन रंगों के गुब्बारे इस समय गगन को चूमने के लिए तैयार ऊपर उड़ते हुए सभी की निगाहें इन गुब्बारों को देखती हुई माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय अपने केंद्रीय मंत्रियों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और ध्वज स्थल से ही हाथ हिलाकर जो विशाल जनसमुदाय यहाँ पर उपस्थित है उनका अभिवादन, उनका स्नेह भी स्वीकार कर रहे हैं। साथ ही जो एनसीसी कैडेट्स बैठे हैं, माई भारत के स्वयंसेवक इस समय बैठे हैं अपने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए और बीच में नारंगी रंग से वंदे मातरम जिन्होंने लिखा है, वो करतल ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति सम्मान और स्नेह प्रकट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का इस समय लाल किले की प्राचीर से उसके प्रांगण में प्रस्थान हो रहा है और सभी केंद्रीय मंत्री अपने अपने स्थान पर खड़े होकर हाथ जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए शान से हमारा तिरंगा यहाँ पर लहराता हुआ सभी की निगाहें कभी प्राचीर की ओर, कभी आसमान में उड़ते तीन रंगों के गुब्बारों की ओर और कभी दाहिनी ओर जाती है, क्योंकि सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहनों का काफिला उस ओर से आएगा कुछ ही देर में। और सभी इस उत्कंठा से भरे हुए कि अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने स्वयं को प्रधान सेवक कहा है, उन्हें नजर भर देख लें और अगर ये सौभाग्य प्राप्त हो जाए कि माननीय प्रधानमंत्री जी उनके सर पर हाथ रख दें तो जीवन भर के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि और एक ऐसी याद रहेगी जो इन युवाओं को तो प्रेरित करेगी ही, साथ ही इनके पूरे परिवार को और विद्यालयों को भी प्रेरित करेगी। हम आपको बताएं कि हर घर तिरंगा माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो ये अभियान शुरू हुआ है 9 अगस्त से इस बार 17 अगस्त तक चलेगा। इस बार नया ये है कि सूर्य पथ तिरंगा भी हमारे पास है, जिसने कि भूखंड और कालखंड की सीमाओं को छोटा कर दिया है। यही है वसुधैव कुटुंबकम का वास्तविक भाव। अलग अलग देशों में जहां जहां सूर्य रश्मियां पहुंचेंगी, यानी सूर्योदय के साथ ही भव्य उदय होगा हमारे राष्ट्रीय ध्वज का भी, हमारे प्रिय तिरंगे का भी। विभिन्न देशों में स्थित भारतीय दूतावास और मिशन के परस्पर संयोजन से तिरंगा फहराया जाएगा, अनेक माध्यमों से प्रदर्शित किया जाएगा, वैश्विक स्तर पर तकनीक का परंपरा के साथ समागम होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराया और साथ ही इस मंच से आपने बात की शक्ति की, सप्त धारा की, यहीं से पंच प्रण का उल्लेख हुआ, स्वच्छ भारत यहीं से हमने अपनाया और फिर उसे दुनिया को भी दिखाया कि भारतीय जब एकजुट हो जाएं एक लक्ष्य के प्रति तो क्या कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सराहना इसी मंच से हुई। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने विनिर्माण क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों को हासिल करने की प्रेरणा दी है, इनोवेशन का हब भारत को बनाने की बात कही है, भारत की सॉफ्ट पावर किस तरह दुनिया में अपना स्थान बना रही है।

0: इसका उल्लेख किया, तो साथ ही खेल क्षेत्र और शिक्षा क्षेत्र का भी उल्लेख किया है।
1: और इस समय माननीय
0: प्रधानमंत्री जी के वाहनों का काफिला हम देख रहे हैं कि इस समय बढ़ चला है ज्ञान पथ की ओर, और जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो उत्सुकता से अपने अपने स्थान पर खड़े होने को आतुर हैं। जानेंद्र,
1: निश्चित रूप से उनके लिए ये बहुत विशेष अवसर होता है जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय या लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करने के बाद जब वे यहाँ से प्रस्थान कर रहे होते हैं, उस समय इन सभी उपस्थित बच्चों को उनका स्नेह मिलता है। यहाँ पर दर्शक कार्यक्रम के समाप्ति के बाद भी बड़ी उत्कंठा से यहाँ उपस्थित होते हैं इस बात के लिए, और उस काफिले के राह के किनारे कहीं खड़े होकर एक झलक पाने को आतुर होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का युवाओं के साथ जो जुड़ाव है, जो कनेक्ट है, वो बहुत अद्भुत है, और इसीलिए वो देश, चूंकि ये युवाओं का देश है और इस देश के भविष्य में 1 करोड़ ऐसे युवाओं को जो कि कर्तव्य को अपनी पहचान बनाए, राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखे, ऐसे 1 करोड़ युवा अपने आप को कौशल के साथ जोड़ते हुए राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं, इस बात का बहुत विशेष उल्लेख किया उन्होंने। इसके पहले भी उन्होंने अनेक बार युवाओं को केंद्र में रखते हुए अपनी विजन, अपने विजन को, अपनी सोच को यहां से इस मंच से साझा किया है। शक्ति की सप्तधारा का बहुत विशेष उन्होंने आज एक नई सोच दी है इस देश को और देश के प्रगति को, विकास को, और इसमें जो 7 अलग अलग क्षेत्रों की उन्होंने बात की, दरअसल इसके पीछे चूंकि कार्य तो हर क्षेत्र में हो ही रहा है लेकिन इसको गति देने की बात है, इसको शक्ति देने की बात है। और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने वाहन से उतरकर बच्चों के बीच में पहुंच रहे हैं, इसलिए करतल ध्वनि के जो गूंज है वो आप तक पहुंच रही होगी। प्रधानमंत्री जी ने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए उन बच्चों को अपना आशीष दिया है, और जो 7 बच्चे वहां निकट हैं उनके, उन बच्चों के साथ वो हाथ मिलाकर उन्हें अपना स्नेह दे रहे हैं। इस समय बच्चों के लिए ये विशेष अवसर होता है, क्योंकि एक बार का दृश्य मुझे याद है, पहले का बच्चे जब खड़े होते हैं तो सभी सब निकट आने की कोशिश करते हैं और ऐसे में थोड़ी सी अफरा तफरी भी होती है, लेकिन चूंकि अनुशासन और संयम का एक दृश्य इस समय एनसीसी के विद्यार्थी यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो वो दृश्य हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। सभी अपने अपने स्थान पर बैठे हुए युवा साथी अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का और उनका स्नेह प्राप्त कर रहे हैं।
0: जी, और जिन बालिकाओं से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाथ मिलाया है उनके लिए तो ये एक ऐसा पल है जो वो लंबे समय तक याद करेंगी, और जब एक लक्ष्य चुनेंगी, अपने जीवन को एक दिशा देंगी, उस समय भी ये पल उन्हें अभिभूत करता रहेगा, प्रेरित करता रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय एनसीसी कैडेट्स के बीच से दोनों ओर हाथ हिलाते हुए जैसे एक साथ सभी को अपना स्नेह, अपना आशीष देना चाहते हूं, और ये कैडेट्स जो हैं बहुत ही मुश्किल से संयम दिखा रहे हैं, इस समय अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं, निर्देशों का पालन करते हुए, लेकिन अपना स्नेह लगातार प्रकट कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति। हवा में दोनों हाथ हिलाते हुए नमस्कार भी कर रहे हैं और साथ ही भारत माता की जय के नारे यहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष लगा रहे हैं। मैं भारत के उज्ज्वल भविष्य का प्रमाण हूं, राष्ट्रहित में होने वाला सारा उत्थान हूं, स्वामी विवेकानंद के विचारों का चितवान हूं, मैं युवा हूं, मैं भारत का प्राण हूं।
1: प्रधानमंत्री जी ने एक जो उनके पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व से एक बात, एक संदेश जो साफ झलकती है वो है नई सोच नागरिक देवो भव का। नागरिक को केंद्र में रखते हुए अपने पूरे सुशासन के तंत्र को, व्यवस्था को उस ढंग से रूप देना, आकार देना। बच्चों के बीच से होते हुए प्रधानमंत्री महोदय अब दर्शक दीर्घा की तरफ जा रहे हैं। हमारी बाईं तरफ जो दर्शक दीर्घाएं बनी है उसके रेलिंग के साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग बड़े उत्साह उमंग से अपने अपने मोबाइल को हाथ में पकड़े हुए, वे कोई सेल्फी लेना चाहता है, कोई फोटो खींचना चाहता है, कोई हाथ हवा में लहराते हुए प्रधानमंत्री जी का अभिवादन और अभिनंदन कर रहे हैं। देश का ये वो नेतृत्व है जो दुनिया में सबसे अधिक लोकप्रिय है, जो विकसित भारत की सोच और विजन को इस देश को जिन्होंने दिया है, इस देश के करोड़ों युवाओं को नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और आत्मगौरव का भाव जिन्होंने भरा है, और हर व्यक्ति आज, हर भारतवासी इस विश्वास के साथ कि भारत विकसित होगा, भारत आत्मनिर्भर होगा, भारत अपने स्वदेशी सोच और अपने पुरातन चिंतन के साथ, धर्म और आध्यात्म के साथ विश्व में अपनी पहचान बनाएगा, भारत विकसित भी होगा, अपनी विरासत के साथ विकसित होगा। इस समय दर्शक दीर्घा में काफी आगे तक प्रधानमंत्री जी बढ़ चुके हैं और उनकी इच्छा होती है कि कोई भी दूर दूर तक, जहां तक भी दर्शक आए हुए हैं, और बल्कि ये देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं, इसमें ऐसी बड़ी संख्या में हमारे दर्शक हैं जो अलग अलग जो सरकार की नीतियां रही हैं, उनकी योजनाएं रही हैं, उसका लाभ लेते हुए जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और उन सबको विशेष रूप से इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ आमंत्रित किया गया है। और सबसे बड़ी खास बात यह है, आकर्षण की चीज ये लगती है कि वो सभी अपने अपने प्रदेश की अलग अलग वेशभूषा में यहाँ पर आए हुए हैं, अधिकांशता उसमें से। वहां प्रधानमंत्री महोदय ये निकट अपने आप को पाकर वो निश्चित रूप से बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे होंगे।
0: जी बिल्कुल जैनेन्द्र, और यहाँ पर भारत में जो अन्य देशों के दूतावास हैं उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति भी है। इस समय वे भी बेहद आह्लादित महसूस कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की यही शैली जो अपने देशवासियों से जुड़ने की शैली है, इससे दुनिया के बहुत सारे नेता प्रेरित हुए हैं और यही वजह है कि खाड़ी और मध्य पूर्व के देशों या हमारे पड़ोसी और एशियाई देशों या फिर कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया है, अपने देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिए हैं, सैन्य सम्मान दिए हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने व्यवहार से अन्य देशों को भी दिखाया है कि किस प्रकार से अपने देशवासियों से जुड़ना है, उनके आकांक्षाओं को कैसे समझना है और किस प्रकार से उनके लिए जनहित की नीतियां बनाकर जन जन को राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए प्रेरित करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी, अपने प्रिय ये जो जनता है इनसे भेंट करने के बाद, सासने भेंट करने के बाद अब पुनः जो एनसीसी कैडेट्स हैं उनकी ओर प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन लगातार हाथ हिलाते हुए सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा कर्मी हैं उनके लिए ये थोड़ी सी कठिन घड़ी है क्योंकि लगातार पैनी दृष्टि हर ओर उन्होंने बना रखी है, लेकिन वो भी समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्युत्तर दे रहे हैं सबके स्नेह का, इसलिए उचित दूरी उन्होंने बनाए रखी है, लेकिन पूरी तरह से मुस्तैद और चौकस हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर स्नेहिल मुस्कान है अपने देशवासियों को देखकर और साथ ही जो बच्चे हैं यहाँ पर उन्हें देखते हुए, और ये जो देशवासी है इस समय आभार प्रकट कर रहे हैं एक तरह से उन नीतियों के लिए जिन्होंने इनके जीवन में बड़ा बदलाव किया है, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, GST हो, आर्थिक सशक्तिकरण हो, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, प्रधानमंत्री जी के कही ये उक्ति हो, हरित ऊर्जा हो, अंतरिक्ष अनुसंधान हो, जनधन से जन जन तक होता वित्तीय समावेशन हो, उन सभी के प्रति एक तरह से आभार प्रकट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहते हुए अपने जो ये संकेत है उनसे, और अब माननीय प्रधानमंत्री जी के बेहद नज़दीक पहुंच गए कुछ एनसीसी कैडेट और सुरक्षाकर्मी, उन्हें स्नेहिल भाव से थोड़ा हटाते हुए वहाँ थोड़ा अनुशासन बनाते हुए स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का सपना, डिजिटल भारत जिसकी धूम अब दुनिया भर में है, और साथ ही आत्मनिर्भर भारत, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कहते रहे हैं हमारे उत्पाद जो हैं वो वैश्विक गुणवत्ता के हो, हमारे बाजार दुनिया भर के लिए खुले रहें, और जब भी कोई विदेशी मेहमान हमारे यहां आता है तो जो भोजन परोसा जाता है उसमें हमारे हर प्रांत का कोई एक व्यंजन उसमें होता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और साथ ही जो हमारे बुनकर हैं उनके द्वारा बुनी हुई जो वस्तुएं हैं वो भेंट स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी देश दुनिया के बड़े नेताओं को देते हैं, और बहुत सारी इस तरह की सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ लगातार हमारे देशवासियों को मिलता रहा है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो मंच है, गरिमा में ये मंच है, यहां से भी देश दुनिया को एक नई दिशा दिखाई है, नए प्रयास किए हैं, देशवासियों को लगातार प्रेरित किया है आगे बढ़ने के लिए, और अब नया लक्ष्य है हमारे सामने विकसित भारत का जिसमें हम सभी को लगातार योगदान देना है।
1: आज प्रधानमंत्री जी ने इस लाल किले के प्राचीर से जहां संकल्पों की बात की, संकल्प से सामर्थ्य के निर्माण की बात की, और सामर्थ्य से सफलता की राह पर आगे बढ़ते हुए देश को समृद्धि की राह पर विकसित भारत बनाने का एक संकल्प उन्होंने दिया है। बीते 12 वर्षों में सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में जो तमाम प्रयास किए गए हैं उनके बारे में इस बात की परिकल्पना शायद पहले भी किसी ने नहीं की होगी कि उनका इतना बड़ा परिणाम और फल इस देश को मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें जनधन योजना की ही, तो जब जनधन योजना की शुरुआत हुई आज आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंकिंग सेवा देश के कोने कोने तक पहुंची है, हर गांव तक पहुंची है, 99.92% गांवों तक इस सेवा की पहुंच बनी है, ये निश्चित रूप से 100% आप इसको कह सकते हैं, और किसी भी गांव में 6 लाख से अधिक गांव में देश में मात्र 5 किलोमीटर की दूरी के भीतर भीतर बैंकिंग सेवाएं प्राप्त होती हैं। प्रधानमंत्री महोदय बच्चों के बीच से निकलते हुए और एक बार फिर से प्राचीर की तरफ उन्होंने हाथ हिलाकर यहां के अतिथियों का भी अभिवादन स्वीकार करते हुए अब अपने वाहन में वो सवार हो चुके हैं, और अब समय है जब 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतिम चरण में माननीय प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्र को संबोधित करने के बाद और यहाँ उपस्थित जनसमुदाय और विशेष रूप से युवा शक्ति के साथ संवाद और निकटता का एक भाव प्रेषित संप्रेषित करने के बाद अपने वाहन में सवार होकर यहाँ से अब प्रस्थान करने जा रहे हैं। आप सबके लिए उनकी तरफ से जो प्रेरणा मिली है इस राष्ट्र को निश्चित रूप से आगे लेकर जाएगी।
0: जी बिल्कुल, और माननीय प्रधानमंत्री जी अब अपने वाहन में सवार हो चुके हैं। वाहनों का काफिला मंथर गति से बूथ जो है हमारा उसकी बाईं ओर बढ़ता हुआ धीरे धीरे, और जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो अब पुनः अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। जो आगंतुक है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहनों की भी तस्वीर इस समय ले रहे हैं, और साथ ही

0: क्षेत्र, शिक्षा, विज्ञान, कृषि, फैशन, खेल और उद्योग क्षेत्र में भारत माँ की बेटियां भी प्रभावशाली प्रदर्शन कर रही हैं। फाइटर कॉम्बैट लीडर बनना हो या ड्रोन दीदी, या फिर अपनी मेहनत से सफलता के नए अध्याय रचती लखपति दीदी हो, माँ भारती का नाम रोशन कर रही हैं देश की बेटियां। कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे मेहनती खिलाड़ियों ने 13 स्वर्ण पदक जीते, जिनमें 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। लगभग 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इस दिशा में नए लक्ष्य हासिल किए जा रहे हैं और ऐसे ही लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भी हमें दिए हैं। मत पूछो मुझसे देश क्या है, ये कागज पर खींची रेखा नहीं, ये उन वीरों की आखिरी सांस है जिन्होंने पीछे मुड़कर देखा नहीं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी हैं उनके प्रति आभार प्रकट करने का दिन आज, लेकिन साथ ही जो राष्ट्र निर्माण में लगातार सहयोग करते रहे हैं उनके प्रति भी। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान, प्रतिभावान खिलाड़ी, शिल्पकार और कलाकार, जनहित में सेवारत जनप्रतिनिधि, न्याय व्यवस्था से जुड़े न्यायकर्मी, कार्यनिष्ठ सिविल सेवक, अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले छोटे बड़े सभी निवेशक, निस्वार्थ समाजसेवी और स्वच्छता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता, हमारे सैनिक और सशस्त्र बल, अपनी कर्तव्य निष्ठा से हम सभी को विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाना है, इसमें अपना दायित्व निभाते हैं प्रवासी भारतीय भी। सभी के ऊपर ये दायित्व कि 2047 तक हमें भारत को विकसित भारत बनाना है। और आपको फिर से एक बार आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए मैं तकनीकी टीम प्रमुख श्री जितेंद्र पुरुथी, तकनीकी टीम के सदस्य शांतनु घोष, शक्तिधर ध्यानी, अशोक कुमार मिश्र, कमल सिंह, सुमित कटियार, नागेंद्र पटेल, नीरज तिर्की, बाबूलाल मीणा, राजकमल शर्मा, नरेंद्र नाथ, किरण पाल सिंह, विष्णु आनंद तिवारी, अतुल कुमार, हेमराज मीणा, विशाल कुमार, अभिषेक कुमार, कार्यक्रम प्रमुख श्रीमती मनीषा जैन, कार्यक्रम टीम के सदस्य विवेक कुमार तोमर, तुषार पाराशर, शाहनवाज खान, भगवती चरण बौखंडी, जगमोहन सिंह, कार्यक्रम संयोजक श्री प्रमोद कुमार वत्स के साथ मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कमेंटेटर जैनेन्द्र सिंह और देवेंद्र त्रिपाठी के साथ पुनः 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लेकर चलती हूँ। जय हिंद।
1: अभी आप भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को किए गए संबोधन का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे श्री जैनेन्द्र सिंह, सुश्री नीलम मलकानिया और श्री देवेंद्र त्रिपाठी।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
3: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रति वर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
4: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-4-5-5-5।
3: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी।
5: किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
3: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रति वर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
4: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-4-5-5-5।
3: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी।
5: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।

0: घर मुफ्त बिजली योजना, फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। आकाशवाणी समाचार कक्ष की ओर से हमारे सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने संकल्प दोहराया, 2047 तक हम विकसित भारत बनकर रहेंगे। विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा। समुद्र में नए अवसर तलाश करने के लिए नो गो एरिया के स्थान पर गो अहेड एरिया योजना की शुरुआत। ऊर्जा सामर्थ्य के बारे में उन्होंने कहा, हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर भारत ने हाइड्रोजन ऊर्जा की दिशा में झंडा गाड़ दिया है। उन्होंने कहा, सुरक्षित भारत के लिए हमें दिमागी नक्सलियों से निपटना होगा। प्रधानमंत्री ने जनगणना में सटीकता के लिए युवाओं से डिजिटल रजिस्ट्रेशन का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, सरकार परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने रक्षा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज से श्रीलंका के गाले में। और अब समाचार विस्तार से। देश आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र ध्वज फहराया। राष्ट्र को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गूंज रही है।
4: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें अपनी कार्य संस्कृति, अपनी सोच और काम की गति को बदलना होगा।
4: जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं, तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते हैं।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश सुधार यानी रिफॉर्म एक्सप्रेस पर आगे बढ़ चला है और अब नेक्स्ट लेवल यानी अगले स्तर के सुधार पर भी हम आगे बढ़ेंगे। श्री मोदी ने विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित व्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा की। उन्होंने गति शक्ति को सप्तधारा की चौथी शक्ति बताते हुए कहा कि निर्बाध और तेज कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा।
4: आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने

0: शक्ति की सप्त धारा का आवाहन करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने में संसाधनों की बाधा नहीं होती, बल्कि सोच की सीमाएं बाधा होती हैं। उन्होंने कहा कि आज देश को कच्चे तेल पर निर्भर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश में 99% समुद्र तट को, नो गो एरिया को, तेल भंडार की खोज के लिए गो अहेड घोर एरिया घोषित किया जाएगा।
0: हमने समुद्री तट पे समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र था, हमें फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया। हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि हमने दुनिया में हाइड्रोजन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है।
0: देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी है और मुझे खुशी है ये सबसे लंबी ट्रेन है और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद देश में सेमीकंडक्टर को लेकर कोई बड़ी योजना नहीं थी। उन्होंने कहा कि आज की डिजिटल दुनिया में हम चिप के महत्व को समझते हैं।
0: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि नक्सलवाद ने 4 दशक तक भारत की आबादी को दबोच कर रखा था। नक्सलवाद से निपटने में 3,500 से ज्यादा जवानों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। श्री मोदी ने देश को नक्सलवाद से मुक्त बनाने का आह्वान किया।
0: ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड जैसी वैश्विक महामारी से पूरी व्यवस्था चरमरा गई थी, लेकिन सभी के प्रयासों से देश को उस संकट से बाहर निकाला गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत नागरिक देवो भव के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है।
0: इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था। सोचा नहीं था यह संकट आएगा, लेकिन इस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है। हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था ने नई रफ्तार पकड़ी है और एक नई गति से देश आगे बढ़ रहा है।
0: इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल 5 में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत एक बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। जब 2047 में स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होंगे, हम विकसित भारत बना कर रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये 140 करोड़ भारतीयों के पुरुषार्थ से ही संभव है।
0: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में आए संकट का हर किसी पर प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा कि हमने किसानों पर यूरिया और डीएपी जैसे उर्वरकों में बढ़ी कीमतों का असर नहीं आने दिया।
0: यूरिया के दाम दुनिया में 3,000 रुपया पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है। और दुनिया से जो 3,000 रुपया में यूरिया का बोरा हमें मिलता है, वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में दे पाते हैं। इतना ही नहीं, डीएपी आज दुनिया में 5,000 पहुंच चुका है, लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए 1,350 रुपये में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नशा मुक्त भारत के 100 सप्ताह के अभियान से जुड़ने की अपील की। उन्होंने देश के युवाओं से जनगणना में सटीकता के लिए डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराने का आह्वान भी किया। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम का गायन हुआ। इससे पहले प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ा है। ऐसी परिस्थितियों में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी अर्जित कर रहे हैं। उन्होंने भावी पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि सरकार परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। इनमें 13 ऐसे वीर शामिल हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल हैं। सरकार ने टेलीविजन चैनल्स के लिए विज्ञापन की 12 मिनट की समय सीमा को हटाने का फैसला किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में आए बदलाव को देखते हुए विज्ञापन की अवधि से जुड़े नियमों पर फिर से विचार करने की जरूरत महसूस की गई। भारत में पे चैनल या फ्री टू एयर सभी बहुत हद तक विज्ञापनों पर ही निर्भर हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 2 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज श्रीलंका के गाले स्टेडियम में खेला जाएगा। यह श्रृंखला 2025-27 के ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल और श्रीलंका टीम के कप्तान धनंजय डी सिल्वा हैं। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ आज तिरंगे की छटा बिखेर रहे हैं। कुछ अखबारों ने देश की उपलब्धियों का उल्लेख किया है तो कुछ ने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले सैनिकों और रक्षा कर्मियों की गाथाएं सचित्र प्रकाशित की हैं। इसके अतिरिक्त जनगणना प्रक्रिया में पूछे जाने वाले सवालों की सूची को भी अखबारों ने सुर्खियों में जगह दी है। अधिकांश समाचार पत्रों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश को भी मुख्य पृष्ठों पर सुर्खियों में प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों का उल्लेख इस संबोधन में किए जाने को अपना शीर्ष समाचार बनाया है। परीक्षा प्रणाली सुधारने में जुटी सरकार। हिंदुस्तान ने हाल में शौर्य का नया इतिहास रचने वाले रक्षा कर्मियों की वीरता की कहानियां प्रकाशित की हैं। शीर्षक दिया है, तिरंगे को दिल दिया, देश के लिए जान। नवभारत टाइम्स ने स्वतंत्रता दिवस के आसपास रिलीज हुई फिल्मों का विश्लेषण प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता और दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने जनगणना में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उल्लेख अपने मुख्य पृष्ठ पर किया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय लेख को शीर्षक दिया है, अभिव्यक्ति का हक, पत्र का कहना है कि इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि कुछ विद्यार्थियों के सिर्फ असहमति जताने या विरोध जाहिर करने की वजह से उनके समूचे समूह की पढ़ाई के आगे के

0: रास्ते को बंद करने का फरमान जारी कर दिया जाए। पत्र ने नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च के दीक्षांत समारोह में भारत के प्रधान न्यायाधीश को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने पर कुछ विद्यार्थियों के विरोध पर दंडात्मक कार्रवाई का हवाला देते हुए ये भी कहा है कि लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति सजग नागरिकों सहित खुद प्रधान न्यायाधीश की ओर से जैसी प्रतिक्रिया आई वो उम्मीद जगाने वाली है। दैनिक जागरण ने विभिन्न क्षेत्रों में देश की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए विश्लेषण प्रकाशित किया है और शीर्षक दिया है, गरीबी से गर्व करने की ओर भारत। जबकि लोकसत्ता ने स्वतंत्रता दिवस के आयोजन को देखते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा जारी यातायात परामर्श को विस्तार से प्रकाशित किया है।
1: अमरीका के सीनेटरों और नेताओं ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा है कि दोनों देशों की भागीदारी मजबूत है और भारत की उपलब्धियां और भारत के लोग विश्व को प्रेरित करते रहे हैं। न्यूयॉर्क से लेकर सिएटल तक अमरीका के राज्यों के गवर्नर और सीनेटरों ने कहा है कि उनके यहां 15 अगस्त का दिन भारत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्राज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने संकल्प दोहराया, 2047 तक हम विकसित भारत बनाकर रहेंगे। विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में समुद्र में तेल भंडार की खोज के लिए नो गो एरिया को गो अहड एरिया घोषित किया गया। ऊर्जा सामर्थ्य के बारे में उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर भारत ने हाइड्रोजन ऊर्जा की दिशा में झंडा गाड़ दिया है। सुरक्षित भारत के लिए हमें दिमागी नक्सलियों से निपटना होगा। प्रधानमंत्री ने जनगणना में सटीकता के लिए युवाओं से डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने रक्षा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को अपनी स्वीकृति दी और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज से श्रीलंका के गाले में। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, उद्योगों को मिलकर आगे बढ़ना होगा और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज से श्रीलंका के गाले में खेला जाएगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Nation celebrates its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi hoists national flag at Red Fort in Delhi. Addressing the nation, Prime Minister unveils 7-point reform framework or Saptadhara aimed at accelerating India's journey towards becoming Vikasit Bharat by 2047. Mr. Modi says India has set target of 100 gigawatt nuclear energy and set up 5 new reactors. Prime Minister says India has rapidly progressed in the last 12 years with significant progress in digital, manufacturing, infrastructure and social welfare sectors. President Draupadi Murmu says government taking comprehensive steps to curb unfair means in public examinations. President approves 78 gallantry awards including 13 posthumous for defence and central armed police forces personnel. And in cricket, first test of 2-match series between India and Sri Lanka to begin today at Gale. And now the news in detail. The nation celebrates its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi hoisted the national flag at Red Fort in Delhi and addressed the nation. The celebrations this year also commemorates Yuva Shakti, acknowledging the contribution of young India in building a Vikasit Bharat by 2047. Addressing the nation from the ramparts of Red Fort, Prime Minister Modi said that this is the first time since independence that Vande Mataram has resonated from the ramparts of Red Fort.
3: Aaj jab hum desh ke log वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, तो इससे

0: ये बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए, उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं।
1: Prime Minister said, a nation becomes great when it moves forward on the strength of its resolve and capabilities.
0: मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं, हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
1: Mr. Modi said that over the past 12 years, crores of citizens of the country, with their determination and dedication, made every possible effort to take the country to new heights. He said, due to these efforts, 25 crore people have come out of poverty.
0: पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता और उसी का परिणाम है इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को पास करके गरीबी से बाहर निकले हैं।
1: He said India, which was once among the fragile five economies, has now emerged as a major and the fastest growing economy in the world. Mr. Modi said that India has set a big goal to become a developed nation by 2047.
0: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है।
1: Highlighting the achievements made in different sectors, the Prime Minister said, over the past 12 years, defense production has increased nearly fourfold.
0: पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा, आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया, इंटरनेट यूजर करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजेक्शन 100 गुना बढ़े।
1: He said internet users increased by nearly fourfold and digital transactions by 100 times. Mr. Modi said the NDA government has worked with equal seriousness towards the welfare and amenities for the common man. Prime Minister said energy security is today's need and that's why we have already taken steps in this direction. Mr. Modi said the government is moving forward with the aim of 100 gigawatts of nuclear power capacity by 2047. He added that India has set a target of commissioning 5 new nuclear reactors during the current decade.
0: अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है और इसलिए हमें चीप हो, एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
1: Prime Minister said India has already begun production at 3 semiconductor plants and 5 to 8 more plants are expected to come up in the coming years.
0: देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी, हमारे यहाँ भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का

0: बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है, आज की डिजिटल दुनिया में चिप का महात्म्य हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है। और इसे इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो। भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लान शुरू हो चुका।
1: Prime Minister said India must move towards self-reliance and not remain dependent on other countries. He asserted that the country needs to strengthen its own capabilities and protect its national interests.
0: बीते वर्षों में हमारा conviction रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना है, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है, और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है।
1: मिस्टर मोदी अनवेल्ड अ 7-पॉइंट रिफॉर्म फ्रेमवर्क और सप्तधारा एम्ड एट एक्सेलरेटिंग इंडियाज जर्नी टुवर्ड्स बिकमिंग अ विकसित भारत बाय 2047। ही सेड वर्क दैट कुड नॉट बी कंप्लीटेड इन द पास्ट 5 to 7 डेकेड्स मस्ट बी अचीव्ड विद इन द नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स।
0: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
1: Prime Minister said that government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI sector. Mr. Modi said the country has to focus on 3 things: cost, quality, and skill.
0: हमने पिछले दिनों AI Impact Summit किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान AI की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य है। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है।
1: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're listening to the morning news. President Draupadi Murmu has said that the government is undertaking comprehensive steps to completely curb the use of unfair means in public examinations. Addressing the nation on the eve of the Independence Day, she said students are the architects of India's future and government is making the system more transparent, secure and trustworthy for the youth.
2: Everyone must contribute through joint and concerted efforts to safeguard the present and future of our students. Public examinations become gateways to the opportunities for our students. The government is undertaking comprehensive steps to reform these examinations. The objectives of these reforms are to completely curb the use of unfair means in public examinations, make the examination system more transparent, more secure, and more trustworthy for the youth.
1: President Draupadi Murmu has approved 78 gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and Central Armed Police Forces on the eve of Independence Day. 13 awards have been given posthumously. These are 9 Kirti Chakras, 1 bar to Shaurya Chakra, 19 Shaurya Chakra, 5 bar to Sena Medals, 36 Sena Medals, 3 Neo Sena Medal and 5 Vayu Sena Medals. A powerful 7.7 magnitude earthquake hit the ocean near Indonesia early in the morning, damaging homes and public buildings while triggering a tsunami warning. There are no immediate reports of casualties. The quake was felt across much of Flores Island. Authorities have issued a tsunami warning for part of East Nusa Tenggara.

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत आज अपना 80वां यौमे आजादी मना रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले पर परचम कुशाई की। वजीर आजम ने मुल्क से खिताब करते हुए साल 2047 तक विकसित भारत बनने के मुल्क के सफर को तेज करने पर मरकूज सात निकाती इस्लाही फ्रेमवर्क सप्त धारा का ऐलान किया। जनाब मोदी ने कहा कि भारत ने 100 गीगावाट न्यूक्लियाई तवानाई पैदा करने और 5 नए रिएक्टर्स कायम करने का हदफ मुकर्रर किया है। वजीर आजम ने कहा कि भारत ने गुज़श्ता 12 साल के दौरान तेजी से तरक्की की है, जिनमें डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, बुनियादी ढांचे और समाजी बहबूद के शोबों में पेशरफ्त काबिले जिक्र है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हुकूमत पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम के लिए जामे इकदाम कर रही है। सदर जमहूरिया ने 78 बहादुरी इनामात को मंजूरी दी है, जिनमें दिफाई और मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेस अहलकारों के 13 बादज मर्ग इनामात भी शामिल हैं। और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के दरमियान दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच आज से गाले में शुरू होगा। अब खबरें तफसील से। मुल्क आज अपना 80वां यौमे आजादी मना रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के तारीखी लाल किले से यौमे आजादी तकरीबात की कयादत की। वजीर आजम की लाल किला आमद पर पहली मर्तबा वंदे मातरम की धुन बजाई गई। वजीर आजम ने परचम कुशाई की और उसके बाद कौमी तराना गाया गया।

0: परचम कुशाई के दौरान 21 तोपों की सलामी दी गई और भारतीय फजाइया के MI-17 हेलीकॉप्टर्स के जरिए फूलों की पंखुड़ियां निछावर की गईं। इस साल की यौम आज़ादी तकरीबात साल 2047 तक विकसित भारत की तामीर में यंग इंडिया के तावुन के इतराफ के तौर पर युवा शक्ति को भी तस्लीम करती है। लाल किले की फसील से मुल्क से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि आज़ादी के बाद पहली मरतबा लाल किले की फसील से वंदे मातरम गूंज रहा है। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद सैलाब और चट्टाने खिसकने के वाकयात हुए हैं, जिससे कई कुनबे मुतासर हुए। वज़ीर आज़म ने सभी मुतासर कुनबों को यकीन दिलाया कि मुल्क उनके साथ मजबूती से खड़ा है।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं, हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं। हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुज़श्ता 12 बरसों में मुल्क के करोड़ों शहरियों ने अपने मुसम्मम इरादे और लगन के साथ मुल्क को नई बुलंदियों तक पहुंचाने की तमाम मुमकिन कोशिशें की हैं। उन्होंने कहा कि इन कोशिशों के सबब 25 करोड़ अफराद ने गरीबी से निजात हासिल की। उन्होंने कहा कि भारत, जो कभी 5 कमज़ोर मईशतों में शामिल था, आज दुनिया की सबसे तेज़ रफ्तार तरक्की करने वाली मईशत बन चुका है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत ने एक बड़ा हदफ अपने सामने रखा है और वो है साल 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनना।
1: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है, जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना, और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है।
0: मुख्तलिफ शोबों में अहम हुसूलियाबियों को उजागर करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़श्ता 12 साल में दिफाई पैदावार में तकरीबन 4 गुना इजाफा हुआ है, जबकि खादी और देही सनत की पैदावार में 5 गुना इजाफा, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में तकरीबन 7 गुना, जदीद रेलवे कोच की मैन्युफैक्चरिंग में 21 गुना और मोबाइल फ़ोन तैयार करने में 33 गुना इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट सारिफिन की तादाद में भी तकरीबन 4 गुना, जबकि डिजिटल माली लेन देन में ज़बरदस्त 100% इजाफा हुआ है। जनाब मोदी ने कहा कि NDA हुकूमत ने आम आदमी की बहबूद और बुनियादी ज़रूरियात के तईं यकसां संजीदगी के साथ काम किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हज़ारों ज़ाब्ता जाति तामीली तकाज़ों और सैकड़ों फरसुदा कवानीन को मनसूख करके तर्ज हुक्मरानी में भी गैर मामूली तब्दीलियाँ की हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा, आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया, इंटरनेट यूजर करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजेक्शन 100 गुना बढ़े।
0: वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत ने 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने की राह पर गामजन होते हुए कई गैर मुतवक्के बहरानों पर कामयाबी हासिल की है। उन्होंने COVID-19 वबा और यूक्रेन और मगरबी एशिया के तनाज़ों के बाद पैदा होने वाले चैलेंजों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन बहरानों के दौरान टीकों, ईंधन, गैस, डीजल और फर्टिलाइजर्स के बारे में लोगों के दरमियान खौफ फैलाने की खातिर कई तरह की अफवाहें फैलाई गईं। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि भारत की मनसूबाबंद पॉलिसियों, तैयारियों और बरवक्त इकदामात से मुल्क ने इन चैलेंजों का बखूबी सामना किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि नागरिक देवो भवा के नज़रिए को सामने रखते हुए हुकूमत ने इस बात को यकीनी बनाया कि पिछले दहाई के दौरान किए गए इंतजाम बहरान के वक्त में मुअसर साबित हों। उन्होंने कहा कि आज मुल्क के पास गैस, पेट्रोल और यूरिया की अच्छी सप्लाई मौजूद है और मुल्क अपनी सलाहियतों की ताकत की बुनियाद पर इतमाद के साथ आगे बढ़ रहा है।

0: वजीर आजम ने कहा कि कई मौकों पर मुल्क वसाइल की कमी की वजह से नहीं बल्कि वो अपनी महदूद सोच की वजह से रुक जाता है। उन्होंने कहा कि आज भारत को खाम तेल पर मुनहसर होना पड़ रहा है और ये भी महदूद सोच का नतीजा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने साहिली इलाकों के 99% को खोल दिया है जहाँ पहले कोई नहीं जा सकता था। उन्होंने कहा कि हुकूमत समंदर की गहराइयों में नए वसाइल तलाश कर रही है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि तवानाई की यकीनी फराहमी मौजूदा वक्त की अहम ज़रूरत है और हुकूमत ने इस समत कई ठोस इकदाम किए हैं। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियाई तवानाई मुल्क की तवानाई फराहमी को यकीनी बनाने के लिए एक अहम जरिया है। जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत 2047 तक न्यूक्लियर बिजली की सलाहियत 100 गीगावाट के हदफ को हासिल करने की जानिब गामजन है। उन्होंने कहा कि भारत इस दहाई के दौरान 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का हदफ रखता है।
1: अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है और इसलिए हमें चीप हो, एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
0: वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि 2014 के बाद से भारत ने तकरीबन 40 मुल्कों के साथ आज़ाद तजारती समझौते किए हैं जिससे भारत के ताजिरों और बरामदकारों के लिए वसी मौके पैदा हुए हैं। वज़ीर आज़म ने मुल्क की बहुत छोटी और औसत दर्जे की कंपनियों MSMEs से कहा कि वो इन मौके का भरपूर इस्तेमाल करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि भारत का सामान पूरी दुनिया के बाजारों तक पहुंचे। वजीर आजम ने कहा कि आज हर भारतीय मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल की लगन के साथ काम कर रहा है।
1: बीते वर्षों में हमारा कन्विक्शन रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है।
0: अपने खिताब में वजीर आजम ने मुल्क के अवाम से सप्त धारा के नाम से ताकत और कुव्वत की 7 धाराओं पर अमल करने को कहा। उन्होंने कहा कि अगले 5 से 7 वर्षों में मुल्क वो सब हासिल कर लेगा जो पिछली 5 से 7 दहाइयों में हासिल नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि सप्त धारा की ताकत और सलाहियत के साथ हुकूमत मुल्क को नई बुलंदियों पर ले जाएगी और मुल्क को नए हदफ हासिल करने के काबिल बनाएगी। वजीर आजम ने पहली धारा को मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर उजागर किया। उन्होंने कहा कि सप्त धारा की दूसरी ताकत ज़राअत और ग़िज़ाई पैदावार है, तीसरी टेक्नोलॉजी और इख्तिरा, चौथी गतिशक्ति, पांचवी दिफाई सलाहियतें, छठी ताकत सब्ज मईशत और समंदरी मईशत है और सप्त धारा की 7वीं धारा भारत का सकाफती विरसा है।
1: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूँ। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
0: वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि हुकूमत ने अगले 1 साल में 1 करोड़ नौजवानों को AI हुनरमंदी की तरबियत देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि ये तरबियत उन नौजवानों को मस्नूई ज़हानत के आलमी शोबे में क़यादत के काबिल बनाएगी। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क को 3 चीज़ों, कीमत, मेयार और हुनरमंदी पर तवज्जो मरकूज करना होगी।
1: हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूँ, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे ताकि हमारा देश का नौजवान AI की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है।

0: वज़ीर आज़म ने कहा कि 5 से 15 साल तक की उम्र के बच्चों की सलाहियतों को पहचानने के लिए गांवों, शहरों और स्कूलों में खुसूसी मुहिम शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि बच्चों के हुनर की शिनाख्त की जाएगी और उन्हें मुल्क के बेहतरीन खिलाड़ी बनने में मदद करने के लिए खुसूसी तरबियत दी जाएगी। जनाब मोदी ने कहा कि भारत आज खेलों की दुनिया में अपना मकाम बना रहा है। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि भारत साल 2030 में दौलत मुश्तरक खेलों की मेज़बानी करेगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि दुनिया के कई हिस्सों में जंग और अदम इस्तेकाम के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशत है। 80वें यौम आज़ादी के मौके पर कल शाम कौम से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारतीय मईशत की शरह नमो औसत आलमी शरह नमो से 2 गुना से भी ज्यादा रहने की तवक्को है।
1: Even in such trying circumstances, our economy is moving ahead as the fastest growing major economy in the world. According to economic projections, the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average of global growth rate. Atmanirbhar Bharat Abhiyan has further strengthened the foundation of our economic progress and national security.
0: सदर जमहूरिया ने कहा कि हुकूमत पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम के लिए जामे इकदामात कर रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने यौम आज़ादी 2026 के मौके पर डिफेंस फोर्सेस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अमले के लिए बहादुरी के 78 अवार्ड्स को मंजूरी दी है। 13 अवार्ड्स बादज़ मर्ग दिए जाएंगे। भारत और श्रीलंका की टीमों के दरमियान 2 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में आज से शुरू होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर रजवी।
2: शुक्रिया नितिका। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने मुल्क के 80वें यौम आज़ादी के जश्न और सदर जमहूरिया के यौम आज़ादी से कबल कल शाम कौम से खिताब को अपनी 6 सुर्खी बनाया है। रोजनामा इंकलाब और प्रताप की 6 सुर्खी है। सदर जमहूरिया के बयान पर मबनी है, युवा शक्ति भारत की सबसे बड़ी दौलत, सुनहरे मुस्तकबिल का भरोसा।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत आज अपना 80वां यौम आज़ादी मना रहा है। वजीर आजम मोदी ने दिल्ली के लाल किले पर परचम कुशाई की। वजीर आजम ने मुल्क से खिताब करते हुए साल 2047 तक विकसित भारत बनने के मुल्क के सफर को तेज करने पर मरकूज 7 निकाती इस्लाही फ्रेमवर्क सप्त धारा का ऐलान किया। जनाब मोदी ने कहा कि भारत ने 100 गीगावाट न्यूक्लियाई तवानाई पैदा करने और 5 नए रिएक्टर्स कायम करने का हदफ मुकर्रर किया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Sarabjit Kaur. The nation celebrates its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi hoisted the national flag at Red Fort in Delhi and addressed the nation. Addressing the nation from the ramparts of Red Fort, Prime Minister Modi said that this is the first time since independence that Vande Mataram has resonated from the ramparts of Red Fort.
1: आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है? पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए, उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं।
0: Mr. Modi said that over the past 12 years, crores of citizens of the country, with their determination and dedication, made every possible effort to take the country to new heights. He said due to these efforts, 25 crore people have come out of poverty.
1: पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इस प्रयासों का आदर पूर्वक स्वीकार करता और उसी का परिणाम है इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी

0: गरीबी को पास करके गरीबी से बाहर निकले हैं।
1: He said India, which was once among the fragile five economies, has now emerged as a major and the fastest growing economy in the world. Mr. Modi said that India has set a big goal to become a developed nation by 2047. Prime Minister said energy security is today's need and that's why we have already taken steps in this direction. Mr. Modi said the government is moving forward with the aim of 100 gigawatts of nuclear power capacity by 2047. Mr. Modi unveiled a 7-point reform framework or Saptadhara aimed at accelerating India's journey towards becoming a Vikasit Bharat by 2047. He said work that could not be completed in the past 5 to 7 decades must be achieved within the next 5 to 7 years.
0: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूँ। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
1: Prime Minister said that government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI sector. Mr. Modi said the country has to focus on 3 things: cost, quality and skill.
0: हमने पिछले दिनों AI Impact Summit किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूँ, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान AI की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है।
1: Prime Minister Modi also announced to provide free online coaching for poor and middle class family for various public examinations. He said this is a revolutionary step towards making quality education accessible to everyone, led by top teachers. He said this will save thousands of crore of rupees of middle class family in coaching classes. In men's cricket, India won the toss and elected to bat against host Sri Lanka in the first test of 2-match series at Gale International Cricket Stadium. The series is part of the ICC World Test Championship 2025-27 cycle. And that is the end of this news bulletin.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुबह के 10:10 और पूरे हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 20 सेकंड। आज 15 अगस्त है। आज हमारा देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो इस अवसर पर सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। और श्रोताओं, आपको बता दें कि अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा कार्यक्रम फिल्म संगीत।
3: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, आईएसआई

0: आता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: तो श्रोताओं, अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आपका मनपसंद कार्यक्रम फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, जागो ग्राहक जागो। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। तो मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सुषमा और लेकर आई हूं आपके लिए आपका मनपसंद कार्यक्रम, कौन सा भी, फिल्म संगीत। और आज है 15 अगस्त, यानी आज है आज़ादी का दिन। और सबके लिए आज़ादी अपने अपने तरीके से मायने रखती है, और हम उसको क्या बोलते हैं, किस तरह से हम उसे अपने हिसाब से बोलते हैं, ये सब हम अपने हिसाब से कैसे मनाते हैं इस जश्न को, आपसे जानेंगे भी और पूछेंगे भी। लेकिन हाँ, आज़ादी जो इतनी बेशकीमती है, जिसके लिए कितने जाने जा चुकी हैं, कितने शहीदों ने अपनी जान गंवाई है, अपनी जिंदगियों को कुर्बान किया है, और इस आज़ादी का हम अच्छे से उपयोग करें, ये हमारा फर्ज बनता है। तो आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम फिल्म संगीत पर आधारित आपकी पसंद शुरू हो चुका है, और इस कार्यक्रम में श्रोताओं, हम आपसे कहेंगे कि आप जरूर हमारे साथ बने रहें पूरी 11 बजे तक। और हमारी मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। आजादी के जश्न में तो हम बहुत सारी आपकी बातें भी सुनेंगे, आपके लिए आजादी क्या मायने रखती है, किस तरह से आप इस जश्न को मनाते हैं, और जो हमारे ऐसे जावांज रहे हैं जिन्होंने अपनी जान को कुर्बान किया है, ना अपने परिवार की परवाह की, ना अपनी ख्वाहिशों की, ना ही अपनी, और देश के लिए, भारत माँ के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, इन शहीद जवानों को भी हम याद करेंगे। तो इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं, और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत गीत से, जो कि शहीद फिल्म से है, मोहम्मद रफी जी की आवाज़ में है ये बहुत ही खूबसूरत तराना। और अपने उन तमाम शहीदों को भी हम नमन करते हैं, कोटि कोटि नमन, जिन्होंने हमें ये आज़ादी दी है अपनी जान पर खेलकर। और आपके लिए आज़ादी क्या मायने रखती है, आप इसे किस तरह से मनाते हैं, क्या करते हैं, ये आप हमें ज़रूर बताएं। और भी बातें करेंगे, क्या आप आज कुछ खास बनाते हैं, कुछ खास पहनते हैं कि आपको अच्छा फील हो भी, आप इस जश्न को अच्छे से मनाते हैं, बाहर जाते हैं, ये तमाम सवाल आज हमारे श्रोताओं से हम जानेंगे, जो कि हमने आपको मेल आईडी बता दी है। इंतज़ार रहेगा इस मेल आईडी पर कि आप अपने जवाब हम तक पहुँचाएँ। और श्रोताओं, ये एक बात और, जो श्रोता हमारे आज इस प्रश्न का उत्तर देंगे, उन्हीं की ही मेल्स को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो शिकायत और शिकवा बिल्कुल नहीं, बस आज तो जश्न का माहौल है, तो आज ऐसे ही आप भी खूब इंजॉय करें, हमारे साथ बने रहें पूरे 11 बजे तक।

जी, बहुत ही खूबसूरत गीत जो अभी आप सुन रहे थे। और जैसे कि हमारे हम जानते ही हैं, हमने आपसे पहले भी कहा, आप जानते हैं कि आज है 15 अगस्त, और इस पर खास क्या कहें, क्योंकि सबकी अपनी भावनाएं हैं और सभी अपने अपने तरीके से इसे व्यक्त करते हैं। तो एक लाइन है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, ना पूछो ज़माने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। और हिंदुस्तान के लोग आज कोने कोने में, देश देश भर में तिरंगे में रंगे हुए हैं। सभी अपने अपने हिसाब से आज इस कहते हैं ना, राष्ट्रीय पर्व है ये हमारा, तो इस राष्ट्रीय पर्व के खुमारी में डूबे हुए हैं। सरहदों से लेकर देश के हर एक हिस्से, चाहे वो मध्य भारत हो, पूर्वी हो, दक्षिण छोर हो, या उत्तर का कोना हो, सब जगह पर आज सिर्फ सिर्फ और सिर्फ तिरंगा जो रंग है उसी में तिरंगामय हुए हुए हैं। और देखिए, हम सभी कोशिश करते हैं कि अपने जो हमारे शहीद हुए हैं या सैनिक हैं, जो हमारे लिए रात दिन प्रहरी बनकर खड़े रहते हैं, ना उन्हीं बर्फ की परवाह होती है, ना ठंड के थपेड़े वो झेलते हैं, मतलब उनकी परवाह होती है, वो हर चीज को झेलते हैं, बरसात में, हर मौसम में, इतनी तेज गर्मी में झुलसते हैं, तब भी वो बेपरवाह होकर हमारी रक्षा करते हैं। तो आज के दिन तो कम से कम हमारा इतना फर्ज बनता है कि हम उनका शुक्रिया अदा करें, क्योंकि उनकी बदौलत ही हम सुरक्षित हैं और खुली हवा में सांस ले रहे हैं, अपने मन से बातें करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, खाते घूमते फिरते हैं और जहां मन करता है वहां जाते हैं। तो वही देश के कोने कोने में जो तिरंगों के रंग से आज देशभक्ति का जो रंग रंगा हुआ है, तो आज हमने भी कोशिश की कि कुछ रंग सुरों के जरिए हम आप तक जरूर पहुंचाएं, और उन सारे वीरों को बहुत बहुत नमन जो अपनी सांसों की, अपनी जिंदगी को कुर्बानी देकर हमें ये आजाद भारत दे गए हैं। और इस आजाद भारत की आजादी को बनाए रखने के लिए अब हमें प्रयास करने हैं। आप किस तरह से प्रयास कर रहे हैं या क्या कोशिश करते हैं अपनी नई पीढ़ी को, अपने उन सैनिकों, उन शहीदों के बारे में बता के उनके जज्बों को बताते हैं या उनको ये एहसास कराते भी हैं कि हमारा देश जो आजाद हुआ वो यूं ही चुटकियों में नहीं मिला हमें, या मुफ्त में हमें थाली में सजाकर आजादी नहीं मिली, क्योंकि इसके लिए तो भाई करोड़ों लाखों जाने गई हुई हैं। तो ऐसे ही आज देश के वीरों को याद करते रहेंगे और सुनवाते रहेंगे आपको देशभक्ति के रंग। तो अगला जो गीत है ये लक्ष्य फिल्म से, और बहुत ही खूबसूरत गीत है, मुझे बहुत पसंद है, और ये दिखाता है कि किस तरह से सैनिक जो है जोश में आते हैं तो वो किसी तरह का कोई भी जोखिम लेने को तैयार होते हैं, किसी की परवाह नहीं करते हैं, बस उनके दिल में सिर्फ जज्बा होता है कि देश को बचाना है और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना।

आज़ादी सिर्फ एक शब्द नहीं, उन लाखों कुर्बानियों की दास्तान है जो इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। और आपने देखा होगा कि देश के कोने कोने में हर कोई उन शहीदों को नमन करता है और आज के दिन खास तौर पर याद करता है। ऐसे तो हर दिन याद करते हैं, लेकिन आज का दिन जो कि आज़ादी का दिन है, जिसे हर कोई अपने तरीके से मनाता है। जैसे अगर मैं कहूँ तो हमारे घर में एक परंपरा है आज़ादी के वक्त ही, क्योंकि हमारे बुजुर्ग तो आज़ाद भारत से पहले ही थे, तो उन्होंने उनके लिए बहुत एक नई चीज़ थी। शायद आज की पीढ़ी उस आज़ादी को अनुभव नहीं कर पाती, तो हमारे घर में आज भी ये परंपरा है कि 15 अगस्त हो या फिर 26 जनवरी, इस दिन सुबह सबसे पहले सबका मुंह मीठा कराया जाता है, और वो भी घर में हलवा बनाकर। तो सबसे पहले, क्योंकि वो हमारे जो दादा दादी थे वो हमें एहसास दिलाते थे कि ये हमारे लिए यूं ही मुफ्त में मिली रेवड़ियां नहीं, बल्कि आज़ादी बहुत

मुश्किलों के बाद मिली है। लाखों जाने गई हैं, कितने अत्याचार सहे हैं, उसके बाद कितने सालों के बाद हमें आज़ादी मिली है। तो आपके यहाँ पे भी अगर इस तरह की कोई परंपरा है तो आप बताएं। और मैं दूसरी बात बताऊं तो देखिए, मैं भी स्टूडियो में आई हूँ चूड़ियाँ पहन के। अगर आपको यकीन हो रहा है आप खलखलाहट सुन सकते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि इस दिन मैं भी थोड़ा तिरंगे के रंग में रंग जाऊँ। मैंने मेरी साथी हैं वो भी बहुत ही अच्छे से तिरंगे के कलर के कपड़े पहन कर आई हैं, उन्होंने भी चूड़ियाँ पहनी हैं, हम भी अच्छे से सजे हैं। तो इस तरह के आयोजन अगर आप क्या होते हैं, आप भी आज ऐसे ही अपने घर के बच्चों को तिरंगे की ड्रेसेस लाके दे रहे हैं, जैसे अलग अलग कलर, ट्राई कलर, तीन कलर, जैसे संतरी, हरा या सफेद, इन कलर, इन रंगों को अगर आज के दिन आप खास तौर पर अपनाते हैं, उसे पहनते हैं, दूसरों को भी गिफ्ट करते हैं, तो जरूर बताएं या किस तरह से आज का दिन आप मनाते हैं। तो अब देखते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं। सबसे पहले जो हमारे पास संदेश आया है ये है टीडी मल्होत्रा का, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप जी का, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। ये लिखते हैं, हमारा स्वतंत्रता दिवस केवल एक तारीख नहीं बल्कि ये हमारे लिए गहरी भावना और प्रेरणा का प्रतीक है। ये पर्व हमें उन सभी वीर शहीदों के बलिदान की याद दिलाता है जिनकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। आज हम जो लोकतांत्रिक अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आज़ादी का जीवन जी रहे हैं, वे इसी स्वतंत्रता का परिणाम है। तो बिल्कुल सही कहा आपने टीडी मल्होत्रा जी। और अगले हमारे जो साथी हैं, जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो हैं सतीश अनेजा। और ये लिखते हैं कि हमारे देश के जवानों की वजह से आज देश चैन की सांस ले रहा है और हर देशवासी बेफिक्र है। देश का युवा वर्ग देश की सेवा करने के लिए व्याकुल है। देशभक्ति हमारे खून में है और हमें अपने देश पर नाज है और हमेशा नाज रहेगा। इन्होंने चंडीगढ़ से ये संदेश भेजा है। और हमारे जो दूसरे साथी हैं उनके संदेश भी हम जरूर शामिल करेंगे। ये हैं अब्बासी जी, ऊपरकोट मोहल्ला चुखंटी बुलंदशहर से, इन्होंने अपना संदेश भेजा है। आज़ादी के लिए बहुत कुछ मायने रखती है क्योंकि जिन माताओं ने अपने जिगर के टुकड़ों को आज़ादी के लिए कुर्बान किया है उनको कोटि कोटि नमन। आज हम जो चैन की नींद ले रहे हैं तो उनकी कुर्बानी का शुक्रिया अदा करने का दिन है। और इन्होंने ये बिल्कुल 100% की बात कही है क्योंकि

सुल्तानी ढाला से अनिल मोहन, उषान मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक जी का ये संदेश है। ये लिखते हैं कि हमारे लिए आजादी का मतलब केवल 1947 में अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति पाना नहीं है, बल्कि बिना किसी भय के सांस लेने, अपने विचार रखने, साथ ही समाज में अपने हिसाब से जीवन व्यतीत करने में हमारी आजादी बड़े मायने रखती है। तो इन्होंने लिखा कि स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमारे लिसनर्स जो थोड़ा लेट जुड़े हैं या शुरू से जुड़े हुए हैं, सुबह से हमें सुन रहे हैं, उन सबको भी स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भी श्रोता हैं, जैसे मैंने कहा कि आज जो मैसेज भेजेगा विषय से संबंधित, उसी के संदेशों को हम शामिल करेंगे अपने इस कार्यक्रम में। और भी बहुत सारे साथी हैं जो संदेश भेज रहे हैं, जैसे कि तुलसी मस्कीन है, इन्होंने लिखा कि सरहद पर जो सीने पर गोली खाते हैं वो देश के सच्चे बेटे कहलाते हैं, उनकी हिम्मत और बलिदान को सलाम।

0: जिनकी वजह से सुरक्षित है हिंदुस्तान। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। और ये मैसेज इन्होंने भेजा है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से। अपने साथी वीना मस्कीन, आशीष राजा, डब्बू सम्राट और चंडीगढ़ से कुछ साथियों के नाम इन्होंने लिखकर भेजे हैं। ये है रचिता खुराना, राहुल केशोरीधान। और अब दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत गीत जो अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, लेकिन उससे पहले आप लेंगे, या यूं कहें कि उससे पहले आप सुनेंगे महत्वपूर्ण जानकारी। जागो ग्राहक जागो, किस तरह से आप अपनी जागरूकता से बच सकते हैं कई फ्रॉड से या कई इस तरह के मामलों से जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब आप सुनिए ये महत्वपूर्ण जानकारी।
1: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हॉलमार्क का निशान देख कर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: ये बहुत छोटी छोटी जानकारियां लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। तो जागो ग्राहक जागो, क्योंकि कहते ना कि सुई से लेके जहाज तक, चाहे आप कुछ भी खरीदें, आपको अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। और आप और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे इस स्टेशन यानी आपका अपना स्टेशन आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल, जो कि आप सुनते हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और दोस्तों आज हूँ आपके साथ आपकी दोस्त सुषमा, और आज बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जो है आपकी पसंद, उसमें खूबसूरत नगमों के साथ हम बातें कर रहे हैं शहीदों की आजादी की। और आप किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं ये जरूर बताएं, हम जानना चाहते हैं। और अगला जो गीत है वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, बहुत ही खूबसूरत गीत है ये रंग दे बसंते फिल्म से दिलेर मेहंदी की आवाज में। और जो श्रोता थोड़ा लेट जुड़े हैं या नए श्रोता आज हमारे साथ जुड़े हैं, उनको बता दें कि iprediodelhi@gmail.com ये हमारा मेल आईडी है। इस मेल आईडी पर आप अपने संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम के साथ।

जी हाँ, आज सभी बसंती रंग में रंगे हुए हैं और सबके दिलों पर, या यूँ कहें कि भाई बहुत सारे आज सब, मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में तो सब जगह खुमारी में है आज़ादी के। सब लोग जश्न मना रहे हैं, घरों की छतों पर बहुत तेज़ गति में उन्होंने, मतलब तेज़ आवाज़ में उन्होंने लगाए हैं डेक और बहुत म्यूज़िक तेज़, मतलब देशभक्ति के गीत और बहुत सारी पतंगबाजी करते हैं। अब आज दिल्ली में लोग निकलते हैं बाहर, इंडिया गेट की तरफ आएंगे, लाल किला के पास आते हैं और उस जश्न को अच्छे से, जो छोटी छोटी जगहों पर बहुत सारे ऐसे जश्न मनाए जा रहे हैं जहां पर हम अपने शहीदों को याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं और कई सारे प्रोत्साहित कार्यक्रम भी करते हैं। ये तो दिल्ली जैसे शहर में कार्यक्रम हो रहे हैं। आप भी हमें बता सकते हैं कि आपके गाँव, शहर या मोहल्ले में आप किस तरह से इन कार्यक्रमों, यानी आज़ादी का जो जश्न है, जो उसके कार्यक्रम है, वो कैसे आप मना रहे हैं। और जो मैसेज मैं देख रही हूँ स्क्रीन पर, वो है रोशन देवांगन का। ये लिखते हैं कि भारत हमारा देश है और इसकी विविधता ही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। यहाँ अलग अलग भाषाएं, पहनावे, खान पान और संस्कृतियां हैं, फिर भी हम सभी भारतीय हैं। स्वतंत्रता का महत्व है, बच्चों को बताएं कि आजादी हमें आसानी से नहीं मिली। महात्मा गांधी, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के लिए त्याग किया है। तिरंगे का सम्मान, केसरिया साहस और त्याग, सफेद शांति और सत्य तथा हरा समृद्ध

0: और विकास का प्रतीक है और अशोक चक्र हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो दीजिए, इन्होंने तो भाई हमारे तिरंगे के सभी रंगों के अलग अलग जो उसके पीछे मकसद छुपे हुए हैं उनको भी बता दिया कि किस तरह से ये हमें प्रेरणा देता है, किस तरह से हमें इंस्पायर करता है। रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन और हेमलता देवांगन जी ने ये जो संदेश हमें पहुंचाया है भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से। और अगले हमारे साथी हैं गुलाब दास माणिकपुरी जी। ये लिखते हैं कि आज़ादी के दिन का एक बहुत बड़ा महत्व है और मैं उन वीर शहीदों को शत शत नमन करता हूँ जिन्होंने अपने सर्वोच्च देश के लिए बलिदान किया। सच पूछो तो वीर शहीदों के बारे में सोचकर आंखें नम हो जाती हैं, रूह कांप जाती है और दिल सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आज की तारीख में क्या ये सब हो पाया। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि रोंगटे खड़े होते हैं अगर हम गहराई से सोचते हैं। हम अपने घर तिरंगा लगाकर और अपने आसपास की सफाई करके इस उत्सव को मनाते हैं। हम एक भाव होता है हमारे मन में कि मैं भी देश के लिए कुछ करूं, तो गांव के जो घर हैं और आसपास की सफाई वहां पर हम योगदान करते हैं और एक माँ भारती की सेवा करते हैं हम सभी मिलकर एक माँ की तरह। तो इन्होंने सभी देशवासी को और जितने श्रोता सुन रहे हैं उन सबको आजादी के इस महापर्व की शुभकामनाएं दी हैं। तो लेवाई छत्तीसगढ़ से इन्होंने ये संदेश भेजा है राजा दास माणिकपुरी और रानी माणिकपुरी के साथ। और अगला संदेश है हमें जो भेजा है, इन्होंने भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की हैं यानी भेजी हैं। सुधाकर जाधव जी हैं अपने साथियों के साथ। और इसके अलावा संदीप मक्कड़ हैं, ये कहते हैं कि आओ हर दिन को आज़ादी समझें, एक नेक इंसान बने, देश के लिए अच्छा सोच, देश को आगे बढ़ाने की सोच हम बनाते रहें। इन्होंने ज्योति मक्कड़ और अपने साथियों के साथ ये संदेश भेजा है जलंधर से। इसके साथ ही और भी हमारे साथी हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं सतवीर जी हैं, इन्होंने भी अपनी ही पसंद का गीत सुनना चाहा है। ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने अपनी पसंद के गीत सुनना चाहे और कई साथियों ने तो बहुत बार अपना संदेश हम तक पहुंचाया है। नई दिल्ली से हमारे साथी हैं इंद्रजीत छाबड़ा जी, ये भी लिखते हैं कि भाई हम भी नगमे सुनाए आप हमें और हमें अच्छा लगता है, पुराने साथी हैं, जुड़े रहते हैं हमारे साथ, तो हमें पूरे साथियों का ध्यान है और हम कोशिश करते हैं कि हम सभी की पसंद के गीत या एक अच्छा सा उनका संदेश हो उसके जरूर अपने इस कार्यक्रम में शामिल करें। अगला जो संदेश, देखिए मैंने पहले ही कहा था कि जो इस कार्यक्रम में जो जुड़ा आपसे हमने प्रश्न पूछा था, आप किस तरह से मनाते हैं आज इस स्वतंत्रता दिवस को, घर में कोई खास प्रथा है या कोई खास पहनावा आप पहनते हैं, तिरंगे का कलर आप पहनना पसंद करते हैं, घर में बच्चों को अच्छे से सजाते हैं या कोई खास कार्यक्रम होता है उनमें आप शिरकत करते हैं, ये सब आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हम आपके संदेशों को जरूर शामिल करेंगे। हमारे एक और साथी हैं जो यूं कहूं कि अगला लकी लिस्नर जो है वो कौन है। मैं अभी मैं देख रही हूँ कि जितने भी साथी हैं जिनके मैसेजेस मैं स्क्रीन पर देख रही हूँ सभी ने अपनी पसंद का गीत सुनना चाहा है, किसी ने आजादी के जश्न के बारे में कुछ नहीं कहा। तो देखिए, एक रविंद्र सिंह छावड़ा जी हैं, इनका संदेश आ गया हमारे पास। ये लिखते हैं कि 15 अगस्त हमारे लिए केवल एक राष्ट्रीय पर्व नहीं बल्कि उन अनगिनत वीरों के बलिदान को याद करने का दिन है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनके संघर्ष, त्याग और साहस की बदौलत आज हम स्वतंत्र भारत में खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और इन्होंने टैगोर गार्डन नई दिल्ली से अपने साथी इंद्रजीत कौर और स्वीटी छाबड़ा के साथ ये संदेश भेजा है। और ये लिखते हैं कि भाई हम तो आपके नियमित श्रोता हैं। जी, नियमित श्रोता हैं तो क्या हुआ भाई, जो प्रश्न है उसका जवाब तो आपको देना ही होगा ना। ऐसे तो बहुत सारे साथी हैं, उनके भी नाम शामिल करेंगे, लेकिन जिन्होंने हमारे इस जो हमने पूछा आज़ादी में किस तरह से आप अपना सहभागिता करते हैं, जश्न को कैसे मनाते हैं, उनके सवालों को, उनके उनकी मेल्स को हम सबसे पहले लेंगे। और एक हमारे साथी हैं, देखिए अब तो बहुत सारे संदेश हमारे साथी भेज रहे हैं एक के बाद एक। स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी श्रोताओं ने हमें, उषा मोहन जी हैं उन्होंने भी भेजी है और ऐसे बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने बधाई हम तक पहुंचाई है। और अब मैं देख रही हूं कि कौन सा संदेश है जो हम ले सकते हैं, क्योंकि सभी ने सिर्फ अपनी पसंद के गीत सुनना चाहे हैं। ये है हमारे साथी भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल और ईशान छीपा और पूजा परिहार के साथ इन्होंने संदेश भेजा है। ये लिखते हैं कि स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज़ादी तो बहुत महंगी मिली है, बहुत भारी कीमत हमें आज़ादी के लिए चुकानी पड़ी थी। आज हम चैन और सुकून की सांस ले रहे हैं, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी उस आज़ादी को हमें सुरक्षित रखना चाहिए। तो आप हमें बता सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं या क्या योगदान आपने इस आज़ादी को बनाए रखने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अब तो एआई और चांद पर जाने का ज़माना हो चुका है, मंगल तक दस्तक हमने दे दी है और साइंस का ज़माना है, तो लोग अब थोड़ा आगे बढ़ गए हैं। वो कहते हैं कि हम, और ये ज़रूरी नहीं कि हर कोई सरहदों पर जाकर ही अपनी जान नछावर करें, हम अपना योगदान पता कैसे कर सकते हैं, घूसखोरी देना बंद करें, हम व्यवस्था को अच्छा कर सकते हैं, साफ सफाई में अपना योगदान दे सकते हैं, अपने शहरों को हम अच्छा कर सकते हैं, और इसके अलावा हम कोशिश करें कि अपने जो संस्कार हैं अपनी आने वाली पीढ़ी को दें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, उन्हें समझाएं कि शिक्षा का क्या महत्व है। एआई का ज़माना है तो उन्हें ऐसा नहीं कि शॉर्ट कहते ना कि ये जो फिक्शन वर्ल्ड है एआई, ये बस क्षणिक है, आप थोड़ी देर के लिए भ्रमित होते हैं, रील्स देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए, बस थोड़ी देर के लिए हुआ, लेकिन उसके बाद जो एक डीप नॉलेज है, जो डिटेल में आप पढ़ेंगे, कुछ इन्वेंशन करेंगे, डिस्कवरीज करेंगे, वही आपकी लॉन्ग लाइफ के लिए ज़्यादा अच्छे होंगे। आप समाज में सौहार्द बना सकते हैं, मिलजुल कर रह सकते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, और अब तो सरकार ऐसी बहुत सारी योजनाएं लाई हैं जिनके ज़रिए अपने गाँव, अपने शहर, अपने देश के लिए बहुत सारा काम आप कर सकते हैं, लघु उद्योगों को बढ़ावा दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं तो जो महिलाएँ हैं उनको इज्जत सम्मान सकते हैं, और जो महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं उनको रोक सकते हैं, और समाज में महिलाओं के लिए एक अच्छा वातावरण आप बना सकते हैं, उन्हें सुरक्षित कर सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे योगदान के जरिए आप अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, पर्यावरण को और अच्छा कर सकते हैं, उसको सुरक्षित करने में अपना योगदान दे सकते हैं। ये और भी बातें करेंगे, ऐसे बहुत सारे काम है जो कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक, एक महत्वपूर्ण जानकारी। जागो ग्राहक जागो, क्योंकि इस स्वतंत्रता दिवस का अवसर है, तो इस अवसर पर आपको पता होना चाहिए कि आपके राइट्स क्या हैं, आपके हक क्या हैं, और ग्राहक के भी कुछ हक होते हैं, इन सब के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, और ये जानकारी आप सबके लिए। तो इस जानकारी के बाद आप सुनेंगे एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत।
1: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

जी हाँ, हम तो अपने देश को बहुत प्यार करते हैं और मेरी तरह सभी लोग भी बहुत प्यार करते हैं, मैं जानती हूँ। और इसलिए तो हम कोई, जैसे हमने कहा ना कि अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हम अलग अलग तरह से योगदान दे सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप सरहदों पर ही खड़े हो जाएँ, जाकर बंदूक तान के खड़े हो जाएँ, भाई मुझे भी शहीद करना है कि होना है या मुझे किसी को मारना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक अच्छा इंसान बनकर हम अपने देश का नाम गर्व से ऊँचा कर सकते हैं, अपने परिवार का, अपने देश का, मोहल्ले का, सबका नाम ऊंचा कर सकते हैं, उन आगे बढ़ा सकते हैं अपनी विरासत को। तो ये छोटे छोटे योगदान हैं जो अनगिनत होते हैं, जिनकी गिनती नहीं होती, लेकिन देश को और मजबूत करने में ये अहम भूमिका निभाते हैं। और कहते हैं ना कि हमारी जड़ों को भी और मजबूत करते हैं, उन्हें गहरा करते हैं। तो दोस्तों, छोटी छोटी चीजें होती हैं अपनी, देखो कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं छोटे छोटे कहते हैं संस्कार संस्कृति, क्योंकि एक जनरेशन ऐसी गई जिन्हें लगा कि तब पश्चिम जो सभ्यता थी उसका काफी प्रभाव था उनके ऊपर, तो उस जनरेशन को वो अपने कल्चर, अपनी संस्कृति को ही ट्रांसफर नहीं कर पाई। तो उस जनरेशन के जो लोग हैं, जो कि जनजी से थोड़ा सा पहले के हैं या यूं कहें कि उसके आसपास, तो उनको वो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो ही नहीं पाया, उनको उतना ज्यादा अपनी संस्कृति और सभ्यता के बारे में पता ही नहीं चला, सिर्फ किताबों में जो पढ़ा वो हुआ। लेकिन ऐसी कितनी सारी कहानियां हैं जो मौखिक रूप से हम एक दूसरे को बताते हैं, और कहते हैं ना कि कथाओं के जरिए ही हमारे इतिहास में, चाहे वीरांगनाएं हों, चाहे हमारे आसपास ही छोटे छोटे जो साहसी जावान लोग थे, जो अपने मोहल्ले, अपने छोटे छोटे कार्यों को करके देश और लोगों की मदद करते थे, तो ऐसे लोगों को याद करना भी बहुत जरूरी है जिन्हें हम भूल चुके हैं। तो ये धीरे धीरे अब चीजें आगे बढ़ रही हैं, लोग अपनी जड़ों की तरफ मुड़ रहे हैं और चीजों को आगे बढ़ा भी रहे हैं। और देखिए, समय कम है, तो अब साथियों मैंने कोशिश की कि सभी के संदेश लूं, जैसे मैंने कहा था जो सवाल का जवाब देंगे उनके, तो ऐसे बहुत सारे साथी हैं, तो लेकिन हाँ, एक एक नाम मैं अब सबका लूंगी। जैसे रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी हैं, इन्होंने अपने साथियों के साथ संदेश भेजा और ये कहते हैं कि हमें प्रोग्राम पसंद आ रहा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिन्हें हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है, जैसे रामेश्वर जी हैं, इन्होंने भी अपने साथियों के साथ संदेश भेजा है, उमाकांति कठेरिया, कमलेश, और इन्होंने ये संदेश मुंगेशापुर कानपुर देहात से भेजा है। सुदर्शन मुखी जी ने भी भेजा है, इंद्रभान जी हैं, उन्होंने भी संदेश भेजा है चिरमिरी कुरासरी से, और इसके अलावा किशन बिंजानी है, और साथ ही साथ दोस्तों आपको एक गीत लक्ष्य फिल्म का सुनने को मिलेगा, क्योंकि समय कम है तो इस गीत का भी आप मजा साथ में लीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत गीत है ये, माफ करिए लक्ष्य फिल्म से ही नहीं है ये, लक्ष्य फिल्म का गीत मैं आपको सुनवा चुकी हूँ। और कौशल्या देवांगन जी ने भी अपना अलग से एक संदेश भेजा है बिलाई छत्तीसगढ़ से, पंकज शर्मा जी का संदेश आया हमारे पास, सुमेरा परवीन ने संदेश भेजा है, और हरजिंदर सिंह भाटिया जी ने भी संदेश भेजा है, और इन्होंने ये संदेश भेजा है हमें स्टेशन रोड जमशेदपुर से। मोहम्मद सईद आवासी जी का हम संदेश शामिल कर चुके हैं पहले ही, और इसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं कि जो साथी रह चुके हैं उनके संदेशों को भी हम शामिल करें उनके नाम। सुधाकर जाधव जी हैं, इन्होंने भी संदेश भेजा है अपने साथियों के साथ मुकाम

पोस्ट काले गांव जाफराबाद मराठवाड़ा से। और सुधाकर जी, अब उम्मीद करती हूँ कि आपको नाराजगी नहीं होगी। रमेश चौहान ने भी जोधपुर राजस्थान से भेजा है ये संदेश। अपनी पसंद के गीत इन सभी साथियों ने सुनना चाहे थे। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि एक हमारे साथी जो हैं, जिन्होंने हमें बार बार संदेश भेजा, और ये हैं हरजिंदर सिंह भाटिया जी, जिन्होंने कहा कि वो एक क्लब के मेंबर भी हैं जहां पर जाकर वो स्वतंत्रता दिवस का समारोह मनाते हैं, उसमें शिरकत करते हैं वो। मुकेश कश्यप जी का संदेश हमारे पास आया। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कोई साथी हमारा छूट ना जाए, निसार अली जी हैं। इसके साथ साथ ही हैं हमारे साथी ताज मोहम्मद जी ने संदेश भेजा है हमें, और साथ ही हैं बसंत अली का जी हैं, और मुकेश कश्यप हैं। भारत भूषण जी ने भी संदेश भेजा था हमें बेंगलुरु वाइट फील्ड से अपने साथियों के साथ। डीकेपी परिहार जी हैं, उन्होंने भी संदेश भेजा और अपने पसंद का ही गीत सुनना चाहा था। स्वीटी जौरा के नाम से हमारे पास कृष्णा पार्क दिल्ली से संदेश आया था सुखविंदर सिंह जौड़ा जी का, इन्होंने भी अपने पसंद का गीत सुनना चाहा था। दिनेश वर्मा, बबलेश पवार और मेहर अरोरा, सतीश अनेजा, आर कुमार, रास क्रिएशंस की तरफ से भी एक संदेश हमारे पास आया था। तो दोस्तों, हमने कोशिश की कि सभी साथियों के संदेश हम शामिल करें, और अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। और जाते जाते सिर्फ इतना ही एक कहेंगे कि एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: अपनी दोस्त सुषमा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार, जागो ग्राहक जागो।
1: जरा ठहरो,
0: और अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। प्रधानमंत्री ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गूंज रही है।
3: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें अपने कार्य, संस्कृति, सोच और काम की गति को बदलना होगा।
3: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा, और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश ने नई रफ्तार पकड़ी है और नई गति से देश आगे बढ़ रहा है।
3: इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल 5 में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं।
2: श्री मोदी ने कहा कि देश में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि हमने दुनिया में हाइड्रोजन के क्षेत्र में भी अपना झंडा बुलंद किया है।
3: देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी है, और मुझे खुशी है ये सबसे लंबी ट्रेन है, और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है।
2: इससे पहले प्रधानमंत्री ने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है, और ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। इनमें 13 ऐसे वीर शामिल हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल मनियो फ्रांसिस और मेजर जितेंद्र राठी को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाएगा। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए विज्ञापन की 12 मिनट की समय सीमा हटाने का निर्णय लिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में आए बदलाव को देखते हुए विज्ञापन की अवधि से जुड़े नियमों पर फिर से विचार करने की जरूरत महसूस की गई। भारत में पे चैनल या फ्री टू एयर चैनल बहुत हद तक विज्ञापनों पर निर्भर हैं। विदेश मंत्रालय ने फिर कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। कल राजधानी में मीडिया को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे अत्याचार और सीमा पार आतंकवाद के लिए इसका इस्तेमाल किए जाने पर चिंता व्यक्त करनी चाहिए। उड़ीसा में लगातार हो रही वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से गांवों, सड़कों और निचले इलाकों में पानी भर गया है। बैतरणी, मधुबलंगा और जालका नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। भारत और श्रीलंका के बीच दो क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच गाल में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने एक विकेट के नुकसान पर 47 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। यह श्रृंखला 2025 से 27 के ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। The nation celebrates its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi hoisted the national flag at Red Fort in Delhi and addressed the nation. The celebrations this year also commemorates Yuva Shakti, acknowledging the contribution of young India in building a Vikasit Bharat by 2047. Addressing the nation from the ramparts of Red Fort, Prime Minister Modi said that this is the first time since independence that Vande Mataram has resonated from the ramparts of Red Fort.
3: आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए। उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं।
4: Mr. Modi said that over the past 12 years, crores of citizens of the country with their determination and dedication made every possible effort to take the country to new heights. He said due to these efforts, 25 crore people have come out of poverty. He said India, which was once among the fragile five economies, has now emerged as a major and the fastest growing economy in the world. Mr. Modi said that India has set a big goal to become a developed nation by 2047.
3: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है।
4: Highlighting the achievements made in different sectors, the Prime Minister said over the past 12 years, defense production has increased nearly fourfold. Mr. Modi unveiled a 7-point reform framework or Saptadhara aimed at accelerating India's journey towards becoming a Vikasit Bharat by 2047. He said work that could not be completed in the past 5 to 7 decades must be achieved within the next 5 to 7 years. Prime Minister Modi announced to provide free online coaching for poor and middle class family for various public examinations. He said this is a revolutionary step towards making quality education accessible to everyone, led by top teachers. He said this will save thousands of crore rupees of middle class families in coaching classes.
3: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
4: द प्राइम मिनिस्टर आस्क्ड द यूथ टू हेल्प प्रोवाइड करेक्ट इन्फॉर्मेशन डिजिटली अबाउट देयर फैमिलीज टू मेक सेंसेस एरर फ्री। He appealed to the youngsters to actively participate in ongoing census exercise. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari has called upon the people of the state to work together to build a more developed, prosperous and brighter West Bengal. In his Independence Day address through Akashvani Kolkata this morning, Mr. Adhikari extended his greetings to the people of the state on the 80th anniversary of independence. He paid tribute to the freedom fighters whose sacrifices made India's independence possible. Tripura Governor Indira Seni Reddy Nallu paid heartfelt tribute to the freedom fighters on 80th Independence Day, recalling their supreme sacrifices and urging people to draw inspiration from their courage, patriotism and dedication. A powerful 7.7 magnitude earthquake hit the ocean near Indonesia early in the morning, damaging homes and public buildings within triggering a tsunami warning. There are no immediate reports of casualties. The initial quake was followed by several aftershocks. The quake was felt across much of Flores Island. In men's cricket, India was 60-1 against host Sri Lanka in the first test of two-match series at Gale International Cricket Stadium. Earlier, India won the toss and elected to bat. And that is the end of this news bulletin.
0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुबह के 11:10 और पूरे हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक, लीजिए पूरे 20 सेकंड। और अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे सबरस। सबरस में आज सबसे पहले आप सुनेंगे भारती सिंह का गायन। जी हाँ, भारती सिंह का गाया गीत।

दोस्तों आप सुन रहे हैं सबरस और सबरस में मैं हूँ आपके साथ आपकी साथी आपकी दोस्त हम सफर सुषमा। दोस्तों आज है 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता का दिन। जी हाँ, स्वतंत्रता दिवस को आज मनाते हैं और आज 80वें स्वतंत्रता दिवस को पूरा देश मना रहा है। पूरे जश्न जोशों खरोश के साथ बहुत सारे जश्न मनाए जा रहे हैं और आप भी जश्न में जरूर डूबे होंगे। तो हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं क्योंकि तिरंगा सब जगह लहराया जा रहा है, देश भर में तिरंगे की यात्रा निकाली जा रही है, तो तिरंगा यात्रा कई जगह पर निकाली जा रही है। तो बस मेरा एक छोटा सा निवेदन है आपसे कि तिरंगा यात्रा आप निकालते हैं तो उसके बाद तिरंगे का पूरा सम्मान करें, उसे जहां पर भी लगाएं, चाहे अपने घर में या कहीं बाहर खुले में भी आप देखें। ये हमारा तिरंगा जो हमारा गर्व है, हमारे सर को ऊँचा करता, हमें स्वाभिमान देता है, हमें एक अच्छा नागरिक होने का गर्व दिलाता है। इसका अपमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि हर साल तिरंगा यात्रा निकलती है, उसके बाद लोग तिरंगे का अपमान करते हैं, यूं ही तिरंगे पड़े होते हैं, उनको बस ऐसे ही फेंक देते हैं। तो बहुत दुख होता है कि जो तिरंगा जिसके लिए हमारे शहीद अपनी जान तक निछावर कर देते हैं उस तिरंगे का इतना अपमान होता है। तिरंगा जरूर अपने घर में फहराएं लेकिन उसका सम्मान पूरा करें। उसकी अगर वो पुराना भी हो जाए तो अपने आसपास कहीं पता करें कि तिरंगा पुराना हो चुका है, उसको बदलना है तो उसके लिए कोई ऐसा बैंक जहां पर हम पुराने तिरंगों को जमा कर सकते हैं या कैसे इसे डिस्कार्ड किया जा सकता है, मतलब किस तरह से इसे दोबारा से यूज कर सकते हैं। तो ये सब जानकारियां लेने के बाद ही या तो आप फिर घर पर तिरंगा ना लगाएं क्योंकि तिरंगा लगाना है तो सम्मान भी पूरा करना है। और आप सबरस, तो अगली जो बहुत ही खूबसूरत गजल है ये है जगजीत सिंह जी की आवाज में।

सईद राही की ये गजल बहुत खूबसूरत और जगजीत सिंह और चित्रा जी के स्वर ने तो इसे चार चांद लगा दिए। सच में दिल को छू जाती है और बहुत ही मौसिकी वाली ये गजल है, दिल खुश हो जाता है इसे सुनकर।

आप सुन रहे हैं सबरस और ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर। 366.3 मीटर की तरंगे जो हैं वो आपको इस वक्त सुनाई दे रही हैं और उन्हीं तरंगों पर आप सुन रहे हैं ये प्रोग्राम, यानी 819 किलोहर्ट्ज़ और DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर भी।

अभी आप सुन रहे थे गुरदास मान की स्वर में ये पंजाबी गीत, आप सुन रहे थे सबरस। और श्रोताओं, अब समय हो गया है सुरमंजरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का, और इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे हरि सिंह और साथियों से राग गुजरी तोड़ी में शहनाई वादन।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे सुरमंजरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हरि सिंह व साथियों से राग गुजरी तोड़ी में शहनाई वादन। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। श्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गुंजायमान हो रही है।
2: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई शिखर सम्मेलन के आयोजन से भारत ने विश्व को अपनी शक्ति दिखाई है। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
2: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
2: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है और ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। 80वें स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की जनता से अधिक विकसित, समृद्ध और उज्जवल पश्चिम बंगाल के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। श्री अधिकारी ने स्वतंत्रता दिवस पर राज्य की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि सरकार महात्मा

0: गांधी के कार्यों और उनके दृष्टिकोण से सदैव प्रेरणालित रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक की प्रगति के लिए काम करती रहेगी, इससे देश प्रगतिशील और समृद्ध बनेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। इनमें 13 ऐसे वीर शामिल हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल मनियो फ्रांसिस और मेजर जितेंद्र राठी को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाएगा। लेबनान में आज सवेरे इसराइल के हमलों में 7 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। मलबे में दबे लोगों को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेबनान और इसराइल में इस वर्ष 26 जून को बनी सहमति के अनुसार दक्षिणी लेबनान के इसराइली सैनिकों को लौट जाना था। इसके बदले ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्ला गुट को हथियारों से मुक्त करने की पहल की जानी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री अरबिंदो की जयंती पर स्मरण किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अरबिंदो को एक महान दार्शनिक, राष्ट्रवादी कवि और विचारक बताया। प्रधानमंत्री ने पारसी नववर्ष नवरोज के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि पारसी समुदाय के लोगों के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान ने देश को अनगिनत तरीकों से समृद्ध किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 80वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। गाल में श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 1 विकेट पर 101 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. The nation celebrates its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi hoisted the national flag at the Red Fort in Delhi and addressed the nation. The celebrations this year also commemorates Yuva Shakti, acknowledging the contribution of Young India in building a Viksit Bharat by 2047. Addressing the nation, Prime Minister Modi said that this is the first time since independence that Vande Mataram has resonated from the ramparts of Red Fort.
2: आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए, उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं।
1: Mr. Modi unveiled a 7-point reform framework or Saptadhara aimed at accelerating India's journey towards becoming a Viksit Bharat by 2047. He said work that could not be completed in the past 5 to 7 decades must be achieved within the next 5 to 7 years. Prime Minister Modi announced to provide free online coaching for poor and middle class family for various public examination.
2: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: Prime Minister Modi said since 2014, India has entered into free trade agreements with nearly 40 countries, creating enormous opportunities for Indian businesses and exporters.
2: 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा FTA एग्रीमेंट हो रहा है। ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा अवसर है। मैं मेरे MSME को कहना चाहूंगा कि हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है, दुनिया में हमें पहुंचना है। भारत के उत्पाद की हर चीज विश्व के बाजार में पहुंचे, चाहे हमारा टेक्सटाइल हो, हमारी मशीनरी हो, दवाइयां हो, हमने मौका छोड़ना नहीं है।
1: The Prime Minister has urged all parties to support the implementation of women's reservation in Parliament and state assemblies without making it a political fight. Mr. Modi asked them to step forward to honour women and ensure that country's women secure 33% representation in the legislative assemblies and the Lok Sabha as soon as possible. Reports of Independence Day celebrations are pouring in from states and union territories. Odisha Chief Minister Mohan Charan Majhi today outlined an ambitious roadmap for a developed Odisha with emphasis on security, education, investment, infrastructure and employment as the state celebrated the 80th Independence Day. Addressing the state-level function in Bhubaneswar after unfurling the tricolour, Mr. Majhi said, coordinated efforts of the centre and the state have brought left-wing extremism to an end in Odisha, creating new opportunities for development in the affected areas. In Kashmir, the Independence Day was celebrated across all 10 districts with patriotic fervour and enthusiasm. The main function was held at the iconic Bakshi Stadium, where Chief Minister Umar Abdullah unfurled the national flag and took the salute at the ceremonial parade. Addressing the gathering, the Chief Minister said the situation in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir has made it clear that the decision taken by the ancestors of this part of Jammu and Kashmir to be with India was the correct one. In Punjab, the state-level ceremony was held at the border district of Firozpur, where Chief Minister Bhagwant Singh Mann unfurled the national flag. The national song, Vande Mataram, was played before the national anthem. President Draupadi Murmu today paid homage to the bravehearts at the National War Memorial on the occasion of 80th Independence Day. The President laid a wreath at the memorial and paid tributes to the martyrs. In men's cricket, India were 101 for 1 at lunch against hosts Sri Lanka in the first test of the two-match series at Goa International Cricket Stadium. Earlier, India won the toss and elected to bat. And that is the end of this news bulletin.

0: घर आंगन।
1: घर आंगन कार्यक्रम के आज खासम खास शो में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ मंजुला
2: और मैं हूँ आपके साथ दीपा।
1: स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं।
2: और श्रोताओं, मेरी ओर से भी आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 KHz पर।
2: दोस्तों, सबसे बड़ी आज़ादी वो नहीं जो हमें मिली है, बल्कि वो है जिसे हम हर दिन सही सोच, सही कर्म और सही निर्णयों के जीवित रखते हैं। आज तिरंगा सिर्फ आसमान में नहीं लहरा रहा, बल्कि हर उस दिल में भी लहरा रहा है जो अपने देश से प्यार करते हैं, अपने सपनों पर विश्वास करते हैं और एक बेहतर भारत बनाने में अपना योगदान देना चाहते हैं।
1: और इसी खूबसूरत सोच के साथ आज का सवाल आपके लिए कि स्वतंत्रता का सबसे खूबसूरत मतलब क्या है? अपनी पसंद से जीना, अपने फैसले खुद लेना या फिर कुछ और? जो भी आपके मन में आ रहा है आप लिख भेजिए, अपने विचार हमें भेजिए इस मेल ID पर fmgoldga@gmail.com। तो आइए देशभक्ति, उमंग, दिल को छू लेने वाले गीत और मुस्कान से भरे इस स्वतंत्रता दिवस के विशेष सफर की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ।

0: श्रोताओं, अभी आपने गीत सुना दुल्हन चली, फिल्म थी पूरब और पश्चिम, गायक थे महेंद्र कपूर।
1: और आज भारत अपनी आजादी के 79 गौरवशाली वर्ष पूरे करके 80वां स्वतंत्रता दिवस मना
0: बिल्कुल
1: रहा है दीपा जी। और हर तरफ उत्सव का माहौल है, हर चेहरे पर मुस्कान है, हर दिल में गर्व है और हर सांस में देशभक्ति की महक है। गलियों से लेकर शहरों तक तिरंगे की शान लहरा रही है, देशभक्ति के गीत हवा में गूंज रहे हैं, स्कूलों में बच्चों की प्रस्तुतियां हो रही हैं, घरों में मिठाइयां बांटी जा रही है और हर ओर एक ही आवाज सुनाई दे रही है, जय हिंद।
0: बिल्कुल मंजूरा, लेकिन मैं तो कहूंगी अपने श्रोताओं से कि 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये उन अनगिनत वीरों के बलिदान को नमन करने का दिन है जिन्होंने हमें खुली हवा में सांस लेने, अपने सपने देखने और उन्हें पूरा करने की आजादी दी।
1: और शायद दीपा जी, आजादी का सबसे खूबसूरत जश्न सिर्फ तिरंगा लहराने में नहीं बल्कि उस भारत को आगे बढ़ते हुए देखने में है जो हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज का भारत नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, हमारी बेटियां बड़े सपने देख रही हैं, युवा दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, नए विचार और नई तकनीक देश की तस्वीर बदल रहे हैं, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, लोग अधिक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपना रहे हैं और अपने देश की मिट्टी, हुनर और उत्पादों के प्रति सम्मान भी बढ़ रहा है।
0: बिल्कुल सही कहा मंजुला। तो आइए इस 15 अगस्त सिर्फ आजादी का जश्न नहीं, उस भारत का भी जश्न मनाएं जो हर दिन थोड़ा और आगे बढ़ रहा है। आज जब हम अपने देश को बदलते हुए देखते हैं तो सचमुच बहुत खुशी होती है। भारत बदल रहा है और ये बदलाव केवल बड़े शहरों या बड़ी इमारतों में नहीं बल्कि लोगों की सोच में दिखाई दे रहा है। आज के भारत में महत्वाकांक्षा भी है, अपनी जड़ों से जुड़ाव भी है और देश के लिए कुछ बेहतर करने की इच्छा भी।
1: क्या बात है दीपा जी। तो आइए इस 15 अगस्त सिर्फ आजादी का जश्न मनाएं, उस भारत का भी जश्न मनाएं जो हर दिन थोड़ा और आगे बढ़ रहा है, क्योंकि देश को बेहतर बनाने का सपना किसी एक पीढ़ी का नहीं है, हम सबका है। तो ना मिट्टी से रिश्ता टूटे, ना सपनों की उड़ान रुके, भारत की नई सुबह में हर आंख का अरमान खिले, जो मिला है पूर्वजों से उसे और संवारना है, ये देश हमारा है इसे थोड़ा और निखारना है।
0: वाह,

0: ये देश है वीर जवानों का, ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म थी नया दौर और गायक कलाकार थे मोहम्मद रफी और बलवीर।
1: और अब बात कुछ जिम्मेदारी की। हम अपने देश को सिर्फ बेहतर देखना चाहते हैं या उसे बेहतर बनाने में अपनी भूमिका भी निभाना चाहते हैं, क्योंकि नागरिक होना सिर्फ अधिकारों का इस्तेमाल करना नहीं है, अपने आसपास की दुनिया के प्रति जवाबदेह होना भी है।
0: बिल्कुल सही बात है मंजुला, और हम संकल्प लें कि जहाँ संभव हो एक पेड़ लगाएंगे, उसकी देखभाल करेंगे, किसी ज़रूरतमंद को सिर्फ सलाह नहीं अवसर देने की कोशिश करेंगे। किसी लड़की की शिक्षा, किसी महिला की आर्थिक स्वतंत्रता या किसी युवा के हुनर को बढ़ावा देने में अपना छोटा सा योगदान देंगे।
1: बहुत सही कहा। और देश घूमने निकले तो सिर्फ तस्वीरें लेकर वापस नहीं आएंगे, जिस जगह जाएंगे उसे साफ रखेंगे, स्थानीय संस्कृति और लोगों का सम्मान करेंगे, स्थानीय भोजन, हस्तशिल्प और कारोबार को बढ़ावा देंगे, अपने देश के अनदेखे खूबसूरत हिस्सों को दूसरे तक पहुंचाएंगे, क्योंकि भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देना भी देश की अर्थव्यवस्था और स्थानीय रोजगार में योगदान देना है।
0: आज हमारी एक और बड़ी जिम्मेदारी डिजिटल दुनिया में है। सोशल मीडिया हमारी आवाज़ को लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है, तो इसका इस्तेमाल ज्ञान बांटने, अच्छे कामों को सामने लाने, भारतीय कला संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्यों ना करें। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI को भी सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, सीखने, काम आसान करने और नए अवसर बनाने के लिए इस्तेमाल करें। और हाँ, जिंदगी को सिर्फ स्क्रीन पर मत जिए।
1: बिल्कुल सही कहा। और हम भारत को सिर्फ ऑनलाइन सराहेंगे नहीं, उसे जमीन पर भी बेहतर बनाने में योगदान देंगे और अपनी आजादी का इस्तेमाल सिर्फ बोलने के लिए नहीं, कुछ अच्छा करने के लिए भी करेंगे, क्योंकि देश हमसे कोई असाधारण काम नहीं मांगता, बस जहां है वहां थोड़ा बेहतर नागरिक बनने की अपेक्षा करता है। मेरी आजादी, मेरी जिम्मेदारी।

0: जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया, ये गीत अभी आपने सुना, फिल्म थी सिकंदर आजम और गायक थे मोहम्मद रफी।
1: और मेल्स हमारे पास आने शुरू हो गए हैं। हमारा आज का सवाल है, सबसे पहले मैं वो बता दूं कि स्वतंत्रता का सबसे खूबसूरत अर्थ क्या है आपके लिए, वो आपको बताना है। हमारा मेल आईडी है fmgoalga@gmail.com। तो सबसे पहला मेल मैं पढ़ रही हूँ, ऐना लिख रही हैं कि अपनी जिंदगी के फैसले, खुद लेने की आज़ादी और अपने सपनों को बिना डर के जीने का हौसला। मेरे लिए आज़ादी सिर्फ बंधनों से मुक्ति नहीं, बल्कि अपनी सोच, अपनी पहचान, अपनी जिंदगी के अपने तरीके से को चुनने का हक है।
0: अरे वाह, बहुत ही अच्छा संदेश था मंजुला। और हमारे साथ आदित्य शर्मा जुड़ चुके हैं। उनके हिसाब से मेरे लिए, वो लिखते हैं कि स्वतंत्रता का सबसे ब्यूटीफुल मतलब जो अर्थ है, उन्होंने लिखा है कि अपने निर्णय खुद लेना
1: क्या
0: और
1: बात है,
0: अपनी पहचान बनाना।
1: बिल्कुल। तो अनन्या श्रेष्ठा लिखती हैं कि मेरे लिए स्वतंत्रता का सबसे खूबसूरत अर्थ है अपनी पसंद से जीने का अधिकार, लेकिन दूसरों की स्वतंत्रता और सम्मान का भी ख्याल रखना। असली आजादी वही है जिससे हम अपने सपनों को पूरा करने के साथ साथ दूसरों को भी आगे बढ़ने का अवसर दे। बहुत ही अच्छा लिखा है। और अगला कौन सा है?
0: हाँ, आदित्य
1: अगला
0: तो
1: है, हाँ, एक अनिल मेहता जी भी लिख रहे हैं कि बिना किसी डर के सोचना, सच बोलना और खुद के साथ साथ दूसरों को भी सम्मान से जीने का अवसर देना। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने भी। और आगे साधना गोयल जी लिखती हैं कि हमारे लिए स्वतंत्रता का सबसे सुंदर अर्थ है गुलामी से मुक्त होना। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी करें, बल्कि दूसरों के अधिकारों का सम्मान करते हुए जिम्मेदारी से जीना ही स्वतंत्रता है।
0: और मेरे पास रमीशा जैन जी कहते हैं कि मेरे लिए स्वतंत्रता केवल बंधनों से मुक्ति नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को पूर्णतः स्वीकार कर अपने मन के अनुरूप जीवन जीने का अधिकार है। स्वतंत्रता का अर्थ है कि मैं बिना भय, अपराध बोध अथवा किसी की स्वीकृति की प्रतीक्षा किए अपने निर्णय स्वयं ले सकूं और सपने अपने जो सत्य को कहने, अपनी सीमाएं निर्धारित करने और जहां सम्मान ना मिले वहां बिना संकोच पीछे हट जाने का साहस है। क्या बात
1: बहुत
0: है।
1: ही अच्छे मेल्स सारे जो आंसर्स हैं वो आए,
0: हाँ
1: उसको पढ़कर यही लगा कि हमारा देश सही में बदल रहा है। बहुत अच्छा लगा।
0: बिल्कुल
1: तो हमारा सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, स्वतंत्रता का असली मतलब क्या है, इसका सबसे खूबसूरत अर्थ क्या है?

0: अभी हम सुन रहे थे सोनू निगम रूप कुमार राठौर को फिल्म बॉर्डर से।
1: और मंजुला, जो सावन आता है ना, तो सावन आते ही जैसे पूरा वातावरण ही बदल जाता है। चारों ओर हरियाली, रिमझिम फुहारें, पेड़ों पर झूले और मन अपने आप उमंग से भर जाता है। क्या कहना है तुम्हारा?
0: बिल्कुल सही। और आज एक खास दिन है, हरियाली तीज, जब सावन सिर्फ मौसम नहीं एक एहसास बन जाता है। हरियाली तीज नाम में ही जैसे पूरी ऋतु का रंग समाया हुआ है। यह पर्व केवल श्रृंगार का नहीं, प्रकृति के साथ हमारे उस पुराने रिश्ते का उत्सव भी है, जिसमें बारिश का स्वागत है, हरियाली के लिए आभार है और जीवन में सुख समृद्धि की कामना है।
1: बिल्कुल। और दोस्तों, हरियाली

0: तीज और मधुश्रवा तृतीया एक ही पर्व के दो नाम है। मधु का अर्थ है मधुरता या आनंद और श्रवा का आशय है प्रवाह, यानी श्रावण मास की वो तृतीया जब प्रकृति अपनी पूरी हरियाली, ताजगी और मधुरता के साथ जीवन में नई ऊर्जा का संचार करती है।
1: बिल्कुल सही। और परंपरा में हरियाली तीज का संबंध माता पार्वती और भगवान शिव से भी जोड़ा जाता है। मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था, इसलिए विवाहित महिलाएं अपने दाम्पत्य जीवन के सुख और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं।
0: बिल्कुल मंजुला। और हरियाली तीज की सबसे सुंदर बात यह है कि गाँव हो या शहर, हर जगह उत्सव का माहौल बन जाता है। पेड़ों पर झूले सजते हैं, महिलाएं सावन के लोकगीत गाती हैं, हरे रंग के वस्त्र चूड़ियां पहनती हैं और मेहंदी रचाती हैं। ऐसे में सावन और हरियाली तीज की पूरी तस्वीर ही जैसे इन पंक्तियों में उतर आती है। हरियाली तीज का त्योहार है, गुजियों की बहार है, पेड़ों पर पड़े हैं झूले, दिलों में सबके प्यार है।
1: और तीज की एक और सुंदर तस्वीर है सखियों का साथ, एक साथ सजना, झूला झूलना, गीत गाना, हंसी मजाक करना, पुराने किस्से सुनना। तीज हमें याद दिलाती है कि त्योहार सिर्फ पूजा पाठ की तारीखें नहीं होते, वे रिश्तों को फिर से जीने के बहाने भी होते हैं।
0: और इस अवसर पर दोस्तों घेवर, मालपुआ, खीर जैसे पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं और परिवार तथा सहेलियों के साथ मिल बांट कर उसका आनंद लिया जाता है।
1: तो इस हरियाली तीज पर हरे रंग को सिर्फ अपने कपड़ों में नहीं, अपने सोच में भी उतारिए। एक पौधा लगाइए, प्रकृति के लिए कुछ कीजिए और अपने रिश्तों में हो वो हरियाली बनाए रखिए, जिसमें प्रेम हो, विश्वास हो, सम्मान हो और साथ हो। क्योंकि आखिर तीज का असली उत्सव क्या है? प्रकृति हरी हो, रिश्ते हरे भरे हो, मन में उम्मीदें हरी रहे और जीवन में खुशियों की पींगे कभी ना रुके। तो आप सभी को हरियाली तीज की ढेरों शुभकामनाएं।

0: प्यारा गीत था हरे कांच की चूड़िया, और फिल्म भी थी हरे कांच की चूड़िया, गाया था आशा भोसले जी।
1: और आज का दिन 15 अगस्त की सुबह हवा में लहराता तिरंगा, और जैसे ही राष्ट्रगान का धुन बजता है कुछ पल के लिए हम सब की पहचान एक हो जाती है, क्योंकि तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं, ये हमारी आज़ादी की कहानी है, हमारे वीर जवानों का साहस है, करोड़ों भारतीयों के सपनों और उम्मीदों का प्रतीक है।
0: आज़ादी का अर्थ है अपने विचार खुलकर रखने का अधिकार, अपने सपनों को जीने का साहस, और अपनी विविधताओं के साथ एक होकर आगे बढ़ने की शक्ति। और शायद इसीलिए तिरंगे का सम्मान करना सिर्फ एक नियम नहीं, हमारी जिम्मेदारी है।
1: इसी भावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान हम सबको ये संदेश देता है कि तिरंगा केवल सरकारी भवनों पर ही नहीं, बल्कि हर घर, हर दिल और हर भारतीय की चेतना में पूरे सम्मान के साथ लहराना चाहिए। जब हर घर तिरंगे के रंगों से सजता है, तब पूरा देश एक परिवार की तरह एक सूत्र में बन जाता है।
0: और दोस्तों, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के तीन रंगों को देखिए, केसरिया साहस, त्याग और समर्पण का प्रतीक है, सफेद शांति, सत्य और ईमानदारी का संदेश देता है, हरा रंग समृद्धि, प्रकृति और जीवन की ऊर्जा का प्रतीक है, और बीच में बना अशोक चक्र हमें सिखाता है कि राष्ट्र की प्रगति कभी रुकनी नहीं चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना ही जीवन है।
1: तो इस 15 अगस्त एक छोटा सा संकल्प लें, अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराएं, हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बने, और उत्सव समाप्त होने पर भी देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाएं। और अंत में एक विशेष बात, और इस वर्ष वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का राष्ट्रीय आयोजन मनाया जा रहा है, जो लास्ट ईयर अक्टूबर में कम्प्लीट हुआ, और पूरे एक साल तक इसका सेलिब्रेशन हो रहा है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की यह अमर रचना स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान करोड़ों देशवासियों के लिए प्रेरणा, साहस और एकता का स्वर बनी। आज भी वंदे मातरम सुनते ही मन में वही गर्व, वही श्रद्धा और वही राष्ट्र प्रेम जाग उठता है।

0: वंदे मातरम ये गीत अभी आपने सुना, फिल्म थी आनंद मठ और गायिका थी लता मंगेशकर।
1: और दोस्तों, आज तिरंगे को सिर्फ देखिए मत, भारत को महसूस कीजिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक ऐसा भारत जहां सुबह असम की चाय की खुशबू से शुरू हो सकती है और शाम कर्नाटक की कॉफी की महक में घुल सकती है। कहीं पहाड़ों पर बारिश बादलों को छूती है, कहीं रेगिस्तान में हवाएं रेत पर कहानियां लिखती हैं, कहीं समुद्र की लहरें हैं, कहीं बर्फ से ढके पहाड़, और इन सब के बीच एक देश हमारा भारत। कश्मीर की कश्मीरी भाषा सुनिए, पंजाब की बोली में अपनापन महसूस कीजिए, बंगाल की मिठास सुनिए, महाराष्ट्र की मराठी, गुजरात की गुजराती, तमिलनाडु की तमिल, आसाम की असमिया। भाषाएं बदलती है लेकिन भाव वही रहता है, अपनापन।
0: और भारत की संस्कृति तो जैसे एक चलता फिरता उत्सव है, कहीं गरबा की थाप है, कहीं बिहू का उल्लास,
1: क्या
0: कहीं
1: बात
0: भांगड़ा की ऊर्जा, कहीं कथक की नजाकत, कहीं भरतनाट्यम की गंभीरता, कहीं छऊ के मुखौटे, तो
1: बिल्कुल
0: कहीं राजस्थान की कठपुतलियां।
1: बिल्कुल दीपा जी, एक तरफ कच्छ की कढ़ाई, दूसरी तरफ कश्मीर के पश्मीना, कहीं मधुबनी की चित्रकारी, कहीं वारली की कला, कहीं पट्ट चित्र, कहीं गोंद कला। सोचिए, इतनी अलग अलग कलाएं, इतने अलग अलग रंग, फिर भी सब मिलकर भारत की एक ही तस्वीर बनाते हैं। अब जरा भारत की थाली में आइए दीपा जी, आप बताइए।
0: बिल्कुल बताती हूँ। कहीं सरसों के तेल की खुशबू, कहीं नारियल और करी पत्ते की महक, कहीं बाजरे की रोटी, कहीं अप्पम, कहीं ढोकला, कहीं लिट्टी चोखा। भारत में भोजन सिर्फ स्वाद नहीं है, ये हमारी संस्कृति की स्मृति है। किसी घर में त्योहार पर गुजिया बनती हैं, कहीं पोंगल, कहीं ओणम की दावत, कहीं बिहू के पकवान, कहीं ईद की सेवैयां। त्योहार अलग हो सकती हैं, लेकिन एक दूसरे की खुशियों में शामिल होने की हमारी आदत बहुत पुरानी
1: पुरानी है। और ये विविधता हमें बांटती नहीं, हमें एक दूसरे को जानने का मौका देती है। इस 15 अगस्त पर आइए अपनी इस विविधता को सिर्फ स्वीकार नहीं, उसका उत्सव मनाएं। हम अलग अलग नदियां हैं लेकिन बहते सब एक ही देश में हैं। हम अलग अलग रंग हैं लेकिन जब साथ आते हैं तभी तिरंगा पूरा होता है।

0: अभी हम सुन रहे थे महालक्ष्मी अय्यर को, फिल्म थी फना, और लग रहा है
1: और
0: मेला
1: मेल आई हुई है जिसको लिखा है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से लिख रहे हैं। और ये लिखते हैं कि हमारी ओर से आपको और घर आंगन परिवार को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। अपने भारत वर्ष के प्रति सच्चा प्रेम रखना स्वतंत्रता का खूबसूरत अर्थ है इनके हिसाब
0: बिल्कुल,
1: से।
0: बहुत ही अच्छी बात। और दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि देश का विकास केवल सरकारों या बड़े उद्योगों की जिम्मेदारी है, लेकिन सच्चाई ये है कि विकसित भारत की शुरुआत हमारे अपने घर से, हमारे रोजमर्रा की छोटी छोटी पसंद से होती है। जब हम किसी भारतीय बुनकर की बुनी हुई साड़ी या खादी का कुर्ता पहनते हैं, तो केवल वस्त्र नहीं खरीदते बल्कि किसी परिवार की रोजी रोटी का सम्मान करते हैं।
1: और जब हमारी रसोई में हल्दी, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च और देशी मसालों की खुशबू महकती है, तब हम केवल स्वाद नहीं बल्कि भारत के लाखों किसानों के परिश्रम को अपनाते हैं। जब हम मिट्टी के बर्तन, बांस की कलाकृतियां, पीतल के दीपक, लकड़ी के खिलौने या हाथ से बने हस्तशिल्प चुनते हैं, तब हम किसी कलाकार के हुनर और सपनों को नया जीवन देते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। तो हम हर बार, आप जब भी किसी भारतीय उत्पाद को चुनते हैं, तो आप केवल एक वस्तु नहीं खरीदते बल्कि रोजगार, उद्यमिता, आत्मनिर्भरता, विकसित भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में योगदान देते हैं। तो इस स्वतंत्रता दिवस पर एक छोटा सा संकल्प लें कि जहां भी संभव हो, स्थानीय और स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देंगे और अपने भारतीय उत्पादों को इतना बेहतर और लोकप्रिय बनाएंगे कि वे देश के हर घर से लेकर दुनिया के बाजार तक अपनी पहचान बनाएं। आइए मिलकर कहें, स्वदेशी अपनाएं, समृद्धि बढ़ाएं।

0: अभी हम सुन रहे हैं महेंद्र कपूर को फिल्म उपकार में।
1: और इसी के साथ आज के विशेष स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को देते हैं यही विराम। एक बार फिर से सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और आइए हम सब मिलकर ऐसा भारत बनाएं जहां हर नागरिक जिम्मेदार हो, हर सपना सम्मान पाए और हर दिल में तिरंगे के लिए गर्व हो। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मंजुला और
0: दीपा भूषण को इजाजत।
1: नमस्कार।

0: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन।
1: घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। श्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गुंजायमान है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई शिखर सम्मेलन के आयोजन से भारत ने विश्व को अपनी शक्ति दिखाई। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 80वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि सरकार महात्मा गांधी के कार्यों और उनके दृष्टिकोण से सदैव प्रेरणा लेती रहेगी। छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता दिवस उत्साह, उल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। चेन्नई में 80वें स्वाधीनता दिवस पर मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सेंट जॉर्ज किला पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार जनता के लिए लाभकारी योजनाओं को लागू करने के लिए केंद्र के साथ सहयोग बनाए हुए है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दोहोमा ने कहा है कि राज्य संतुलित और समावेशी विकास की ओर अग्रसर है। आइजोल में स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री लाल दोहोमा ने कहा कि उनकी सरकार आत्मनिर्भर और विकसित मिजोरम बनाने तथा जनता के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कार्यरत है। त्रिपुरा में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महाराजा वीर विक्रम महाविद्यालय में विशेष देशभक्ति संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया। वंदे मातरम इन 1000 वॉयसेज नामक इस कार्यक्रम में 1300 से अधिक विद्यार्थियों, पूर्व विद्यार्थियों और शिक्षकों ने एक साथ वंदे मातरम का गायन किया। लेबनान में आज सवेरे इसराइल के हवाई हमलों में 7 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। मलबे में दबे लोगों को बचाने के प्रयास जारी हैं। लेबनान और इसराइल के बीच इस वर्ष 26 जून को बनी सहमति के अनुसार दक्षिण लेबनान से इजरायली सैनिकों को वापस जाना था। इसके बदले ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्ला गुट को हथियारों से मुक्त करने की पहल शुरू करनी थी। इंडोनेशिया के फ्लोरेस क्षेत्र के पास आज सवेरे आए 7.7 तीव्रता के भूकंप से 20 लोगों की मौत हो गई। भूकंप से कई इमारतें भी ढह गईं। भूकंप के कारण 6 लोग घायल हुए हैं और 2 अब लापता हैं। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। गाले में श्रीलंका के साथ 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने चायकाल तक 1 विकेट पर 101 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। फिलहाल वर्षा के कारण खेल रुका हुआ है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. The nation celebrates its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi hoisted the national flag at the Red Fort in Delhi and addressed the nation. The celebrations this year also commemorates Yuva Shakti, acknowledging the contribution of young India in building a Viksit Bharat by 2047. Addressing the nation, Prime Minister Modi said, "This is the first time since independence that Vande Mataram has resonated from the ramparts of Red Fort."
1: आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है? पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए, उनके दुख दर्द को हम भलीभांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं।
0: Mr. Modi unveiled a 7-point reform framework or Saptadhara aimed at accelerating India's journey towards becoming a Viksit Bharat by 2047. He said work that could not be completed in the past 5 to 7 decades must be achieved within the next 5 to 7 years. Prime Minister Modi announced to provide free online coaching for poor and middle-class families for various public examinations. Prime Minister Modi said since 2014, India has entered into free trade agreements with nearly 40 countries, creating enormous opportunities for Indian businesses and exporters.
1: 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा FTA एग्रीमेंट हो रहा। ये जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं, ये बहुत बड़ा अवसर है। मैं मेरे MSMEs को कहना चाहूंगा कि हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है। दुनिया में हमें पहुंचना है। भारत के उत्पाद की हर चीज विश्व के बाजार में पहुंचे, चाहे हमारा टेक्सटाइल हो, हमारी मशीनरी हो, दवाइयां हो, हमने मौका छोड़ना नहीं है।
0: द प्राइम मिनिस्टर हैज अर्ज्ड ऑल पार्टीज टू सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वुमेन्स रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज विदाउट मेकिंग इट अ पॉलिटिकल फाइट। मिस्टर मोदी आस्क्ड देम टू स्टेप फॉरवर्ड टू ऑनर वुमेन एंड इंश्योर दैट कंट्रीज वुमेन सिक्योर 33% representation in the legislative assemblies and the Lok Sabha as soon as possible. In Kashmir, the Independence Day was celebrated across all 10 districts with patriotic fervor and enthusiasm. The main function was held at iconic Bakshi Stadium, where Chief Minister Umar Abdullah unfurled the national flag and took the salute at the ceremonial parade. Addressing the gathering, the Chief Minister said the situation in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir has made it clear that the decision taken by the ancestors of this part of Jammu and Kashmir to be with India was the correct one. West Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari has called upon the people of the state to work together to build a more developed, prosperous and brighter West Bengal. In his Independence Day address through Akashwani Kolkata this morning, Mr. Adhikari extended his greetings to the people of the state on the 80th anniversary of independence. Tripura Governor Indira Sena Reddy Nallu paid heartfelt tribute to the freedom fighters on Independence Day, recalling their supreme sacrifices and urging people to draw inspiration from their courage, patriotism and dedication. President Draupadi Murmu today paid homage to the brave hearts at the National War Memorial on the occasion of 80th Independence Day. The President laid a wreath at the memorial and paid tributes to the martyrs. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have extended greetings to the countrymen on the occasion of Parsi New Year, Navroz. In a social media post, Mr. Radhakrishnan prayed that this new year brings peace, prosperity and happiness to every family and inspire all to strengthen the bonds of unity, harmony and brotherhood in the nation. In a social media post, Mr. Modi said that the Parsi community's remarkable contribution across sectors has enriched the nation in countless ways. Prime Minister Narendra Modi has remembered Sri Aurobindo on his birth anniversary today. In a social media post, Mr. Modi called Sri Aurobindo a towering philosopher, nationalist, poet and thinker. In men's cricket, India were 101 for 1 against hosts Sri Lanka in the first test of the two-match series at Galle International Cricket Stadium. Earlier, India won the toss and elected to bat. And that is the end of this news bulletin.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, जागो ग्राहक जागो। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी निधि वर्मा और लेकर आई हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, 15 अगस्त का दिन है और आसमान में तिरंगा है, दिलों में गर्व है और आज हम आजादी का जश्न मना रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ। वो फिल्म जिसने हमें सरहद का मतलब समझाया, जिसने सिखाया कि वर्दी के नीचे भी एक दिल धड़कता है, जिसके हर डायलॉग में देशभक्ति और हर फ्रेम में बलिदान है। फिल्म का नाम है बॉर्डर। मैं हूं आपकी रेडियो सखी निधि और अगले कुछ मिनटों तक हम लोंगेवाला की उस रात में जाएंगे जहां 120 जवानों ने 2000 के हमले को रोक दिया था, जहां संदेश आते हैं सिर्फ एक गाना नहीं, एक एहसास बन गया था। तो रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा तेज कर लीजिए और आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए उस मिट्टी को, उस वर्दी को और उस जज्बे को।

0: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: बदलो बदलो, आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की फिल्म है बॉर्डर। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी निधि। बात है 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की। लोंगेवाला की प्रसिद्ध लड़ाई पर आधारित यह एक ऐतिहासिक फिल्म है। इसमें सनी देओल ने मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की भूमिका निभाई है, जिन्होंने महज 120 सैनिकों के साथ पाकिस्तानी सेना के 2000 से अधिक सैनिकों और टैंकों का रात भर डटकर मुकाबला किया था। फिल्म की मुख्य कहानी युद्ध की पृष्ठभूमि, जिस

1971 में राजस्थान के लोंगेवाला रेगिस्तान में भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट की एक छोटी टुकड़ी तैनात होती है। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। मेजर कुलदीप को सूचना मिलती है कि भारी टैंकों और हथियारों के साथ पाकिस्तानी सेना का एक बड़ा हमला होने वाला है। भेस छोड़कर पीछे हटने के बजाय मेजर कुलदीप सिंह वहीं रहकर दुश्मन का सामना करने का कड़ा फैसला लेते हैं और अपने साथियों के साथ उनमें जोश भरते हैं। अंधेरी रात में दुश्मन के टैंक भारतीय चौकियों पर हमला करते हैं। हमारे जवान अदम्य साहस दिखाते हुए खंडकों से लड़ते हैं और टैंक रोधी हथियारों से दुश्मन को रोकते हैं। वायुसेना की मदद सुबह होने पर भारतीय वायुसेना के हंटर्स विमान आ जाते हैं और बचे हुए पाकिस्तानी टैंकों को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं।

एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं फिल्म बॉर्डर की, जो कि 1971 के भारत पाकिस्तान लोंगेवाला युद्ध पर आधारित है। फिल्म में सैनिकों के व्यक्तिगत जीवन, उनके परिवारों के प्रेम और देश के प्रति उनके कर्तव्यों को बहुत ही भावुकता से दिखाया गया है। इस फिल्म में ये बताया गया है कि सीमित साधनों के बावजूद भारतीय सेना की यह टुकड़ी दुश्मन के दांत खट्टे कर देती है और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करती है।

MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। MRP यानी अधिकतम

0: उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

दीजिए श्रोता, बॉर्डर की इस मिट्टी की खुशबू के साथ आज का ये खास 15 अगस्त का सफर अब यहीं खत्म होता है। ये वतन हमारा है, हम इसके रखवाले। बॉर्डर ने याद दिलाया कि आज़ादी आसान नहीं थी और इसे संभालना उससे भी बड़ी जिम्मेदारी थी। तो चलते चलते बस इतना, सरहद पर जो जवान खड़े हैं उनके नाम एक सलाम, और हम वादा करें कि इस तिरंगे की शान कभी कम नहीं होने देंगे। तो मैं रेडियो सखी निधि वर्मा आपसे लेती हूँ इजाजत। आप सभी को 15 अगस्त की दिल से शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार, जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब आप पंजाबी में समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चोणवीआं खबरां। देश अज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहासिक लाल किले की फसील तो राष्ट्रीय झंडा फहराया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के टीचे को हासिल करने लिए सानू अपने कार्य सभ्याचार सोच और गति को बदलना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अज 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली में राष्ट्रीय जंग यादगार से बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि भेंट की है। इंडोनेशिया में अज सवेरे आए 7.7 तीव्रता के भूचाल में घट्टो घट 20 लोगों की मौत हो गई है। क्रिकेट में भारत और श्रीलंका विचकार दो मैचों की टेस्ट लड़ी का पहला मैच अज गोल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम खेलिया जा रहा है। देश आज अपना 80वां आजादी दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली च इतिहासिक लाल किले की फसील तो राष्ट्रीय झंडा फहराया। देशवासियों को आजादी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हर दिल में वंदे मातरम गूंज रहा है। तिरंगा हर घर की शान वधा रहा है और देश नवे संकल्पों को अपनाते हुए उत्साह और जोश नाल अगे वध रहा है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन्होंने महान सपूतों नूं याद कर रहा है जिन्होंने अपनी कुर्बानी ते त्याग नाल देश नूं आजाद कराया। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 सालों में देश के करोड़ों नागरिकों ने दृढ़ता ते समर्पण नाल देश नूं नवीं ऊंचाइयों ते ले जाण लई यतन कीते ने। इसलिए देश के 25 करोड़ नागरिक गरीबी की दलदल विचों बाहर आए ने। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 सालों में देश ने नवी रफ्तार फड़ी है और एक नवी गति नाल अगे वध रहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश ने हर खेत्र में तेजी नाल तरक्की की है। इलेक्ट्रॉनिक्स तो लैके मोबाइल निर्माण तक हर खेत्र में उत्पादन कई गुणा वध्या है।
1: पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट यूजर करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजेक्शन 100 गुना बढ़े।
0: श्री मोदी ने कहा कि तरक्की लिए आत्म विश्वास, आत्म सम्मान ते आत्म निर्भरता जरूरी ने। भारत हुण दूजे देशां ते निर्भर नहीं रह सकता। श्री मोदी ने कहा कि आजादी तो बाद देश विच सैमी कंडक्टर लई कोई वड्डी योजना नहीं सी। उन्होंने कहा कि अज दे डिजिटल संसार विच असीं चिप्स की महत्ता नूं समझते हां, इसलिए भारत ने 3 सैमी कंडक्टर प्लांट शुरू कीते ने। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत दे टीचे नूं हासिल करने लई सानू अपने कार्य सभ्याचार सोच ते गति नूं बदलना होगा। उन्होंने इस टीचे नूं हासिल करने लई नौजवानां, मावां भैणां, किसानां ते मजदूरां विच अपना पूरा विश्वास प्रगट किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश सुधार एक्सप्रैस ते चल रहा है अते अगले पद्धर दे सुधारां ते भी अगे वधांगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश कोल शक्ति ते संभावना है अते इसलिए सानू विश्व लीडरशिप हासिल करने लई यतनशील होना चाहिए है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार मध्य वर्ग के परिवारों लई मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग का प्रबंध कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो खेले वो खिले दे मंत्र तहत भारत खेडां दी दुनिया विच अपनी विशेष पहचान बना रहा है।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों नशा मुक्त भारत लिए 100 हफ्तों की मुहिम में शामिल होने की अपील की। श्री मोदी ने कहा कि नक्सलवाद ने 4 दहाकों तो भारत को जकड़िया होया सी। नक्सलवाद का मुकाबला करने 3,500 तो वध सैनिकों अपनी जाना कुर्बान करनिया पईआं। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद तो मुक्त कराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हथियारबंद नक्सली चले गए ने पर दिमागी नक्सली अजे भी अपनी चाल चल रहे ने।
1: दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सानू स्वैमान नाल अगे वधना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहेब अंबेडकर, पंडित जवाहर लाल नहरू, सुखदेव ते राजगुरू वालों देखे गए सुपने नू पूरा करना होगा। अपने भाषण के अंत विच प्रधानमंत्री ने सारे नागरिकों नू राष्ट्रीय हित नू ध्यान विच रख के अगे वधन का संकल्प लैण का सद्दा दिता। ये खबर तुसीं आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRNU जलंधर। साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर। यूट्यूब से साडा चैनल है @AIR जलंधर। पंजाब विच भी सुतंत्रता दिवस बड़े उत्साह नाल मनाया जा रहा है। मुख समागम सरहदी जिले फिरोजपुर विच होया, जिथे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राष्ट्रीय झंडा फहराया ते परेड तो सलामी ली। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम ते राष्ट्रगान गाया गया। उन्होंने BSF, पंजाब पुलिस, पंजाब आर्म्ड पुलिस, होमगार्ड्स अते NCC कैडटां दे सुरक्षा मुलाजमां ते अधारित परेड दा निरीक्षण कीता। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री श्री मान ने फिरोजपुर के हुसैनीवाला विखे शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव दियां समाधियां ते जाके शहीदां नूं श्रद्धांजलि भेंट कीती। राज अते देश दे लोकां नूं वधाई दिंदिआं श्री मान ने उन्हां सारे शहीदां अते सैनिकां नूं याद कीता जिन्हां ने आजादी दे संघर्ष दौरान अते देश दियां सरहदां दी राखी करदिआं अपनियां जानां कुर्बान कीतियां सी।
3: अज असीं 80वां आजादी दिहाड़ा मना रहे हां। इस मौके ते मैं देशवासियां नूं खास करके पंजाबियां नूं दिल दियां गहराइयां चों वधाई दिंदा। सब तो पहला मैं शहीदां दी महान धरती फिरोजपुर नूं श्रद्धा ते सत्कार भेंट करदा। आजादी दे संघर्ष दे इतिहास विच फिरोजपुर दा नाम सुनहरी अखरां च उकरिया होया। इस मौके मैं सारागढ़ी जंग दे 21 बहादुर सिख सैनिकां नूं भी याद करदा जिन्हां दी याद विच इत्थे गुरुद्वारा सारागढ़ी साहिब सुशोभित है। सतलुज दे कंडे हुसैनीवाला विखे शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बुकटेश्वर दत्त ते माता विद्यावती जी दियां समाधियां ने उत्थे उन्हां दा अंतम संस्कार ते अस्थियां सुशोभित ने उत्थे नतमस्तक होके आए हैं।
2: पंजाब दे राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ विच राष्ट्रीय झंडा फहराया। अमृतसर विच अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते मशहूर अटारी वागा सांझी चेक पोस्ट ते भी सरहदी सुरक्षा बल वालों सुतंत्रता दिवस मनाया गया। BSF दे डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल SS चंदेल ने राष्ट्रीय झंडा फहराया अते जवानां तो सलामी लई। उन्हां कहा कि ए बल भारत दियां सरहदां दी राखी लई किसे भी स्थिति दा सामना करन वास्ते हमेशा तैयार है। राजेश बाली, आकाशवाणी खबरां, जलंधर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अज 80वें आजादी दिवस के मौके पर नवी दिल्ली च राष्ट्रीय यंग यादगार से बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि भेंट की। इस मौके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ NS राज सुब्रमणी, फौज मुखी जनरल धीरज सेठ, समुद्री फौज मुखी एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन, हवाई फौज मुखी एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, रक्षा सकत्र राजेश कुमार भी मौजूद सन। इंडोनेशिया के फ्लोरेंस इलाके विच अज सवेरे आए 7.7 तीव्रता के भूचाल विच घट्टो घट 20 लोगों की मौत हो गई है। भूचाल कारण कई इमारतां ढह गईआं अते सारे पासे दहशत फैल गई। भूचाल कारण 6 लोग जख्मी भी होए ने ते 2 लापता ने। बिजली बंद होण ते संचार च विघन कारण बचाव ते नुकसान दे मुलांकण विच रुकावट पै रही है। क्रिकेट विच भारत ते श्रीलंका विचकार 2 मैचां दी टेस्ट लड़ी दा पहला मैच अज गोल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम विच खेडिया जा रहा है। भारत ने टॉस जित के पहला बल्लेबाजी करदा 1 विकेट दे नुकसान ते 101 दौड़ां बना लईआं ने। इस समय मीह कारण खेड रुकी हुई है। अंत विच चोणवीआं खबरां एक बार फिर सुन लो। देश आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहासक लाल किले की फसील तो राष्ट्रीय झंडा फहराया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के टीचे हासिल करने लिए सानू अपने कार्य सभ्याचार सोच और गति बदलना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अज 80वीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली में राष्ट्रीय जंग यादगार से बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि भेंट की। इंडोनेशिया में अज सवेरे आए 7.7 तीव्रता के भूचाल में घट्टो घट 20 लोगों की मौत हो गई है। क्रिकेट में भारत और श्रीलंका विचकार दो मैचों की टेस्ट लड़ी का पहला मैच अज गौल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम खेडिया जा रहा है। इस खबर का बुलेटिन खत्म होता है। साडा अगला प्रदेशक खबर का बुलेटिन शामी 6:20 बजे होगा। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ। मैं हबीब रहमान। मुल्क आज अपना 80वां यौम आजादी जोशो खरोश के साथ मना रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले पर कौमी परचम फहराकर मुल्क की यौम आजादी तकरीबात की क्यादत की। वंदे मातरम पहली मरतबा लाल किले में गाया गया। वजीर आजम ने अपने खिताब में ऐलान किया कि गरीब और मुतवस्सित तबके के कुंबों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक साल में 1 करोड़ नौजवानों को मस्नूई ज़हानत AI की तरबियत फराहम की जाएगी। वजीर आजम ने कहा है कि अहम मादनियात के शोबे में भारत एक काबिल एतमाद आलमी शराकत दार के तौर पर उभर रहा है और कई ममालिक के साथ इस सिलसिले में समझौते किए जा रहे हैं। जनाब मोदी ने बाज़ ममालिक की जानिब से अपनी बालादस्ती जाहिर करने के लिए वसाइल को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिशों पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने इस चैलेंज का सामना करने के लिए भारत की आत्मनिर्भरता के जज्बे को सराहा। बैरून मुल्क मौजूद भारतीय सिफारती मिशनों ने भी हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ यौम आज़ादी मनाया और इंडोनेशिया के मशरकी साहिली इलाके में 7.7 शिद्दत का जलजला आने से कम अज कम 20 अफराद हलाक हो गए। अब खबरें तफसील से। मुल्क आज 80वां यौम आज़ादी मना रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में तारीखी लाल किले से यौम आज़ादी की तकरीबात की क़यादत की। वहां पहुंचने पर पहली बार कौमी तराना वंदे मातरम बजाया गया, कौमी परचम लहराया गया, 21 तोपों की सलामी दी गई और फजाइया के MI-17 हेलीकॉप्टरों ने फूलों की पत्तियां बरसाईं। इस साल की तकरीबात में युवा शक्ति की अहमियत को तस्लीम और उजागर किया गया, जो 2047 में विकसित भारत बनाने में एक अहम किरदार अदा करेगी। लाल किले की फसील से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने वंदे मातरम गाए जाने को एक तारीखी लम्हा करार दिया। उन्होंने कहा है कि मुल्क नए जोशो खरोश और जज्बे के साथ तरक्की की राह पर गामजन है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: वजीर आजम ने मोदी की आमद के बाद फौज की तीनों शाखों और दिल्ली पुलिस के मुश्तरक गार्ड्स ने उन्हें सलामी दी। कौमी परचम फहराने के बाद भारतीय फजाइया के 2 MI-17 हेलीकॉप्टरों ने तकरीब के मकाम पर फूल बसाए। इनमें से एक हेलीकॉप्टर ने कौमी परचम जबकि दूसरे ने वंदे मातरम की अक्कासी करने वाला परचम उठा रखा था। वजीर आजम की तकरीर के अख्तिताम पर NCC कैडेट्स और माई भारत के रजाकारों ने कौमी गीत वंदे मातरम गाया, जिसके बाद कौमी तराना पेश किया गया। तकरीबात में बर्री फौज, बहरिया और फदाइया के कुल 2500 लड़के और लड़कियों पर मुश्तमिल कैडेट्स और माई भारत के रजाकारों ने शिरकत की। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 5000 खसूसी मेहमानों ने यौम आज़ादी की तकरीबात का मुशाहदा किया। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुख्तलिफ पब्लिक इम्तहानात के लिए मुतवस्सित तबके के कुंबों और गरीब उम्मीदवारों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की सहूलत फराहम करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि यह काबिल और चोटी के असातिज़ा की रहनुमाई में मियारी तालीम की रसाई के लिए एक इनकलाबी कदम है। उन्होंने कहा है कि इस तरह कोचिंग में खर्च होने वाला मुतवस्सित तबके के कुंबों का करोड़ों रुपया बचेगा।
1: विभिन्न परीक्षाओं के फ्री

0: ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: वजीर आजम ने कहा है कि सरकार ने फैसला किया है कि अगले एक साल के दौरान 1 करोड़ नौजवानों को AI हुनरमंदी की तरबियत दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि इस तरह ये नौजवान AI के आलमी शोबे में कायदाना किरदार अदा कर सकेंगे। जनाब मोदी ने कहा है कि मुल्क को लागत, मेयार और हुनर पर तवज्जो मरकूज करनी होगी। वजीर आजम ने कहा है कि अहम मैदनियात के शोबे में भारत एक काबिल एतमाद आलमी शराकत दार के तौर पर उभर रहा है और कई ममालिक के साथ इस सिलसिले में समझौते किए जा रहे हैं। जनाब मोदी ने बाज़ ममालिक की जानिब से अपनी बालादस्ती जाहिर करने के लिए वसाइल को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिशों पर भी तश्वीश का इजहार किया। उन्होंने इस चैलेंज का सामना करने के लिए भारत की आत्मनिर्भरता के जज्बे को सराहा। वजीर आजम मोदी ने कहा है कि गुज़िश्ता 12 साल के दौरान मुल्क के करोड़ों अफराद ने अपने अज़्म मुसम्मम और लगन के साथ मुल्क को तरक्की की नई बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। मुल्क के मुख्तलिफ शोबों में हासिल की गई तरक्की का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि पिछले 12 साल के दौरान दिफाई पैदावार में लगभग 4 गुना, खादी और गांव की सनतों की पैदावार में लगभग 5 गुना, बिजली के साजो सामान की तैयारी में तकरीबन 7 गुना, रेलवे के जदीद डिब्बे बनाने की तैयारी में 21 गुना और मोबाइल फोन बनाने में तकरीबन 33 गुना का इजाफा हुआ।
0: हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए। हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया। हजारों की संख्या में कंप्लायंसेज खत्म किए, सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम मोदी ने कहा है कि भारत ने 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क का मकसद हासिल करने के लिए पेशकदमी करते हुए ऐसे बहुत से बहरानों पर कामयाबी से काबू पाया है जिनकी माजी में कोई नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने इस सिलसिले में COVID-19 की वबा, यूक्रेन और मगरबी एशिया के तनाज़े का जिक्र किया। वजीर आजम ने कहा है कि इस वक्त हर मुल्क ने अपने मफादात की तकमील और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किया, लेकिन बदकिस्मती से बहरान की इस घड़ी में कुछ मुल्कों ने पेट्रोल, डीजल और कीमियाबी खाद को हथियारों के जरिए के तौर पर इस्तेमाल किया।
0: दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है। रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चीप, इतना ही नहीं भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। और ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भरते मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कैसे कर। और हमारी तैयारियां निरंतर बढ़ती जा रही है।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह राजघाट पर महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत महात्मा गांधी के काम और नजरियात से हमेशा तहरीक हासिल करती रहेगी। बैरूनी मुल्कों में वाक़ भारत के सफारतखानों और कौंसिल खानों से भी इस मौके पर परचम लहराने, सकाफती प्रोग्रामों और दूसरे इज्तमाही प्रोग्रामों की खबरें महसूल हो रही हैं। सिंगापुर, चीन और हांगकांग में हज़ारों भारतीय बाशिंदे और उनके अरकान ख़ानदान योम आज़ादी की तकरीब में शामिल हुए। उन्होंने खित्ते के आवाम के साथ भारत के मजबूत ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया। सिंगापुर में भारत के हाई कमिश्नर शिल्प कैम्बुले ने तिरंगा लहराया। इस मौके पर 2500 से ज्यादा अफराद मौजूद थे। इस तकरीब के दौरान हुब्बुल वतनी के नगमे, कौमी तराना और वंदे मातरम पेश किया गया। इंडोनेशिया के फ्लोरेस इलाके के करीब आज सुबह 7.7 शिद्दत का जलजला आया जिसके नतीजे में कम से कम 20 अफराद हलाक हो गए। जलजले के 22 इमारतें मुनहदिम हो गईं, मिट्टी के तोदे खिसकने के वाकयात पेश आए और बड़े पैमाने पर खौफ व हरास फैल गया। 6 अफराद के जख्मी होने की भी इत्तला है जबकि 2 लोग लापता हैं। जलजले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी की गई है जिसे सतह समंदर में कोई खास तब्दीली नजर न आने के बाद वापस ले लिया गया। बिजली की सप्लाई मुतासिर होने और मुआसलाती निज़ाम में खलल की वजह से बचाव और इमदादी कामों में दुश्वारी पेश आ रही है। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मुल्क आज अपना 80वां योम आज़ादी जोश खरोश के साथ मना रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले पर कौमी परचम फहराकर मुल्क की योम आज़ादी तकरीबात की क़यादत की। वंदे मातरम पहली मरतबा लाल किले में गाया गया। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में ऐलान किया कि गरीब और मुतवस्सित तबके के

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। लाल किला पर पहली बार वंदे मातरम का गायन। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार के रूप में उभर रहा है। कई देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कुछ देशों द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग कर अपना वर्चस्व दिखाने के प्रयासों पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा, भारत आत्मनिर्भरता की भावना से इस चुनौती का सामना कर रहा है। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इंडोनेशिया के पूर्वी तट पर आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में 20 लोगों की मौत और गाले में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत ने 1 विकेट पर 106 रन बनाए। राष्ट्र आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। श्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गुंजायमान हो रही है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि AI शिखर सम्मेलन के आयोजन से भारत ने विश्व को अपनी ताकत दिखाई है। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति AI के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में करोड़ों देशवासियों के संकल्प, समर्पण और हर संभव प्रयास की बदौलत देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने कहा कि पहले भारत 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों में गिना जाता था, लेकिन अब भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है।
1: इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल 5 में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कई बार देश केवल संसाधन की कमी के कारण नहीं बल्कि सीमित सोच के कारण भी पिछड़ता है। उन्होंने कहा कि भारत को कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ा है और ये भी सीमित सोच का परिणाम था। श्री मोदी ने कहा कि जिन अपतटीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के काम की अनुमति नहीं थी, सरकार ने उनमें से 99% को खोल दिया, जहां अब समुद्र के भीतर नए संसाधनों और भंडारों की खोज की जा रही है।
1: हमने समुद्री तट पे समुद्र के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र था, हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया। हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में

0: प्रवृत्त है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 7-8 वर्ष में लगभग 8 सेमीकंडक्टर संयंत्र काम शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि इस समय देश में 3 संयंत्रों में सेमीकंडक्टर का निर्माण हो रहा है और इस क्षेत्र में भारत की प्रगति तकनीकी आत्मनिर्भरता को दर्शाती है।
0: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके।
1: स्वाधीनता दिवस समारोह पर हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद अंतर सेवा और दिल्ली पुलिस के संयुक्त गार्ड ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं पहली बार लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किया गया। ध्वजारोहण के बाद भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर फूलों की बारिश की। इनमें से एक हेलीकॉप्टर पर राष्ट्रीय ध्वज था और दूसरे पर वंदे मातरम लिखा हुआ ध्वज था। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद NCC कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने वंदे मातरम का गायन किया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। सेना, नौसेना और वायुसेना के कुल 2500 कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने समारोह में हिस्सा लिया। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों ने लाल किले पर आयोजित समारोह में भाग लिया। इनमें PM विश्वकर्मा योजना के कारीगर, PM मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, PM स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले, भारत टैक्सी के चालक, स्वच्छ भारत मिशन के सफाई कर्मचारी और राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम से जुड़े युवा शामिल थे। लाल किले पर आयोजित समारोह का समापन आसमान में तिरंगे गुब्बारे छोड़ने के साथ हुआ। अनुपम और आनंद के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। श्री मोदी ने कहा कि सरकार महात्मा गांधी के कार्यों और उनके दृष्टिकोण से सदैव प्रेरणा लेती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक की प्रगति के लिए काम करती रहेगी, इससे देश प्रगतिशील और समृद्ध बनेगा। नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में भी 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने राष्ट्र ध्वज फहराया और हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह दिन उन शहीदों को याद करने का दिन है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की जनता से राष्ट्र के विकास में योगदान देने और राष्ट्र को कमजोर करने वाली शक्तियों से दूर रहने की अपील की है। पश्चिम बंगाल में मातृभूमि के प्रति गहरी श्रद्धा के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है।
3: कोलकाता में मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित बंगाल विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे सकता है। रेड रोड परेड में राज्य सरकार की कई झांकियां प्रदर्शित की गईं, जिनमें PM सूर्य घर योजना और विकसित भारत जी राम जी योजना जैसी विभिन्न योजनाओं को दिखाया गया। राज्यपाल RN रवि ने बैरकपुर के गांधी घाट पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया और महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। कोलकाता से आकाशवाणी समाचार के लिए कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ मैं कुमार राधारमण।
1: जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्य समारोह श्रीनगर के प्रसिद्ध बख्शी स्टेडियम में आयोजित किया गया।
4: स्वतंत्रता दिवस के हवाले से सबसे बड़ा समारोह श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में हुआ, जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आजकल के हालात अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि आजादी के 80 साल बाद जम्मू कश्मीर का भारत का हिस्सा बनने का फैसला सही साबित हुआ है। इधर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी श्रीनगर

0: के लोक भवन में तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों को बधाई दी। इस बीच जम्मू कश्मीर के सभी जिला मुख्यालयों में भी ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित किए गए। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: छत्तीसगढ़ में 80वां स्वाधीनता दिवस उत्साह, उल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली।
2: रायपुर में आयोजित स्वाधीनता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसिक नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प से नक्सलवाद के विरुद्ध ऐतिहासिक सफलता मिली है। माओवाद से मुक्त बस्तर में आज तिरंगा यात्राओं के माध्यम से स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा है। जो क्षेत्र कभी हिंसा और भय से प्रभावित थे, वहाँ आज शांति, विश्वास और विकास की नई सुबह हुई है। उन्होंने कहा कि बस्तर की सर्वांगीण प्रगति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है। कभी माओवाद से प्रभावित रहे और अब नक्सलवाद से मुक्त हो चुके राज्य के बस्तर संभाग के करीब 90 गांव ऐसे हैं जहां आजादी के बाद आज पहली बार स्वाधीनता दिवस पर तिरंगा फहराया गया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: केरलम में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रध्वज फहराया। इसके बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा की।
3: तिरुवनंतपुरम में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने परेड की सलामी ली। विभिन्न सशस्त्र बलों की टुकड़ियों के साथ माउंटेड पुलिस, एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड्स तथा स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स ने इसमें हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस संदेश देने के बाद पुलिस, अग्निशमन और बचाव सेवा तथा कारागार विभाग के कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक प्रदान किए। कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान समारोह में वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने परेड की सलामी ली। समारोह के दौरान नौसेना के जहाजों को झंडों से सजाया गया। इडुक्की में बांधो और नौका केंद्रों पर स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किए गए, जिनमें पर्यटकों ने भी भाग लिया। कोवलम बीच के निकट एक निर्जन द्वीप पर तटरक्षक बल ने भी स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया। स्मिथी एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: वैश्विक नेताओं ने भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत संबंधों का उल्लेख किया है। इजराइल के राजदूत रुवेन अजार, अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कौसिना, श्रीलंका के उच्चायुक्त महेशिनी कोलोन, नेपाल दूतावास, फ्रांस दूतावास, ऑस्ट्रेलिया के उप उच्चायुक्त और कनाडा के उच्चायुक्त ने भी भारत की विरासत, विविधता, आर्थिक क्षमता और बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों पर जोर देते हुए शुभकामनाएं दी। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह और मालदीव नेशनल पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद नाजिम ने भारत के विकास और मालदीव के साथ घनिष्ठ साझेदारी की प्रशंसा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इंडोनेशिया के फ्लोरेंस क्षेत्र के पास आज सवेरे आए 7.7 तीव्रता के भूकंप से 20 लोगों की मौत हो गई। भूकंप से कई इमारतें ढह गईं। भूकंप के कारण 6 लोग घायल हुए हैं और 2 लापता हैं। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। लेबनान में आज सवेरे इसराइल के हवाई हमले में 7 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। मलबे में दबे लोगों को बचाने के प्रयास जारी हैं। लेबनान और इसराइल के बीच इस वर्ष 26 जून को बनी सहमति के अनुसार दक्षिण लेबनान से इजरायली सैनिकों को वापस जाना था। इसके बदले ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्ला गुट को हथियारों से मुक्त करने की पहल की जानी थी। गाले में श्रीलंका के साथ 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 1 विकेट पर 118 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। लाल किला पर पहली बार वंदे मातरम का गायन। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार के रूप में उभर रहा है। श्री मोदी ने कुछ देशों द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग कर अपना वर्चस्व दिखाने के प्रयासों पर निराशा व्यक्त की। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इंडोनेशिया के पूर्वी तट पर आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में 20 लोगों की मौत और गाले में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत ने एक विकेट पर 118 रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर दिन के 2:30 हो रहे हैं और ये वक्त है प्रोग्राम एक ही कलाकार का। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। श्रोताओं, 15 अगस्त 1947 वो ऐतिहासिक तारीख है जब भारत ने आज़ादी की सांस ली थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी ऐतिहासिक दिन पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के छोटे से कस्बे रानाघाट में एक छोटी सी बच्ची का जन्म हुआ था, जिसकी गजरारी आंखों और सादगी भरी मुस्कान ने आगे चलकर पूरे हिंदुस्तान के दिलों पर राज किया।

जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की सर्वकालिक महान और भावुक अदाकारा राखी गुलजार की। आकाशवाणी परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस पर इनको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, राखी जी एक साधारण बंगाली परिवार में पैदा हुई। पिता जूतों का बिजनेस करते थे। विभाजन से पहले परिवार पूर्वी बंगाल में रहता था, लेकिन बाद में वे रानाघाट आ गए। राखी का बचपन साधारण लेकिन संघर्ष भरा था। ये पढ़ने लिखने में अच्छी थी, लेकिन जिंदगी ने इनके लिए कुछ और ही रास्ता चुना था। परिवार की इच्छा से महज 16 साल की उम्र में इनकी शादी एक पत्रकार और बंगाली फिल्मकार अजय विश्वास से हुई, लेकिन शादी के दो साल बाद ही ये दोनों अलग हो गए। मुश्किल वक्त के बावजूद राखी जी ने हिम्मत नहीं हारी। ये मुंबई आई और फिल्मों की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया। उस समय इंडस्ट्री में ना कोई इनका कोई रिश्तेदार था, ना कोई जान पहचान का सहारा। ये पूरी तरह अकेली थी, लेकिन इनकी सुंदरता, गंभीर अंदाज और बंगाली संस्कृति की छाप ने लोगों का ध्यान इनकी तरफ खींचा। जिंदगी ने उस कठिन मोड़ पर जहां लोग हिम्मत हार जाते हैं, वहां राखी गुलजार जी ने अपनी आंखों में एक नया सपना सजाया। कैसे वो सपना साकार हुआ, ये हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए फिल्म शर्मिली का ये प्यारा सा गीत।

वेलकम बैक दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रेस चैनल से एक ही कलाकार कार्यक्रम। और आज की जो हमारी कलाकार हैं वो है राखी गुलजार, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। तो श्रोताओं, आज हम बात कर रहे थे एक्ट्रेस राखी जी की जिंदगी से जुड़े उन अनसुने किस्सों की। इनकी फिल्मी यात्रा की शुरुआत बंगाली सिनेमा से हुई। 1967 में इन्होंने बंगाली फिल्म मधुभरन से अपने अभिनय की शुरुआत की। बंगाली सिनेमा में इनकी सादगी और प्रतिभा की तारीफ हुई, लेकिन राजश्री प्रोडक्शन की नज़र इस बंगाली सुंदरी पर पड़ी और राखी गुलजार को एक्ट्रेस धर्मेंद्र के अपोजिट हिंदी फिल्म जीवन मृत्यु में लीडिंग एक्ट्रेस के रूप में कास्ट किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इस एक ही फिल्म ने राखी को रातों रात स्टार बना दिया। इसके ठीक बाद फिल्म शर्मीली, जिसमें राखी गुलजार जी ने डबल रोल किया था कंचन और कामिनी की शानदार भूमिका निभाई। शशि कपूर के साथ इनकी जोड़ी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। फिल्म लाल पत्थर, पारस, आंखों आंखों में और जोशीला जैसी फिल्मों में भी राखी की अदाकारी को पसंद की गई। यश चोपड़ा जी की फिल्म दाग, अ पोएम ऑफ लव में राखी जी की एक्टिंग ने सभी को चौंका दिया। फिल्म के लिए इन्हें इनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। पर दोस्तों, राखी जी का अभी गोल्डन पीरियड बाकी था, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल सुनिए इनकी एक और खूबसूरत फिल्म से एक और खूबसूरत सा गीत।

जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ही कलाकार में, राखी गुलजार जी की। श्रोताओं, 70 के दशक में राखी जी का जो करियर था वो टॉप पर था। फिल्म तपस्या में इनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। फिर यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी रिलीज हुई। इस फिल्म में राखी जी की भूमिका इतनी दमदार थी कि आज भी लोग उसे याद करते हैं। आगे मुकद्दर का सिकंदर और शक्ति फिल्म में भी इन्होंने यादगार भूमिका निभाई। दिलचस्प बात यह है कि शक्ति फिल्म में इन्होंने अमिताभ बच्चन जी की माँ की भूमिका निभाई थी। इसके बाद ये फिल्म त्रिशूल, जुर्माना और बसेरा जैसी फिल्मों में भी छाई रही। इनकी खासियत ये थी कि ये कम बातें बोलती थी लेकिन आंखों से बहुत कुछ कह देती थी। राखी जी ने कमर्शियल और कलात्मक दोनों तरह की फिल्मों में सफलता के झंडे गाड़े। तो चलिए इसी बात पर सुनते हैं फिल्म कभी कभी का ये अमर गीत। इसके बाद राखी जी की निजी जिंदगी और करियर के दूसरे दौर की बात करेंगे। फिलहाल आनंद लीजिए इस गीत का।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज की जो हमारी कलाकार हैं वो हैं राखी गुलजार, और मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं उनके जीवन से जुड़े पहलुओं की, उनके प्रोफेशन से जुड़े पहलुओं की। तो चलिए अब बात करते हैं राखी जी की निजी जीवन में। ये उतना ही चर्चा में रही जितना इनका करियर रहा। फिल्मों में बिजी रहने के दौरान इनकी मुलाकात फेमस गीतकार, कवि और डायरेक्टर गुलजार साहब से हुई। गुलजार साहब का असली नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। दोनों एक दूसरे की प्रतिभा से प्रभावित हुए और 15 मई 1973 को दोनों ने शादी की। इस साल इन दोनों की बेटी मेघना गुलजार का भी जन्म हुआ। मेघना भी आज एक फेमस डायरेक्टर है और जिसने कई शानदार फिल्में डायरेक्ट की हैं। दूसरी तरफ राखी जी ने लीड एक्ट्रेस के बाद फिल्मों में मां के किरदार को अमर बना दिया। 80 और 90 के दशक में राखी जी ने अपनी भूमिका बदल दी। वे मेन हीरोइन से माँ की भूमिका की ओर मुड़ी और यहाँ भी अपनी छाप छोड़ी। इस बारे में हम आगे जानेंगे, लेकिन फिलहाल सुनिए इनकी फिल्म कस्मे वादे का ये शानदार सा गीत।

दोस्तों, जहां कई एक्ट्रेस का करियर धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, वहीं राखी जी ने खुद को नए रूप में ढाल लिया। इन्होंने फिल्मों में मां के किरदार को यादगार बना दिया। फिल्म राम लखन में इनकी एक्टिंग आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। करण अर्जुन फिल्म का वो डायलॉग याद है, मेरा करण अर्जुन आएगा, आज भी लोगों के जहन में है। इसके बाद बाजीगर, खलनायक, अनाड़ी और बॉर्डर जैसी हिट फिल्मों में इन्होंने माँ के किरदार को रियलिस्टिक बना दिया। राखी जी ने ये साबित किया कि उम्र बढ़ने के साथ कलाकार का महत्व कम नहीं होता, बल्कि अनुभव उसे और मजबूत बनाता है। दर्शकों ने इन्हें एक नई पहचान दी और नई पीढ़ी ने भी उन्हें उतना ही प्यार दिया जितना पहले दिया था। इस बात पर चलिए सुनते हैं इनकी फिल्म बेमिसाल का ये खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और हमारे पास कुछ हमारे श्रोताओं के मेल आ गए हैं। छत्तीसगढ़ पलियारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा का, जॉन डिकोस्टा, रोजी पर्ल्स और विलियस जनकपुरी सहारनपुर से, और ये हैं जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, रानी, गुरमत और मनु, और ये है दिल्ली बिरहारी कॉलोनी शादरा से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन और डब्बू सम्राट का, और सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से, और ये गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शादरा से वीना मस्कीन, आशीष राज, चैतन्य, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना और केसु खुराना जी का, गाँव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डुंडी और प्रमोद कुमार हैं हमारे साथ जुड़े हुए, और आगे चलते हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा और पूजा परिहार जी, और गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से, अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू मधु, पहाड़गंज मुल्तानी, ढांडा से वडिंगा खेड़ा से पंजाब, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा जी का। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं हमारी एक्ट्रेस राखी गुलजार जी के बारे में। आज राखी गुलजार जी का 79 साल की उम्र में मुंबई पनवेल के पास अपने फार्म हाउस में शांति से जीवन जी रही हैं। ये पशु पक्षियों की सेवा करती हैं, खेती बाड़ी में इनका इंटरेस्ट है और किताबें पढ़ने का इन्हें बहुत शौक है। अब ये फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहना पसंद करती हैं, हालांकि कभी कभी बंगाली फिल्मों में नज़र आ जाती हैं। पिछले साल ही इन्होंने एक बंगाली फिल्म में काम भी किया था। सिनेमा में अपने इस योगदान के लिए इन्हें 2003 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। दोस्तों, राखी गुलजार जी की कहानी सिर्फ एक एक्ट्रेस की नहीं बल्कि एक मजबूत महिला की है, जिसने हर मुश्किल परिस्थितियों का डटकर सामना किया और दूसरों के लिए मिसाल बनी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। तब तक के लिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी को अनुमति दीजिए, लेकिन जाते जाते एक बात कहना चाहूँगी। इस स्वतंत्रता दिवस पर हमें अपने विचारों, कर्मों और ऊर्जा को सकारात्मक बनाएं और राष्ट्र निर्माण में योगदान करें। जय हिंद, जय भारत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज की जो हमारी कलाकार थी वो थी राखी गुलजार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

0: ब्रजमाधुरी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोतान को श्रुति गुरी की
1: और वंदना की
0: राधे राधे। वंदना, देखो कैसा पावन पर्व है। आज सुबह रहते ही जगह जगह पे तिरंगा, घर घर तिरंगा लगे भए हैं और हर ब्रजवासी के मन में, हर देशवासी के मन में देशभक्ति की जो भावना है यह समय इन तिरंगान में प्रतीत है रही है।
1: हाँ जी जी, बिल्कुल सांची कह रही हो। कितना अच्छा और अनुपम, कितना बढ़िया लग रहा है।
0: देखो वंदना, ब्रज भूमि की अगर हम बात करें तो ब्रज में अनेक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी भए हैं जिन्होंने आजादी के दाई अपने प्राणन की आहुति भी दई और अपना सर्वस्व जीवन देश की सेवा में समर्पित किया हो।
1: हाँ जी जी, देखो हमारे देश को स्वतंत्र बनाए के काजे वीर सपूतन ने खूब बलिदान दिए और हमारे देश को स्वतंत्र कर दिया। और जी, सब देशवासियों के दिल में अपने देश के काजे वो भाव हैं कि हमारा देश आजाद है और वो खूब अपने आजादी को जश्न मनावे और खूब पतंग उड़ावे, झंडा फहरावे, स्कूलन में खूब झंडा फहरते हैं और जगह जगह प्रतियोगिताओं में, और बहुत ही अच्छा लगे।
0: और तुम ये बात भूल गई वंदना कि जो स्कूलन में जो मिठाई बटाओ करे, बूंदी के लड्डू बटे, बूंदी बटे।
1: हाँ जी जी, हमारे जमाने में तो बूंदी बटती और बूंदी लेवे की काजे हम भागे चले जाते स्कूल और ड्रेस ऐसी प्रेस करके जाते और रहकर तैयार है के। और जी जी, हमें खाइबे पीबे को तो शौक हतो ही हो।
0: और सांस्कृतिक कार्यक्रम में वो तो भाग लेते।
1: हाँ जी जी, खूब सज धज के आजू बच्चे नाचे कूदे खूब स्कूल में।
0: तो ये याद है कि मैं एक बार बचपन में कवियत्री बनी थी और मैंने वीर रस की कविता खूब जोर जोर से पढ़ी।
1: अच्छा जी जी, बताओ आपको हमारे कार्यक्रम में आज कवि गोष्ठी है और हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं खूब सारे कवि और कवित्री।
0: तुमने तो मेरी बात पकड़ ली है। हमने कवियत्री की बात करी तो तुम्हू सब कवि सम्मेलन करवाए हुए लगी हो आज।
1: और का जी जी, जाते बढ़िया कहावा तो होगी हमारे कार्यक्रम की।
0: तो कौन कौन आए रहे हैं आज ये तो बताए दो।
1: हाँ जी जी, देखो हमारे कार्यक्रम में मंजू शाक्य आई बही हैं, डॉक्टर सोहनलाल शीतल आए बही हैं और सुनीता कुमारी आई बही हैं, संग ही सुनील कुमार रहते हैं और इनके संग के राजस्थानी हुआए हैं कार्यक्रम के कवि गोष्ठी में।
0: तो श्रोताओं आनंद लियो या कवि गोष्ठी को।
2: नमस्कार, आज की या राष्ट्रीय कवि गोष्ठी में मेरे संग मौजूद हैं आदरणीय श्रीमती मंजू साक्या जी, के राजस्थानी जी, सुनीता कुमारी जी और सुनील कुमार जी, और मैं स्वयं डॉक्टर सोहनलाल शीतल। कवि गोष्ठी को आरंभ करने से पहले मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि वेदना भारती की तार तार हो जाए, वेदना भारती की तार तार हो जाए और मझधार भी हंसता कगार हो जाए, आओ मिलके यारो खिलाएं गुल कोई ऐसा, वतन की बगिया में फिर से बहार हो जाए। मैं अनुरोध कर रहा हूँ आदरणीय मंजू साक्या जी से कि वो आए और अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें।
3: ब्रज माधुरी के सब श्रोतन को मंजू साक्य की राधे राधे। और जैसे सबन को पता है कि 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, तो आज बात करें कुछ वीरन की जिनने जा देश पे जान दे दी। तो ऐसे एक वीर की पार्थिव शरीर पड़ो है और वह शरीर को देख के बाकी माता पिता घर वालन को का हाल हेरो है। एक छंद के माध्यम से आप सबन तक पहुंचा रही हूँ।
2: स्वागत स्वागत।

0: छलक उठो है माँ के आंचल से दूध, और छलक उठो है माँ के आंचल से दूध, और लाल रंग है गयो है आँखियों के पानी को, श्वेत रंग में लिपट बोली वीर वधु, आज बेरंग भयो है रंग सारी जिंदगानी को।
1: हाँ, बहुत बढ़िया।
0: बहना बोली रोए रोए मेरी छोड़ो भैया काहे, बहना बोली रोए रोए मेरी छोड़ो भैया काहे, आयो ना ख्याल तुम्हें बिटिया सयानी को,
1: बहुत अच्छे, बहुत
0: और
1: अच्छे।
0: पी के निज आंसुओं को दे रहे सलामी तात, नैनन से चूमे भाल वीर वलिदानी को,
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे,
0: नैनन
1: बहुत
0: से
1: बढ़िया, बहुत
0: चूमे
1: सुंदर भाई,
0: भाल
1: मजा आया, बहुत
0: वीर
1: सुंदर,
0: वलिदानी
1: बहुत
0: को।
1: सुंदर, आनंद
0: अब
1: आया।
0: स्वतंत्रता दिवस के बाद की रक्षा बंधन आ जाता है, पता है आप सबन को। अब
1: स्वागत।
0: राखी आ गई तो बहन परेशान हो रही भैया के फोटो को देख देख के, और का कह रही है सुनो,
1: स्वागत।
0: कि माने तिरंगा को राखो है भैया ने,
1: बहुत सुंदर,
0: माटी को माथे लगाए रही है,
1: हाँ बहुत सुंदर भैया,
0: माने तिरंगा को राखो है भैया ने, माटी को माथे लगाए रही है, वीर गति को गयो जा को वीर की सुत्त में आंसू बहाए रही
1: हाँ
0: है, थाली में रोली और चंदन धार के, याद पुरानी में जाए रही है,
1: बहुत अच्छे,
0: और
1: बहुत बढ़िया।
0: बोले रही बाकी फोटू तबीर तू आ जाना राखी बुलाए रही
1: वाह
0: है,
1: वाह वाह,
0: बोले
1: आया ना वीर
0: रही
1: राखी
0: बाकी
1: वर।
0: फोटू तबीर तू आ जाना राखी बुलाए रही है। तो ऐसे जाने कितने वीर हैं जो
1: स्वागत
0: हमारे भारत भूमि की माटी की रक्षा करते हुए शहीद
1: स्वागत
0: है गए हैं। तो आज
1: स्वागत स्वागत
0: मेरा मन है कि एक कहानी सुनाए तुम्हें भारत की,
1: स्वागत
0: एक
1: स्वागत।
0: गीत के माध्यम से सबन तक पहुंचा रही हूँ, सुनो। कि चलो आज तुमको सुना मैं कहानी भारत हमारे
1: बहुत
0: की,
1: अच्छे,
0: चलो आज

0: भारत हमारे की देश के दुलारे की, चलो आज तुमको सुना मैं कहानी भारत हमारे की।
1: बहुत
0: तीन रंग को झंडा अंबर लो फहरो, तीन
1: सुंदर।
0: रंग को झंडा अंबर लो फहरो, लाल हरो केसरिया रंग बड़ो गहरो,
1: क्या कह रहे,
0: जाके बीच चक्कर है नीलो कहानी भारत हमारे
1: बहुत
0: की।
1: अच्छे हो।
0: चलो आज तुमको सुना मैं कहानी भारत हमारे
1: बहुत
0: की।
1: अच्छा, बहुत अच्छा।
0: किराणा शिवाजी भगत सिंह जैसे, अनगिन बहादुर मिटे प्राण दे के, गांधी

0: बहुत बहुत
1: बहुत सुंदर।
2: रानी भाई वीर लक्ष्मी के जैसी, रानी भाई एक लक्ष्मी के जैसी, करी अंग्रेजन की ऐसी की तैसी, बन के लड़ी जा मर्दानी कहानी, भारत हमारे की। चलो आज तुमको सुना मैं कहानी, भारत हमारे की, कि जल थल गगन में रहे जा की सेना, जल थल गगन में रहे जा की सेना, बैरिन को चब्बा बलोए को चलेना, दुश्मन भरे आए पानी कहानी, भारत हमारे की, दुश्मन भरे आए पानी कहानी, भारत हमारे की।
3: और का कह सुनो,
1: स्वागत
0: स्वागत।
2: ईरानी पद्मिनी थी चंदासी गोटी, खिलजी की नीयत भई हाय खोटी, ज्वाला में कूदी है रानी कहानी, भारत हमारे की। चलो आज तुमको सुना मैं कहानी, भारत हमारे की।

0: सोने की चिड़िया सो जू देश मेरो, सब धर्मन को है जाई मैं डेरो, बहे गंग जमुना को
1: को
0: पानी
1: पानी भारत।
0: कहानी,
1: वाह
0: भारत
1: यार, बहुत
0: हमारे
1: सुंदर, बहुत
0: की।
1: सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत
0: चलो
1: सुंदर।
0: आज तुमको
1: सुना
0: सुना
1: मैं
0: मैं
1: कहानी
0: कहानी,
1: भारत
0: भारत
1: हमारे की।
0: हमारे की।
1: बहुत सुंदर, बहुत
0: कि
1: सुंदर।
0: गौतम महावीर नानक की वाणी, गौतम महावीर नानक की वाणी, राम सिया कान्हा की धरती है धानी,
1: हाँ
0: और देव की यशोदा सी मैया
1: आय
0: कहानी, भारत
1: हाँ,
0: हमारे
1: बहुत
0: की।
1: अच्छे,
0: बहुत
1: बहुत
0: बढ़िया,
1: बढ़िया,
0: चलो
1: बहुत अच्छे।
0: आज।

0: चलो आज सुना मैं कहानी भारत हमारी की या सरस काव्य पाठ के साथ। धन्यवाद, बधाई आपको मंजू जी। और अब मैं अनुरोध कर रहा हूँ आदरणीय के राजस्थानी साहब से आए और काव्य पाठ शुरू करें। आदरणीय राजस्थानी जी,
1: आभार आदरणीय सभी श्रोतन को 15 अगस्त की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। आज़ादी हमारे शहीदन की धरोहर है। आज भी जब जब माँ भारती पे कोई संकट आयो है, भारत माँ के लाडले अपने सर्वोच्च बलिदान देवे को हमेशा तैयार रहे। तो
0: स्वागत
1: प्रस्तुत है,
0: स्वागत।
1: इकलो तो लाल जाको छेल छवि लो बाको, मैया को दुलारो लाड प्यार ते संभारो है।
0: बहुत अच्छा।
1: नजर न जाकू लगे सोए सब भाग जगे, उबसी बलैया लेके आर तो उतारो है। दुख बाबा भाप जाए करे जा सो कांप जाए, बड़ो ही संभार राखो आंखिन को तारो है। धन्य ऐसे मैया बाबा की ओ कब पछतावा, भारती को सौंपो जब देश ने पुकारो है। भारती को सौंपो जब देश ने पुकारो है। बहना की राखी छोड़े जाने कैसी प्रीत जोरी, मैया ते यू चलो आज मुख गयो मोड़ के। आखिन को तारो प्यारो बोड़ा पे को एक सारो, बाबा की भी आस प्यास सब गयो तोड़ के। सीमा से बुलावो आयो संकट में देश पायो, मेहंदी रची थी हाथ हाथ गयो छोड़ के। भारती की आरती के थार में चढ़ावे शीश, रंग तेरंगा जिया बांको गयो ओढ़ के। रंग तेरंगा जिया बांको गयो ओढ़
0: बहुत
1: के।
0: अच्छे भाई।
1: आजादी के दीवाने निकी, आजादी के दीवाने
0: दीवाने
1: निकी,
0: कमी
1: कमी
0: ना
1: नहीं
0: या देश
1: जाते
0: में।
1: समय, खोजे तो घर घर मिल जावे भगत
0: भगत
1: सिंह
0: सिंह के
1: के
0: वेश
1: वेश
0: में।
1: में।
0: बहुत अच्छे
1: बहुत
0: भाई,
1: अच्छे
0: बहुत
1: बहुत
0: अच्छे,
1: अच्छे।
0: बहुत अच्छे।
1: शहीदन के दम पर आज हमारो तिरंगा आसमान से बातें कर रहे हो है।
0: कैसे कर रहे हो? स्वागत है, तो
1: कैसे कर रहे हो है? प्रस्तुत
0: बताओ।
1: है गीत,
0: स्वागत।
1: जाने जी विश्व समूचो मेरो रहे
0: रहे तिरंगा
1: तिरंगा
0: ऊंचो। बहुत अच्छा
1: ऊंचो।
0: भैया, बहुत अच्छा।

0: गाऊं
1: जो,
0: जो
1: बहुत सुंदर
0: आखिरी
1: है,
0: दो
1: स्वागत
0: पंक्तियां,
1: स्वागत।
0: भले रचे षड्यंत्र जतन जे, करें मानसिक रोगी, आजादी तो गंगा है जे कबू न मैली
1: जी बहुत
0: होगी,
1: सुंदर, बहुत
0: आजादी
1: बहुत
0: तो
1: बहुत
0: गंगा है
1: अच्छे
0: जे
1: हैं, बहुत
0: कबू न
1: सुंदर,
0: मैली
1: बहुत सुंदर।
0: होगी।
1: राजस्थानी साहब,
0: राधे
1: बधाई आपको
0: राधे।
1: सरस काव्य पाठ के लिए। और अब मैं अनुरोध कर रहा हूँ आदरणीय सुनीता कुमारी जी से, तिरंगा को और ऊंचो करत वहे, मान बढ़ावत वहे, राष्ट्रीय छंदों को

0: अपने कुछ छंदों के माध्यम से
1: स्वागत
0: तिरंगा को मानवी रखने की कोशिश कर रही हूँ।
1: स्वागत सुनियो,
0: आजादी को नीको पर्व है या नूटो ही है गर्व, फर फर फहराए कहे रो तिरंगा है, फर फर फहराए कहे रो तिरंगा है, करे बलिदान वीर जीवन अमर कियो, खुशियों से मन सब कर गए चंगा है, वंदे मातरम गीत गावे सब हिले मेले, वंदे मातरम गीत गावे सब हिले मेले, दिखे ये कथा को रूप रंग बिरंगा है, संग संग भारती के आंगन में यसे मिटाए सब नफरती दंगा। और मैं आगे भी यही प्रयास करूंगी कि हमारे देश का ये तिरंगा हमेशा अमर रहे, सरहद की सुरक्षा में गवाए जिन प्राण, भारती के ऐसे वीर पूतों को नमन है, हाँ। मन को लोभावत है जनगढ़ मन धोने, महके जाके सौरव राष्ट्रीय चमन है, कर दिन सार देह मात्र भूमि ने हमाए, भारत की माटी बीच भय जो रमन है, सुनीता की लेखनी की बस यही अभिलाषा, लिख लेके बारू सदा श्रद्धा के,
1: बहुत सुंदर सुंदर,
0: लिख लेके बारू सदा श्रद्धा के,
1: लिख लेके बारू सदा श्रद्धा,
0: और जैसो के हमारा देश देख भी मुझे सुंदर लगे है,
1: स्वागत है,
0: तो मैं उसका भी चार पंक्तियां पढ़ने को प्रयास करूँ। सिंधु नदी दीप नग भरते उफान रग, ऐसोनी को रूप नित नैन सुनिहारू, ऐसोनी को रूप नित नैन सुनिहारू, में ऊंची ऊंची चोट न से देवदार चीड़न की, मीठी मीठी बातें सुने निज ही हारू में, मीठी मीठी बातें सुने निज ही हारू में, के मनोहारी रूप देखूं एकता को भिन्नता में, बैर भाव देश सब मन तने कारू में,
1: क्या कहने, बहुत अच्छे बहुत अच्छे,
0: गाथाए भरी रहे सुनीता मन, माता भारती की नित्य
1: आरती उतारू में, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सुनीता जी, बहुत अच्छा,
0: आरती उतारू में,
1: बहुत सुंदर।
0: और अंतिम छंद में, आओ मिले के उठाए हाथ में तिरंगा, आज आजादी को ताज सिर रखी हो सजाए के,
1: बहुत अच्छा,
0: खुशियाँ मनाए बैर दिल से निकार दियो, आपसी में लाभ मेल रखियो बचाए, तोड़ियो न एकता की अपनी पुरानी डर, मन ने वतन को रखियो बचाए की, जनगढ़ मन धोने सदा रहे जिंदाबाद, दुनिया के आगे रूप रखो
1: चमकाए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर,
0: आगे रूप रखो चमकाए।
1: बधाई सुनीता जी रस काव्य पाठ के लिए, और अब मैं अनुरोध कर रहा हूँ आदरणीय भाई सुनील जी से कि आए और अपना काव्य पाठ शुरू करें।
2: सबन को नमस्कार, एक मुक्तक के माध्यम से मैं बीरन को नमन कर रहा हूँ।

0: सरहद
1: बहुत
0: पे
1: अच्छे भैया।
0: मौत से रोज लड़े निर्भय वो वीर सिपाही सरहद पे,
1: बहुत सुंदर।
0: सुखी रहे सब लोग देश के, ऐसी मन में आस धरे, जाग रहे हो है अचल पहरुआ,
1: आए
0: ले अंगड़ाई सरहद
1: सरहद पे। वाह,
0: पे,
1: क्या कहने
0: जाग
1: भैया, बहुत
0: रहे
1: अच्छा,
0: हो
1: जिंदाबाद।
0: है अचल पहरुआ, ले अंगड़ाई सरहद पे। और यह आजादी है पाए, कितने वीरन ने प्राण गमाए हैं, या मुक्तक के माध्यम से मैं कहने की
1: स्वागत
0: कोशिश कर
1: स्वागत
0: रहा
1: है
0: हूँ,
1: स्वागत है स्वागत है।
0: या आजादी के कारण भी रन ने प्राण गमाए
1: बहुत
0: हैं,
1: सुंदर।
0: हंस हंस फांसी फंदा चूमे, शीश कबहू न
1: बहुत
0: झुकाए
1: अच्छे, बहुत बढ़िया।
0: हैं, आवो मिलके बंधन
1: बंद
0: कर ले देश के अमर शहीदन को, जिनके बलिदान ते हमने
1: आए
0: जे उजियारे
1: पाए हैं। वाह
0: पाए
1: वाह वाह वाह,
0: हैं,
1: बहुत अच्छे, बहुत
0: जिनके
1: सुंदर।
0: बलिदान ते हमने जे
1: उजियारों पर कुछ
0: उजियारे
1: पाए हैं,
0: पाए
1: बहुत सुंदर भैया।
0: हैं। और अगला मुक्तक निवेदन कर रहे हूँ,
1: स्वागत।
0: का

0: संघर्ष पंथ पे करें गमन, ताई
1: यार।
0: खातिर मिलके हम संघर्ष पंथ पे करें
1: बहुत बढ़िया,
0: गमन।
1: बहुत बढ़िया।
0: और ये अंतिम मुक्तक, फिर
1: स्वागत
0: एक गीत निवेदन करूंगा।
1: स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है।
0: बैर बिसानल दूर करो सब,
1: आए आए बैर बिसाने।
0: प्रीति पुष्प बरसाई चलो।
1: क्या बात है,
0: बैर
1: बिसाने।
0: बिशानल दूर करो सब, प्रीति पुष्प

सखा नित आगे कूं विजय कमाई चलो। देश धर्म हित तन मन धन हस हस सब कर देउ अर्पण। देश धर्म हित तन मन धन हस हस सब कर।

0: चलो,
1: बहुत बढ़िया, बहुत
0: और एक
1: बढ़िया।
0: गीत और निवेदन कर रहे
1: स्वागत
0: हैं।
1: है, स्वागत है,
0: शोक
1: स्वागत है।
0: को सागर बहुत देखो हमारे देश ने,
1: हाय हाय।

0: वाह
1: ज्ञान।
0: वाह वाह,
1: भूले मत ऊसरु बहुत देखो हमारे
0: हमारे
1: देश
0: देश ने।
1: ने,
0: बहुत अच्छे,
1: भूले मत ऊसर बहुत देखो हमारे देश
0: बहुत
1: ने,
0: सुंदर।
1: मुश्किल

0: बहुत
1: सनेश
0: सुंदर, बहुत
1: वाह
0: सुंदर
1: वाह
0: सुमन जी,
1: वाह।
0: बहुत अच्छे
1: और
0: बधाई।
1: अब तक जो हमें काव्य पाठ कराए रहे, मैं अब उन्हीं को आवाज दे रहा हूँ कि डॉक्टर सोहनलाल शीतल जी हमें और अपनों काव्य पाठ करें। डॉक्टर सोहनलाल शीतल जी,
0: धन्यवाद सुनील जी, राष्ट्र कवि गोष्ठी को अंतिम रूप देता है, क्योंकि अभी कोशिश करिए
1: स्वागत
0: कि
1: है।
0: वेदना भारती की तार तार हो जावे, वेदना भारती की तार तार हो जावे, और मझधार हूँ हंसतो कगार है जावे,
1: हाँ
0: और मझधार हूँ हंसतो कगार है जावे, आओ मिलके यारो खिलाएं गुल कोई ऐसो, आओ मिलके यारो खिलाएं गुल कोई ऐसो, वतन की बगिया में फिरते बहार है
1: बाहर है
0: जावे,
1: जाए।
0: वतन की
1: वाह
0: बगिया
1: बहुत
0: में
1: बढ़िया
0: फिरते
1: बहुत
0: बहार है
1: बढ़िया।
0: जावे।

0: और यही बात को आगे बढ़ाव तो भाई कह भी कुछ करिए कि प्रेम प्रीत सो हम सब मिलके, प्रेम प्रीत सो हम सब मिलके मन में सुमन खिलावेंगे,
1: क्या
0: प्रेम
1: बात
0: प्रीत सो हम सब मिलके मन में सुमन खिलावेंगे,
1: क्या
0: स्वतंत्रता के पावन पर्व को हम हंस हंस के मनावेंगे,
1: वाह
0: स्वतंत्रता के पावन पर्व को हम हंस हंस के
1: वाह
0: मनावेंगे,
1: वाह वाह वाह
0: बैर
1: बहुत
0: भाव
1: सुंदर
0: दोष सवै बिसराय के,
1: वाह
0: बैर भाव दोष सवै बिसराय के,
1: बिल्कुल
0: राग अनुराग गूंजे चारों ओर,
1: अच्छा
0: बैर भाव दोष सवै बिसराय के, राग अनुराग गूंजे चहु ओर, जात पांत की दीवार नकू मिलके आज गिरावेंगे,
1: हाँ
0: जात
1: जाते पांत
0: पांत की
1: की
0: दीवार नकू
1: बढ़िया
0: मिलके
1: बढ़िया
0: आज गिरावेंगे, और प्रेम प्रीत सो हम सब मिलके मन में सुमन खिलावेंगे,
1: बहुत बढ़िया
0: स्वतंत्रता के पावन पर्व को हंस हंस के
1: वाह
0: मनावेंगे,
1: वाह वाह वाह
0: स्वतंत्रता
1: वाह
0: के
1: बहुत
0: पावन पर्व
1: अच्छा
0: को हम हंस हंस के मनावेंगे, जिन राहन पे,
1: हाँ
0: जिन राहन पे चल के अपनों शीश सपूत गए,
1: हाँ
0: जिन राहन पे चल के अपनों शीश सपूत चढ़ाए गए, उन्हीं कदमन पे चल के हम भारत को मान बढ़ावेंगे,
1: वाह
0: कि जिन
1: वाह वाह
0: राहन पे
1: वाह
0: चल
1: वाह
0: के अपनों शीश सपूत चढ़ाए गए, उन्हीं कदमन पे चल के हम भारत को मान बढ़ावेंगे, ऊंच नीच की रीत नहीं चलने देंगे हम, और
1: ऊंच
0: ऊंच नीच
1: नीच
0: की रीत
1: रीत
0: नहीं
1: नहीं
0: चलने
1: चलने
0: देंगे,
1: देंगे हाँ
0: मानवता के दीप जराए के मनसो मन को मिलावेंगे,
1: हाय
0: मानवता के दीप
1: बहुत
0: जराए
1: बढ़िया
0: के
1: संदेश
0: मनसो मन
1: दिया
0: को मिलावेंगे, और प्रेम प्रीत सो हम सब मिलके मन में सुमन खिलावेंगे,
1: बहुत बढ़िया
0: कि अंबर के सिगरे, अंबर
1: अंबर के
0: के
1: सिगरे
0: सिगरे चंदा तारे तोड़ धरा पे लावें, कि अंबर के सिगरे चंदा तारे तोड़ धरा पे लावें, भारत माँ की चुनरिया में नग की तरह सजावेंगे, भारत माँ की चुनरिया में नग की तरह सजावेंगे, और स्वतंत्रता के पावन पर्व को हंस हंस के हम मनावेंगे,
1: बहुत बढ़िया
0: कि लूट फूट के बीज, कि लूट फूट के बीज जो बोवे स्वार्थ में मगन सदा, लूट फूट के बीज जो बोवे स्वार्थ में मगन सदा, एक ही माँ के लाल है सभी समझे उनको समझावेंगे, एक
1: वाह
0: ही माँ के लाल है सभी हम उनको समझावेंगे, और स्वतंत्रता के पावन पर्व को हम हंस हंस के मनावेंगे, और भारत भू की छवि तो प्रेम पगी और वीर प्रसूति सोहन, लाज तिरंगे की रख के हम जग में नाम कमावेंगे,
1: वाह वाह
0: लाज
1: वाह
0: तिरंगे की
1: वाह
0: रख के हम जग में नाम कमाएंगे,
1: बहुत
0: और
1: सुंदर
0: यही क्रम में एक छोटी सी गीत का और निवेदन कर रहे हूँ, कि
1: स्वागत है
0: झुकवे की बात कर, झुकवे की बात कर न झुकाएवे की बात कर,
1: हाँ बहुत
0: झुकवे की
1: बढ़िया
0: बात
1: बात
0: कर न झुकाएवे की बात कर, जो झुक रहे हैं उन्हें उठाएवे की बात
1: बहुत
0: कर,
1: बढ़िया
0: बहुत
1: बहुत
0: बढ़िया,
1: बढ़िया
0: झुकवे की बात कर न
1: कमाल
0: झुकाएवे की बात कर, जो झुक रहे हैं उन्हें उठाएवे की बात कर, और हल्ला जात पात को बहुत है रहे हो चारों ओर,
1: हाँ बहुत
0: हल्ला
1: बढ़िया
0: जात पात को है रहे हो चारों ओर, ऐसे समय में प्रेम गीत गाएवे की बात कर, और कैसो भी जुलम होए,
1: बहुत
0: कैसो भी
1: बढ़िया
0: जुलम होए देवे को जवाब सही सही, हाथन में लेखनी उठाएवे की बात कर, और झुकवे की बात कर न झुकाएवे की बात कर, जो झुक रहे उन्हें उठाएवे की बात कर,
1: बात
0: चल रही हैं नफरतों की आंधियां जहां में अब वहां एक प्रेम दीप जलाएवे की बात कर,
1: कर
0: वहां एक प्रेम दीप जलाएवे की बात कर, झुकवे की बात कर न झुकाएवे की बात कर, और जो झुक रहे हैं उन्हें उठाएवे की बात कर, सहज में ही मिटेंगे सिगरे कष्ट तेरे,
1: सहज में ही
0: सहज में ही मिटेंगे सबरे
1: कष्ट
0: कष्ट
1: तेरे
0: तेरे, दूसरे नके काजू बनाएवे की बात कर,
1: हाय
0: दूसरे नके काजू बनाएवे की बात कर, न झुकवे की बात कर न झुकाएवे की बात कर, जो झुक रहे हैं उन्हें उठाएवे की बात कर,
1: बात
0: और सोहन जो मानस हैं भाग्यहीन जगमाही,
1: वाह
0: सोहन
1: वाह
0: जो
1: वाह
0: मानस हैं भाग्यहीन जगमाही, उनके भाग्य बनाएवे की बात
1: बहुत
0: कर, न
1: सुंदर
0: झुकवे की बात कर न झुकाएवे की बात कर, और झुक रहे हैं उन्हें उठाएवे की बात कर, और मैं इन्हीं पंक्तियों के संग आज के कवि गोष्ठी को यहीं विराम दे रहा हूँ, नमस्कार।
2: अभी श्रोता 15 अगस्त पर विशेष ब्रज कवि गोष्ठी सुन रहे हैं। यहाँ में प्रतिभागी कवि है मंजू शाक्य, डॉक्टर सोहनलाल शीतल, सुनीता कुमारी, सुनील कुमार और के राजस्थानी। तो श्रोताओं, या के संग गई आज को ब्रजमाधुरी कार्यक्रम अब संपन्न हुए है। मुकु यानी के वंदना को और मोई यानी श्रुतिपुरी को देव अनुमति, राधे
1: राधे
2: राधे।
1: राधे
2: कार्यक्रम प्रस्तुत करता विवेक कुमार तोमर।

0: टेलीग्राम यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। दिन के 3:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं नाटक।
1: सुनते हैं नाटक हुल हुल संथाल। ये नाटक स्वतंत्रता सेनानी सिद्धू और कान्हू मुर्मू पर आधारित है। लेखक योगेश अग्रवाल, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी।
2: बुरा होगा, गरीब की हाय लगेगी इनको। मेरी जमीन के टुकड़े से कितना अमीर हो जाएगा। ले ले ले ले मेरी जमीन, ले ले बना ले अपना महल। मेरी जमीन से कमा के धोखे पांच कहीं कहा।
3: ये तो चांद है, कहा हुआ इसे, काहे इतना बेचैन सा आ रहा है।
4: चांद बेटा, ओ चांद बेटा, अरे कहा हुआ रे, कहां सरपट भागा जा रहा है। अरे दिल्ली की ट्रेन छूट रही है का?
3: अरे तुम लोग तो रो रहे हो।
4: अरे का हुआ, कछु बताएगा भी चांद?
5: जय जोहार बाबा।
4: जय जोहार, आओ बैठो और अब बताओ कि हुआ का है।
2: बाबा, मेरी जमीन मेरे पड़ोसी के दोस्त ने हथिया ली। मैंने उसे 3 साल के लिए बटाई पर दी थी, पर उसने मेरे सामने छोटे कागज धर दिए कि ये जमीन मैंने उसे बटाई पर नहीं दी थी, बल्कि मैंने उसे बेची थी। पर बाबा, बाबा भगवान भोगा की कसम, मैं क्यों बेचूंगा? मैं अपनी जमीन क्यों बेचूंगा? अपने बाप दादा की जमीन को मैं क्यों बेचूंगा? मैं तो सच्ची उसे बटाई पर ही देकर गया था।
5: बाबा आप ही बताओ, इसके अलावा हमारे पास है ही का? हम भी धरती गए तो फिर इस जिंदगी का क्या फायदा बाबा?
2: बाबा, बाबा यहाँ हमारी जिंदगी लुट रही है और तुम हंस रहे हो। हमारी बात से हम धरती ना थी तो रोका क्यों था? चल भैरवी, चल, इस गांव के दिक्कू क्या अपने क्या सब दुश्मन हैं, हंसते हैं हम पर जैसे हमने उसे लूट लिया हो। अब हम मरे या इस गांव से जाएं, ना हमें रोकना ना हमें टोकना।
4: अरे चांद, अगर ये गुस्सा तूने उस बाहरी आदमी यानी दिक्कू को दिखाया होता तो आज तुझे रोना ना पड़ता।
2: बाबा तुमको पता भी है कि वो कितना शक्तिशाली है। अरे मैं ठहरा गरीब किसान, उसके पास पैसा है, अपने लोग हैं, वो तो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है ना बाबा। हमें हमें हमें मरवा भी सकता है। और मेरी मेरी जवान बहन कुछ ऊंच नीच हो गई तो मेरा क्या होगा बाबा?
4: मत भूल चांद कि तू एक संथाल है जिसकी रगों में सिद्धू और कान्हू का खून बहता है, जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था, जिन्होंने अपने साथियों को मालगुजारी के बढ़ते दामों के आतंक से, जमींदार दरोगा और महाजनों के अत्याचार से मुक्त कराया था। तेरी रगों में उनका खून बहता है। उन्होंने संथालों को एकजुट करके हूल हूल संथाल कर दिया था और तू रोकर आ गया।
5: हूल हूल यानी विद्रोह। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह तो आसान है, पर उस दिक्कू के खिलाफ हम कैसे विद्रोह कर सकते हैं बाबा? हम दोनों के पास है ही क्या?
4: हमारे खून में गलत काम के खिलाफ आवाज उठाने का जज्बा है बेटी। अगर तुम्हें याद नहीं है तो तुम दोनों सुनो सिद्धू और कान्हू की कहानी, फिर बताना कि गलत बात पर तुम्हारा खून खौलेगा या नहीं। बैठ बेटी, बैठ और शांति से ये कहानी सुनो। बात है कोई 1815 की, जब सिद्धू मुर्मू का जन्म हुआ था और 1820 में कान्हू मुर्मू पैदा हुआ था। इनके और दो भाई भी थे। अरे एक तो तेरा हम नाम ही था चांद, और एक भैरव।
5: अच्छा,
4: दो बहनें भी थीं, फूलो और झानो मुर्मू। ठीक ठाक परिवार था,
3: हंसते खेलते काम करते गाते गुनगुनाते जिंदगी

0: अट रही थी, पर अंग्रेजों को कहां हंसता खेलता कोई गांव पसंद आना था। उन्होंने इनके गांव भोगना डी की जमीन पर मालगुजारी लगा दी।
1: अच्छा,
0: जबकि अंग्रेजों ने जमीन देते वक्त ऐसी कोई शर्त ना रखी थी। भोगना डी गांव के सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि जो अंग्रेज सरकार ने आप लोगों को मुफ्त में जमीन दिया हुआ था, उस पर अब आप सभी को मालगुजारी देना पड़ेगा। समय पर मालगुजारी ना देने पर सजा भी हो सकता है और जुर्माना भी लग सकता है।
2: ये क्या बात है?
3: अरे ये तो गजब हो रहा है। जमीन देते हुए तो ये बात ना कही थी कि जमीन पर मालगुजारी देना पड़ेगा।
4: अरे इन लोगों में कोई दया ममता तो होता नहीं है। जिसकी जमीन चाहिए हथियाली, एक बार भी ना सोचा इन गोरों ने। इतनी मुश्किल से हमें ऐसी उपजाऊ जमीन मिली थी जिसे दिन रात एक करके हमने रहने बैठने और खेती के लायक बनाया।
5: कैसे जिएंगे हमारे बच्चे? कैसे खाएंगे पिएंगे?
2: हम मर जाएंगे।
0: जो माल गुजारी 1836-37 में 2611 थी, वो 1854-55 तक 58,033 रुपए हो गई थी।
1: कह रहे हो?
0: और क्या, एक गरीब किसान के लिए ये देना असंभव हो रहा था। तब तक सिद्धू और कानू भी जवान हो चुके थे। उनके कानों में ये बात पड़ी तो उन्हें ये गवारा ना हुआ कि उनके बाप दादाओं ने जी तोड़ मेहनत करके पूरे जंगल को साफ करके खेती योग्य बनाया। इतना लाभ नहीं हो रहा था जितना मालगुजारी देनी पड़ रही थी।
1: तो बिल्कुल सही किया।
0: तो सिद्धू और कान्हू ने गांव में एक सभा बुलाई और ऐलान किया।
6: भाइयों बहनों, आज इस सभा को बुलाने का कारण ये है कि अंग्रेजों का अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है।
2: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
6: हमारे बाप दादाओं को उन्होंने छोटा सा जंगल दिया था और उन्हीं की मेहनत से ये जंगल इतना बड़ा बन पाया। आज हम उस पर खेती करके अपना अपने परिवार का पेट भरते हैं। इन अंग्रेजों से कोई मदद नहीं लेते, ऊपर से माल गुजारी भी देते हैं।
2: सही बात है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं।
7: भाइयों और बहनों, कितनी बदकिस्मती है हमारी कि अंग्रेज हमारी धरती पर आकर हमें ही हमारी धरती बेचता है।
2: बिल्कुल सही बात हो रही है। मतलब
7: और हम कुछ नहीं कहते, मेहनत हम करते हैं, वो माल गुजारी के मनमाने दाम लेते हैं।
2: अब नहीं चलेगा पर।
7: सही कह रहे हैं। हम फिर भी कुछ नहीं कहते, वो हम पर ही एहसान जताते हैं कि हमने तुम्हें जमीन दी है। हम तब भी कुछ नहीं कहते, पर उन्होंने माल गुजारी का दाम इतना कर दिया है कि वो देना अब हमारे बस की बात नहीं है।
2: नहीं है, तो है।
7: साल का 58,033 रुपया कहाँ से देंगे हम?
2: कहाँ से देंगे?
7: अंग्रेज सरकार की माल गुजारी का भर एक संथाल विरोध करेगा।
6: हम इनके अत्याचार को अब और नहीं सहेंगे।
2: नहीं सहेंगे।
6: हम इन अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाते हैं।
7: हूल हूल संथाल,
8: हूल हूल संथाल,
7: हूल हूल संथाल।
0: फिर क्या हुआ? होना कहा था बेटा, इतने समय से हो रहे अत्याचार को कोई कितना सहेगा। अरे ना भी किसी में हिम्मत हो, पर वो मरते मरते भी बगावत जरूर करेगा। ये थी संथालों की भावना। अंग्रेजों को क्या पता था कि जिन लोगों को वो कुछ नहीं समझ रहे, वही लोग उनको नाकों चने चबवा देंगे।
1: ये बात,
0: अंग्रेजों ने संथालों से माल गुजारी वसूल करने के लिए भागलपुर में एक अंग्रेज कलेक्टर को बहाल किया और उसकी मदद के लिए कुछ तहसीलदार भी नियुक्त कर दिए। वो लोग थे तो अपने, पर थे अंग्रेजों से भी ज्यादा बदनीयत, लालची और घूसखोर, और संथालों के साथ अंग्रेजों से भी बदतर व्यवहार करते थे। संथाल गरीब तो थे ही, तो हर काज के लिए उन्हें महाजन के आगे हाथ फैलाने पड़ते। दुष्ट महाजन 2 रुपया देता और वसूल

0: मरने के बाद तक करता रहता और इतना पैसा लेने के बाद भी फौजदारी का मुकदमा कर देता कि इन्होंने पैसा दिया ही नहीं। इन बेचारे गरीब संथाल किसानों को जंगीपुर जो बंगाल में है उतनी दूर जाना पड़ता। एक तो गरीब, ऊपर से झूठे मुकदमे, और उनका भी परिणाम संथालों के हक में नहीं होता।
1: फिर क्या हुआ बाबा?
0: संथालों की जिंदगी महाजनों से कचहरी और कचहरी से पीछा छुड़ाने के लिए फिर महाजनों के आगे हाथ फैला देती। यानी कुल मिलाकर उनकी जिंदगी एक गेंद की तरह थी जिसे कोई भी लात मार देता था। एक घटना ने संथालों की सहन शक्ति को चुनौती दे दी।
1: आज का
2: पाकोड़ के पूर्वी इलाके में रेल लाइन बिछाई जा रही है।
1: रेल लाइन बिछाई जा रही है?
2: हाँ, मजदूरों की जरूरत है। औरत मर्द दोनों की आवश्यकता है।
1: अभी नौकरी मिलेगी।
2: जल्दी पहुँचे, अपना नाम लिखाए।
3: तो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छी खबर है। तो हाँ, हम भी चले।
4: अरे रो क्यों रही हो?
5: मैं वह काम नहीं करूंगी।
1: काहे?
5: उस गोरे ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की।
1: कौन गोरा था? कौन था?
5: मेरे आदमी ने विरोध किया तो उसने उसको खाई में फेंक दिया।
1: बात कर रहे हो? नहीं,
5: अब क्या होगा मेरे बच्चों का? हमारी कोई सुनने वाला नहीं।
4: चलो सिद्धू, कानू, चांदो, भैरव के पास चलते हैं।
1: सही बात है, चलो। हाँ सही बात है,
4: कुछ तो करना होगा वरना मरना होगा।
1: हाँ सही बात है, चलो चलो चलो। अरे सिद्धू कानू तो यही चले आ रहे हैं। सिद्धू देखो तो।
6: हमें पता है रमालू, हम वहीं से होके आ रहे हैं। हर औरत की यही रामकथा है वहां। देखो साथियों, अब पानी सिर से गुजर चुका है। अगर हमारी बहन माँ बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर हमारे होने का क्या फायदा?
3: हमें अंग्रेजों को सबक सिखाना होगा।
7: सबक नहीं साथियों, इनको अब जल से उखाड़ना होगा।
8: जल से उखाड़ना होगा।
4: सिद्धू कानू, आसान है उन्हें उखाड़ फेंकना क्या? उनके पास सेना है, आधुनिक हथियार है। हमारे पास चार पैसे नहीं है अपनी गर्दन महाजनों से छुड़वाने के लिए, और तुम अंग्रेजों के खिलाफ फूल के तैयारी कर रहे हो।
6: आप सब बिल्कुल सही हैं, पर जब हमारे भगवान मरांग गुरु और जाहिर आयो निर्देश दिया है कि स्वतंत्रता के संदेश को देश के कोने कोने में फैला दो ताकि सभी लोग भावी संकट का मुकाबला करने को तैयार हो जाएं, तभी तुम लोग पूर्व की भांति स्वतंत्र रह सकोगे।
7: तो हम आज ऐलान करते हैं, हम सब आज से और इसी वक्त से स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र हैं।
3: और हम घोषणा करते हैं कि सिद्धू कान्हू मुर्मू हमारे सूबा होंगे, यानी राजा होंगे, भैरो चांदो सेनापति।
7: हम घोषणा करते हैं कि चूंकि अब हम आजाद हैं, तो हमारे ऊपर अंग्रेजों का कोई भी सरदार नहीं होगा, ना ही कोई हाकिम और ना ही कोई थानेदार। कोई नहीं होगा। और ना कोई कर देना होगा, ना किसी मालगुजारी का भार हम पर होगा। अब अपना, केवल अपना संथाल राज स्थापित होगा। संथाल राज स्थापित होगा।
6: अब हम प्रति भैंस के हल पर चार आना और बैल के हल पर दो आना अपना मालगुजारी दिया करेंगे, और कर्ज का सूद भी रुपए में सिर्फ एक पैसा प्रति वर्ष देना होगा।
9: साहेब,
10: अरे क्या हो गया?
9: अरे गजब हो गया, गजब हो गया।
4: संथालों ने हमारे खिलाफ विद्रोह कर दिया है।
10: विद्रोह कर दिया?
4: हमारे थाने की ओर बढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे साथियों को छोड़ना होगा वरना अच्छा नहीं होगा, और वो ये भी कह रहे हैं कि जमींदार महाजन और अंग्रेजी सरकार का नाश हो।
10: ओ अच्छा, इनकी इतनी हिम्मत? ये लोग ना पेट में रोटी ना तन पे लगोटी, ये मेरी सत्ता को चुनौती देंगे। दिखाता हूँ इन्हें इनकी औकात। बताओ तो, अभी तक जो हमारे आगे

0: सिर झुकाकर बात करते थे, उनमें इतनी साहस आ गया कि हमारा नाश करने के लिए आवाज उठाएं। कौन है इनका नेता?
1: साहब, नेता नहीं, इनका सूबा। उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके अपना राजा चुन लिया है, सिद्धू कानू मुर्मू।
0: क्या अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया इन्होंने? वाह भाई वाह, जिन अंग्रेजों का सूर्य कभी अस्त नहीं होता उनके राज्य में इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। वाह भाई, मिलना पड़ेगा इन एक फसली के राजाओं से। इन्हें तुरंत पकड़कर मेरे सामने हाजिर करो।
1: जी साहब।
2: फिर क्या हुआ बाबा, सिद्धू और कानू को मार दिया थानेदार ने?
3: अरे पगली, संथालों ने उस थानेदार पर ऐसे तीर बरसाए कि वो वहीं ढेर हो गया। हूल हूल संथाल,
4: हूल हूल संथाल।
3: ये कहकर उन्होंने अपने विद्रोह का ऐलान कर दिया। अंग्रेजों ने संथालों को यूं ही समझा सोचा कि इनको तो वो एक उंगली से दबा देंगे। इनके पास हिम्मत थी, एकता थी, और उन्होंने अपने बर्छे भाले और तीरों से फुदकपुर गांव और साहेबगंज में ऐसा आतंक मचाया कि इनके तीर कमानों के आगे अंग्रेजों की बंदूकें भी मात खा गईं।
5: अच्छा।
6: अरे
7: शाबाश शाबाश मेरे जाबाज लड़ाकों, हमें अपनी जमीन खाली करानी होगी इन अंग्रेजों से। करो या मरो, अंग्रेजों हमारी जमीन छोड़ो।
8: करो या मरो,
9: अंग्रेजों हमारी जमीन छोड़ो।
10: अंग्रेजों हमारी जमीन छोड़ो। अंग्रेजों हमारी जमीन छोड़ो।
11: अंग्रेजों हमारी जमीन छोड़ो।
1: शांत, कल सिद्धू साहेबगंज वहां धावा बोलेंगे।
7: इन्होंने हमारे साथ, हमारे देश के साथ बहुत बुरा किया है, बस ये याद रखो। अपने तीरों को पैना करो और बर्छे भाले तेज करके रखो।
1: हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारे रास्ते और कठिन होते जाएंगे, तो चांदो और भैरो तुम अपने साथियों को घर घर गांव गांव भेजो हमारे भगवान के इस संदेश के साथ कि उनका हुक्म है कि अंग्रेजों से अपनी माटी आजाद करानी होगी।
12: माटी आजाद करानी होगी।
1: उसके लिए हर एक संथाल को अपनी कुर्बानी देनी होगी। हर संथाल अब घर में नहीं युद्ध के क्षेत्र में दिखाई देना चाहिए। युद्ध के क्षेत्र में दिखाई देना चाहिए।
3: संथाल जिनके पास ना अच्छे हथियार ना कोई अच्छी रणनीति, पर था तो सिर्फ हौसला और अपने भाइयों का साथ।
2: साहिबगंज में क्या हुआ बाबा?
5: हाँ बाबा।
3: अरे भैरवी, होना क्या था? सिद्धू और कान्हू मुर्मू का नाम सुनते ही अंग्रेज नावों में सवार होकर नदी पार पहुंचने की तैयारी में थे।
2: अच्छा।
3: पर संथाली सेना ने नदी की ओर अपने तीरों की ऐसी बाढ़ छोड़ी, ऐसी लड़ाई लड़ी कि अंग्रेजों की कई नौकाएं नदी में ही डूब गईं।
2: बाबा, ये सोचकर ही कितना अच्छा लग रहा है ना कि अंग्रेजों के पास बंदूकें थी पर फिर भी वो सिद्धू और कानू मुर्मू से डर कर भाग रहे थे। सच में ये सोचकर मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि संथालों ने अत्याचार और शोषण के विरुद्ध ही नहीं अपनी भी आजादी का बिगुल बजा दिया था।
3: अब अंग्रेजों को पता चल गया था कि जिनके तन पर कपड़ा नहीं, पेट में अन्न नहीं, उनसे मुकाबला जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पर बेटी, अंग्रेज तो अंग्रेज थे, वो अपने पैंतरों और चालबाजी से कहां बाज आने वाले थे।
1: साथियों, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए हैं आप लोगों ने। अब वो और कड़ी योजना बना रहे होंगे हमारे विरुद्ध।

0: हमें खबर मिली है कि अंग्रेज कप्तान फगान के अधीन सरकार ने एक फौज की टुकड़ी भेजी है जिसमें 500 सैनिक हैं। बेलापुर पहुंचने वाली इस टुकड़ी में पहाड़िया सैनिक भी हैं।
1: कौनो चिंता की बात नहीं है भैया,
2: तो हमारी रणनीति भी यही रहेगी कि हम भी पहाड़िया युद्ध करेंगे जिसमें ये अंग्रेज सैनिक हमारे सामने कुछ समय भी नहीं टिक सकेंगे। चलो साथियों, मरो या मारो, अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो,
3: अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो, अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो, अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो, अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो।
2: हमें दुख है कि इस युद्ध में हमारे बहुत से कुशल नेता मारे गए हैं, पर खुशी की बात यह है कि अंचल भागलपुर कहलगांव परगना के राजमहल तृतीय से रानीगंज तक के हम स्वामी हैं।
4: हमारा अधिपत्य है वहां पर,
2: और यहां रहते हुए हमें 15 दिन हो चुके हैं, तो अब हमें पाकुड़ और महेशपुर की ओर कूच करना होगा।
3: चलो साथियों, चलो साथियों।
5: तो वहां भी हमारे संथाल विजयी रहे बाबा?
6: हाँ बिटिया, अंग्रेज उनके आगे टिक ही नहीं पाए।
5: अच्छा?
6: हाँ, उनसे बचने के लिए अंग्रेजों ने 24 घंटों में एक मार्टेला टावर खड़ा किया।
5: हाँ?
6: जिसमें छोटी छोटी खिड़कियां बना दी गई और उसमें से उन्होंने गोलियां चलाई।
5: हाँ?
6: वैसे यहाँ हार तो नहीं हुई, पर काफी साथियों के मारे जाने के कारण सिद्धू और कान्हू मुर्मू थोड़े कमजोर जरूर पड़ गए थे। ये बात होगी कोई 15 जुलाई 1855 की।
5: अच्छा।
6: सिद्धू अपनी बची खुची सेना लेकर बढ़ैत आ गया, जहां उसने नए सिरे से अपनी सेना का गठन किया।
5: अच्छा।
6: और जानते हो, यहाँ बाहरी लोगों या दिक्कू ने भी उसका साथ दिया।
5: अच्छा। हाँ?
6: पर अब किस्मत उसका साथ छोड़ रही थी।
1: क्यों बाबा?
6: क्योंकि बरसात होने पर जंगलों में युद्ध करना काफी मुश्किल था, और संथाल सैनिक भी काफी मारे जा चुके थे।
7: चिंता मत कर सिद्धू, बढ़ेत हाथ से गया तो क्या हुआ, हम फिर से जीत लेंगे।
2: कान्हू, कहीं हमारे साथी हिम्मत ना हार बैठे, क्योंकि अंग्रेजों ने एक महीने के अंदर अंदर दामिनी को संस्थाली क्षेत्र खाली करवा लिया है।
7: पर अभी तकरीबन 30,000 संथाली हैं, जो अपने बर्छे तीर कमान से लैस हैं, उन्हें दबाना आसान नहीं है। अंग्रेज सरकार बहुत चिंता में है।
2: तो फिर वो जरूर कोई चाल चलेगी, उनके पास धोखे के अलावा कुछ नहीं है, और देखना वो धोखे को अपना हथियार बनाएगी। मेरे भाई सतर्क रहना।
5: सुबह सुबह अंग्रेजों ने गांव गांव में ये ऐलान करना शुरू कर दिया है कि अगर संथालों ने सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया है, लूटपाट की है, लोगों के प्राण लिए हैं और सरकारी फौजों का सामना किया है, ये उनकी मूर्खता है। पर अगर वो इसे अपनी गलती समझकर वापस आना चाहते हैं और मिलजुल कर रहना चाहते हैं, तो उन्हें क्षमा कर दिया जाएगा, पर इनके नेताओं को नहीं, जिन्होंने आम सीधे साधे संथालों को भड़काया और रण क्षेत्र में बिना सोचे समझे उतार दिया। ऐसे नेताओं की छानबीन करके उन्हें छोड़ दिया जाएगा। तो सरकार आपसे अनुरोध करती है कि आप लोग समर्पण कर दे। अगर इस घोषणा के बावजूद भी कोई खड़ा हुआ तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी।
1: हाँ, ये सब धोखा है, ये सब धोखा है, हम नहीं जाएंगे। हाँ। हम जानते हैं सब धोखा है।
2: अच्छी खबर लाई हो बहन जानो। तो साथियों तैयार हो जाएं, अंग्रेज सरकार को एक बार फिर मुंह की खिलाने का वक्त आ गया है।
7: वक्त आ गया है।
2: हमारे दो भाइयों चांद और भैरव का बदला भी अभी बाकी है, जो बहराइच में अंग्रेजों के लड़ते हुए शहीद हो गए।
7: करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो,
3: अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो।
7: हमें मालूम है, हमें मालूम है कि अंग्रेजी सरकार हमारे खिलाफ हर तरह की ज्यादती करेगी, पर हम

0: अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे, लड़ेंगे। हुल हुल सरदार, हुल हुल सरदार, हुल हुल सरदार,
1: हुल सरदार।
2: यानी सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू इन अंग्रेजों से जीत गए?
3: गैरों से तो लड़के जीता जा सकता है, पर जो अपने होते हैं ना, उनसे कोई नहीं जीत सकता।
2: क्या मतलब बाबा?
3: मतलब ये बेटा कि सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने अंग्रेजों को तो नाकों चने चबवा दिए, उन्हें बता दिया कि तुम्हारी बंदूकें हमारे तीर कमानों और बर्छों का मुकाबला नहीं कर सकती। और अपनों के बीच में किसी धोखेबाज को ढूंढ पाने के लिए आज तक ना तो कोई हथियार या औजार बना, ना कोई मशीन बनी कि दगाबाज का पता बता दे। तो कर दी किसी अपने ने मुखबिरी।
2: अच्छा,
3: अंग्रेजों के कलेजे को ठंडक पहुंची, क्योंकि वो जानते थे कि इन संथालों के राजा पर ईमानदारी से कब्जा तो नहीं पाया जा सकता। तो बेईमान लोगों ने बेईमान को ढूंढा और लालच देकर मिला लिया अपनी तरफ। और उसने संथालों के वीर जांबाजों की खबर दे दी। अंग्रेजों ने अपनी दोगली बहादुरी दिखाई और उनके ही गांव भोगनाडीह में बीच चौराहे पर पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी।
4: नहीं नहीं नहीं, पर नमन है ऐसे ऐसे मुर्मू भाइयों को, उन्होंने अपने देश के लिए, अपने साथियों के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की।
2: हाँ, बिल्कुल ठीक कहते हो भाई, कितनी हिम्मत और गर्व देती है ये स्वतंत्रता सेनानियों की बातें, है ना बाबा?
3: जान, हिम्मत है तो अपनी जमीन पर जिसका कब्जा हुआ है उसे कह जाकर,
2: हुल हुल संथाल,
1: हुल हुल संथाल,
2: हुल हुल संथाल,
1: हुल हुल संथाल।
2: बाबा, अब तो हम चुप नहीं रहेंगे, गलत बात पर आवाज उठाएंगे।
3: हाँ, उस इंसान को बताना होगा कि वो गलत कागज बनाकर हमारी चीज अपनी नहीं कर सकता। अब हम आजाद हैं, अंग्रेजों का अत्याचारी कानून नहीं है जो गलत को भी सही ठहराए।
2: बिल्कुल ठीक,
3: हमारे आजाद देश का कानून है जो दूध का दूध और पानी का पानी करता है।
1: हुलहुल संथाल, हुलहुल संथाल। हाँ बाबा, अब उसको जाकर पहले समझाऊंगा, और नहीं माना तो फिर कानून का सहारा लेकर अपनी जमीन वापस लूंगा।
3: शाबाश,
2: बिल्कुल ठीक, हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमें हमारी जमीन और उस पर हुए नुकसान का हर्जाना नहीं मिल जाता। हारेंगे नहीं, हम अपनी जमीन लेकर रहेंगे।
1: हुल हुल
2: संथाल, हुल हुल संथाल।
3: शाबाश मेरे बच्चों,
1: जय जोहार बाबा।
5: अभी आप सुन रहे थे नाटक हुल हुल संथाल। ये नाटक स्वतंत्रता सेनानी सिद्धू और कान्हू मुर्मू पर आधारित था। लेखक योगेश अग्रवाल, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। भाग लेने वाले कलाकार थे ब्रजमोहन यादव, राजेश कंबोज, अन्नु शर्मा, प्रवीण कुमार भारती, अपूर्व गुप्ता, मोहम्मद बुरहान और अमर साहा।
6: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर शाम के 4 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी में और उसके तुरंत बाद अंग्रेजी में।
7: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता

0: दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि सरकार के प्रयासों के कारण 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल सके हैं और भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में कामयाब रहा है। इनमें कोविड महामारी और यूक्रेन तथा पश्चिम एशिया संकट प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि इन संकटों के दौरान टीके, ईंधन, गैस, डीजल और उर्वरक की कमी को लेकर काफी अफवाहें फैलाई गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्र के भीतर नए संसाधनों और भंडारों की खोज की जा रही है।
1: हमने समुद्री तट पे समुद्र के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र्य था, हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया। हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 से अब तक भारत 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता कर चुका है। श्री मोदी ने देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से अपील की कि वे इन अवसरों का भरपूर लाभ उठाएं और भारतीय उत्पादों को विश्व बाजार तक पहुंचाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को यांत्रिक मेधा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है।
1: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गांवों, शहरों और स्कूलों में 15 वर्ष तक के मेधावी बच्चों की पहचान के लिए प्रतिभा खोज अभियान चलाया जाएगा और चुने गए बच्चों को अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग देने की भी घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष NS राजा सुब्रमणि, थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज श्री अरबिंदो की जयंती पर उन्हें स्मरण किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने श्री अरबिंदो को एक महान दार्शनिक, राष्ट्रकवि, राष्ट्रवादी और विचारक बताया, जिन्होंने अपना जीवन भारत की स्वतंत्रता तथा मानव प्रगति के लिए समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के प्रारब्ध और मानव परिवर्तन की असीमित संभावनाओं में श्री अरबिंदो का विश्वास आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। प्रधानमंत्री ने पारसी नववर्ष नवरोज के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पारसी समुदाय के लोगों के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान ने देश को अनगिनत तरीकों से समृद्ध किया है। और खेलों में गाले में श्रीलंका के साथ 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 1 विकेट पर 197 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। और मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। द नेशन इज सेलिब्रेटिंग द 80th इंडिपेंडेंस डे टुडे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द सेलिब्रेशंस फ्रॉम द आइकॉनिक रेड फोर्ट इन दिल्ली। The hoisting of the national flag was synchronized with the 21-gun salute. For the first time, national song Vande Mataram was rendered during the Independence Day celebrations at the Red Fort. The Prime Minister described the chanting of Vande Mataram at the Red Fort as a historic moment.
1: आजादी के लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए। उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं।
0: Highlighting the achievements made in different sectors, the Prime Minister said, over the past 12 years, defense production has increased nearly fourfold, khadi and village industries production grew by nearly fivefold, electronic manufacturing nearly sevenfold, modern railway coach manufacturing 21-fold, and mobile manufacturing increased by 33-fold. He said, internet users increased by nearly fourfold and digital transactions by 100 times.
1: हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए। हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए। हर साल 4 गुनी रफ्तार से गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया। हर साल 3 गुना ज्यादा तेजी से गरीबों को घर देने का काम किया। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया। हजारों की संख्या में कंप्लायंसेस खत्म किए, सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए।
0: द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड टू प्रोवाइड फ्री ऑनलाइन कोचिंग फॉर पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज फॉर वेरियस पब्लिक एग्जामिनेशंस। ही सेड, दिस इज अ रिवोल्यूशनरी स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग क्वालिटी एजुकेशन एक्सेसिबल टू एवरीवन, लेड बाय टॉप टीचर्स। द प्राइम मिनिस्टर सेड, गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट 1 crore यूथ विल बी गिवन ट्रेनिंग इन AI स्किलिंग इन द नेक्स्ट 1 year। He said this will enable them to take the lead in the global AI sector. Mr. Modi said the country has to focus on 3 things: cost, quality and skill.
1: हमने पिछले दिनों AI impact summit किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूँ, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 crore युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान AI की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है।
0: द प्राइम मिनिस्टर हाईलाइटेड द गवर्नमेंट्स फोकस ऑन क्रिटिकल मिनरल्स, सेइंग द मॉडर्न टेक्नोलॉजी डिपेंड्स एंटायरली ऑन क्रिटिकल मिनरल्स एंड इंडिया इज एक्टिवली वर्किंग टू सिक्योर इट्स पोजिशन इन दिस सेक्टर। Prime Minister Modi said that India has successfully overcome several unprecedented crises while progressing towards the goal of a developed nation by 2047. Indian embassies and consulates marked India's 80th Independence Day today with flag hoisting ceremonies, cultural programs and community gatherings. Thousands of Indian nationals and diaspora members joined the celebrations in Singapore, China and Hong Kong, underscoring India's strong people-to-people ties with the region. In Indonesia, at least 20 people were killed after a magnitude 7.7 earthquake struck off Flores region early today. Buildings collapsed, landslides were triggered and widespread panic was caused. According to early reports, 6 people were injured and 2 remained missing. The quake prompted a tsunami warning that was later lifted after monitoring showed no significant sea level changes. In cricket, India were 197 for the loss of 1 wicket at T against host Sri Lanka in the first of the 2-test series at Goa International Cricket Stadium. Earlier, India won the toss and elected to bat. The India Meteorological Department has forecast very heavy rainfall today at places over Arunachal Pradesh and Uttarakhand, parts of northeast India, Chhattisgarh, East Rajasthan, Himachal Pradesh, Gangetic West Bengal, Jammu and Kashmir, Ladakh are also likely to receive moderate to heavy rainfall during the next days. And that is the end of this news bulletin.
2: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना।

हुए व्यक्ति का नाम है तुषी कुमारी, पुत्री गणेश पासवान। इन्हें अंतिम बार 24/11/2025 को देखा गया। इनकी आयु 17 वर्ष 18 महीने है। शरीर की बनावट सामान्य शरीर। ये घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं। जिस किसी को भी इनके संबंध में कोई सूचना प्राप्त हो, कृपया थाना नंद नगरी दिल्ली में संपर्क कर सकते हैं। अगली जो सूचना है वो पुरुष का मृतक हालत में एक शव मिला है जिनका नाम ज्ञात नहीं है। इनकी आयु लगभग 50 से 55 वर्ष है। शरीर की बनावट पतला शरीर, ऊंचाई और कद 5 फुट 5 इंच है। इनके संबंध में किसी को कोई सूचना प्राप्त हो तो कृपया थाना नंद नगरी दिल्ली में संपर्क करें। खोए हुए व्यक्ति का नाम है सुनीता, पत्नी जमुना प्रसाद। इन्हें अंतिम बार 30/4/2026 को देखा गया था। इनकी आयु 45 वर्ष है। शरीर की बनावट पतला शरीर, ऊंचाई और कद 5 फुट है। ये दिमागी तौर पर कमजोर हैं और घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं। जिस किसी को भी इनके संबंध में कोई सूचना प्राप्त हो तो कृपया थाना प्रभारी थाना नंद नगरी दिल्ली में संपर्क करें। खोए हुए व्यक्ति का नाम है अनकेश, पुत्र पान सिंह। इन्हें अंतिम बार 27/7/2026 को देखा गया। इनकी आयु 21 वर्ष है। शरीर की बनावट पतला शरीर, ऊंचाई और कद 5 फुट 6 इंच है। ये घर से बिना बताए कहीं चले गए हैं। जिस किसी को भी इनके संबंध में कोई सूचना प्राप्त हो तो कृपया थाना प्रभारी थाना नंद नगरी दिल्ली में संपर्क कर सकते हैं। अगली जो सूचना है वो है थाना रोहटा, जनपद मेरठ से। खोए हुए व्यक्ति का नाम है गुनगुन, पुत्री जितेंद्र। इनकी आयु 15 वर्ष है। ऊंचाई 5 फीट 2 इंच। आंख नाक कान औसत। ये हल्के लाल रंग का सूट और सलवार पहने हैं और पैरों में हवाई चप्पल पहने हुए हैं। जिस किसी को भी इनके संबंध में कोई सूचना प्राप्त हो तो कृपया थाना प्रभारी थाना रोहटा जनपद मेरठ में संपर्क करें। अगली जो सूचना है उसमें खोई हुई व्यक्ति का नाम है सना, पुत्री मोमिन। इनकी आयु 15 वर्ष है। ऊंचाई 5 फुट। आंखों का विवरण सामान्य है। आंख नाक काल, सामान्य शरीर। इनका जो पहनावा है वो काला सूट, काला पैजामा और पैरों में चप्पल पहने हुए हैं। जिस किसी को भी इनके संबंध में कोई सूचना प्राप्त हो तो कृपया थाना परीक्षित गढ़ मेरठ में संपर्क कर सकते हैं। अगली जो सूचना है वो थाना कांधला से, जनपद शामली से है। मृतक गुड्डन जो कि गुमशुदा हैं, इनके पिता का नाम बिल्लू है। इनको अंतिम बार 1/10/2025 को मतनावली गांव में देखा गया। इनकी आयु 14 वर्ष है और इनका कद 5 फुट 2 इंच है। ये हल्के हरे रंग का सूट और सलवार पहने हुए हैं। जिस किसी को भी इनकी संबंध

में कोई सूचना प्राप्त हो तो कृपया थाना कांधला शामली में संपर्क कर सकते हैं। खोए हुए व्यक्ति का नाम है वंश, पुत्र विनोद, निवासी ग्राम टिटोडा, थाना खतौली, जनपद मुजफ्फरनगर।

औसत। ये सफेद रंग की टी शर्ट, नीले रंग की पैंट और पैरों में चप्पल पहने हुए हैं। जिस किसी को भी इनके संबंध में कोई सूचना प्राप्त हो तो कृपया थाना प्रभारी थाना सरधना मेरठ में संपर्क कर सकते हैं। खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से कुछ ही देर में यानी 4:20 पर आप सुन सकेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़।

परिक्रमा कार्यक्रम होगा 4:30 पर। लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंजनी हम लेकर आएंगे 5:10 पर। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। हिंदी में समाचार होंगे 6:00। 6:05 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार। 6:10 पर होगा हमारा कार्यक्रम चहल पहल।

किसानवाणी कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 7:05 पर। गजल और कव्वाली का कार्यक्रम होगा शाम 7:35 से। मुशायरा ये कार्यक्रम होगा रात्रि 8:00। 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। अखिल भारतीय फिल्म पत्रिका कार्यक्रम चित्त भारती आप सुन सकेंगे रात्रि 9:30 पर।

0: and 56 for the remaining post as on the closing date. The last date to apply is 21 days from publication of this vacancy notice in the Employment News. For qualifications, experience and application details, kindly visit the National Book Trust website, that is at www.nbtindia.gov.in. I repeat, it is www.nbtindia.gov.in. National Highways Authority of India, NHAI, Ministry of Road Transport and Highways invites applications for one post of Deputy General Manager Environment on deputation basis. The post is in Level 12 as per the 7th CPC. The number of vacancies may be increased or decreased according to the requirements of NHAI. Eligible candidates are required to submit their applications online as per the prescribed procedure. The last date for submission of online applications is 19/8/2026 by 6 p.m. Details regarding age limit, eligibility, experience, terms of deputation and application procedures available on the NHAI website. Candidates should also regularly check the website for any corrigendum, addendum and cancellations. For details, kindly look up the website at www.nhai.gov.in. Maulana Azad National Institute of Technology, MANIT, Bhopal, an institute of national importance under the Ministry of Education, Government of India, invites online applications from Indian citizens and overseas citizens of India cardholders for faculty positions in various departments. The vacancies include Assistant Professor Grade 1 on contract basis, Academic Level 10, Assistant Professor Grade 1 Level 12, Associate Professor Level 13A2 and Professor Level 14A. The advertised vacancies include reserved positions for UR, ST, OBC, NCL, EWS and PWBD categories as per government norms, and the number of vacancies may vary according to institutional requirements. The last date for submission of online applications is 24/8/2026. Detailed advertisement, department-wise vacancies, eligibility criteria, reservation provisions and application instructions are available on the institute's website. Do visit www.manith.ac.in. I repeat, it is www.manith.ac.in. All India Institute of Medical Sciences, AIIMS Rishikesh, invites offline applications from suitable candidates for various Group A and Group B posts on deputation basis. The vacancies include Medical Superintendent, Senior Analyst, System Analyst, Senior Programmer, Analyst, Senior Procurement cum Stores Officer, Chief Dietitian, Chief Medical Social Service Officer, Hospital Architect, Senior Accounts Officer, Finance and Chief Accounts Officer, Executive Engineer Electrical, Chief Medical Record Officer, Supervising Medical Social Service Officer, Security Officer, Accounts Officers, Assistant Stores Officer, Private Secretary, Assistant Engineer for Vigilance Cell, Manager, Supervisor, Gas Officer, CSSD Supervisor, Chief Pharmacist, Senior Pharmacist, Pharmacist Grade 1 and Sanitation Officer. The post carry pay levels ranging from level 6 to level 14, with the number of vacancies vary by post and subject to change according to the institute's requirement. The maximum age limit is 58 years for medical superintendent and 56 years for all other posts as on the closing date. The last date for receipt of applications is 45 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. For detailed eligibility, qualification, experience, terms and conditions and the application format, kindly visit the official AIIMS Rishikesh website. That is at www.aimsrishikesh.edu.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: Namaskar. रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। अनुसंधान वैज्ञानिक कुल पदों की संख्या 14, परियोजना वैज्ञानिक ग्रेड 1 कुल पदों की संख्या 2, परियोजना वैज्ञानिक बी कुल पदों की संख्या 8, परियोजना एसोसिएट ग्रेड 1 कुल पदों की संख्या 4, परियोजना एसोसिएट 2 कुल पदों की संख्या 18 और कनिष्ठ अध्येता कुल पदों की संख्या 2। विस्तृत विज्ञापन और ऑनलाइन आवेदन के लिए देखिए कृपया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वेबसाइट www.nrsc.gov.in। उत्तर पूर्वीय पुलिस अकादमी आमंत्रित करती है अतिरिक्त निदेशक पद के लिए आवेदन। भर्ती प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जानी है। योग्यता, अनुभव, बायोडाटा, प्रोफॉर्मा आदि के बारे में जानकारी के लिए देखिए उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी की वेबसाइट nepa.gov.in। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान वारंगल को आवश्यकता है प्रधान वैज्ञानिकी तकनीकी अधिकारी, प्रधान छात्र गतिविधि और खेलकूद अधिकारी, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी तथा सहायक पंजीयक की। विस्तृत विज्ञापन, योग्यताएं, अनुभव, वेतन आदि की जानकारी उपलब्ध है वेबसाइट पर, जिसका पता है nitw.ac.in/staff-recruit। आवेदन ऑनलाइन ही जमा किए जा सकते हैं जिसकी अंतिम तिथि रहेगी 19 अगस्त 2026। विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण में महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक, जनसंपर्क अधिकारी और सहायक प्रबंधक की रिक्तियां उपलब्ध हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट www.mca.gov.in। इसके अतिरिक्त आप इस वेबसाइट पर भी देख सकते हैं www.iepf.gov.in। राष्ट्रीय बाल भवन में आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि को बढ़ाने संबंधी सूचना। राष्ट्रीय बाल भवन में वेतन स्तर 7 में सहायक लेखा अधिकारी के पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर 3 साल की अवधि के लिए भरने संबंधी एक विज्ञापन 2 मई 2026 को रोजगार समाचार, टाइम्स ऑफ इंडिया तथा दैनिक जागरण में प्रकाशित किया गया था। इन पदों के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तय की गई थी 30 जून 2026, लेकिन इसे अब 30 दिनों तक के लिए और बढ़ा दिया गया है और ये 30 दिन अतिरिक्त गिने जाएंगे इस विज्ञापन के रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशन के। रोजगार समाचार पत्र जो 8 से 14 अगस्त 2026 का है उससे 30 दिनों के भीतर आप आवेदन कर सकते हैं। और अधिक जानकारी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो देखिए वेबसाइट www.nationalbalbhavan.nic.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एम्प्लॉयमेंट न्यूज। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
4: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
5: विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, यही तिरंगा है जो आज हर भारतीय के मन में गर्व जगाता है। यही तिरंगा है जिसकी छाव में हमारी विविधता एकता बन जाती है और जिसकी आन के लिए अनगिनत वीरों ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। आज 15 अगस्त है, स्वतंत्र भारत की 80वीं वर्षगांठ। आज का दिन केवल कैलेंडर की तारीख नहीं बल्कि ये उस संघर्ष की याद है जिसने हमें स्वतंत्र भारत दिया

ये उन अनगिनत बलिदानों को नमन करने का दिन है जिनकी वजह से आज हम अपने सपनों को अपनी राह दे सकते हैं, और ये उस संकल्प को दोहराने का दिन है कि भारत की प्रगति में हम भी अपना योगदान देंगे। आज जब देश का तिरंगा आसमान में शान से लहरा रहा है, तो आइए हम सब भी अपने भीतर वही ऊर्जा, वही विश्वास और वही देश

0: संकल्प है, नई मंजिलें हैं और नए सपनों को साकार करने का नया आत्मविश्वास है। तो इसी गर्व, उमंग और सकारात्मक संकल्प के साथ शुरू करते हैं आज की विशेष परिक्रमा। आज उस भारत के नाम जो अपनी विरासत पर गर्व करता है, वर्तमान को सशक्त बना रहा है और भविष्य की ओर पूरे आत्मविश्वास से बढ़ रहा है। मैं हूँ वैष्णवी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी स्वतंत्र भारत दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: एंड टू यू ऑल्सो वैष्णवी। वेल, दिस इज मी शगुन चोपड़ा विद वैष्णवी टुडे। एंड यस, मे द ट्राइकलर ऑलवेज फ्लाई हाई। Freedom in our mind, faith in our words, and pride in our souls. Independence Day 2026. Well, yes, Independence Day. Whether you are connecting with family members, expressing gratitude to colleagues, or sharing patriotic updates, well, having the right words makes all the difference. And there were countless ordinary people who set aside their personal comforts to contribute to the struggle for freedom. That is why, upon seeing the tricolor today, one feels not only pride and proud, but also a sense of responsibility, especially, which is to further strengthen through our own actions the freedom that was won at such a great cost. And well, yes, we are united. And let's also salute the martyrs for the freedom we enjoy today. Jai Hind.
0: जी बिल्कुल। और श्रोताओं, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं आज के कुछ प्रमुख खबरों की ओर। नजर डालते हैं आज की क्या प्रमुख हेडलाइंस रही हैं। शगुन,
1: यस, बिगिनिंग नाउ। नेशन सेलिब्रेट्स इट्स 80th इंडिपेंडेंस डे टुडे विद एंथुसियाज्म। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लीड्स द नेशन बाय होस्टिंग द नेशनल फ्लैग एट रेड फोर्ट इन दिल्ली।
0: लाल किला पर पहली बार वंदे मातरम का गायन हुआ।
1: एंड इन हिज एड्रेस The Prime Minister announces free online coaching for poor and middle class families and training in AI skills to 1 crore youth in next one year.
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार के रूप में उभर रहा है। कई देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं।
1: Mr. Modi expresses dismay over some nations trying to weaponize resources to flaunt their dominance, crediting India's spirit of Atmanirbharta in meeting the challenge.
0: विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया।
1: At least 20 people killed in Indonesia after a 7.7 magnitude earthquake hits its eastern coast.
0: और गाले में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में दोनों के बीच मुकाबला जारी।
1: सो वैष्णवी, दिस इज आवर सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, एंड व्हाट एल्स वुड इट बी अबाउट? इट्स इंडिपेंडेंस डे टुडे।
0: श्रोताओं, जिस आजादी का जश्न हम आज मना रहे हैं, उसके पीछे वर्षों का संघर्ष है।
1: ट्रू।
0: अनगिनत बलिदान है और लाखों दिलों की एक ही पुकार थी, भारत आजाद हो। किसी ने अपना बचपन खोया, किसी ने अपना परिवार, किसी ने अपना जीवन, लेकिन देश के आजादी के सपने से कभी समझौता नहीं किया। 15 अगस्त 1947 को जब तिरंगा पहली बार स्वतंत्र भारत के आसमान में शान से लहराया, तो उसके साथ उन हर आंखों के सपने भी पूरे हुए जिन्होंने गुलामी के अंधेरे में आजादी का उजाला देखा था। आज हम उसी उजाले में जी रहे हैं, इसलिए इस तिरंगे को सलाम करते हुए उन सभी वीरों को नमन करें जिन्होंने हमें ये दिन देखने का सौभाग्य दिया।
2: हमारा गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक रहा है।
3: हम चलते हैं 1947 में 14 और 15 अगस्त की गौरवान्वित मध्य रात्रि तक, जब प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में भारत ने अपनी नियति से साक्षात्कार किया। उस भाषण में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विजयी समापन का गौरव और उल्लास था।
2: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भारत के लिए महत्वाकांक्षी परिकल्पनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की।
4: Our public servants in various departments of government have to shed their role as rulers and have to become true servants of the people that their compeers are in all free countries. The people and the government on their side have to give them their trust and assure them conditions of service in keeping with the lives of the people in whose midst they have to live and serve. We welcome the Indian states which have acceded to India, and to their people we offer our hands of comradeship. To the princes and the rulers of the states we say that we have no designs against them. We trust they will follow the example of the King of England.

0: and become constitutional rulers. They would do well to take as their model the British monarchical system, which has stood the shock of two successive world wars when so many other monarchies in Europe have toppled down. To Indians settled abroad in British colonies and elsewhere, we send our good wishes and assurances of our abiding interest in their welfare. To our minorities, we give the assurance that they will receive fair and just treatment and their rights will be respected and protected.
1: भारत अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों और राजनेताओं के आदर्शों पर चलता रहा है, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए जीवन समर्पित किया और निष्ठापूर्वक विभिन्न संवैधानिक पदों पर सेवारत रहे। आज अपार शक्ति सामर्थ्य से संपन्न भारत अपनी विशाल आर्थिक क्षमता और मानव पूंजी के साथ विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।
2: आइए हम एक साथ मिलकर संविधान सभा में सुचेता कृपलानी के अमर स्वर में गुंजित गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की मूल भावना के साथ वर्ष 2047 में भारत की स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष की ओर बढ़ें।
3: Well, yes. So the grand celebrations at the Red Fort, they have already unfolded with Prime Minister Narendra Modi hoisting the national flag and thereby addressing the nation from the historic ramparts. And this year, there was a special first. For the first time since independence, Vande Mataram echoed from the Red Fort before the flag was hoisted. We have a detailed report. We'll now listen into it. It's a special report from our correspondent.
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद अंतर सेवा और दिल्ली पुलिस के संयुक्त गार्ड ने उन्हें सलामी दी।
5: अंतर सेवा पुलिस
4: इसके बाद प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं पहली बार लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किया गया। ध्वजारोहण के बाद भारतीय वायुसेना के दो MI-17 हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर फूलों की बारिश की। इनमें से एक हेलीकॉप्टर पर राष्ट्रीय ध्वज था और दूसरे पर वंदे मातरम लिखा हुआ ध्वज था। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद NCC कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने वंदे मातरम का गायन किया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। सेना, नौसेना और वायुसेना के कुल 2500 कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने समारोह में हिस्सा लिया। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों ने लाल किले पर आयोजित समारोह में भाग लिया। इनमें पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, पीएम मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले, भारत टैक्सी के चालक, स्वच्छ भारत मिशन के सफाई कर्मचारी और राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम से जुड़े युवा शामिल थे। लाल किले पर आयोजित समारोह का समापन आसमान में तिरंगे गुब्बारे छोड़ने के साथ हुआ। अनुपम और आनंद के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: सो लिसनर्स, वंदे मातरम आवर नेशनल सॉन्ग, इट कैरीज द मेमोरी ऑफ अ मूवमेंट। सो एज वी मार्क 150 इयर्स ऑफ वंदे मातरम, अ सॉन्ग रिटन इन द एरा ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, वंस अगेन बिकेम पार्ट ऑफ द नेशंस इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस, एंड दिस हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम।
6: जी, और शगुन, आज जब हम स्वतंत्रता की उस ऐतिहासिक विरासत से आगे बढ़ते हैं तो एक सवाल स्वाभाविक रूप से सामने आता है, आने वाले भारत की दिशा कौन तय करेगा? जवाब है आज का युवा। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य केवल एक सरकारी संकल्प नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। स्वामी विवेकानंद का यह अमर संदेश, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, आज के युवाओं के उत्साह और आत्मविश्वास में दिखाई देता है।
3: इंस्पायरिंग वर्ड्स। एंड दिस ईयर यूथ टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, इंडिजिनस कैपेबिलिटीज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दे हैव बीन प्लेस्ड फर्मली एट द हार्ट ऑफ द सेलिब्रेशंस। वैष्णवी,
6: 6G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर सेमीकंडक्टर तक, ग्रीन हाइड्रोजन और सोलर एनर्जी से लेकर स्वदेशी डिफेंस टेक्नोलॉजी तक, देश आगे की ओर देख रहा है।
3: एंड इनफैक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर द इक्विपमेंट यूज्ड एट द रेड फोर्ट सेरेमनी वाज इंडिजिनसली बिल्ट। And this gives a strong message of आत्मनिर्भर भारत, right?
6: बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी ने अगले साल 1 करोड़ युवाओं को AI की ट्रेनिंग देने की घोषणा की है। साथ ही 5 से 15 वर्ष के बच्चों की खेल प्रतिभा को पहचानने और उसे आगे बढ़ाने के लिए टैलेंट हंट की पहल की भी बात की गई है।
3: एंड वैष्णवी, अ डेवलप्ड इंडिया विल नॉट ओनली नीड इंजीनियर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स बट ऑल्सो साइंटिस्ट, एथलीट्स, क्रिएटर्स।

0: farmers, innovators, influencers, dreamers, and well, Independence Day can really be limited to one ceremony in Delhi, right? No.
1: बिल्कुल नहीं शगुन, हर घर तिरंगा से लेकर माई गॉव की गतिविधियों तक, स्कूलों कॉलेजों से लेकर समुदायों और सरकारी संस्थानों तक देशभर के नागरिकों ने स्वतंत्रता दिवस को एक जन उत्सव में बदल दिया है.
0: एंड वैष्णवी, द सेलिब्रेशंस हैव ट्रैवल्ड फार बियॉन्ड इंडिया टू, एंड इंडियन एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, दे मार्क द ओकेजन विद फ्लैग होस्टिंग सेरेमनीज, कल्चरल प्रोग्राम्स ऑल्सो फॉलो, एंड कम्युनिटी गैदरिंग्स. So in Singapore, Beijing and Hong Kong, members of the Indian diaspora came together to celebrate their connection with India, the Independence Day celebrations thereby.
1: इसका मतलब यही हुआ कि तिरंगे की पहचान सिर्फ भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं है. वैश्विक नेताओं ने भी बधाई संदेश भेजे. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती साझेदारी को रेखांकित किया. वहीं अमेरिका के विभिन्न राज्यों के नेताओं और सांसदों ने भारतीय अमेरिका समुदाय के योगदान की सराहना की.
0: And our program, which you are listening to, listeners, right now, is called Parikrama. So on India's most special day, how could we not take a Parikrama of India? So well, let's begin with me and Vaishnavi, Meesha Gun Chopra and Vaishnavi. Well, we are bringing you the spirit and celebrations of Independence Day from across the nation. First, let's start with Assam. The focus was on infrastructure, flood rehabilitation and a long-term vision 2047 with major investments planned in roads, schools and rural and urban development.
1: और अब हमारी ये परिक्रमा पहुंचती है कर्नाटक, जहां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तकनीक और रोजगार से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दिया गया. छठी कक्षा से AI की शिक्षा, कोडिंग पहल, सैटेलाइट और ड्रोन के जरिए खेती का सर्वे और रोजगार के नए अवसर, यानी युवा शक्ति को भविष्य की तकनीक से जोड़ने की कोशिश.
0: लेट्स गो नाउ टू छत्तीसगढ़. इंडिपेंडेंस डे कैरीड अ पर्टिकुलरली पावरफुल मैसेज फ्रॉम बस्तर. Villages that had once been affected by Maoist violence hoisted the tricolor, with many doing so far for the first time since independence. For the first time.
1: और अब आगे बढ़ते हैं मिजोरम की तरफ. तो मिजोरम में विकास को संतुलित और समावेशी बनाने पर बल रहा. वहीं तेलंगाना में विविधता में एकता को केंद्र में रखते हुए विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में नागरिकों की भागीदारी का संदेश दिया गया.
0: Heading now to त्रिपुरा. More than 1,300 students, teachers and alumni came together for Vande Mataram in 1,000 voices, Nagaland. Vande Mataram was rendered for the first time during the state-level Independence Day celebrations alongside a strong message of peace, unity and development there.
1: वहीं पंजाब में अटारी वाघा बॉर्डर पर तिरंगे की शान को देखने को मिली, जबकि हुसैनीवाला में शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि दी गई. जम्मू कश्मीर के सभी 10 जिलों में स्वतंत्रता दिवस समारोह हुए और श्रीनगर का बख्शी स्टेडियम मुख्य आयोजन का केंद्र रहा. वहीं हरियाणा से तमिलनाडु और झारखंड से पश्चिम बंगाल तक अलग अलग राज्यों में इस अवसर पर युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा, सामाजिक न्याय, विकास और बेहतर प्रशासन जैसे मुद्दे प्रमुखता से सामने आए.
0: Now I'm about to present a beautiful idea. India does not celebrate freedom in just one language or one culture or one tradition. Right?
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने शगुन.
0: We celebrate it in hundreds of voices while standing beneath one tricolor. So Mahatma Gandhi once said, "The future depends on what you do today," and that brings us to the India of today. An India looking back at the sacrifices of its freedom fighters while looking ahead. Towards 2047.
1: बिल्कुल शगुन, जैसा आपने कहा, हमारे देश की सबसे खूबसूरती यही है, विविधता में एकता. और इस पूरे सफर को देखते हुए एक बात तो साफ है, भारत की आजादी की कहानी सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, यह लगातार आगे बढ़ते रहने की कहानी भी है. और शायद आज हम सबके लिए एक सवाल जरूरी है, अपने भारत को और मजबूत बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आजादी का इतिहास लाखों लोगों ने मिलकर रखा था. और आने वाले भारत का इतिहास भी हम सबकी भागीदारी से ही लिखा जाएगा. भारत को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई.
0: जय हिंद. नाउ मूविंग ऑन, इट्स आल्सो हरियाली तीज, सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट एज वेल.
1: सावन की बारिश के साथ जब प्रकृति का रंग बदलता है, पेड़ पौधों पर हरियाली छा जाती है और त्योहारों की रौनक बढ़ने लगती है, तो वातावरण में एक अलग ही उमंग महसूस होती है. झूलों की सजावट, हाथों में मेहंदी और लोकगीतों की गूंज, ये सभी मिलकर हरियाली तीज के आगमन का संकेत देते हैं.

0: beautiful. So there is something truly magical about Indian festivals. Everybody knows that. And every season brings its own celebration, its own colors, its own traditions, and its own beautiful story. Hariyali Teej captures the very spirit of the monsoon greenery, devotion, love, and togetherness.
1: और हरियाली तीज के इस खूबसूरती के पीछे सिर्फ सावन की हरियाली नहीं है शगुन, अगर हम देखें तो उसके पीछे एक गहरी धार्मिक मान्यता भी जुड़ी हुई है। क्या आप जानते हैं श्रोताओं कि इस पर्व की कथा में हमें सीधे देवी पार्वती और भगवान शिव की तपस्या और समर्पण की ओर ले जाती है। मान्यता है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए लंबे समय तक कठोर तपस्या की। इसी अटूट साधना और उनकी दृढ़ संकल्प की स्मृति हरियाली तीज की परंपरा से जुड़ी हुई है।
0: Well, true Vaishnavis, according to tradition, goddess Parvati performed intense penance to win Lord Shiv as her husband. And it is believed that she undertook this spiritual journey through 108 births. And in her final birth, as the daughter of King Himavan, she gave up the comforts of the palace and devoted herself completely to penance.
1: पार्वती की तपस्या के सामने परिस्थितियां भी उनके संकल्प को डिगा नहीं सकी। अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसी पवित्र मिलन की स्मृति में हरियाली तीज मनाई जाती है, जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को पड़ती है।
0: एंड मैरिड वुमेन दे ऑब्जर्व द फास्ट एंड प्रे फॉर द वेलबीइंग एंड लॉन्जेविटी ऑफ देयर हस्बैंड्स एंड फॉर अ हैप्पी मैरिड लाइफ। Unmarried women seek the blessings of Goddess Parvati for a loving and devoted life partner.
1: और इस पर्व की पहचान इसके रंगों और रीति रिवाजों से भी होती है। महिलाएं हरे रंग के परिधान और चूड़ियां पहनती हैं, हाथों पर मेहंदी रचाती हैं और सजे हुए झोलों के आसपास उत्सव का आनंद लेती है। 16 श्रृंगार की परंपरा भी इस अवसर को विशेष बनाती है।
0: And in many regions, married women exchange bangles, sindoor, sweets and gifts. This tradition is associated with Sindhara, adding another layer of warmth and togetherness to the festival. Jaipur's Hariyali Teej is exceptionally famous due to its grand royal procession, also vibrant Leheriya traditions and deep cultural tribute to monsoon greenery and marital devotion. And Vaishnavi, it stands out because of the iconic Shahi Sawari, the royal procession of Teej Mata, the festive culinary wave of Ghevar. And centuries old heritage rituals and well yes we will continue
1: जी राजस्थान में आज हरियाली तीज का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। तीज पर मेहंदी लगाने, झूला झूलने और लोक गीतों का भी विशेष महत्व है। कई स्थानों पर मेले भी भरते हैं। महिलाओं के इस विशेष पर्व पर पर्यटन विभाग की ओर से राजधानी जयपुर में तीज की सवारी निकाली जाएगी।
2: सावन के साथ प्रदेश में चढ़ा लहरिये का रंग अब तीज के उल्लास में बदल गया है। महिलाएं 16 श्रृंगार कर पारंपरिक पचरंगी और मोठड़ा लहरिये के साथ आधुनिक डिजाइन तथा गोटा पत्ती वर्क वाले परिधान पहनकर शहर के बाग बगीचों और पार्कों में सजाए गए झूलों का आनंद ले रही हैं। हाथों में मेहंदी रची है, चूड़ियों की खनक सुनाई दे रही है, पायलों की झंकार और लोकगीत तथा मल्हार गूंज रहे हैं। वहीं तीज की रील बनाकर भी युवतियां और महिलाएं मॉडर्न ट्रेंड में कहीं भी पीछे नहीं हैं। पर्यटन विभाग की ओर से आज राजधानी जयपुर में तीज की सवारी निकाली जा रही है। बैंड बाजों और शाही लवाजमे के साथ जनानी ड्योढ़ी से ये सवारी निकल रही है। इसके लिए प्रशासन ने यातायात के विशेष प्रबंध किए हैं। इसी कड़ी में कल बूढ़ी तीज की सवारी भी निकाली जाएगी। हरियाली तीज से एक दिन पहले कल सिंजारा पर्व पारंपरिक उत्साह आधुनिक रंगत के साथ मनाया गया। सिंजारा दूज यानी श्रावण शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। परंपरा के अनुसार नवविवाहिता का पहला सिंजारा ससुराल से आता है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर से माधुरी वशिष्ठ।
0: May the blessings of Lord Shiv and Goddess Parvati bring all of us happiness and warm wishes to everyone on Hariyali Teej. Today listeners, it's also Navroz. And in India, New Year doesn't always arrive on January the 1st. Different communities and regions welcome the New Year on different days, one of which is Navroz.
1: शगुन, जैसा ही हम पहले चर्चा कर ही रहे थे कि भारत की सांस्कृतिक विविधता की खूबसूरत मिसाल उसके अलग अलग पारंपरिक नववर्ष भी है, वैसे ही महाराष्ट्र में गुड़ी

0: केरल में विशु और पंजाब में बैसाखी इन पर्वों के साथ नई शुरुआत और नए वर्ष का स्वागत करने की परंपरा जुड़ी हुई है।
1: So, Vaishnavi, why don't we turn our attention to another fascinating New Year tradition, which we've already told you. It's Navroz, the Iranian and Persian New Year, celebrated with great enthusiasm by Zoroastrians, including the Parsi community in India. So, Navroz is inscribed on UNESCO's representative list of the intangible cultural heritage of humanity, reflecting its significance as a shared cultural tradition.
0: तो आज नवरोज के अवसर पर इस पर्व से जुड़े एक बेहद खूबसूरत विचार को याद करते हैं। नया दिन यानी नई शुरुआत, नई उम्मीद रखने का दिन, बीते हुए को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का दिन और आने वाले कल का स्वागत करने का दिन। तो नवरोज मनाने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से नवरोज मुबारक। और अब समय हो चला है क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि आज क्या कुछ खास है उनके पास।
1: सो वैष्णवी, देयर इज अ पैट्रियोटिक एटमॉस्फेयर अक्रॉस द कंट्री ऑन इंडिपेंडेंस डे एट द महाकालेश्वर टेंपल इन उज्जैन। डिवोशन टू लॉर्ड शिव वाज आल्सो सीन अलोंग विद अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ पैट्रियटिज्म।
2: एट द वर्ल्ड फेमस श्री महाकालेश्वर टेम्पल इन उज्जैन मध्य प्रदेश, बाबा महाकाल वॉज गिवन अ स्पेशल ट्राई कलर डेकोरेशन अर्ली दिस मॉर्निंग ऑन इंडिपेंडेंस डे। ड्यूरिंग द भस्मा आरती अ ट्राई कलर त्रिपुंड वॉज मेड ऑन बाबा महाकाल्स फोरहेड यूजिंग सैफ्रॉन, व्हाइट एंड ग्रीन कलर्स। The temple doors were opened early in the morning for the Bhasma Aarti, followed by the Abhishek and worship of Lord Mahakal with Panchamrit. Baba Mahakal was then decorated with tricolor tripund, a silver om and a crown decorated with bilwa leaves and a Rudraksha garland. As part of the Bhasma Aarti tradition, Lord Ganesha, Goddess Parvati and Lord Kartikeya were also worshipped. After this, sacred bhasma was offered to the Jyotirlinga as per the rituals. A large number of devotees had darshan of Baba Mahakal in his tricolor form. For Parikrama, Abhinav Goyal, Akashvani Bhopal.
0: शगुन, अब समय हो गया है खेल जगत से कुछ खबरें देने का श्रोताओं को, तो क्या कुछ खबर है आज?
1: Well, we have updates from cricket. India were 236 for 2 against host Sri Lanka in the first of the two test series at Goa International Cricket Stadium. Earlier, India won the toss and elected to bat.
0: अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। सबसे पहले बात करते हैं सरदार अजीत सिंह के बारे में। जिस दिन देश ने आजादी की पहली सुबह देखी, उसी दिन पंजाब के इस निर्भीक क्रांतिकारी ने अंतिम सांस ली। सरदार अजीत सिंह शहीद भगत सिंह के चाचा और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ पंजाब में किसानों को संगठित किया। पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। लंबे समय तक निर्वासन में रहने के बाद वे स्वतंत्र भारत की धरती पर लौटे, लेकिन 15 अगस्त 1947 को उनका निधन हो गया। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महादेव देसाई के बारे में। आज उनकी पुण्यतिथि है। महादेव देसाई महात्मा गांधी के अत्यंत करीबी सहयोगी, सचिव और स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण कार्यकर्ता थे। उन्होंने गांधी जी के विचारों और आंदोलनों तक को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1942 में पुणे के आगा खान पैलेस में उनका निधन हुआ।
1: Today we are also remembering Ustad Amir Khan. Well, one of the greatest and most influential Indian classical singers of the 20th century. He founded the famous Indore Gharana. He was deeply loved for his deeply spiritual, slow and meditative style of singing.
0: बिल्कुल, उस्ताद आमिर खान की गायकी में शास्त्रीय संगीत की गहराई, ठहराव और आत्मिक अनुभूति का अद्भुत संगम था। आइए आपको सुनाते हैं उनके सुरमई विरासत की एक झलक।

कैलाश सांखला को भारत में टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। विदेश में बाघों के संरक्षण के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक थे

0: और प्रोजेक्ट टाइगर के पहले निदेशक बने। उनके प्रयासों ने भारत के बाघ संरक्षण को एक संगठित दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: Well, we are also remembering Maxwell Roach, the jazz drummer and composer, a pioneer of bebop. He worked in many other styles of music and is generally considered one of the most important drummers in history.

0: आज के दिन जन्मे अरबिंदो घोष का जीवन भारत की स्वतंत्रता और आध्यात्मिक चेतना दोनों से गहराई से जुड़ा रहा। वे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं में रहे और बंदे मातरम जैसे पत्रों के माध्यम से पूर्ण स्वतंत्रता का विचार सामने रखा। बाद में श्री अरबिंदो ने पुदुचेरी में आध्यात्मिक साधना की और समग्र योग का मार्ग विकसित किया। आज रामदरस मिश्र की जयंती है। रामदरस मिश्र ने कविता, कहानी और उपन्यास तथा साथ ही आलोचना हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं में उल्लेखनीय योगदान दिया। ग्रामीण जीवन और आम आदमी की संवेदनाओं को उन्होंने अपनी रचनाओं में विशेष स्थान दिया। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
1: टुडे वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग द अनफॉरगेटेबल राखी गुलजार। A cinematic journey in the world of Indian cinema, few names shine as brightly as Rakhi Gulzar. And well, we know her for her incredible talent and versatility.
0: दाग, तपस्या, राम लखन, करण अर्जुन और सीमा जैसे फिल्मों में उनके अभिनय को विशेष सराहना मिली। उन्हें पद्मश्री और दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों सहित कई सम्मान मिले हैं। आइए आपको सुनाते हैं उसी दौर का एक संगीत।

आज जयंती है लोकप्रिय गीतकार इंदिवर की, जिन्होंने गीतों को अपने शब्द दिए। इंदिवर का वास्तविक नाम वैसे तो श्यामलाल बाबू राय था। उन्होंने हिंदी सिनेमा को अनेक लोकप्रिय गीत दिए। आइए आपको सुनाते हैं उनकी कलम से निकला एक यादगार।

0: सदा।
1: खूबसूरत गीत के साथ आज की कार्य परिक्रमा कार्यक्रम में बस इतना ही। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मिलकर एक सशक्त, समृद्ध और उज्जवल भारत का निर्माण करें। जय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अतहर सईद। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि सरकार के प्रयासों के कारण 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल सके हैं और भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में कामयाब रहा है। इनमें कोविड महामारी और यूक्रेन तथा पश्चिम एशिया संकट प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि इन संकटों के दौरान टीके, ईंधन, गैस, डीजल और उर्वरक की कमी को लेकर काफी अफवाहें फैलाई गई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्र के भीतर नए संसाधनों और भंडारों की खोज की जा रही है। श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 से अब तक भारत 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता कर चुका है।
1: 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा FTA एग्रीमेंट हो रहा। ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं, ये बहुत बड़ा अवसर है। मैं मेरे MSMEs को कहना चाहूंगा कि हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है। दुनिया में हमें पहुंचना है। भारत के उत्पाद की हर चीज विश्व के बाजार में पहुंचे, चाहे हमारा टेक्सटाइल हो, हमारी मशीनरी हो, दवाइयां हो, हमने मौका छोड़ना नहीं है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने अगले वर्ष एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने गरीबों और मध्यवर्गीय परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग देने की घोषणा की।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष NS राजा सुब्रमणि, थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री अरविंदो की जयंती पर उन्हें स्मरण किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा, श्री अरविंदो को एक महान दार्शनिक, राष्ट्रवादी कवि और विचारक बताया, जिन्होंने अपना जीवन भारत के स्वतंत्रता तथा मानव प्रगति के लिए समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री ने पारसी नववर्ष नवरोज के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पारसी समुदाय के लोगों के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान ने देश को अनगिनत तरीकों से समृद्ध किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने छोटे करदाताओं की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना FASTDS नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इसके अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों और अघोषित विदेशी आय की घोषणा कर सकते हैं। ये योजना कल से लागू होगी और इसके अंतर्गत ब्यौरा दाखिल करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 31 दिसंबर है। गोल में श्रीलंका के साथ 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 2 विकेट पर 239 रन बना लिए हैं। इससे पहले आज भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। FIH हॉकी विश्व कप में भारत का मुकाबला वेल्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुकाबला भारत ने 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भी तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Valsa Williams. The nation is celebrating the 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi led the celebrations from the iconic Red Fort in Delhi. The hoisting of the national flag was synchronized with a 21-gun salute. For the first time, national song Vande Mataram was rendered during the Independence Day celebrations at the Red Fort. The Prime Minister described the chanting of Vande Mataram at the Red Fort as a historic moment.
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए, उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं।
2: Highlighting the achievements made in different sectors, Prime Minister said, over the past 12 years, defense production has increased nearly fourfold, khadi and village industries production grew nearly fivefold, electronic manufacturing nearly sevenfold, modern railway coach manufacturing 21-fold, and mobile phone manufacturing increased 33-fold. He said internet users increased nearly fourfold and digital transactions by 100 times. The Prime Minister announced to provide free online coaching for poor and middle-class families for various public examinations. He said this is a revolutionary step towards making quality education accessible to everyone, led by top teachers. The Prime Minister said the government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI sector. Mr. Modi said the country has to focus on 3 things, cost, quality and skill. The Prime Minister highlighted the government's focus on critical minerals, saying that modern technology depends entirely on critical minerals and India is actively working to secure its position in this sector. Prime Minister Modi said India has successfully overcome several unprecedented crises while progressing towards the goal of a developed nation by 2047. Indian embassies and consulates marked India's 80th Independence Day today with flag hoisting ceremonies, cultural programs and community gatherings. Thousands of Indian nationals and diaspora members joined the celebrations in Singapore, China and Hong Kong, underscoring India's strong people-to-people ties with the region. High commissioners and ambassadors hoisted the tricolour at embassies. The national anthem and Vande Mataram were played and excerpts from President Draupadi Murmu's address were read out. World leaders and foreign missions extended Independence Day greetings to India today, praising its democratic journey, civilizational heritage and expanding role in regional and global cooperation. Prime Minister Narendra Modi has thanked world leaders who extended their greetings on the occasion of the Independence Day of India. They include French President Emmanuel Macron, President of the Maldives Dr. Mohamed Muizu, Slovak Republic's President Peter Pellegrini, Prime Minister of Nepal Balendra Shah and his Bhutanese counterpart Chering Tobgay. The Central Board of Direct Taxes, CBDT, has notified the Foreign Assets of Small Taxpayers Disclosure Scheme, FAST DS Rules 2026. It enables eligible taxpayers to declare certain undisclosed foreign assets, undisclosed foreign income or undeclared foreign assets on payment of a specified tax or fee. The scheme will come into force from tomorrow and the last date for filing a declaration under the scheme is the 31st of December this year. In Indonesia, the death toll has risen to 38 after a 7.7 magnitude earthquake struck off the coast of Flores today. The powerful quake was followed by dozens of aftershocks as rescue teams continued efforts to reach the worst hit areas. In men's cricket, India were 239 for 2 against hosts Sri Lanka on day 1 of the first test of the 2-match series at Kale International Cricket Stadium when rain stopped the play. And with that, we end this news bulletin.
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर, और प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंजनी।

0: लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम राम। तो नीलम बहन, हम हाजिर हैं अपने श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम लोक रंजनी लेकर के। और जैसा कि हमारे सभी श्रोता जानते हैं कि आज 15 अगस्त है, स्वाधीनता दिवस है, तो आप सभी को स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: तुलसी भाई, हमें आजादी यूं आसान नहीं मिली, इसके पीछे लाखों अनाम शहीदों की कुर्बानी है। महात्मा गांधी का अहिंसा का रास्ता, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की शहादत, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, ये नाम

0: इतिहास नहीं, हमारी आत्मा है। गांव-गांव की माताओं ने अपने बेटे देश के लिए दिए, तब जाकर हमें ये आज़ादी नसीब हुई।
1: बिल्कुल, तो इसी क्रम में नीलम बहन सबसे पहले अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं एक देशभक्ति गीत। कलाकार हैं गोपाल सिंह बर्मन।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे गोपाल सिंह बर्मन से ये देशभक्ति गीत।
1: नीलम बहन, हम आज़ादी की बात कर रहे थे अभी इस देशभक्ति गीत से पहले। ये जो आज़ादी हमको मिली है, ये राष्ट्रीय एकता के बिना संभव नहीं थी, और राष्ट्रीय एकता के बिना कोई भी देश प्रगति और स्थिरता प्राप्त नहीं कर सकता। स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही राष्ट्रीय एकता का महत्व भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण रहा है। महात्मा गांधी, भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने भारतवासियों में एकता का भाव जगाया, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे देश ने मिलकर ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वतंत्रता प्राप्त की। ये एकता ही थी जिसने हमें एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरने का मार्ग प्रशस्त किया।
0: बिल्कुल, राष्ट्रीय एकता का मतलब है देश के सभी नागरिकों का भिन्न भिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों के बावजूद एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होकर रहना। भारत एक विशाल देश है जहां विभिन्न क्षेत्र, धर्म, जाति और परंपराओं का संगम देखने को मिलता है। ये विविधता हमारी पहचान है, लेकिन इसके साथ ही ये एकता की आवश्यकता को अंकित करती है।
1: बिल्कुल, राष्ट्रीय एकता से देश में सामाजिक शांति और स्थिरता बनी रहती है, जो किसी भी समाज के विकास के लिए आवश्यक है। जब लोग एकजुट रहते हैं तो वे बाहरी आक्रमणों और आंतरिक समस्याओं का मजबूती से सामना कर सकते हैं। राष्ट्रीय एकता से नागरिकों में सहयोग, भाईचारा और सामूहिक प्रयासों का भाव बढ़ता है, जिससे देश की उन्नति में सहायता मिलती है।
0: बिल्कुल, इस प्रकार राष्ट्रीय एकता न केवल देश की अखंडता के लिए जरूरी है, बल्कि समाज को आगे बढ़ाने और राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए भी अनिवार्य है।
1: बिल्कुल, तो नीलम बहन, ये तो बात रही राष्ट्रीय एकता की, और अब अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं एक और देशभक्ति गीत। कलाकार हैं राजपाल सिंह और योगेंद्र निमचाना।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे राजपाल सिंह और योगेंद्र निमचाना से ये देशभक्ति गीत।
1: नीलम है स्वतंत्रता दिवस सिर्फ झंडा फहराने और मिठाई खाने का दिन नहीं है, बल्कि ये आत्ममंथन का दिन है। गांधी जी ने कहा था, स्वराज का मतलब है पहले खुद पर राज करना। इसीलिए हमें भ्रष्टाचार से, नफरत और भेदभाव से, गंदगी और लापरवाही से और आलस से आजाद होना है। अगर भारत का प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य ईमानदारी से निभाए तो कोई भी भारत को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता।
0: बिल्कुल शशि भाई, स्वतंत्रता दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारा देश सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक विचार है, विविधता में एकता का विचार, वसुधैव कुटुम्बकम का विचार। तो आइए इस स्वाधीनता दिवस पर अपने शहीदों को नमन करें और जीते जी अपने देश के लिए कुछ करने का प्रण लें।
1: बिल्कुल, और इसी के साथ अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं एक और देशभक्ति गीत। कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह से ये देशभक्ति गीत।
1: और इसी देशभक्ति गीत के साथ आज का लोक रंजनी कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी श्रोताओं को राम राम, राम।

0: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
1: नमस्कार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों की खबरों का खास कार्यक्रम खेल खिलाड़ी लेकर आज आपके साथ मैं हूं अजय तोमर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अमीषा पटेल।
2: नमस्कार
1: अमीषा, सबसे पहले हमारे सभी सुनने वालों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और आज लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी खेलों के लिए एक बहुत ही सकारात्मक पहल की बात की है और वो है टैलेंट हंट। ऐसे बहुत सारे खेल हैं जिसमें हम ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसी को कहीं ना कहीं इसी उद्देश्य से कि हम उन सभी खेलों में पार्टिसिपेट करें, प्रधानमंत्री जी ने आज एक विशेष उद्घोषणा की है। आइए आपको सुनवाते हैं।
3: दुनिया में जो ओलंपिक के खेल होते हैं करीब 40 प्रकार के गेम होते हैं और करीब 350-350 स्पर्धाएं होती ओलंपिक में, और आपको जानकर के दुख होगा मेरे देशवासियों, मेरे नौजवानों, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आह्वान करता हूं, मैं आपकी मदद चाहता हूं। 350 जितने स्पर्धाओं में भारत दो तिहाई खेलों में कहीं होता है।

0: ही नहीं, हमारी मौजूदगी नहीं होती, हम क्वालिफाई नहीं होते हैं। हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, हम चाहते हैं कि वो भारत में हो, लेकिन 2036 में जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, जिन स्पर्धाओं में भारत ने छोड़ के रखा है, 3/4 हिस्सा हमारे इंतजार कर रहा है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल 10 साल 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव शहर शहर स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा, बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे,
1: देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे। और कहीं ना कहीं देश के लिए कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, खासतौर से हम बात कर रहे हैं हॉकी की, और हॉकी में लगातार पिछले 2 ओलंपिक से भारतीय हॉकी टीम पदक जीतती आ रही है। और अमीषा, अच्छी बात यह है कि वर्ल्ड कप में भी सकारात्मक शुरुआत भारतीय टीम की तरफ से हो चुकी है। वेल्स के साथ खेलते हुए भारतीय टीम अभी जो 3rd क्वार्टर चल रहा है उसमें भारतीय टीम 2-0 से आगे है। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारतीय टीम ने लगातार अपने पास गेंद रखी है, और जिस तरह से भारतीय टीम ने अभी तक जितने भी अटैक्स बनाए और जो मूव्स बनाए उसका भारत को फायदा भी मिला। और 10वें मिनट में हरमनप्रीत सिंह ने और उससे पहले सुमित ने 2 गोल भारतीय टीम कर चुकी है, और दोनों ही गोल 1st क्वार्टर में भारतीय खिलाड़ियों ने किए हैं। 2रे क्वार्टर में हालांकि वेल्स ने अच्छी हॉकी खेली, लेकिन कहीं ना कहीं एक जिसे हम कैसे डोमिनेंस भारतीय टीम ने बनाया हुआ है, और ये एक बहुत अच्छी बात है। और वर्ल्ड कप में जिस तरह से भारतीय टीम ने अपनी शुरुआत कर दी है, तो हमेशा कहीं ना कहीं ये तो लग ही रहा है कि भारतीय टीम पूरी लय में है।
2: जी बिल्कुल, और अब हम जैसे अभी तो मैच जो है वह लाइव चल रहा है, लेकिन हम बाकी भी जो मेंस टीम के मैच होंगे उस पर नजर डालेंगे। तो आइए नजर डालते हैं जर्मनी वर्सेस मलेशिया के आने वाले मैच पर। गत चैंपियन और दुनिया की 5वें नंबर की टीम जर्मनी का मुकाबला एशिया की तेज तर्रार टीम मलेशिया से होने जा रहा है। दोनों टीमों का यह पहला ग्रुप मैच भारतीय समय अनुसार शाम ठीक 6 बजे शुरू होगा। अगर हम इतिहास और आंकड़ों की बात करें तो इस मुकाबले में जर्मनी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जर्मनी की टीम ने 3 बार पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब जीता है और वे इस बार डिफेंडिंग चैंपियन यानी मौजूदा विजेता के रूप में मैदान पर उतर रहे हैं। कोच आंद्रे हेनिंग ने इस बार भी अपनी टीम में उन 9 दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल किया है जिन्होंने भारत के ओडिशा में हुए पिछले विश्व कप में बेल्जियम को हराकर ट्रॉफी उठाई थी। दूसरी तरफ मलेशिया की टीम, जिसे हॉकी की दुनिया में स्पीड टाइगर्स कहा जाता है, वह विश्व रैंकिंग में 14वें स्थान पर है। मलेशिया ने अब तक एक बार भी विश्व कप का खिताब नहीं जीता है। रिकॉर्ड्स के अनुसार विश्व कप के मंच पर इन दोनों टीमों की भिड़ंत आखिरी बार साल 2018 में हुई थी, जहां जर्मनी ने एक बेहद रोमांचक मुकाबले में मलेशिया को 5-3 से मात दी थी। जर्मनी के कप्तान टॉम ग्राम्बुश की अगुवाई में इस टीम की सबसे बड़ी ताकत इसका सधा हुआ यूरोपीय डिफेंस और खतरनाक ड्रैक फ्लिकर्स है। क्रिस्टोफर रोर और जस्टस वेगांड जैसे अनुभवी फॉरवर्ड्स किसी भी रक्षा पंक्ति को भेदने का दम रखते हैं। वहीं मलेशिया के लिए आज का मुकाबला बहुत बड़ी परीक्षा है। मलेशिया के कोच जानते हैं कि अगर उन्हें पूल बी में जीवित रहना है तो जर्मनी के खिलाफ शुरुआती मिनटों में गोल खाने से बचना होगा। मलेशिया का काउंटर अटैक यानी तेजी से हमला करने की रणनीति आज जर्मनी के मजबूत डिफेंस को कितनी चुनौती दे पाती है, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा।
1: और देखना दिलचस्प यह भी होगा कि इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच जो मुकाबला है वो कैसा रहेगा। भारत के साथ ही इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीमें भी ग्रुप डी में ही हैं, तो ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि ये दोनों टीमें कैसा खेलेंगी।
2: आज भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे नीदरलैंड्स में विश्व की 3रे नंबर की मजबूत टीम इंग्लैंड का सामना 4 बार की पूर्व चैंपियन पाकिस्तान से होने जा रहा है। खेल के इस मंच पर दोनों टीमों के लिए विश्व कप की शुरुआत करने का इससे बड़ा मौका नहीं हो सकता। जब बात इंग्लैंड और पाकिस्तान की होती है तो हॉकी के मैदान पर इतिहास खुद दोहराता है। आंकड़ों की माने तो पुरुष हॉकी विश्व कप के इतिहास में ये दोनों टीमें अब तक कुल 8 बार आमने सामने आ चुकी हैं। इस ऐतिहासिक प्रतिद्वंदिता में पलड़ा इंग्लैंड का भारी रहा है, जिसने 4 मैचों में बाजी मारी है। वहीं पाकिस्तान की टीम केवल 2 बार ही इंग्लैंड को शिकस्त दे पाई है, जबकि 2 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे सफल टीमों में से एक है, जिन्होंने 4 बार विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। हालांकि हाल के वर्ष में रैंकिंग के मामले में बड़ा अंतर आया है। जहां इंग्लैंड दुनिया में नंबर 3 पर काबिज है, वहीं पाकिस्तान 12वें स्थान पर खिसक चुका है। अगर हम दोनों टीमों के हालिया प्रदर्शन पर नजर डालें तो इंग्लैंड की टीम बेहद खतरनाक नजर आ रही है। हाल ही में खेली गई प्रो लीग के दौरान इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 7-0 से एक तरफा मैच में जीत दर्ज की थी। इसके अलावा हालिया विश्व कप क्वालिफायर्स के फाइनल में भी इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर अपना दबदबा साबित किया था। ऐसे में आज पाकिस्तान के ग्रीन शर्ट्स के लिए यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि अपनी साख बचाने और पुरानी हार का हिसाब चुकता करने का सबसे सुनहरा मौका है। पाकिस्तान की मजबूत अटैक लाइन और इंग्लैंड की सदी हुई यूरोपीय डिफेंस के बीच यह टक्कर आज रात एम्स्टर्डम के मैदान पर अपना दमखम दिखाने वाली है। पूल डी का यह मुकाबला इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि इसी ग्रुप में भारत और वेल्स जैसी टीमें भी मौजूद है। इस साल 2026 के नए नियमों के तहत हर एक गोल और हर एक अंक मायने रखता है। ऐसे में टूर्नामेंट के पहले ही मैच में जीत दर्ज करना दोनों टीमों के लिए बेहद जरूरी है।
1: और वहीं दूसरी ओर महिलाओं के वर्ग में जर्मनी और स्कॉटलैंड की टीमें आमने सामने थी और जर्मनी ने फुल टाइम में, पूल बी का यह मुकाबला था, जर्मनी ने 3-0 से स्कॉटलैंड को हरा कर अपना यह मुकाबला जीत लिया है। और वहीं एक अन्य मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और जापान की महिलाओं की टीमें आमने सामने थी और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी पूल ए के इस मुकाबले में जीत दर्ज की है। 2-0 से उन्होंने जापान को हराया है। और सबसे अहम मुकाबला होना है कल, जहां पर भारत और चाइना की टीमें आमने सामने होंगी। क्या कुछ हो सकता है इस मुकाबले में, आइए सुनते हैं।
2: भारतीय महिला हॉकी टीम कल से नीदरलैंड्स में अपने हॉकी विश्व कप 2026 अभियान की शुरुआत करने जा रही है। एम्स्टर्डम के ऐतिहासिक वैगनर हॉकी स्टेडियम में पूल डी के अपने पहले ही मुकाबले में भारतीय टीम का सामना दुनिया की दूसरे नंबर की मजबूत टीम चीन से होगा। खेल प्रेमियों की नजरें इस महामुकाबले पर टिकी हैं, जो भारतीय समय अनुसार शाम ठीक 4:30 पर शुरू होगा। भारत और चीन की यह टक्कर केवल एक मैच नहीं, बल्कि विश्व कप के मैदान पर पुरानी प्रतिद्वंदिता की एक नई किश्त है। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि पिछली बार ये दोनों टीमें साल 2022 के विश्व कप में इसी मैदान पर आमने सामने आई थीं। वह मैच बेहद ही रोमांचक रहा था और भारत की अनुभवी खिलाड़ी वंदना कटारिया के शानदार गोल की बदौलत 1-1 पर रहा था। भारतीय महिला हॉकी टीम इस बार एक 52 साल पुराने सूखे को खत्म करने के इरादे से मैदान पर उतर रही है। विश्व कप में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन साल 1974 के पहले टूर्नामेंट में रहा था, जब कप्तान अजीत कौर की अगुवाई में टीम 4थे स्थान पर रही थी। तब से अब तक भारत को अपनी पहली विश्व कप मेडल की तलाश है। कल कप्तान सलीमा टेटे के नेतृत्व में हमारी टीम इस इतिहास को बदलने की शुरुआत करेगी। भले ही रैंकिंग में चीन की टीम दुनिया में नंबर 2 पर आती हो, लेकिन मनोवैज्ञानिक बढ़त इस समय भारत के पास है। अभी कुछ ही दिन पहले राजगीर में खेले गए विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत ने चीन को 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया था। उस मैच में स्टार फॉरवर्ड दीपिका ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। हालांकि चीनी टीम इस हार का बदला लेने के लिए बेहद बेताब होगी। पिछले साल 2025 में एशिया कप फाइनल में चीन ने भारत को 4-1 से हराकर मैच अपने नाम किया था। इसलिए कल का यह मुकाबला रणनीतियों की एक बड़ी जंग होने वाला है, जहां एक तरफ चीन के खतरनाक ड्रैगन फ्लिकर्स होंगे तो दूसरी तरफ भारत की अभेद्य डिफेंस दीवार। इस बार चुनौतियां पहले से कहीं ज्यादा बड़ी हैं। FIH के साल 2026 के नए नियमों के मुताबिक इस बार सीधे सीधे क्वार्टर फाइनल्स मैच नहीं खेले जाएंगे। टीमों को एक बेहद कठिन क्रॉसओवर राउंड से गुजरना होगा। पूल डी में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीमें भी शामिल हैं। ऐसे में हर एक गोल और हर एक अंक टीम के सफर को तय करेगा। इस लिहाज से कल के मैच में एक मजबूत शुरुआत बेहद जरूरी है। क्या हमारी भारतीय टीम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के अपने जादू को यूरोप की धरती पर दोबारा दोहरा पाएगी या

0: फिर दुनिया की नंबर दो टीम चीन अपना दबदबा बनाएगी।
1: ये एक बहुत ही अहम सवाल है कि क्या भारतीय महिला हॉकी टीम अपना अच्छा प्रदर्शन दोहरा पाएगी, और निश्चित तौर पर दोहराएंगे क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार जो भारतीय महिला हॉकी टीम खेल रही है वो बहुत अच्छी हॉकी खेल रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि एक समय था जब हमारी बात होती थी कि फिटनेस की, और हम थोड़े से दौड़ने में उतने अच्छे नहीं थे, उतनी अच्छी दौड़ नहीं लगा पा रहे थे, लेकिन अब वो सब चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं। स्किल, फिटनेस, एंड्योरेंस, हर चीज़ अब भारतीय महिला हॉकी टीम की बहुत ही शानदार है। और अमीषा, कोई बड़ी बात नहीं कि इस बार भारतीय महिला टीम विश्व कप में पदक भी जीते, क्योंकि बहुत अच्छी लय में है। और वहीं बहुत अच्छी लय में है भारतीय क्रिकेट टीम, भारतीय पुरुषों की क्रिकेट टीम भी बहुत अच्छी लय में है, और इस समय श्रीलंका के दौरे पर भारतीय टीम है और पहला टेस्ट मैच चल रहा है। हालांकि वर्षा बाधित ये मुकाबला है, और पहले दिन ही वर्षा ने अपना काफ़ी एक तरह से कहें तो प्रभाव दिखाया है इस मुकाबले में। और क्या क्या इस मुकाबले में हो सकता है, इस पर हमने बात की जाने माने क्रिकेट कोच रमेश चोपड़ा से, और साथ ही हमने उनसे ये भी पूछा कि जिस तरह से दिल्ली में DPL के मुकाबले हो रहे हैं या अन्य लीग्स होती हैं वो कितनी महत्वपूर्ण होती हैं खिलाड़ियों के लिए। तो हमारे प्रश्नों के जवाब में उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: देखिए, वैसे तो आज का दिन बहुत बड़ा है भारत के लिए, स्वतंत्रता दिवस है, तो उस दिन पे जो स्वतंत्र होके जो भी डिसीजन लिया होगा कैप्टन ने वो अच्छा ही साबित हो सकता है। और मेरे ख्याल में जो स्कोर कार्ड चल रहा है अभी तक उसके हिसाब से बैटिंग करने का जो डिसीजन लिया है उन्होंने पहले, वो ठीक लगता है। टीम की फॉर्मेशन भी कुछ ऐसी ही नजर आ रही है जिसमें स्पिनर डोमिनेटेड साइड है। आपके पास तीन रेगुलर स्पिनर खेल रहे हैं, दो लेफ्ट आर्म स्पिनर और एक दो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और एक लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स। कुल मिला के मुझे लगता है कि डिसीजन ठीक है, और जिस हिसाब से श्रीलंका की पिचेस बिहेव करती हैं खास करके चौथे और पांचवें दिन, तो ये और अच्छा डिसीजन लगता है।
1: जब वर्षा बाधित मुकाबले होते हैं और कई बार क्रैम्प की एक बहुत भयंकर समस्या हो जाती है, तो क्रैम्प से जिस तरह से KL राहुल आज रिटायर्ड हर्ट हुए हैं, तो किस तरह से जूझा जाए, किस तरह से वो वापिस रिकवरी कर सकते हैं?
2: देखिए, वैसे तो ये जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है इनके पास इतनी सुविधाएं हैं जो बच्चों को मिलती हैं, जो बच्चे खेलने जाते हैं, इनके साथ पूरा जो सपोर्ट स्टाफ है वो पूरा होता है। उसमें आपका ट्रेनर होगा, उसमें आपका फिजियोथेरेपिस्ट होगा, और फिर हमें भूलना नहीं चाहिए कि जब ये बच्चों के कैंप लगते हैं किसी भी कंपटीशन से पहले, इनके फिटनेस टेस्ट बहुत ही जबरदस्त हैं, जिसमें एक आम आदमी के लिए उसमें पार्टिसिपेट करना ही बहुत मुश्किल होता है, पास करना दूर की बात है। और फिर भी इनको श्रीलंका में जाके क्रैम्प्स हुए हैं और ह्यूमिड एरिया है, वो बहुत ह्यूमिडिटी होती है, तो ऐसे मौके पे थोड़ा सा अगर लिक्विड का ज्यादा ध्यान रखें तो अच्छा रहता है। पर फिर भी इनको रिकवरी मिल जाएगी क्योंकि इनका ट्रीटमेंट साथ साथ में चल रहा होगा, मैग्नीशियम कैल्शियम की इनको कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल रही होगी, वैसा कुछ ना कुछ इनको दे रहे होंगे। उम्मीद करते हैं कि KL राहुल बैटिंग करेंगे अगर मौका लगा तो।
1: अभी तक की जो सूरत हाल है इस मुकाबले में वो ये है कि भारतीय टीम दो विकेट के नुकसान पर 239 रन बना चुकी है, और जिस तरह से आज का पूरा दिन जो खेल हुआ है, वर्षा के कारण खेल बीच में रुका भी है कई बार, और अभी जिस तरह से भारत के पास बल्लेबाजी है, तो क्या स्ट्रेटजी होगी भारतीय टीम की कि क्या एक बड़ा स्कोर बना के दोबारा खेलने ना आए, श्रीलंका को दो बार आउट कर दें, किस तरह से इस टेस्ट मैच में आगे बढ़ेगी भारतीय टीम?
2: देखिए, मुझे लगता है कि पहली इनिंग में बड़ा स्कोर खड़ा करने के बाद, और जो होना भी चाहिए, और मुझे खुशी इस बात की है कि जो मैं उम्मीद लगा के बैठा था सुनील गावस्कर के रिटायर्ड होने के बाद कि कोई हमें एक ऐसे ओपनर्स मिले या ऐसे ऊपर के तीन बल्लेबाज जो 1-2-3 पे होते हैं वो मिले, जो एक मिक्स अप्रोच रखें अपनी, जब जरूरत पड़े अग्रेसिव हो, जब जरूरत पड़े डिफेंसिव हो। तो कुछ प्लेयर हैं जिनको मैंने शॉर्टलिस्ट किया हुआ था अपने आप में, एक तो उनमें ये जो जायसवाल हैं अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए, अदकल जो साउथ से आ रहे हैं, चेन्नई से आते हैं, ये अच्छा अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा कर रहे थे, और अपने दूसरे ही मैच में सेंगड़ा लगा के उन्होंने प्रूव भी कर दिया कि सिलेक्टर का भरोसा इनमें बहुत अच्छा था। और शुभमन गिल जिस फॉर्म में चल रहे हैं, और आने वाली अभी बैटिंग लाइनअप जो बाकी पड़ी है, हिसाब से ये भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत

0: शुभ संकेत है कि हमारी बैटिंग में डेप्थ आ रही है, हमें भूलना नहीं चाहिए। इसमें बहुत हद तक जो कंट्रीब्यूशन है वो T20 का है। वो कैसे, मैं आपको बता रहा हूं, आजकल की जितनी भी टीम्स है T20 की, लोकल क्रिकेट से लेके ओपन की क्रिकेट तक, हर प्लेयर से ये उम्मीद करते हैं कि हमें 20-25-30 रन ये देगा। अगर आप T20 खेल रहे हैं तो आप अगर 9-10 नंबर बल्लेबाजी कर रहे हैं तो आपको एहसास दिलाया जाता है बार बार कि भैया बैटिंग इंप्रूव करो। मैं कोच हूं, मेरे पास वो बच्चे जो करंट में और क्रिकेट खेल रहे हैं और सिर्फ बॉलर हैं, वो आते हैं स्पेशल के, सर हमें बैटिंग के टिप्स दीजिए, क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शन है ऐसी कि हमें अपनी बैटिंग इंप्रूव करनी है। तो ये जो पीछे के नंबर 8, 9, 10, इवन 11 तक मैं लेके चलूं, तो हमारे बल्लेबाज सारे ऐसे हैं 11 तक के, क्योंकि जब बैटिंग करते हैं तो बल्लेबाज ही होते हैं हम, जिनमें मादा है 35-40 रन करने का। तो इस हिसाब से ये भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत शुभ संकेत है। पर इसमें एक चीज की जो मुझे अभी भी लगता है इनको ध्यान देना चाहिए, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर का, अगर हमारे पास कपिल के बाद कोई ऐसा जबरदस्त ऑलराउंडर अभी तक नहीं आया है, अगर ऐसा कोई आ जाए तो शायद ये एक वो टीम बन सकती है जो टीम कभी वेस्टइंडीज हुआ करती थी, जो टीम बाद में स्टीव वॉ और पॉन्टिंग की कैप्टनसी के अंदर ऑस्ट्रेलिया थी, वैसी ही टीम भारत भी बन सकती।
1: आजकल सर टेस्ट मैच में अच्छी बात यह है कि अब WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हिसाब से टेस्ट सीरीज खेली जाती है, और हर टेस्ट मैच आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है क्योंकि वो एक वर्ल्ड चैंपियनशिप का हिस्सा है, और सभी टेस्ट मैच आज इस तरह से खेले जाते हैं कि रिजल्ट आए। हालांकि आज पहला दिन है और वर्षा भी यहाँ पर हो रही है, कई सारी और भी चीजें हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजी ने अपने अभी तक के जो जौहर दिखाए हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है सर कि इस टेस्ट मैच में रिजल्ट आएगा।
0: देखिए पहला ही दिन है, भले ही 20-25 ओवर बारिश की भेंट चढ़ गए हों, खेल खत्म होने तक हो सकता है इतने ओवर चढ़ जाएंगे बारिश की भेंट, ज्यादा शायद ज्यादा भी चढ़ जाएं, पर अभी क्रीज पे जो बैट्समैन है वो ऐसा बैट्समैन है कि वो उसमें वो एबिलिटी है कि वो टेस्ट क्रिकेट में भी 150-250 रन का स्ट्राइक रेट दे सकता है। मैं मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। अभी उसकी एंट्री हुई है, एक तरफ वो बैट्समैन है जो सेट है, सैकड़े के ऊपर खेल रहा है वो, अभी पीछे जो बैट्समैन पड़े हैं वो सारे टच में हैं। इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये 500 प्लस की तरफ तो बढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी, कोई बड़ी बात नहीं कि 600 का आंकड़ा भी ये पकड़ लें, और वो भी आपको बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, अगर कल का दिन पूरा साफ चला, मौसम अच्छा रहा, तो कोई बड़ी बात नहीं है कल खेल खत्म होने से पहले पहले इंडिया डिक्लेयर करके श्रीलंका को इनवाइट कर ले।
1: आपने बात की स्थानीय क्रिकेट की, और जिस तरह से T20 लीग्स और T20 के मुकाबले खेले जाते हैं, और आज कहीं ना कहीं एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी है उन खिलाड़ियों के लिए जो कहीं ना कहीं अपना एक मुकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में भी इस तरह से एक लीग चल रही है DPL, तो कहीं ना कहीं लगता है सर कि DPL भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है जिससे आने वाले समय में खिलाड़ी निकल के भारत की टीम में भी खेल सकते हैं।
0: देखिए ये तो DPL हुआ जो कि BCCI की एक एफिलिएटेड बॉडी करवा रही है, मींस DDCA करवा रही है, जितनी स्टेट एसोसिएशंस हैं ये सारी की सारी BCCI के साथ एफिलिएटेड हैं, और BCCI का ही कोड ऑफ कंडक्ट लेके चलते हैं, वही सारी इनकी प्रोग्रामिंग होती है, प्लानिंग होती है। आप तो बात कर रहे हैं उस टूर्नामेंट की, मैं बात कर रहा हूं जो लोकल टूर्नामेंट होते हैं। आज की क्रिकेट में अगर आप लोकल टूर्नामेंट में भी अपनी प्रेजेंस दर्ज करवा लेते हैं, जहां लोग आपके बारे में बातें करना शुरू होते हैं कि फला नाम का प्लेयर अच्छा बॉलर है, अच्छा बैट्समैन है, और उसमें वो एबिलिटी है कि वो आगे बड़ी क्रिकेट खेल सकता है, EPL में तो वाकई ही बच्चों को चांस मिलता है अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो। IPL के जितने भी फ्रेंचाइजीज हैं ये, इनके पास जब बैग छोटा होता है, मीन जब पैसे इनके पास कम होते हैं, तो ऐसे ही बच्चों पे बिड करते हैं वो। कोई इसमें आगे कब साथ दे जाए पता नहीं चलता। हमारे पास हैं, हमें कुछ साल पहले ऑस्ट्रेलिया में टीम गई थी, चेन्नई से एक लड़का चेन्नई की सुपर लीग से निकल के नटराजन वो गया था एक नेट बॉलर बन के ऑस्ट्रेलिया, वहां उसने डेब्यू भी कर लिया। कुछ नहीं पता होता भाग्य का, इसलिए

0: मेरी सलाह उन सब यंग बच्चों को यह है कि आप ईमानदारी से मेहनत करें, अपने आप पे विश्वास करके मेहनत करें, जब भी मौका लगे अपनी उस मेहनत को अपनी परफॉर्मेंस के रूप में लोगों के सामने पेश करें।
1: ये थे जाने माने क्रिकेट कोच रमेश चोपड़ा, जो बता रहे थे कि भारतीय क्रिकेट टीम ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है वो निश्चित तौर पर एक बड़ी सकारात्मक तरीके से बल्लेबाजी की है भारतीय क्रिकेट टीम ने। और इस समय जो सूरत हाल है वो ये है कि 278 रन इस समय बन चुके हैं और दो विकेट के नुकसान पर दो विकेट भारत के आउट हो चुके हैं। और आउट होने वाले बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल जो रन आउट हो गए थे 32 के स्कोर पर, वहीं केएल राहुल रिटायर्ड हर्ट हैं क्योंकि उनको मांसपेशियों में क्रैम्प आ गए हैं और वो 77 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर थे जब वो क्रैम्प के कारण रिटायर्ड हर्ट हुए। और वहीं देवदत्त पड्डीकल ने अपनी सेंचुरी पूरी कर ली है, 124 रन पर वो इस समय खेल रहे हैं। शुभमन गिल ज़्यादा बड़ा योगदान टीम को नहीं दे सके और केवल 16 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर ही आउट हो गए थे। और इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं ऋषभ पंत और देवदत्त पड्डीकल। और जिस तरह से रमेश चोपड़ा जी ने बताया कि जो लीग्स हैं, लीग्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और ख़ास तौर से ये जो लीग हैं ये आपको एक मौका देती हैं जिससे आप अपनी प्रतिभा दिखा सकें और उस प्रतिभा के दम पर आप कभी भी किसी भी बड़े मंच तक पहुंच सकते हैं। और आज दिल्ली प्रीमियर लीग में जो मुकाबले खेले जाने हैं, क्योंकि कल दिल्ली प्रीमियर लीग में मुकाबले नहीं हुए थे और आज DPL में जो मुकाबले खेले जाने हैं उसमें नई दिल्ली का मुकाबला होगा साउथ दिल्ली सुपरस्टार से और ये 7 बजे ये मुकाबला शुरू होगा। और अभी तक इस लीग की अगर हम बात करें तो ये लीग बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गई है खासतौर से दिल्ली के खिलाड़ियों के लिए। और इस लीग में खेलने वाले काफ़ी सारे वो खिलाड़ी भी हैं जो अन्य जगहों से खेलते हैं लेकिन वहाँ पर, जैसे गोवा से या किसी और जगह से खेलते हैं लेकिन वहाँ पर इस तरह की लीग नहीं होती, इसलिए वो इस लीग में खेलने के लिए एलिजिबल है। और अभी तक जो सबसे अच्छा प्रदर्शन अगर किसी टीम ने किया है वो किया है सेंट्रल दिल्ली किंग ने, जिसके अभी तक 7 मैचों के बाद 12 अंक हैं और अभी भी सबसे निचले पायदान पर हैं। पहली DPL की विजेता ईस्ट दिल्ली राइडर्स की टीम, जिनके 6 मैचों में 5 हार और 1 वर्षाबाधित मुकाबला था, इसमें रिजल्ट नहीं आया था, केवल 1 ही अंक है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज में ये लीग पहुंच चुकी है और अब देखना यह है कि इस बार किस तरह से खिलाड़ी आगे के मुकाबलों में अपना प्रदर्शन करते हैं और इस लीग को जीतते हैं। और वहीं विश्व चैंपियनशिप के लिए तैयार है दिल्ली की टीम, क्योंकि बैडमिंटन की विश्व चैंपियनशिप दिल्ली में होने वाली है। क्या क्या होगा इस चैंपियनशिप में ये बताएंगी हमारी युवा साथी अमीषा पटेल।

आज 15 अगस्त है, पूरा देश आज आजादी के जश्न में डूबा हुआ है, लेकिन इसी के साथ दिल्ली एक और ऐतिहासिक खेल उत्सव का गवाह बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। आज से ठीक दो दिन बाद यानी 17 अगस्त से दिल्ली का इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित बैडमिंटन मंच की मेजबानी करने जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 की। शायद बहुत से लोग यह नहीं जानते कि बैडमिंटन के इतिहास में यह भारत के लिए कितनी बड़ी बात है। पूरे 17 साल के लंबे इंतजार के बाद यह वर्ल्ड चैंपियनशिप भारत की धरती पर वापस आई है। इससे पहले साल 2009 में हैदराबाद ने इस महाकुंभ की मेजबानी की थी और आज 17 साल बाद दिल्ली का यह आधुनिक कोर्ट दुनिया के सबसे तेज खेल का स्वागत करने के लिए सज चुका है। इस बार का यह आयोजन बेहद खास है क्योंकि यह इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप का 30वां संस्करण है। दुनिया के 50 से भी ज्यादा देशों में 400 से अधिक शीर्ष खिलाड़ी दिल्ली पहुंच चुके हैं और अपने रैकेट के साथ अभ्यास सत्र में पसीना बहा रहे हैं। अगर बात करें इस महाकुंभ के सबसे बड़े दावेदारों की तो हर कैटेगरी में दुनिया के टॉप 5 धुरंधरों पर सबकी नजरें टिकी होंगी। मेन सिंगल्स में चीन के डिफेंडिंग चैंपियन शी यूची, थाईलैंड के

0: कुनलबुत वितिटसन, फ्रांस के क्रिस्टोफर पोफ, कनाडा के विक्टर लाई और डेनमार्क के एंड्रेस एंटोनसेन खिताब के सबसे प्रबल दावेदार हैं। विमेन सिंगल्स में टक्कर और भी कड़ी है, जहां नंबर एक आंग सी युंग जापान की आनके यामागुची, चीन की शेन यू फी और वैंग जी यी के साथ भारत की अपनी पीवी सिंधु टॉप खिलाड़ियों में शुमार है। मेन्स डबल्स की बात करें तो कोरिया के किम वो हो और सी श्योंग जेई, इंडोनेशिया के फजर अल्फियान और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री, मलेशिया के गोय शेजे फेई और नूर इजुद्दीन, इंडोनेशिया के युवा रेमंड इंद्रा एंड निकोलस जैक्विन और हमारी अपनी स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रणकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी पर नजरें रहेंगी। वहीं विमेन्स डबल्स में चीन की डिफेंडिंग चैंपियन लियू शेंग शू और टैन निंग, जिया येई फान और जियांगशु जियान, जापान की युकी फुकुशिमा और मायू मात्सुमोटो और कोरिया की बी काना एंड ली सो ही जैसी दिग्गज जोड़ियां कोर्ट पर उतरेंगी। चलिए अब आपको इस चैंपियनशिप के एक बेहद खूबसूरत प्रतीक से मिलवाते हैं। इस बार का जो ऑफिशियल मैस्कॉट है उनका नाम है पीको। भारतीय बैडमिंटन संघ द्वारा जारी किया गया यह मैस्कॉट भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है, जो हमारी कला संस्कृति और खेल की उड़ान को दर्शाता है। स्टेडियम के प्रवेश द्वार पर यह पीको हर खेल प्रेमी का स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा है। और खेल प्रेमियों के लिए एक और दिलचस्प बात, क्या आप जानते हैं कि इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में खिलाड़ियों को कोई नगद पुरस्कार यानी प्राइज मनी नहीं दी जाती? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। खिलाड़ी यहाँ पैसे के लिए नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े सम्मान, उस चमचमाते गोल्ड मेडल और BWF की सर्वोच्च 14,500 रैंकिंग पॉइंट्स के लिए एक दूसरे से टकराते हैं। यही इस खेल की असली खूबसूरती है। अब बात करते हैं हमारी भारतीय टीम की, जो इस बार 16 सदस्यों के मजबूत दस्ते के साथ कोर्ट पर तिरंगा लहराने को तैयार हैं। महिला एकल में हमारी नजरें होंगी 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन पदक विजेता पीवी सिंधु से और युवा खिलाड़ी उन्नति हुड्डा से। वहीं पुरुष युगल में देश की शान और दुनिया की नंबर एक जोड़ी सात्विक साईराज रणकी रेड्डी और चिराग शेट्टी कोर्ट पर उतरेंगे। लेकिन श्रोताओं, टूर्नामेंट के पहले ही दिन यानी 17 अगस्त को एक बेहद रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है। भारत के उभरते हुए खिलाड़ी आयुष शेट्टी का सामना सीधे तौर पर मेंस सिंगल्स के डिफेंडिंग वर्ल्ड चैंपियन और चीन के दिग्गज खिलाड़ी शी युची से होने वाला है।
1: ये तो हमारे खिलाड़ी हैं जो विश्व चैंपियनशिप में खेलेंगे, और वहीं दूसरी ओर स्क्वॉश में भी कुछ बेहतरीन खिलाड़ियों ने जीत दर्ज की है।
0: जी बिल्कुल, इस बार स्क्वॉश में जो कोलकाता में हो रही है लीग, वहाँ पे इजिप्शियन खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया है, जिसमें विमेंस और मेंस दोनों में वह विजेता बने हैं।
1: और वहीं ड्यूरेंट कप में आज मुकाबला नहीं है, कल मुकाबला खेला जाएगा। SC दिल्ली वर्सेस FC रंग दाई की टीम के बीच ये मुकाबला होगा। और चलते चलते आपको बता दें कि भारतीय टीम ने अपना स्कोर 287 रन कर लिया है 2 विकेट के नुकसान पर। मैं अजय तोमर अपने सहयोगी अमीषा पटेल के साथ, कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ। श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में करोड़ों देशवासियों के संकल्प, समर्पण और हर संभव प्रयास की बदौलत देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है।
4: पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा, आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया, इंटरनेट यूजर करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजेक्शन 100 गुना बढ़े।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन अपतटीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के काम की अनुमति नहीं थी, सरकार ने उनमें से 99% को खोल दिया है।

0: जहां अब समुद्र के भीतर नए संसाधनों और भंडारों की खोज की जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है।
1: हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गांवों, शहरों और स्कूलों में 15 वर्ष तक के मेधावी बच्चों की पहचान के लिए प्रतिभा खोज अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग देने की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। महाराष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों को संबोधित करते हुए किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मेघालय के राज्यपाल CH विजय शंकर ने शिलांग स्थित लोकभवन में सरकार स्वतंत्रता दिवस पर पारंपरिक एट होम समारोह का आयोजन किया। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को शुभकामनाएं दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी का उल्लेख किया। लातविया ने भारत की निरंतर प्रगति, एकता और समृद्धि की कामना की। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने कहा कि आजादी के 8 दशक भारत की आकांक्षाओं, दृढ़ता और अटूट भावना को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की शुभकामनाओं के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी तथा सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इंडोनेशिया में फ्लोरेस द्वीप के तट के पास आज आई 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है। बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। दूरसंचार विभाग पुणे में 17 से 21 अगस्त तक ब्रिक्स सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT ट्रैक का आयोजन करेगा। इस वर्ष का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और बदलाव। कार्यक्रम की शुरुआत 7वीं ब्रिक्स ICT कार्य समूह की बैठक से होगी। 20 अगस्त को भारत डिजिटल ब्रिक्स फोरम और एक्सपो की मेजबानी करेगा। और खेलों में गोल में श्रीलंका के साथ 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक आज भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बना लिए हैं। उधर नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन में FIH हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में भारत और वेल्स के बीच मुकाबला जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Valsa Williams. The nation is celebrating the 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi led the celebrations at the iconic Red Fort in Delhi. The national flag was hoisted in synchronization with a 21-gun salute. For the first time, the national song Vande Mataram was rendered during the Independence Day celebrations at the Red Fort. The celebrations this year also commemorate Yuva Shakti, acknowledging the contribution of young India in building a Vikasit Bharat by 2047. Addressing the nation from the ramparts of the Red Fort, Prime Minister Modi said that for the first time since independence, Vande Mataram is echoing from the Red Fort.
1: Azadi ke baad 15 August. लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
2: The Prime Minister said over the past 12 years, the determination and dedication of

0: crores of citizens have helped take the country to new heights. He said 25 crore people have come out of poverty during this period. Mr. Modi said India, once counted among the fragile five economies, has now emerged as a major and the fastest growing economy in the world. He said India has set an ambitious goal of becoming a developed nation by 2047. On the occasion, the Prime Minister announced free online coaching for poor and middle-class families preparing for various public examinations. He also announced that the government will provide AI skilling training to 1 crore youth over the next 1 year.
1: हमने पिछले दिनों AI Impact Summit किया था. AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है. लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं. हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान AI की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य है.
0: Highlighting the government's focus on critical minerals, Mr. Modi said modern technology depends entirely on these minerals and India is actively working to secure its position in the sector. The Prime Minister said energy security is one of the major requirements of the present times and the government has taken several significant steps in this direction. He said nuclear energy is an important means of ensuring a country's energy security. Mr. Modi said the government is moving forward with the aim of 100 gigawatts of nuclear power capacity by 2047. In his address, the Prime Minister called upon the nation to harness the 7 streams of strength called the Saptdhara. He said in the next 5 to 7 years, the country will achieve all that could not be achieved in the past 5 to 7 decades. World leaders and foreign missions have extended Independence Day greetings to India, praising its democratic journey, civilizational heritage, and expanding role in regional and global cooperation. U.S. Secretary of State Marco Rubio highlighted the strengthening strategic partnership between India and the United States, while Singaporean President Tharman Shanmugaratnam underscored growing cooperation in skill development, digitalization, sustainability, and advanced manufacturing. French President Emmanuel Macron also conveyed his warm wishes to India on its 80th Independence Day. Israeli President Isaac Herzog congratulated President Draupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi and the people of India, sharing his message in Hindi as well. The Prime Minister has thanked world leaders who extended their greetings on the occasion of Independence Day. In Indonesia, 38 people have died after a 7.7 magnitude earthquake struck off the coast of Flores today. The powerful quake was followed by dozens of aftershocks as rescue teams continued efforts to reach the worst hit areas. In men's cricket, India were 288 for 2 in their first innings at stumps on day 1 of the first test against Sri Lanka at Galle International Cricket Stadium. Earlier, India won the toss and opted to bat first. And with that, we end this news bulletin.
2: आकाशवाणी से प्रस्तुत है चहल पहल. आज के इस अंक में संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित कार्यक्रम और माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन. 13 अगस्त गुरुवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन संगीत नाटक अकादमी द्वारा किया गया. इस आयोजन में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रतिष्ठित कलाकारों को वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप एवं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए गए. इस आयोजन में केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने संबोधन में कहा,
3: साथियों, जिन लोगों को रत्न अलंकरण किया गया, जिनका सम्मान किया गया, जो पुरस्कार विजेता हैं, हम जब यहाँ उनका सम्मान करने के लिए एकत्रित आए हैं, तब आज भारत की सहस्त्राब्दियों से निरंतर प्रवाहमान कला की साधना, वो सारी परंपराएं जिन परंपराओं के आप वाहक हैं, उस परंपराओं की एक पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, आज उस पीढ़ी परंपरा का सम्मान हम सब लोग यहाँ कर रहे हैं. मैं आप सबको बहुत सारी बधाई देते हुए, आप सबके प्रति बहुत सारा अभिनंदन व्यक्त करते हुए, मैं आप सबको आभार ज्ञापित करता हूँ. बहुत सारी शुभकामनाएं। आने वाला समय भारत के संपरिवर्तन के काल में इस भारत की विरासत की जड़ को हरी रखने के लिए उसके निमित्त वो समर्पित हो, इस अपेक्षा के साथ में आप सबका अभिनंदन, आप सबका साधुवाद, आप सबका आभार, आप सबको बधाई।
2: इस अवसर पर माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने शुभकामनाएं देते हुए अपने संबोधन में कहा,
4: संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित कलाकारों की इस सभा में उपस्थित होकर मुझे विशेष प्रसन्नता हो रही। मैं सभी पुरस्कृत कलाकारों को हार्दिक बधाई देती हूँ। आज मेरे सामने आधुनिक भारत की प्रतिभा और साधना एक साथ उपस्थित है। भारतीय परम्परा के वाहक आप सब कलाकार हमारी सामूहिक स्मृति के संरक्षक है और भविष्य की कल्पना के सर्जक। प्रदर्शन कलाकारों से जुड़े हुए जो कलाकार आज सम्मानित हुए हैं, वे मिलकर भारत का एक सांस्कृतिक मानचित्र प्रस्तुत करते हैं। ऐसा मानचित्र जिसमें इस देश की मिट्टी से उपजे कथाएं और गीत जुड़े हैं। विविधता से भरी इस धरती के नृत्य और उत्सव समाया हुआ है। इसकी भाषा बोलियों की सदियों से बनती आ रही संस्कृतियों की वही बसी हुई है। संगीत नाटक अकादमी को मैं भारत की सॉफ्ट पावर का महत्वपूर्ण केंद्र मानती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आने वाले समय में भी अकादमी भारत की सांस्कृतिक ऊर्जा से समूचे विश्व को लाभान्वित तो करेगी। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
2: 12 अगस्त बुधवार को एक कार्यक्रम का आयोजन विज्ञान भवन में किया गया। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन किया गया। इस आयोजन में अपने संबोधन में माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने अपने संबोधन में कहा,
5: आज का ये अवसर मेरे लिए अलग है क्योंकि आज की चर्चा का विषय मेरा अपना निजी जीवन है। मेरी आत्मकथा टाइम्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माय लाइफ माय स्ट्रगल्स के विमोचन के अवसर पर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस अवसर पर मेरे हृदय में कुछ स्मृतियां उभर रही हैं जिन्हें आपके साथ साझा करने का मन करता है। देवी और सज्जनों, मेरा जीवन उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के एक छोटे से गांव परौंक से शुरू हुआ। वो गांव छोटा था लेकिन वहां एक ऐसी अनमोल पूंजी मुझे विरासत में मिली जो किसी भी संपत्ति से बढ़कर थी। आपसी संवेदना व भाईचारा और समुदाय की गहरी भावना। गांव में किसी को संबोधित करते समय हम उनको नाम लेकर बुलाने के बजाय पारिवारिक रिश्तों से जोड़कर संबोधित करने की परंपरा थी। किसी को चाचा चाची, किसी को भैया दीदी, बेटा बेटी, दादा दादी, अम्मा बप्पा ताऊ आदि कहकर एक दूसरे को यथा योग्य संबोधित करते थे। प्रेम और स्नेह पर आधारित मानवीय संबंधों के संस्कार जो मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा बने वो मैंने अपने गाँव में ही सीखे। हमारा घर बहुत साधारण था, घास फूस का बना हुआ। बरसात के दिनों में उस घर से की छत से पानी टपकने लगता था। मैं और मेरे परिवार के लोग एक कोने में खड़े होकर बारिश रुकने का इंतजार करते थे। कई वर्षों बाद जब मैं 2017 में राष्ट्रपति चुना गया तो वे स्मृतियां मेरे मानस पटल पर पुनः लौट आई और उस समय मैंने कहा था कोट कि आज भी भारत के किसी गाँव में शायद एक छोटा सा रामनाथ टपकती छत के नीचे खड़ा होगा और एक बेहतर भविष्य का सपना देख रहा होगा अनकूट। देवी और सज्जनों, आज मुझे ये देखकर संतोष होता है कि नए भारत में ऐसे करोड़ों लोगों को छत मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने असंख्य गरीब परिवारों को केवल मकान नहीं दिया बल्कि गरिमा और सुरक्षा का एहसास भी दिया है। जो कभी टपकती छत के नीचे खड़े रहे हैं वे ही जानते हैं कि पक्के घर का अर्थ क्या होता है। देवी और सज्जनों, मेरे जीवन में मैं जो कुछ भी बन पाया उसमें मेरे पिताश्री का बहुत बड़ा योगदान। उनके जीवन मूल्य जैसे ईमानदारी, करुणा, उदारता और न्यायप्रियता मेरे मन में आज भी अंकित है। मेरे पूज्य पिताजी को शिक्षा के महत्व पर अटूट विश्वास था। वो मानते थे कि शिक्षा ही असीम संभावनाओं के द्वार खोलती है और जीवन में नई दिशाएं और अनगिनत अवसर प्रदान करती है। इस पुस्तक की परिकल्पना से लेकर इसे पूर्णता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए मैं प्रकाशक को भी धन्यवाद देता हूं। और अंततः आज यहाँ उपस्थित आप सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबकी उपस्थिति ने इस आयोजन को सार्थक एवं यादगार बना दिया है। धन्यवाद। जय हिंद।
2: इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र

0: कोविंद जी से मेरा बहुत लंबा परिचय रहा है, उन्हें करीब से जानने का भी अवसर मिला है और राष्ट्रपति के रूप में उनका मार्गदर्शन और इस सब के साथ साथ उनका मेरे प्रति विशेष स्नेह, उनकी आत्मीयता, ये मेरी बहुत बड़ी पूंजी रही है। मैंने उनके जीवन को जितना समझा है, उनकी कार्यक्षमताओं को जितना जाना है, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि श्री रामनाथ कोविंद जी की ऑटोबायोग्राफी अपने आप में भारतीय लोकतंत्र और भारतीय समाज के लिए एक धरोहर बनेगी। मैं आत्मकथा के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, कोविंद जी ने अपनी इस पुस्तक को बहुत ही सटीक नाम दिया है, ट्रायंफ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल्स। कहने का भाव ये कि जीवन और जीवन के संघर्ष उनके व्यक्तिगत है, लेकिन उन संघर्षों के परिणाम स्वरूप मिली जीत भारत के गणतंत्र की है, भारत के लोकतंत्र की है। मैं नौजवानों को कहूंगा, आपको जिसका भी पसंद हो, ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़े। ऑटोबायोग्राफी उस कालखंड की इतिहास की घटनाओं को अलग तरीके से समझने का अवसर देती, इतिहास से काफी निकट होता है वो कालखंड बायोग्राफी का, और इसलिए मैं जरूर चाहूंगा कि कोविंद जी की जो मेहनत है वो आने वाली पीढ़ियों को काम आए, युवा पीढ़ी को विशेष रूप से काम आए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: इसी के साथ चहल पहल का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चहल पहल। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स। शाम के 6:20 होने को हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।
3: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। कृत्स्ने हि देशे अशीतितमस्य स्वतंत्रता दिवसस्य महोल्लासेन आचरणम्। रक्तदुर्गे तावत् प्रधानमन्त्रिणा विहितं राष्ट्रध्वजारोहणम्। रक्तदुर्गे प्रथमतया जातं वन्दे मातरमिति राष्ट्रिय गीतस्य सस्वर गानम्। प्रधानमन्त्रिणा निर्धन मध्यम वर्गीय कुटुम्बानां कृते निःशुल्क प्रातिभासिक प्रशिक्षणस्य अथ च आगामिवर्षे कोट्यधिक युवभ्यः एआई कौशल प्रदानस्य कृता उद्घोषणा। भारतं बहुभिः देशैस्सह सन्धिं विधाय महत्वपूर्ण खनिजक्षेत्रे विश्वासयुक्त वैश्विक सहयोगित्वेन समुदेतीति प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितम्। संसाधनानां अस्त्रीकरणे प्रधानमन्त्रिणा प्रकटिता चिन्ता, समाह्वानानां निवारणे भारतस्य आत्मनिर्भरतायाः सामर्थ्यम् अमुना प्रशंसितम्। अपि च इण्डोनेशिया देशे अद्य फ्लोर्स इति तटस्य समीपे 17.7 भूकंपेन मृतानां संख्या 38 यावत् वर्धिता। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। देशः अद्य स्वकीयम् अशीतितमं स्वतंत्रता दिवसं समाचरति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दिल्ल्याः ऐतिहासिक स्थलात् लाल किला इति रक्तदुर्गात् स्वतंत्रता दिवस समारोहस्य नेतृत्वम् अकरोत्। तस्य आगमनावसरे प्रथमवारं लाल किला इत्यत्र वन्दे मातरमिति राष्ट्रिय गीतं प्रस्तुतम्। राष्ट्रध्वजारोहणावसरे एकविंशति

0: क्षति आग्नेयास्त्र ध्वनि भी अभिनंदनम अभवत भारतीय वायुसेनाया द्वाभ्याम MI-17 उदग्रयानाभ्याम पुष्पवृष्टिश्च संजाता। अस्य वर्षस्य एषः समारोहः युवशक्त्यै समर्पितः, यच्च 47-2000 वर्षं यावत् विकसित भारतस्य निर्माणे तरुण भारतस्य योगदानम् आमानयति। रक्तदुर्गस्य प्राचीरात् राष्ट्रं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री मोदी रक्तदुर्गे वन्दे मातरम् इत्यस्य गानम् ऐतिहासिकः क्षणः इत्यवर्णयत्। सः अवदत् यत् राष्ट्रं महता उत्साहेन नवसंकल्पैः च अग्रे सरति।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए, उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी न्यगादीत् यत् विगतेषु द्वादश वर्षेषु देशस्य कोटिशः नागरिकाः स्वकीयेन दृढसंकल्पेन समर्पणेन च राष्ट्रम् उन्नतशिखरे प्रापयितुं सर्वविधप्रयासान् कृतवन्तः। विविधेषु क्षेत्रेषु प्राप्ताः उपलब्धयः प्रकाशयन् सः अवदत् यत् द्वादश वर्षेषु रक्षोत्पादने प्रायः चतुर्गुणिता, खादी ग्रामोद्योग उत्पादने पञ्चगुणिता, इलेक्ट्रॉनिक निर्माणक्षेत्रे सप्तगुणिता, आधुनिक रेल निर्माण क्षेत्रे एकविंशति गुणिता, अथ च संचार दूरभाष निर्माण क्षेत्रे 33 गुणिता वृद्धिः संजाता। सः असूचयत् यत् अन्तर्जाल उपयोक्तॄणां संख्यायां चतुर्गुणिता, अथ च अंकीय वित्तीय विनिमयेषु च शतगुणिता वृद्धिः अभवत्।
1: हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए। हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए। हर साल 4 गुनी रफ्तार से गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया। हर साल 3 गुना ज्यादा तेजी से गरीबों को घर देने का काम किया। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया। हजारों की संख्या में कंप्लायंसेस खत्म किए, सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए।
0: प्रधानमन्त्रिणा निर्धन मध्यमवर्गीय कुटुम्बानां कृते विविध सार्वजनिक परीक्षाभ्यः निःशुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षणस्य घोषणम् अकारि। सः अवदत् यत् शीर्ष अध्यापकानां निर्देशने उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षां सर्वसुलभां विधातुम् एतत् एकं क्रान्तिकारी पदक्षेपमस्ति, येन मध्यमवर्गीय कुटुम्बानां सहस्रकोटिरूप्यकाणां रक्षणं भविष्यति।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: प्रधानमन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् आगामी एकस्मिन् वर्षे 1 कोटि युवभ्यः कृत्रिम बुद्धिमत्ता कौशले प्रशिक्षणं प्रदास्यते, येन ते वैश्विक AI क्षेत्रे नेतृत्वं कर्तुं समर्थाः भवेयुः। सः अवदत् यत् भारतेन व्ययः, गुणवत्ता, कौशलं चेत्येतेषु त्रिषु मुख्यस्तम्भेषु विशेषावधानं प्रदातव्यम्।
1: हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान AI की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य है। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है।
0: संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र, अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी महत्वपूर्ण खनिजेषु सर्वकारस्य विशेषावधानं प्रकाशयन् अवदत् यत् आधुनिक प्रौद्योगिकी पूर्णतया महत्वपूर्ण खनिजानामुपरि आश्रिता विद्यते। भारत

0: चास्मिन् क्षेत्रे स्वस्थानं सुरक्षितं सक्रियतया कार्यं करोति। प्रधानमन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् विश्वस्मिन् प्रत्येकं राष्ट्रं स्वकीय हितानां रक्षणाय प्रयतते, किन्तु दौर्भाग्येन अस्मिन् संकटकाले कैश्चिद्भिः देशैः स्वप्रभुत्व प्रदर्शनार्थं संसाधनानां अस्त्रीकरणस्य कुत्सितं षड्यंत्रं कृतम्।
1: दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है, रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चीप, इतना ही नहीं भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। और ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भर के मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कैसे कर। और हमारी तैयारियां निरंतर बढ़ती जा रही है।
0: प्रधानमंत्री सर्वेभ्यः दलेभ्यः सविनयं निवेदितवान् यत् ते संसदि राज्य विधानसभासु च राजनैतिक कलहं परित्यज्य महिला आरक्षणस्य क्रियान्वयनाय सहयोगं कुर्युः।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 35% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू अद्य अशीतितमे स्वातंत्र्य दिने राष्ट्रीय युद्ध स्मारके वीरान श्रद्धांजलिम अददात। राष्ट्रपति स्मारके पुष्पमालां समर्पयित्वा हुतात्म वीरान श्रद्धांजलिम अर्पितवती। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः, रक्षा सचिवः संजय सेठः, रक्षा सचिवः जनरल एनएस राजा सुब्रह्मण्यम, सेना प्रमुखः जनरल धीरज सेठः, नौसेनाध्यक्षः एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, वायुसेना प्रमुखः एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंहः, रक्षा सचिवः राजेश कुमार सिंहः च अस्मिन् अवसरे अत्र उपस्थिताः आसन्। इंडोनेशिया देशे अद्य फ्लोर्स इति तटस्य समीपे 7.7 तीव्रतायां भूकंपेन मृतानां संख्या 38 यावत् वर्धिता। प्रचंड भूकंपस्य अनन्तरं उद्धारदलानि सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रेषु गन्तुं प्रयतन्ते। इति वार्ताः।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: लालसा। न्याय सबके लिए, कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 1500 पर।
1: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम। तो नीलम बहन, हम हाजिर हैं अपने बहन भाइयों का मन पसंद कार्यक्रम ग्राम संसार लेकर के। और जैसा कि हमारे बहन भाई जानते हैं, आज शनिवार है, तो उनको सुनने को मिलेगा लोक संगीत पर आधारित फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। लेकिन उससे पहले अपने बहन भाइयों को बता दें, वैसे तो हमारे बहन भाई जानते ही हैं कि आज बहुत ही खास दिन है, यानी कि स्वाधीनता दिवस है। तो आप सभी को स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नीलम बहन, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, परा

0: अधीन सपनेउ सुख नाही, करो विचार देख जग माही। इसका मतलब ये है कि जो पराधीन व्यक्ति होता है उसे सपने में भी सुख हासिल नहीं होता और उसे पूरे जीवन भर दुख ही दुख झेलना पड़ता है। तो ऐसा ही हाल था हमारे भारत देश का, जब वो स्वाधीन नहीं था, आजाद नहीं था, तो यहाँ सभी बड़े दुख में जीते थे और तरह तरह के कष्ट अंग्रेजी हुकूमत में उठाते थे। तो गोस्वामी तुलसीदास ने इस चौपाई के माध्यम से स्वाधीनता के महत्व को दर्शाया है।
1: बिल्कुल शशि भाई, 15 अगस्त यानी आज ही के दिन 1947 के दिन देश ने लंबी गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर एक नया सवेरा देखा था। हमारा देश 200 सालों की ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हुआ था। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का दिन हर भारतवासी के हृदय में उत्साह, गर्व और देशभक्ति की भावना भर देता है। देश को आजाद हुए 79 साल पूरे हो गए हैं। ये विशेष दिन केवल स्वतंत्रता दिवस की सालगिरह का उत्सव नहीं, बल्कि ये आज़ादी और लोकतंत्र की भावना को कायम रखता है और हर हिंदुस्तानी के दिल और दिमाग में देशभक्ति का उत्साह जगाता है। ये दिन उन महान योद्धाओं और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन कर श्रद्धांजलि देने का भी है जिन्होंने भारत को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था।
0: बिल्कुल, आज का दिन ये याद करने का भी है कि आज़ादी हर किसी को इतनी आसानी से नहीं मिलती। इस भारत को आज़ाद कराने के लिए महात्मा गांधी, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाहिरी, ठाकुर रोशन सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, स्वामी श्रद्धानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय और राम प्रसाद बिस्मिल समेत हजारों महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आज इन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि देने का भी दिन है। इन महापुरुषों ने महाभारती की सेवा में सब कुछ कुर्बान कर दिया था।
1: बिल्कुल शशि भाई, स्वतंत्रता दिवस केवल एक पर्व नहीं बल्कि ये हमारी राष्ट्रीय अस्मिता, स्वाभिमान और गौरव का प्रतीक है। ये अवसर हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, बलिदान और योगदान को स्मरण करने और उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
0: बिल्कुल, तो हम शत शत नमन करते हैं उन वीर अमर बलिदानियों को जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तो नीलम बहन, ये तो बात रही स्वाधीनता दिवस की, और आइए अब शुरुआत करते हैं आज के फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार की। हेलो ग्राम संसार।
2: राम राम जी।
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा।
0: अरोड़ा साहब, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: मनोज कुमार जी को सुना दीजिए, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा भी सुनेंगे मेरे साथ।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
3: सर जी नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
3: सर रात्रि गेट भिवाड़ी से किशन मेहरा बोल रहा हूँ जी।
0: मेहरा जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: मनोज कुमार को सुना देना सर जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
3: बच्चों के नाम है सर?
0: हाँ बोल दीजिए।
3: कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कुणाल मेहरा और किरण मेहरा। नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
4: नमस्ते जी, मैं खजान सिंह जौनपुर से बोल रहा हूँ जी।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: मनोज कुमार को जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
4: और कुछ नाम है जी? खजान सिंह, रामबती, अजय कुमार, चंद्रकांता मोहन, निव्यान, आरव।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
5: हाँ नमस्ते सर, सत्यम सागर बोल रहा हूँ जी।
0: नमस्ते जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: ये मनोज कुमार की आवाज में कोई रागिनी भजन सुनवा दो तो एक नाम लेना चाहूंगा
0: जी।
5: पत्नी संतोष देवी, बेटा सुरदत्त सागर, सुधीर सागर, अंकित सागर। नमस्ते सर।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
6: मैं सोनू कौंडोल जिला मंदिरगढ़ से बोल रहा हूँ जी।
0: सोनू भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
6: आज मनोज कुमार को सुनना चाहेंगे।
0: जरूर सुनवाएंगे।
6: देखना मैं
0: जी,
6: मेरे पिताजी है मनबल मे, मेरी मम्मी है फूलवती, खोटा मोटा। नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
7: नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
7: हरिंदर बोल रहे हैं हरियाणा से।
0: हरिंदर भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
7: मनोज कुमार को सुनवा दो जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
7: दो तीन नाम है।

0: हाँ बोल दीजिए।
1: मेरे बड़े भाई साहब हैं सिकंदर और सिकंदर। नमस्कार।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
2: हेलो शशि भैया, नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: मैं गांव चौधरी वास से राजू अग्रवाल।
0: राजू भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: मनोज कुमार को सुना देना जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
2: और बच्चे जी केशव दास वेद प्रयाग।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर मनोज कुमार से ये देशभक्ति रागनी।

0: हेलो ग्राम संसार।
1: हेलो ग्राम संसार।
0: कौन भाई बोल रहे हैं?
1: इंदरवीर तेवतिया, गांव नथुगढ़ी, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ।
0: तेवतिया जी, सबसे पहले तो कार्यक्रम में आपका स्वागत है, और जैसा कि आप जानते हैं आज स्वाधीनता दिवस है, तो आपको स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्या कहना चाहेंगे?

0: आप इस अवसर पर।
1: 15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि इस दिन भारत से ब्रिटानिया सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। और तो दो पंक्ति सुनाना चाहूंगा।
0: हाँ बिल्कुल।
1: कर वतन गए आजाद, तराने उनके ही गाएंगे
0: जी।
1: आजादी के अमर शहीदों को हम भुला नहीं पाएंगे।
0: बहुत ही बढ़िया। स्वाधीनता दिवस के मौके पर किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: संतराज नागर की गाई हुई बढ़िया सी रागनी सुनवा देना।
0: जरूर सुनवाएंगे।
1: कुछ नाम बोल दो
0: जी।
1: प्रत्यक्ष सुमित तेवतिया, प्रिंस छोटू, हमारी बुआ जी हैं राजवीरी, और गांव खुशियालपुर से मास्टर मोदी और पंडित रतनलाल।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
2: हेलो ग्राम संसार।
0: कौन भाई बोल रहे हैं?
2: हिसार से राजेंद्र सैनी बोल रहा हूँ। शशि जी,
0: सैनी जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: संत राम नागर को सुनना चाहूंगा, और साथ में सुनने वाले हैं बनवारी लाल यादव, शमशेर जी द्वारका से, विजय लखेरे महेंद्रगढ़ से। राम राम जी।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
3: राम राम जी।
0: राम राम जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
3: मोहल्ला दौज वाला शिकारपुर बुलंद शहर से बबली कुमार प्रजापति बात कर रहा हूँ।
0: बबली जी, कार्यक्रम में स्वागत है। आज ये किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: आज हमें संतराज नागर जी की आवाज में एक अच्छी सी रागनी सुनवा दो।
0: जरूर सुनवाएंगे।
3: और हमारी तरफ से आकाशवाणी के प्रिय प्रेजेंटरों को और सुनने वाले श्रोता मित्रों को स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।
0: जी आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं स्वाधीनता दिवस की।
3: और हमारे परिवार के नाम नोट कर लो सर जी।
0: जी,
3: हमारी पत्नियां पुष्पा देवी, लड़की डॉली कुमारी, लड़का मोहन कुमार, लड़की पुजरानी, लड़का छोटा भीम, शीशपाल अकेला है, अनवर बिहारी जी है, और हवलदार पचौता वाले हैं। नमस्कार साहब।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
4: नमस्कार शशि भाई। नमस्कार।
0: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
4: सुरेश चौहान जी बोल रहे हैं।
0: सुरेश भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: काफी दिन हो गए संतराज जी को नहीं सुना हमने, तो
0: जरूर सुनवाएंगे।
4: हमारे भाई साहब छावला से राजकुमार जी, और तेजराम कौशिक जी सुगराड़ी से।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर संतराज नागर से ये देशभक्ति रागनी।

0: हेलो ग्राम संसार।
1: राम राम जी। राम राम।
0: राम राम जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
1: गांव लुगेसर से पप्पू राम घाट बोलो सर जी।
0: पप्पू जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: ऋषि पाल जी को और मनसा राम सुहाण जी को सुना दिए जी। कुछ दोस्त हैं जी, हरासी से राजकुमार डूडी जी है, दुर्गा कलोनी हांसी से राजू निगरानी है, सुभाष योगी है हांसी से, और रोहतक से हमारे बहुत महावीर शर्मा जी है और जगजीवन शर्मा जी है करकावाड़ी गाँव।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
2: हेलो ग्राम संसार, शशि भाई नमस्कार। पूरे भारत वर्ष को 15 अगस्त की शुभकामनाएं और आकाशवाणी परिवार को भी।
0: आपको भी स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कौन भाई बोल रहे हैं?
2: मैं राजेंद्र जाटव आबिपुर मान की पोस्ट मोदी नगर जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ जी।
0: राजेंद्र जी, इस स्वाधीनता दिवस के मौके पर किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: प्रिय कलाकार है मनसा राम और ऋषिपाल चौहान।
0: जरूर सुनवाएंगे।
2: कुछ नाम है
0: जी,
2: मुरादनगर से नरेंद्र जाटव, कमलेश जाटव, शिवानी जाटव, प्रशांत जाटव और एक दरोगा साहब है निशांत जाटव, और कुछ आबिदपुर गांव से नाम महेंद्र शारदा, राम किशोर, शीला, सचिन, अनुष्का, मानसी, शिवम, और ये पूरे आबिदपुर गांव की फरमाइश होगी। नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
3: हेलो नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
3: मैं राम निवास अग्रवाल बोल रहा हूँ भिवानी हरियाणा से।
0: राम निवास जी, कार्यक्रम में स्वागत है। बड़े ही दिनों बाद फोन किया है आज तो।

0: हाँ शशि भाई, आज काफी दिन के बाद फोन किया है। धन्यवाद
1: तो सबसे पहले तो आपको स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: जी, आपको भी और सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से भी स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: तो इस मौके पर किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
0: इस मौके पर ऋषिपाल चौहान और मनसाराम चौहान की आवाज में सुनना चाहता हूँ जी।
1: बिल्कुल, उनकी आवाज में एक देशभक्ति रागनी आपको सुनवाएंगे।
0: कुछ दोस्त हैं अनवर बिहारी जी और सैनी साहब हैं, और
1: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
2: हेलो ग्राम संसार, सखी भाई को राम राम।
1: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: योगिंदर बोल रहा हूँ जी, गांव निमचाना, जिला बुलंदशहर।
1: योगेंद्र जी, कार्यक्रम में स्वागत है और आपको स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: मेरी तरफ से भी सभी देशवासियों को, पूरी आकाशवाणी टीम को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: और बताइए, इस अवसर पर किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: आज ऋषिपाल चौहान वे मनसाराम चौहान की कोई देशभक्ति की रागनिया और कोई भी रागनी सुनवा दें जी।
1: जरूर सुनवाएंगे।
2: राम राम जी।
1: राम राम जी। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर ऋषिपाल चौहान और मनसाराम चौहान से ये देशभक्ति रागनी।

0: तो बहन भाइयों, ये था आज का फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक फोन कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, फोन करने के लिए नंबर है 0112346731 और दूसरा नंबर है 0112346732। इन दोनों नंबरों पर आप फोन करके अपने पसंद के कलाकार को सुनने के लिए फरमाइश रिकॉर्ड करवा सकते हैं।
0: और बहन भाइयों, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इसी के साथ कार्यक्रम ग्राम संसार के प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी बहन भाइयों को राम।

0: लालसा। न्याय सबके लिए, कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 1500 पर।
1: इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे नालसा, न्याय सबके लिए।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंफ्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़। शाम के 7 बजने को है। अब से कुछ क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ। श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में करोड़ों देशवासियों के संकल्प, समर्पण और हर संभव प्रयास की बदौलत देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है।
2: पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। आधुनिक युग को देकर के भी, डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट यूजर करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजेक्शन 100 गुना बढ़े।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने अगले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि गांवों, शहरों और स्कूलों में 15 वर्ष तक के मेधावी बच्चों की पहचान के लिए प्रतिभा खोज अभियान चलाया जाएगा। श्री मोदी ने गरीबों और मध्यवर्गीय परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग देने की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। बिहार में स्वतंत्रता दिवस पारंपरिक उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित मुख्य राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की

सलामी ली। लद्दाख में भी स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। LAHDC कारगिल के मुख्य कार्यकारी पार्षद डॉ. मोहम्मद जाफिर अखोन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को शुभकामनाएं दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी का उल्लेख किया। लातविया ने भारत की निरंतर प्रगति, एकता और समृद्धि की कामना की। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने कहा कि आजादी के 8 दशक भारत की आकांक्षाओं, दृढ़ता और अटूट भावना को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर को अनोखे और प्रतीकात्मक रूप से मनाने के लिए एक वैश्विक रिले श्रृंखला सूर्यपथ तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस अनूठी पहल के अंतर्गत भारतीय राष्ट्र ध्वज उगते सूरज की दिशा का अनुसरण करते हुए दुनिया भर का चक्कर लगा रहा है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि जर्मनी, नीदरलैंड, इटली, मिस्र, लातविया और दक्षिण अफ्रीका सहित दुनिया भर में मौजूद भारतीय दूतावासों ने देश के गौरव और एकता के इस उत्सव के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय को एकजुट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का एक लेख साझा किया। लेख में स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प का उल्लेख किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लेख में अमृतकाल के दौरान 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए समर्पित होने का आह्वान किया गया है। इंडोनेशिया में फ्लोरेस द्वीप के तट के पास आज आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है। बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान चला रहा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने छोटे करदाताओं की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इसके अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों और अघोषित विदेशी आय की घोषणा कर सकते हैं। गोल में श्रीलंका के साथ 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक आज भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में आज भारत ने विल्स को 3-1 से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स। शाम के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान वाणी।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं हूं अमित।
4: और मैं हूं नीरा। हमारे सभी श्रोताओं को आकाशवाणी परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
3: मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा पूरा देश आजादी के रंग में सराबोर है। हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और इस 80वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए हमने अभाव से अपार तक की यात्रा तय।
4: बिल्कुल। और आज का दिन हमें उस इतिहास की याद दिलाता है जिसने हमें अपने देश में स्वतंत्र होकर सांस लेने का अधिकार दिया। ये वो देश है जिसकी मिट्टी में शहीदों के बलिदान की खुशबू है। इस देश के तिरंगे में 3 रंग हमें साहस, शांति और समृद्धि का संदेश देते हैं।
3: बिल्कुल नीरा, जब बात समृद्धि की आती है तो इस देश के बेटों ने अनुसंधान किया, विज्ञान के क्षेत्र में नए आयाम गढ़े और हम वैश्विक पंक्ति में अग्रणी हो गए।
4: बिल्कुल। आज के इस पावन बेला पर समय है उन सभी को नमन करने का।
3: बिल्कुल नीरा, उन देश के सच्चे सपूतों को जिन्होंने भारत माता की बलिबेदी पर अपने प्राण नौछावर कर दिए, हम सत सत नमन करते हैं। मित्रों, बात करें यदि हम कृषि क्षेत्र की, तो कृषि क्षेत्र में देश के वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ताओं ने किसानों के साथ मिलकर जो आयाम गढ़े हैं, कहीं ना कहीं हमें याद दिलाते हैं कि हम उन्नति के पथ पर किस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं।
4: बिल्कुल। स्वतंत्र भारत की विकास यात्रा में कृषि और किसान का योगदान हमेशा से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। देश की अर्थव्यवस्था की बात करें या फिर बात करें करोड़ों लोगों के जीवन को संबल देने की, हमारे किसान राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं।
3: बिल्कुल। कई बार लगता था कि जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है, इस भूख को शांत करने के लिए किसान कितना योगदान देगा, कितना हमारा उत्पादन होगा, लेकिन जब आज हम देखते हैं तो ना भारत में अपितु दुनिया के अनेक ऐसे देश हैं जो भारत से अनेक कृषि उत्पादों का आयात कर रहे हैं। इस स्वतंत्रता की यात्रा में किसान कहां से कहां पहुंचा, देश की आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत हुई, इसी को लेके आपको एक जानकारी दिलवाते हैं। स्वतंत्र भारत में कृषि, विकास और किसान, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर जगदीप सक्सेना। आप परियोजना निदेशक रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में।
4: तो आइए सुनते हैं ये जानकारी।
5: आज पूरा देश आजादी की 80वीं वर्षगांठ हर्ष, उल्लास और गर्व के साथ मना रहा है। स्वतंत्र भारत की गौरवशाली सफलता गाथाओं में देश के अद्भुत कृषि विकास का अग्रणी स्थान है। इस दौरान हमने अभाव से अपार तक की यात्रा तय करके वैश्विक कीर्तिमान बनाया है। निरंतर बढ़ती आबादी और पर्यावरणीय चुनौतियों के बीच भारत ने एक सतत और सशक्त खाद्य सुरक्षा हासिल की है। अन्नदाता की बेड़ियाँ तोड़कर हम आत्मनिर्भर हुए हैं। हरित क्रांति से लेकर श्वेत क्रांति तक और नीली क्रांति से सुनहरी क्रांति तक भारतीय कृषि ने कामयाबी के परचम लहराए हैं। विज्ञान के अनुप्रयोग ने फसलों की नई और मनचाही खूबियों वाली किस्मों की अनेक श्रृंखलाओं का विकास किया है। पशुओं के आनुवंशिक नस्ल सुधार और उत्पादकता बढ़ाने के प्रयासों में भी कामयाबी मिली है। कृषि को सतत बनाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जलवायु अनुकूलता को अपनाया गया है। प्राकृतिक और जैविक खेती, सटीक खेती, क्लाइमेट स्मार्ट खेती और डिजिटल खेती ने भारतीय कृषि में आधुनिक आयाम जोड़े हैं। जय जवान जय किसान के प्रसिद्ध उद्घोष में जय विज्ञान और जय अनुसंधान का समावेश भी हुआ है। आज देश में कृषि अनुसंधान, शिक्षा और प्रसार का एक मजबूत और व्यापक ढांचा मौजूद है। इससे आधुनिक कृषि विकास को निरंतर गति और संबल प्राप्त हो रहा है। अतीत में झांकें तो देश को आजादी भूख और अकाल की काली छाया में मिली थी। देश के अनेक भाग भुखमरी से त्रस्त थे। स्वतंत्र भारत की वैश्विक छवि कलंकित हो रही थी। इस विकट परिस्थिति में राष्ट्रीय नेतृत्व ने अपनी प्राथमिकता तय करते हुए कहा, सब कुछ प्रतीक्षा कर सकता है परंतु कृषि नहीं। वर्ष 1929 में स्थापित और उपेक्षित पड़ी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICR को देश की शीर्षस्थ कृषि अनुसंधान शिक्षा और प्रसार संस्था के रूप में पुनर्गठित किया गया और देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। आज ICR के अंतर्गत देश भर में 113 अनुसंधान संस्थान, 74 कृषि विश्वविद्यालय और 731 कृषि विज्ञान केंद्र तत्परता से कार्य कर रहे हैं। ICR द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी और प्रसार तंत्र के प्रभाव से वर्ष 1950-51 के मुकाबले 2021-22 तक खाद्यान्न उत्पादन में 6.21 गुना, बागवानी उत्पादन में 11.53 गुना, दूध उत्पादन में 13.01 गुना, मछली उत्पादन में 31.61 गुना और अंडा उत्पादन में 70.74 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। इस बीच देश की आबादी में लगभग 3.9 गुना बढ़ोतरी हुई, परंतु खाद्य सुरक्षा सतत बनी रही।

वर्तमान में भारतीय कृषि दुनिया की लगभग 18% आबादी का सफलतापूर्वक और सम्मान के साथ भरण पोषण कर रही है, जबकि हमारे पास दुनिया की केवल 2.4% भूमि और लगभग 4% मीठे जल के संसाधन हैं। सतत और सशक्त खाद्य सुरक्षा के कारण देश के सुरक्षित अन्न भंडारों में निर्धारित मानदंडों से अधिक अन्न उपलब्ध है। देश न केवल 81 करोड़ आबादी को मुफ्त राशन वितरित करने में समर्थ है, बल्कि युद्ध और आपदा के समय जरूरतमंद देशों को अन्नदान भी करता है। आज आत्मनिर्भर भारत के दौर में यह कल्पना करना कठिन है कि 1950 और 1960 के दशक में भारत अन्न के दाने दाने के लिए मोहताज था। अमेरिका की मनमानी शर्तों पर उसका लाल घटिया गेहूं स्वीकार करना पड़ता था। देश को अन्नदासता के संकट दौर से उबारने के लिए एक बहुमुखी रणनीति बनाई गई, इसमें विज्ञान का सबसे अहम किरदार था। इसकी बागडोर प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को सौंपी गई। मेक्सिको के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉक को इस विशेष अभियान में मेंटर के रूप में आमंत्रित किया गया। दिल्ली से लेकर पंजाब और हरियाणा तक आसपास के क्षेत्रों में गेहूं की मैक्सिकन बोनी किस्में लहलहाने लगी। सरकार ने गेहूं की खेती करने वाले किसानों को पर्याप्त उर्वरक और सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित की। परिणाम आशाजनक और आश्चर्यचकित करने वाले थे। वर्ष 1966 के 11 मिलियन टन के मुकाबले 1968 में देश में गेहूं का कुल उत्पादन 17 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इतने कम समय में गेहूं के उत्पादन में इतना उछाल दुनिया में कहीं भी कभी भी नहीं देखा गया था। विश्व इस कीर्तिमान में चमत्कृत था, जबकि भारत में ये अन्नदासता का अंत और खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता के युग का सूत्रपात था। US एड संस्था के डॉक्टर विलियम गॉड ने इसे हरित क्रांति का नाम देकर विश्व प्रसिद्ध कर दिया। बाद में यही कामयाबी चावल में भी दोहराई गई। फसलों की उन्नत किस्मों, खेती की सुधरी विधियों, सिंचाई सुविधाओं के प्रसार और कृषि हितैषी सरकारी नीतियों के कारण वर्ष 2025-26 में देश में खाद्यान्नों का उत्पादन 376.56 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा विकसित HD श्रृंखला और भारतीय गेहूं एवं जव अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा विकसित DBW श्रृंखला की किस्मों का योगदान अग्रणी रहा है। कुछ किस्मों में बेहतर पोषण के लिए अधिक आयरन, अधिक प्रोटीन, अधिक जिंक जैसे गुणों का समावेश किया गया है। इसी तरह चावल की अधिक पोषण मान वाली अनेक बायोफोर्टिफाइड किस्में विकसित की गई हैं। क्लाइमेट स्मार्ट खेती के लिए सूखा और जल अभाव सहने वाली, बाढ़ और जल डुबाव सहने वाली, लवणीयता सहने वाली और ऊंचे तापमान में भी अच्छी उपज देने वाली किस्में तैयार की गई हैं। हाल में ICR ने चावल की दुनिया की पहली जीनोम एडिटेड किस्में विकसित करके वैश्विक कीर्तिमान बनाया गया है। ये किस्में अधिक उपजशील होने के साथ कम अवधि में परिपक्व हो जाती हैं और इनके दाने तथा पकाने की गुणवत्ता बेहतर होती है। हरित क्रांति के बाद चावल उत्पादन में सबसे परिवर्तनकारी अध्याय बासमती चावल की सफलता की कहानी है। वर्ष 2014-15 से 2024-25 तक बासमती चावल के निर्यात का मूल्य लगभग 51.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंका गया है और इसमें पूसा बासमती श्रृंखला के चावल की हिस्सेदारी लगभग 90% है, जो एक कीर्तिमान है। स्वतंत्र भारत के समक्ष भूख के साथ व्यापक कुपोषण भी एक बड़ी चुनौती थी। वर्ष 1950-51 में देश में कुल दूध उत्पादन लगभग 17 मिलियन टन था और प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता मात्र 124 से 130 ग्राम थी। दूध उत्पादन में आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई। इसकी कमान नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर वर्गीस कुरियन को सौंपी गई। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर दूध की संग्रह वितरण प्रणाली को सशक्त तथा प्रभावी बनाया। के लिए गांव-गांव में दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया और इन्हें एक राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड से जोड़ दिया। दूसरी ओर प्रति पशु उत्पादकता बढ़ाने के लिए आनुवंशिक नस्ल सुधार, पोषण स्तर में सुधार और पशुओं की स्वास्थ्य रक्षा के वैज्ञानिक प्रयास किए गए। पशुओं को संतुलित आहार और वर्ष भर हरा चारा मिलने की व्यवस्था की गई। चारे को संरक्षित करने के लिए साइलेज बनाने की तकनीक विकसित कर डेयरी किसानों तक पहुंचाई गई। पशुओं के स्वास्थ्य सुधार के लिए

किए गए प्रयासों ने भारत को रिंडरपेस्ट यानी पशुओं के प्लेग जैसे घातक रोग से मुक्त कर दिया। आज खुरपका मुंहका रोग और ब्रुसेलोसिस सहित अनेक गंभीर रोगों के देशी टीके उपलब्ध हैं। उनके बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ते हुए भारत ने वर्ष 2024-25 में 248 मिलियन टन दूध उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया, जो कुल वैश्विक दूध उत्पादन का लगभग 25% है।

दालें भी देश की पोषण सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती हैं। हमारे देश में 12 से अधिक प्रकार की दालें उगाई जाती हैं, जिनसे 2024-25 में 25.68 मिलियन टन उत्पादन प्राप्त हुआ। इस तरह भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक है और वैश्विक दाल उत्पादन में लगभग 25% का योगदान देता है। परंतु इसके साथ ही हमारे देश में दालों की खपत भी सबसे ज्यादा होती है। देश को दालों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार ने 2025-26 से 2030-31 तक के लिए 11,440 करोड़ रुपए की लागत से दलहन आत्मनिर्भरता मिशन लागू किया है। इसका लक्ष्य दालों की खेती को 310 लाख हेक्टेयर तक विस्तारित करके उत्पादन को 350 लाख टन तक पहुंचाना है। आत्मनिर्भरता के संदर्भ में लगभग दालों जैसी चुनौती खाद्य तेलों यानी तिलहन के उत्पादन और उपलब्धता में भी है। वर्ष 2024-25 में लगभग 43 मिलियन टन उत्पादन के साथ भारत की गिनती विश्व के अग्रणी तिलहन उत्पादक देशों में की जाती है। परंतु खाद्य तेलों की निरंतर बढ़ती खपत के कारण हमें खाद्य तेलों के आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री जी ने लोगों से खाद्य तेलों की खपत में 10% कटौती करने का आह्वान किया है। खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता के लिए भारत सरकार द्वारा दो राष्ट्रीय मिशन लागू किए जा रहे हैं, एक विशिष्ट रूप से तेल ताल पर और दूसरा सामूहिक रूप से सभी तिलहनों पर। इन दोनों ही मिशन में उन्नत किस्मों, सुधरी कृषि विधियों और प्रसंस्करण की आधुनिक तकनीकों व मशीनरी के माध्यम से विज्ञान तथा नवाचार का समावेश किया गया है। तिलहनों का राष्ट्रीय मिशन 2024-25 से 2030-31 तक की अवधि के लिए लागू किया जा रहा है। इसका लक्ष्य 2030-31 तक तिलहनों के क्षेत्र को बढ़ाकर 33 मिलियन हेक्टेयर तक और तिलहन उत्पादन को 69.7 बिलियन टन तक पहुंचाना है। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के बाद भारत में एक अन्य और लगभग उतनी महत्वपूर्ण क्रांति हुई, जिसका आगाज 1990 के दशक में हुआ। सुनहरी क्रांति के नाम से प्रसिद्ध यह प्रसंग देश में बागवानी उत्पादन में आए मजबूत उछाल को प्रदर्शित करता है। इसमें फलों और सब्जियों के साथ मसाले, औषधीय व सुगंधीय पौधे, बागानी फसलों, फूलों और शहद जैसी अन्य जिनसों को भी शामिल किया गया है। वर्ष 2024-25 में कुल बागवानी उत्पादन 367.72 मिलियन टन के स्तर पर पहुंच गया है। इसमें 114.51 मिलियन टन फल और 219.67 मिलियन टन सब्जियां और 33.54 मिलियन टन अन्य बागवानी उत्पाद शामिल हैं। देश के ताल तलैयों, नदियों, झीलों और सागरों में मछलियों तथा अन्य जल जीवों के उत्पादन में साधारण प्रगति हुई है, जिसे नीली क्रांति का नाम दिया गया है। वर्ष 2015 में नीली क्रांति के नाम से ही भारत सरकार की एक मात्स्यिकी विकास योजना शुरू की गई थी, जिसमें इस सेक्टर के सभी पहलुओं को समर्थित और संबोधित किया गया था। इसी का परिणाम है कि वर्ष 2024-25 में कुल मात्स्यिकी उत्पादन 197.75 लाख टन दर्ज किया गया, जो वर्ष 2013-14 के 95.79 लाख टन के दुगने से अधिक है। वैश्विक स्तर पर भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है और कुल वैश्विक उत्पादन में लगभग 8% का योगदान करता है। शीत जल मात्स्यिकी, खारे पानी में मछली पालन और समुद्री झींगा पालन की नई विधियों ने मछली उत्पादन में वृद्धि की है। मछलियों की वृद्धि को बढ़ावा देने वाले अनेक पोषक आहार भी विकसित कर उपलब्ध कराए गए हैं। मछली पकड़ने वाली नौकाओं का आधुनिकीकरण करने से ऊर्जा कुशलता और प्रग्रहण क्षमता में सुधार के साथ मछुआरों की जीवन सुरक्षा भी बढ़ गई है। मछलियों में रोग नियंत्रण और चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। पेन कल्चर नामक नई तकनीक का उपयोग करके नम भूमियों और बीस में मछली उत्पादन को लगभग 10 गुना तक बढ़ाने में सफलता मिली है। इसी विकास के इन सभी आयामों में भारत सरकार की अनेक योजनाओं ने केंद्रीय भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन पूरे देश में नई कृषि क्रांति का आह्वान कर रहा है। इसी तरह समेकित बागवानी विकास मिशन ने सुनहरी क्रांति को बल दिया है। जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के प्रसार के लिए भी विशेष योजनाएं सक्रिय हैं। डिजिटल खेती के प्रसार के अंतर्गत ड्रोन्स के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। पशु सुधार के अंतर्गत AI को किसानों के द्वार तक पहुंचाया जा रहा है और रोग नियंत्रण के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि योजना और किसान क्रेडिट कार्ड ने किसानों को समृद्धि के स्तर पर आगे बढ़ाया है। कृषि अनुसंधान और नवाचार में डिजिटल तकनीकों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के समावेश ने भारतीय कृषि के विकास को सतत, सुरक्षित और समृद्ध बना दिया है।

0: सूखा, बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा से भूख और काल की संभावना अब शून्य हो गई है। देश के हर जिले में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए कृषि आपदा योजनाएं तैयार हैं, जिन्हें वैज्ञानिकों, किसानों और प्रशासन के आपसी सहयोग से लागू कर दिया जाता है। जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने के लिए भी भारतीय कृषि तैयार है। क्लाइमेट स्मार्ट खेती विचार के स्तर से आगे बढ़कर जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है। खेती में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और भूमि की उर्वरता बनाए रखना एक सतत और अनिवार्य आवश्यकता है, जिसे कुशल प्रौद्योगिकी के विकास से पूरा किया जा रहा है। अनाज और अन्य खाद्य उत्पादों का भंडारण अब उन्नत प्रौद्योगिकी द्वारा किया जा रहा है, इससे भंडारण अवधि में सार्थक वृद्धि हुई है। देश में कृषि और खाद्य सुरक्षा संबंधी विकास अब खेत खलिहानों और नदियों तालाबों से आगे निकलकर प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन, वितरण और बाजारों तक पहुंच गया है। भारतीय कृषि अब सदाबहार क्रांति के दौर से गुजर रही है और देश आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत की ओर अग्रसर है।
1: मित्रों, अभी हम जानकारी ले रहे थे स्वतंत्र भारत में कृषि विकास और किसान। डॉक्टर जगदीप सक्सेना, जो परियोजना निदेशक रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में। जानकारी के साथ साथ जब कृषि के विकास को हम देखते हैं तो लगता है कि आज हम एक सकारात्मक पथ पर आगे बढ़ रहे हैं।
2: बिल्कुल, और स्वतंत्रता के बाद कृषि क्षेत्र में आए लगातार बदलाव, नई तकनीकों, बदलती कृषि व्यवस्था की बात करें तो भी किसानों ने हमेशा मजबूती से चुनौतियों का सामना किया है।
1: निश्चित रूप से किसान भूमि पुत्र अन्नदाता हमारी भूख को मिटाने के लिए रात दिन परिश्रम करता है, खेतों में लगा रहता है और हमारी कोशिश होती है कि उस किसान को हम वैज्ञानिक सोच से ओत प्रोत करते रहें। कार्यक्रम किसान वाणी के माध्यम से जब हम बात करते हैं अपने कार्यक्रम में भारत की मिट्टी की, तो भारत की मिट्टी की सौंधी सुगंध बसती है हमारे रोम रोम में। आइए एक देशभक्ति रागिनी के माध्यम से हम भी नमन करते हैं। इस देश पर गर्व करने का ये क्षण हम नहीं छोड़ना चाहते, तो सुनते हैं ब्रह्मपाल नागर की आवाज में ये रागिनी।

0: अभी आप सुन रहे थे देश प्रेम से ओतप्रोत ये रागिनी।
1: कलाकार थे ब्रह्मपाल नागर।
0: जब भी बात होती है देश की तो बात आती है भारत की विविधता की। जी हाँ, भारत बनता है संस्कृति से, संगीत से, कला से, विज्ञान से और कृषि से।
1: बिल्कुल नीरा, जब विज्ञान और कृषि एक साथ जुड़ते हैं तो उस अनूठे संगम का हम कहीं ना कहीं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि आज देश की मिट्टी तक हमारे देश के वैज्ञानिक बेटों के अनुसंधान पहुंच रहे हैं। हमारी कोशिश है कि किसान घर बैठे कार्यक्रम किसान वाणी के माध्यम से, कृषि जगत के माध्यम से, कृषि संबंधी सलाह के माध्यम से खेती करे। ऐसी ही कुछ कृषि संबंधी सलाह हमारे पास है कि किसान इस वर्षाकालीन मौसम में प्याज की पौध की रोपाई कर सकता है। ध्यान रखें, जल निकासी का उचित प्रबंध होना चाहिए। वहीं कीड़ों एवं बीमारियों की निरंतर निगरानी करते रहें, कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क रखें और सही जानकारी लेने के बाद ही दवाइयों का प्रयोग करें।
0: बिल्कुल, वर्षा को ध्यान में रखते हुए किसानों को ये सलाह दी जाती है कि वे अपने खेतों के किसी एक भाग में वर्षा के पानी को इकट्ठा करने की व्यवस्था करें, जिसका उपयोग वर्षा न आने के दौरान फसलों की उचित समय पर सिंचाई करने के लिए किया जा सके।
1: मित्रों, इस मौसम में यदि हम चारे की बात करें पशुओं के लिए तो यह समय ज्वार की बुवाई के लिए उपयुक्त है। यह थी कृषि संबंधी सलाह।
0: अब कार्यक्रम में समय हो गया है आपसे अनुमति लेने का। आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें ईमेल के जरिए बता सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है feedback@gmail.com।
1: कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को
0: नमस्कार।
2: भर

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।
6: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
7: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़। डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़। शाम के 7:35 हुए हैं और अब सुनते हैं गजल। गजल में हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में ये खूबसूरत गजल।

0: बहुत ही खूबसूरत गजल अभी आपने सुनी जगजीत सिंह की आवाज में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज। 7:45 होने को हैं, अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। लाल किला पर पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गूंजा। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने स्वतंत्रता दिवस पर लोक निवास में ध्वजारोहण किया। कहा, स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान आज की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छत्रसाल स्टेडियम में ध्वजारोहण किया। कहा, तिरंगा केवल देश के गौरवशाली अतीत का प्रतीक नहीं बल्कि उज्जवल भविष्य के प्रति हमारा संकल्प भी। और राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान कल से आम जनता के लिए खुलेगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्र गीत वंदे मातरम का गायन हुआ। श्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गुंजायमान हो रही है।
3: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
5: श्री मोदी ने कहा कि सरकार के प्रयासों के कारण 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल सके हैं।

0: और भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। इनमें कोविड महामारी और यूक्रेन तथा पश्चिम एशिया संकट प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि इन संकटों के दौरान टीके, ईंधन, गैस, डीजल और उर्वरक की कमी को लेकर काफी अफवाहें फैलाई गई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्र के भीतर नए संसाधनों और भंडारों की खोज की जा रही है।
1: हमने समुद्री तट पे समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र्य था, हमें फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया। हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से अब तक भारत 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता कर चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है।
1: हमने पिछले दिनों AI इंपैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गांवों, शहरों और स्कूलों में 15 वर्ष तक के मेधावी बच्चों की पहचान के लिए प्रतिभा खोज अभियान चलाया जाएगा और चुने गए बच्चों को अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। श्री मोदी ने गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग देने की भी घोषणा की।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले भारत 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों में गिना जाता था, लेकिन अब भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है।
1: इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल 5 में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं।
0: स्वाधीनता दिवस समारोह पर हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद अंतर सेवा और दिल्ली पुलिस के संयुक्त गार्ड ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं पहली बार लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किया गया। ध्वजारोहण के बाद भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर फूलों की बारिश की। इनमें से एक हेलीकॉप्टर पर राष्ट्रीय ध्वज था और दूसरे पर वंदे मातरम लिखा हुआ ध्वज था। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद NCC कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने वंदे मातरम का गायन किया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। सेना, नौसेना और वायुसेना के कुल 2500 कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने समारोह में हिस्सा लिया। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों ने लाल किले पर आयोजित समारोह में भाग लिया। अनुपम और आनंद के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और शहीदों को नमन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष NS राजा सुब्रमणि, थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह उपस्थित थे। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने स्वतंत्रता दिवस पर लोक निवास में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके सर्वोच्च बलिदान को याद किया। श्री संधू ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों का त्याग आज भी पीढ़ियों को प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को 2047 तक विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की यात्रा में देश का नेतृत्व करना है। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शहर के छत्रसाल स्टेडियम में ध्वजारोहण किया और देशवासियों

0: शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस उन अनगिनत वीरों के अदम्य साहस, बलिदान और समर्पण को याद करने का अवसर है जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर स्वतंत्र भारत की गौरवशाली नींव रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लहराता तिरंगा केवल देश के गौरवशाली अतीत का प्रतीक नहीं बल्कि उज्ज्वल भविष्य के प्रति हमारा संकल्प भी है।
1: लहराता हुआ तिरंगा केवल हमारे लिए गौरवशाली अतीत का प्रतीक नहीं है बल्कि हमारे उज्जवल भविष्य की संकल्प भी है और हमें यह निरंतर याद दिलाता है कि स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माण का सतत दायित्व भी है। ये तिरंगा हमेशा हमारे लिए गौरव है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य ऐसी राजधानी का निर्माण करना है जो स्वच्छ, आधुनिक और आत्मनिर्भर हो, जहां नारी शक्ति सशक्त हो, युवाओं के लिए नए अवसर हो, हर नागरिक तक सुशासन का लाभ पहुंचे और संस्कृति विरासत विकास के साथ आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की यात्रा में दिल्ली अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ अग्रणी भूमिका निभाएगी।
1: दिल्ली विकसित भारत की इस यात्रा में अग्रणी भूमिका निभाएगी। दिल्ली भारत की लोकतांत्रिक चेतना, सांस्कृतिक विविधता, आर्थिक ऊर्जा और राष्ट्रीय आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए दिल्ली का विकास केवल दिल्ली वासियों के विषय नहीं है बल्कि पूरे राष्ट्र की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि पिछले 8 दशकों में देश कई बड़ी चुनौतियों से निकला है लेकिन अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। स्वतंत्रता दिवस पर सर्वोच्च न्यायालय परिसर में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ध्वजारोहण समारोह में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि देश की यात्रा अब तक की उपलब्धियों के साथ समाप्त नहीं होती। उन्होंने कहा कि देश के कानूनी और न्यायिक संस्थानों ने भी देश के साथ उल्लेखनीय प्रगति की है और परिपक्व हुए हैं। इन संस्थानों ने राष्ट्र की अंतर आत्मा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी मुख्यालय परिसर में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने ध्वजारोहण कर सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। श्री जैन ने कहा कि यह दिन उन अमर शहीदों के बलिदान को स्मरण करने का दिन है जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए त्याग और बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि सभी को एक समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए प्रयास करना चाहिए जिसका सपना स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था।
2: आज के दिन हम उन शहीदों की शहादत को याद करते हैं जिनके कारण हमें ये आज़ादी मिली है। बहुत श्रद्धा पूर्वक मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ और हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि जो उनके सपनों का भारत जो उन्होंने देखा हो, जो समृद्ध हो, शक्तिशाली हो, आत्मनिर्भर हो और विकसित भारत हो, ऐसा हम सब का प्रयास होना चाहिए।
0: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डुसू चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही विश्वविद्यालय परिसर में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विभिन्न छात्र संगठन और चुनाव मैदान में उतरने वाले छात्र नेता विद्यार्थियों के बीच सक्रिय रूप से संपर्क अभियान चला रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: विश्वविद्यालय के नॉर्थ और साउथ कैंपस के साथ साथ अलग अलग महाविद्यालयों और संकायों में उम्मीदवार छात्रों से संवाद कर अपने मुद्दों और प्राथमिकताओं को उनके सामने रख रहे हैं। चुनाव को लेकर छात्र संगठनों ने अपनी रणनीति और प्रचार अभियान को भी गति दे दी है। उम्मीदवार छात्र हितों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए विद्यार्थियों का समर्थन जुटाने में लगे हैं। डूसू चुनाव के लिए मतदान अगले महीने 18 सितंबर को होगा जबकि मतगणना 19 सितंबर को की जाएगी। चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही विश्वविद्यालय में राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। सकलायन अख्तर के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
0: दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से कुल 446 ग्राम मादक पदार्थ बरामद किया गया है जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 80 लाख रुपए है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। अमृत उद्यान जनता के लिए कल से खुलने जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने

0: कल राष्ट्रपति भवन परिसर में अमृत उद्यान के ग्रीष्मकालीन संस्करण का उद्घाटन किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह उद्यान 15 सितंबर तक खुला रहेगा।
1: अमृत उद्यान के इस संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण हैं। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया है। देशज पुष्पों के संग्रह में बालसम, गुल मेहंदी, अपराजिता, बट्टम फूल, गोमफ्रेना, कुल्फा, रुक्मिणी, वर्षा फूल, मोरशिखा, दुपहरिया, लाल साग, कलिहारी और नागफना आदि शामिल है। ये पुष्प भारत की समृद्ध पुष्प विरासत को दर्शाने के साथ साथ उद्यान की जैव विविधता को भी समृद्ध करते हैं। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा।
0: राजधानी दिल्ली में आज तेज धूप रही, जिसके कारण लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। विभाग के अनुसार कल कुछ स्थानों पर बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। लाल किला पर पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गूंजा। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने स्वतंत्रता दिवस पर लोक निवास में ध्वजारोहण किया। कहा, स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान आज की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छत्रसाल स्टेडियम में ध्वजारोहण किया। कहा, तिरंगा केवल देश के गौरवशाली अतीत का प्रतीक नहीं, बल्कि उज्ज्वल भविष्य के प्रति हमारा संकल्प भी। और राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान कल से आम जनता के लिए खुलेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: सामईन की खिदमत में मोहम्मद अली कमाल का पुरखलूस आदाब। आप सबको जश्न आज़ादी की पुरखलूस मुबारकबाद। सामईन, आज हम 80वां योम आज़ादी मना रहे हैं। ये दिन हम बरतानवी साम्राज्य से निजात की याद में 15 अगस्त को इंतहाई जोशो खरोश और हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ मनाते हैं। ये दिन हमें उन लाखों लोगों की लाजवाल कुर्बानियों और तवील जद्दोजहद की याद दिलाता है, जिन्होंने एक आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेने और मुल्क की ग़ुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। इस दिन हमें खुशी मनाने के साथ साथ ये भी सोचना चाहिए कि जिन ख्वाबों को मुजाहिदीन आज़ादी ने बुना था, हम उन पर पूरे उतर रहे हैं या नहीं। इस दिन हमें मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने का अज़्म करना चाहिए। यौमे आज़ादी के मौके पर आइए सुनते हैं मुशायरा। निजामत कर रहे हैं जनाब नासिर अजीज।
3: आकाशवाणी के इस मुशायरे में यौमे आज़ादी के जश्न के तौर पर हम आज उसका इनेकाद कर रहे हैं। मैं आप सब को न सिर्फ ये कि यौमे आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ, मुशायरे में आपका इस्तकबाल करता हूँ। मेरे साथ यहाँ जनाब फारूक बख्शी साहब, जनाब अहमद महफूज साहब और जनाब प्रोफेसर शहपर रसूल साहब, ये तीनों बहुत ही मारूफ व मकबूल शुआरा हैं, मौजूद हैं। मैं इन सब का इस्तकबाल करता हूँ। और क्योंकि हम ये जश्न आज़ादी के जश्न के तौर पे मना रहे हैं, ये मुशायरा उसी हवाले से मुनक़द किया जा रहा है, इसलिए सबसे पहले मैं जनाब फारूक बख्शी साहब, जो बहुत उमदा शायर हैं, बहुत सी किताबों के मुसन्निफ हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि सबसे पहले अपना कलाम पेश करने की ज़हमत फरमाएं। जनाब प्रोफेसर फारूक बख्शी साहब,
4: बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब। मैं जश्न आज़ादी के मौके पर एक गीत आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा करें।
2: इरशाद फरमाइए।
4: वतन वतन

0: बोला ऐसा करें बन
1: जी आता
0: कुछ अलग अपनी मिट्टी की तासीर है।

0: जैसे
1: गुजर जाएंगे, ये न सोचे कोई हम

0: कोई हम
1: डर
0: जाएंगे, तेरी मिट्टी बनेगी हमारा कफन वतन वतन। गजल के चंद अशआर और मुलाहिज़ा कर लीजिए। हवा चली तो कहीं खुशबुओं के बन जागे,
1: हवा
0: चली तो कहीं खुशबुओं के बन जागे।

0: मगर उसका पैर
1: जागे
0: जागे,
1: वो सो रहा
0: वो सो रहा। और ये आखिरी शेर मुलाहजा करना
1: है, साथ में
0: उदास बैठे हैं।

0: जलाओ के अंजुमन
1: जागे
0: जागे
1: चरागे
0: दर।
1: बहुत उम्दा। तभी जनाब प्रोफेसर फारूक बख्शी साहब अपनी बहुत ही तहदार आवाज में एक मिल्ली तराना पेश किया और उसके बाद गजल के चंद अशार। अब इसके बाद इजाजत चाहता हूं कि मैं कुछ अपना कलाम पेश करूं, मतलब मुलाहिजा फरमाइए। अर्ज यूं किया है कि सुनाकर नज्म गजलें गीत हमने वो समा बांधा, सुनाकर नज्म गजलें गीत हमने वो समा बांधा, फसाहत का बलागत का मानी का जहां बांधा, और लिया था नाम दुनिया का निशाना बेवफा पर था, लिया था नाम दुनिया का निशाना बेवफा पर था, कहां की बात थी हमने मगर लाकर कहां बांधा, कहां की बात थी हमने मगर लाकर कहां बांधा। और फिर मुलाहिजा फरमाए कि मेरे अशार की शोहरत जमी से आसमां तक है,
0: मेरे अशार की शोहरत
1: जमी से आसमां तक है, शजर बांधे हजर बांधे जमीन व आसमां बांधा, शजर बांधे हजर बांधे जमीन व आसमां बांधा। और ये शेर बतौर खास पेश कर रहा हूँ इस गजल का आखिरी शेर के, बहुत मुश्किल था सैले गम से यूं बचकर निकल जाना,
2: बहुत मुश्किल था
1: सैले गम से यूं बचकर निकल जाना, हिसारे शेर में लेकिन वो दर्द बेकरा बांधा, हिसारे शेर में लेकिन वो दर्द बेकरा बांधा, और सुनाकर नज्म गजलें गीत हमने वो समा बांधा, फसाहत का बलागत का मानी का जहां बांधा। और कुछ अशार और एक गजल से पेश करता हूँ। अजीम किया है, मतलब मुलाहिजा फरमाए कि मेरे गुनाहों पे अक्सर उदास रहता है,
0: मेरे गुनाहों पे अक्सर उदास रहता है
1: कि मेरे दिल में कोई खुद शनास रहता है,
2: मेरे दिल में कोई खुद शनास रहता है
1: और जमाने भर की खुशी उससे दूर रहती है,
2: जमाने भर की खुशी उससे दूर रहती है
1: वो शख्स जिसको जमाने का पास रहता है, वो शख्स जिसको जमाने का पास रहता है, और वो कह गया है तो वापस जरूर आएगा, वो कह

0: गया है तो वापस जरूर आएगा, ये मेरा दिल तो अबस ही उदास रहता है, ये मेरा दिल तो अबस ही उदास रहता है। और ये शेर मैं बतौर खास आप रात की खिदमत में पेश करता हूं कि मुझे नहीं है सजा का कोई भी खौफ व खतर,
1: मुझे नहीं है सजा से,
0: मुझे नहीं है सजा का कोई भी खौफ व खतर, अमीर शहर मेरे घर के पास रहता है। बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं है सजा का कोई भी खौफ व खतर, अमीर शहर मेरे घर के पास रहता है। और झुके ये जब भी तेरे संगे आस्था पर झुके, झुके ये जब भी तेरे संगे आस्था पर झुके, मेरा जबी से यही इल्तिमास रहता है, मेरा जबी से यही इल्तिमास रहता है। और अजीज जिसकी वफा हमसे दूर दूर रही, अजीज जिसकी वफा हमसे दूर दूर रही, वो शख्स दिल के बहुत पास पास रहता है। अजीज जिसकी वफा हमसे दूर दूर रही, वो शख्स दिल के बहुत पास पास रहता है। और एक गजल के कुछ और अशआर पेश करने की इजाजत चाहता हूं। आज यूं किया है कि अजब सा हू का आलम अब हमारे दिल में रहता है,
1: अजब सा हू का आलम,
0: अजब सा हू का आलम अब हमारे दिल में रहता है। ये हाल उसका है जो हरदम भरी महफिल में रहता है, ये हाल उसका है जो हरदम भरी महफिल में रहता है। और यहां मैंने इस्तफादा किया है गालिब के मिसरे से, वो जालिम जान लेकर भी नहीं है मुल्तफित यारब, ये दिल आईना बेमहरी कातिल में रहता है। बहुत शुक्रिया। वो जालिम जान लेकर भी नहीं है मुल्तफित यारब, ये दिल आईना बेमहरी कातिल में रहता है। और तकाजा मसलहत का है यहां से कूच कर जाए, तकाजा मसलहत का है यहां से कूच कर जाए, मगर ये हौसला दिल का दिले बिस्मिल में रहता है, मगर ये हौसला दिल का दिले बिस्मिल में रहता है। और शेर मुलाहिज़ा फरमाए कि नसीबा दीदनी उस नामुकम्मल दिल का है यारो, नसीबा दीदनी इस नामुकम्मल दिल का है यारो, अधूरा है मगर चश्मे महे कामिल में रहता है। नसीबा दीदनी है इस नामुकम्मल दिल का है यारो, अधूरा है मगर चश्मे महे कामिल में रहता है। और कुछ ऐसी लज्जते पुरकैफ मेरे खून में दर आई, कुछ ऐसी लज्जते पुरकैफ मेरे खून में दर आई, नशा आठों पहर जैसे मेरे कातिल में रहता है, नशा आठों पहर जैसे मेरे कातिल में रहता है। और ये मक्ता मुलाहिज़ा फरमाएं कि अगरचे फारसी में हाथ अपना तंग है नासिर, अगरचे फारसी में हाथ अपना तंग है नासिर, मगर दिल रूमियो शिराजियो बेदिल में रहता है, मगर दिल रूमियो शिराजियो बेदिल में रहता है। अजब सा हू का आलम अब हमारे दिल में रहता है, ये हाल उसका है जो हरदम भरी महफिल में रहता है। हज़रात, अब इसमें नया कोई दर नहीं करना, अब इसमें नया कोई दर नहीं करना, ये काम सहल बहुत है मगर नहीं करना। इस शेर के खालिक जनाब अहमद महफूज साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप अपना कलामी बलागत निज़ाम पेश फरमाएं।
2: बहुत शुक्रिया नासिर साहब। मुलाहिज़ा करें, गज़ल का मतला अर्ज किया है। जाने हम किस ख्याल में गुम थे, जाने हम किस ख्याल में गुम थे, आँख उठी तो सामने तुम थे, जाने हम किस ख्याल में गुम थे, आँख उठी तो सामने तुम थे। और शेर मुलाहिज़ा करें कि हम अकेले नहीं थे दरिया में, हम अकेले नहीं थे दरिया में, साथ गिरदाब थे तलातुम थे, हम अकेले नहीं थे दरिया में, साथ गिरदाब थे तलातुम थे। और ये शेर भी देखें कि कैसी उफ्ताद पड़ गई थी के सब,
3: कैसी उफ्ताद पड़ गई,
2: कैसी उफ्ताद पड़ गई थी के सब, अपने अपने घरों में गुमसुम थे, कैसी उफ्ताद पड़ गई थी के सब अपने अपने घरों में गुमसुम थे, कम न थी आसमां से दिल की जमी,
3: कम न थी,
2: कम न थी आसमां से दिल की जमी, रात जुगनू भी रश के अंजुम थे। कम न थी आसमां से दिल की जमी, बहुत शुक्रिया।
1: जुगनू भी रश,
2: कम न थी आसमां से दिल की जमी, रात जुगनू भी रश के अंजुम थे। और ये शेर खास तौर से मुलाजा करें, हम निकल कर सुकूत सहरा से,
4: हम निकल कर

0: शुक्रिया।
1: बहुत अच्छा।
0: हम निकलकर सुकूत सहरा से मुद्दतों तशनए तकल्लुम थे।
1: बहुत अच्छा।
0: और गजल का आखिरी शेर समाप्त फरमाएं कि न गए फिर बसे जो आंखों में,
2: न गए फिर बसे
0: जो आंखों में, हाय क्या शोक दीदा मर्दुम थे। न गए फिर, बहुत शुक्रिया, न गए फिर बसे जो आंखों में, हाय क्या शोक दीदा मर्दुम थे। जाने हम किस ख्याल में गुम थे, आंख उठी तो सामने तुम थे। बहुत शुक्रिया। दूसरी गजल का मतलब मुलाहिजा करें। पस्तो बुलंद सारा हमवार करके लौटे,
3: पस्तो बुलंद सारा हमवार करके लौटे
0: इस बार हम उसे ही सरशार करके लौटे। पस्तो बुलंद सारा हमवार करके लौटे, इस बार हम उसे ही सरशार करके लौटे। और शेर मुलाहिजा करें कि अब मंजिले जुनू को सर करके देखना क्या,
3: अब
0: मंजिले जुनू को सर करके देखना क्या, निकले तो थे हजारों दो चार करके लौटे। अब मंजिले जुनू को सर करके देखना क्या, निकले तो थे हजारों दो चार करके लौटे। उस अरसे हवा का अब तक है बोझ दिल पर,
3: उस अरसे हवा का अब तक है बोझ दिल पर
0: अच्छा हुआ जो खुद को बेजार करके लौटे। उस अरसे हवा का अब तक है बोझ दिल पर, उस अरसे हवा का अब तक है बोझ दिल पर अच्छा हुआ जो खुद को बेजार करके लौटे। और ये शेर खास तौर से मुलाहिजा करें शबा साहब, देखिए कि कब तक न साफ करते उनसे हिसाबे हिजरा, कब तक न साफ करते उनसे हिसाबे हिजरा, उस बार था जो बाकी इस बार करके लौटे। कब तक न साफ करते उनसे हिसाबे हिजरा, उस बार था जो बाकी इस बार करके लौटे। और शेर देखिए कि क्या मुफ्त है ये सौदा जो चाहे उस गली में,
3: क्या मुफ्त है ये सौदा
0: जो चाहे उस गली में, जहाँ नजर लेके जाए दीदार करके लौटे। क्या मुफ्त है ये सौदा जो चाहे उस गली में, जहाँ नजर लेके जाए दीदार करके लौटे। और आखिरी शेर मुलाहिजा फरमाए कि जाते हैं लोग ऐसे थक हार कर जहाँ से, जाते हैं लोग ऐसे थक हार कर जहाँ से घर अपने जैसे कोई बाजार करके लौटे। जाते हैं लोग ऐसे थक हार कर जहाँ से, घर अपने जैसे कोई बाजार करके लौटे।
3: बहुत अच्छा। समीन, आप अभी महसूस हो रहे थे जनाब अहमद महफूज साहब के बहुत ही उम्दा मुरस्सा कलाम से। और अब आखिर में मैं जिन्हें दावत सुखन दे रहा हूँ वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैंने भी देखने की हद कर दी और वो भी तस्वीर से निकल आया। इस शेर के खालिक जनाब शेख़ रसूल साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप अपना
1: बहुत शुक्रिया। मैं अवलन तमाम लोगों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। चंद शेर, एक मतला इस तरह है, मुलाहिज़ा कीजिए। शजर पे फूल तो चेहरों पे लब लगे हुए हैं,
3: शजर पे फूल तो चेहरों पे लब लगे हुए हैं,
1: शजर पे फूल तो चेहरों पे लब लगे हुए हैं, हमें खबर है कि जिसके सबब लगे हुए हैं। शजर पे फूल तो चेहरों पे लब लगे हुए हैं, हमें खबर है कि जिसके सबब लगे हुए हैं। मुलाहिजा कीजिए कि तो ये है असल हरीफ, ऐसा तो गुमा भी ना था, तो ये है असल हरीफ, ऐसा तो गुमा भी न था, ये मेरे साथ जो नामो नसब लगे हुए हैं। तो ये है असल हरीफ, ऐसा तो गुमा भी न था, ये मेरे साथ जो नामो नसब लगे हुए हैं। मुलाहिज़ा की ये है कोई गोशाए दुनिया जो शर से खाली हो, है कोई गोशाए दुनिया जो शर से खाली हो,

0: अदब के पीछे भी कुछ बेअदब लगे हुए हैं।
1: क्या बात
0: है, कोई गोशा ये दुनिया जो शर से खाली हो, अदब के पीछे भी कुछ बेअदब लगे हुए हैं। हम मुलाहजा कीजिए कि उसे मिला है जो ऐसे, हमें वो कैसे मिले। उसे मिला है जो ऐसे, हमें वो कैसे मिले। उधेड़ बुन में इसी सब के सब लगे हुए हैं।
2: क्या
0: उधेड़ बुन में इसी
2: वाह वाह वाह
0: सब के सब लगे हुए हैं। वही शेर मुलाहजा कीजिए कि ये फूल फल जो नजर आ रहे हैं शाखों पर,
2: ये फूल फल
0: जो नजर आ रहे हैं शाखों पर, लहू बदन का निचोड़ा है तब लगे
2: तब लगे हुए हैं। क्या बात है,
0: ये फूल फल जो नजर आ रहे हैं शाखों पर, लहू बदन का निचोड़ा है
2: तब लगे हुए
0: हैं। और जनाब ये मक्ता हाजिर है कि सभी को उसका सरापा लगा है सबसे जुदा, सभी को उसका सरापा लगा है सबसे जुदा, मगर वो नैन तो शह पर गजब लगे हुए हैं। सभी को उसका सरापा लगा है सबसे जुदा, मगर वो नैन तो शह पर गजब लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। ये दूसरी गजल के चंद अशआर मुलाहजा कर लीजिए। मतला खास तौर पेश कर रहा हूँ। ये फतह जहले मुसलसल भी एक कमाल तो है, ये फतह जहले मुसलसल भी एक कमाल तो है, जवाब हो न हो इसका ये एक सवाल तो है। ये फतह जहले मुसलसल भी एक कमाल तो है, जवाब हो न हो इसका
2: ये
0: एक सवाल तो है। हूँ मेरा जिक्र तो उठ जाते हैं वो महफिल से, मेरा जिक्र तो उठ जाते हैं वो महफिल से, मगर मैं खुश हूँ कि उनको मेरा ख्याल तो है। मगर मैं खुश हूँ कि उनको मेरा ख्याल तो है। और एक शेर ये मुलाहजा कर लीजिए, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो आजकल है, गालिबन ये शेर मैंने और तो कहीं सुना नहीं, ये उस पर है। मुलाहजा कीजिए कि मिले भी पर्दाए बरकी पे उनसे बात भी की, मिले भी पर्दाए बरकी पे उनसे बात भी की, बना में हिजर ये एक सूरत विसाल
2: तो है। अच्छा, अच्छा,
0: अच्छा। ये मिले भी पर्दा बरकी पे उनसे, बना में हिजर ये एक सूरत विसाल तो है। इसका मक्ता हाजिर है कि बिछड़ गए हैं जो लम्हे, बिछड़ने थे शह पर, बिछड़ गए हैं जो लम्हे, बिछड़ने थे शह पर, भले ही गम ना करें हम मगर मलाल तो है। मिले भी पर्दे बरकी पे उनसे बात भी की, बना में हिजर ये एक सूरत विसाल तो है। बहुत शुक्रिया। एक गजल के चंद शेर में और पेश कर रहा हूँ। गालिब की जमीन में चंद शेर है। मतलब यह है कि मशरबे शेर के रिंदों का वो एक पीर भी था, मशरबे शेर के रिंदों का वो एक पीर भी था, सब पे गालिब था मगर मुतकिदे मीर भी
2: था।
0: मशरबे शेर के रिंदों का वो एक पीर भी था, सब पे गालिब था मगर मुतकिदे मीर भी था। मुलाहजा कीजिए कि हमने उस वक्त माफी की रिवायत डाली,
1: हमने उस
0: वक्त माफी की रिवायत डाली, गैर जब जेर भी था और तहे शमशीर भी था।
2: क्या बात, ये क्या तकदीर।
0: हमने उस वक्त माफी की रिवायत डाली,
2: क्या बात,
0: गैर जब जेर भी था और तहे शमशीर भी था। मुलाहजा कीजिए कि
2: बहुत अच्छा,
0: फाश ये राज फरिश्तों के लिखे पर ही हुआ। देखिए मैंने इसको दूसरे पहलू से कहा, गालिब ने भी कहा है। मुलाहजा कीजिए कि फाश ये राज फरिश्तों के लिखे पर ही हुआ, आदमी कोई हमारा दमे तहरीर
2: था।
0: फाश ये राज फरिश्तों के लिखे पर ही हुआ, आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था। मुलाहजा कीजिए कि शेर तो तुम भी नया कहते हो लेकिन शह पर,
2: शेर तो
0: तुम भी नया कहते हो लेकिन शह पर, कहते हैं अगले जमाने में कोई भी था। बहुत शुक्रिया जनाब।
2: क्या क्या आपने
3: नामीन इकराम, अभी आपने इन मौजूद शुराए

0: कलाम का इंतहाई मुरस्सा और बहुत ही नादिर कलाम सुना हमारे आज के आकाशवाणी के इस मुशायरे में। जिन शौराए कराम ने कलाम पढ़ा उनमें ये खाकसार नासिर अजीज ने अपना कलाम सुनाया, और इसके अलावा जिन शौरा ने कलाम पढ़ा उसमें जनाब फारूक बख्शी साहब, जनाब अहमद महफूज साहब और जनाब प्रोफेसर शहपर रसूल साहब ने अपना कलाम आपकी खिदमत में पेश किया।
1: सामीन, अभी आप मुशायरा सुन रहे थे, निजामत के फराइज अंजाम दे रहे थे जनाब नासिर अजीज। और सामीन, एक बार फिर आप सबको जश्न आज़ादी की पुरखलूस मुबारकबाद। और अब अपने दोस्त मोहम्मद अली कमाल को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अभी आपने मुशायरा सुना, और अब से कुछ ही देर बाद यानी 8:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 8:45 पर समय होगा समाचार संध्या का, और ठीक 9:00 आप सुनेंगे इवनिंग न्यूज़। 9:15 पर आप सुन सकते हैं उर्दू में खबरें। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन आपका कैसा गुजरा और आकाशवाणी के साथ आपका दिन कैसा गुजरा, ये आप हमें जरूर बताइएगा।

0: नाचना जरूर है, मुझे नाचना जरूर है माँ, मुझे नाचना जरूर है माँ, मेरी देखेगी नाचना जरूर है।
1: रंग केसर शूरा वाले, रंग सब

गीत सिर्फ गीत नहीं होते, ये वो ऊर्जा होते हैं जो आपकी जिंदगी में और आपके जीवन में भर जाती है। और वो जो जज्बा होता है वो सिर्फ गानों से नहीं होता, वो आपका सच्चे दिल का एक ख्याल होता है, एक जज्बा होता है, एक सोच होती है, और कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश को दोबारा से जगाता है। इसलिए वक्त वक्त पर इस तरह के गीत जरूर सुनते रहने चाहिए जिसमें देशभक्ति की भावना जरूर हो।

0: ऐसी ही बहुत सी ख्वाहिश होनी चाहिए हर एक भारतवासी के दिल में कि वो अपने देश के लिए, अपनी इस मातृभूमि के लिए बहुत कुछ कर गुजरे। और अभी एक कार्यक्रम का अंतिम गीत।
1: जिद है मेरी दर्द।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे समाचार संध्या और ठीक 9 बजे इवनिंग न्यूज। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं तथा महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। इंडोनेशिया में फ्लोरेस तट के पास आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 47 लोगों की मौत। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने ग्रुप डी के मैच में वेल्स को 3-1 से हराया और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गोल में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन हुआ।
2: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया।
2: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है, जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि इन संकटों के दौरान टीके, ईंधन, गैस, डीजल और उर्वरक की कमी को लेकर काफी अफवाहें फैलाई गई थी। श्री मोदी ने कहा कि सुनियोजित नीतियों, तैयारियों और समय रहते उठाए गए कदमों के कारण देश ने इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है।
2: एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तक जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
2: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया।
2: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूँ। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
0: स्वतंत्रता दिवस समारोह पर हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट।
3: आज स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 वर्षों से चली आ रही गौरवशाली विरासत का स्मरण किया गया। इस वर्ष पहली बार लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया। प्रधानमंत्री को तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टरों ने समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा की। सेना के बैंड ने वंदे मातरम की मधुर धुन प्रस्तुत की और लाल किले पर मौजूद सभी लोगों ने एक साथ राष्ट्रीय गीत का गायन किया। इसके बाद राष्ट्रगान का भी गायन किया गया। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लगभग 5,000 विशेष अतिथियों को लाल किले पर आमंत्रित किया गया था। सुपर्णा और सौम्य के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। महाराष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों को संबोधित करते हुए किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मेघालय के राज्यपाल सीएच विजय शंकर ने शिलांग स्थित लोकभवन में स्वतंत्रता दिवस पर पारंपरिक एट होम समारोह का आयोजन किया। बिहार में स्वतंत्रता दिवस पारंपरिक उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित मुख्य राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। लद्दाख में स्वतंत्रता दिवस समारोह करगिल के ख्री सुल्तान चो स्पोर्ट्स स्टेडियम में देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। आकाशवाणी करगिल ने बारू परिसर में उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। मणिपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह इम्फाल पश्चिम स्थित प्रथम मणिपुर राइफल्स परेड ग्राउंड में आयोजित हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने आज स्वतंत्रता दिवस पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत

0: और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी का उल्लेख किया। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुखरत्नम ने कौशल विकास, डिजिटल तकनीक, सतत विकास और उन्नत विनिर्माण के क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग का उल्लेख किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने भी भारत को शुभकामनाएं दी। लातविया के विदेश मंत्रालय ने भारत की निरंतर प्रगति, एकता और समृद्धि की कामना की। इसराइल के राजदूत रुवे नजार, अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कोसिनो, श्रीलंका के उच्चायुक्त महेशिनी कोलोन ने, ऑस्ट्रेलिया उच्चायुक्त और कनाडा के उच्चायोग ने भी भारत को शुभकामनाएं दी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजो ने कहा कि आजादी के 8 दशक भारत की आकांक्षाओं, दृढ़ता और अटूट भावना को दर्शाते हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की शुभकामनाओं के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी तथा सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इंडोनेशिया में फ्लोरेस द्वीप तट के पास आज आई 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। भूकंप के बाद देश के कई हिस्सों में 1 मीटर से कम ऊंचाई की सुनामी लहरें भी दर्ज की गई। मुख्य शहर माउमेर में बचाव दल ने 20 शव बरामद किए और 6 घायलों को बाहर निकाला। दक्षिणी लेबनान में आज इसराइल के हवाई हमले में 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने बताया कि अंसार गांव में एक मकान पर हुए इस हवाई हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। इसराइल की सेना ने कहा है कि इसराइली सैनिकों के खिलाफ की गई एक कार्रवाई के जवाब में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट news.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान कल से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। यह रखरखाव के कारण प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा।
2: अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण है। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह कल राजस्थान के अलवर में अलवर सरस डेयरी परिसर में नए डेयरी प्लांट की आधारशिला रखेंगे। वे वर्चुअल माध्यम से विभिन्न डेयरी प्रसंस्करण संयंत्रों और पशु आहार संयंत्रों का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा रोजगार उत्सव के तहत नवनियुक्त 10,500 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। दूरसंचार विभाग पुणे में 17 से 21 अगस्त तक ब्रिक्स सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT ट्रैक का आयोजन करेगा। इस वर्ष का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और बदलाव। कार्यक्रम की शुरुआत 7वें ब्रिक्स ICT कार्य समूह की बैठक से होगी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मूसलाधार वर्षा की संभावना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 21 अगस्त तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। और खेलों में नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में आज भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया।

0: भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने दो जबकि संजय राणा ने एक गोल किया। हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला मैच 17 अगस्त को इंग्लैंड से खेलेगा। वहीं श्रीलंका के साथ गोल में खेले जा रहे भारत के ऐतिहासिक 600वें टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने दो विकेट पर 288 रन बनाए। भारत की ओर से देवदत्त पडिक्कल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं तथा महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। इंडोनेशिया के फ्लोरेस तट के पास आए भूकंप में 47 लोगों की मौत और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गोल में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक दो विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वल्सा विलियम्स with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi leads the nation in celebrating 80th Independence Day, urges citizens to dream big for a strong and self-reliant India. Prime Minister emphasizes on empowerment of youth and women for a Vikasit Bharat, unveils Saptadhara framework with aim of harnessing youth power to propel India to new heights. Prime Minister Modi announces target of 100 gigawatts nuclear power capacity by 2047. World leaders extend Independence Day greetings to India, praising its democratic journey, civilizational heritage, and expanding role in regional and global cooperation. In Indonesia, death toll in powerful earthquake rises to 47. Heavy rain alert issued in Arunachal Pradesh, Gangetic West Bengal, Odisha, Uttar Pradesh and Uttarakhand till tomorrow. In hockey, India defeat Wales 3-1 in Group D match of FIH World Cup in the Netherlands. And in cricket, India post 288 for 2 at stumps on day one of first test against hosts Sri Lanka. The nation is celebrating its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi led the Independence Day celebrations from the iconic Red Fort in Delhi. Addressing the nation from the ramparts of Red Fort, the Prime Minister said over the past 12 years, crores of citizens of the country, with their determination and dedication, made every possible effort to take the country to new heights. He said, a nation achieves greatness when it moves forward on the strength of its own dreams and resolve. The Prime Minister stressed that higher dreams and stronger resolutions raise the overall scale and capability of the nation's efforts.
2: Koi bhi rashtra tab mahaan banta hai jab apne sapnon, apne sankalpon aur apne samarthya ke dam par aage badhta hai. Bade sapne हमारी सोच को विस्तार देते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
1: Prime Minister Modi said energy security is one of the major requirements of the present times and the government has taken several significant steps in this direction. He said nuclear energy is an important means of ensuring a country's energy security.
2: Energy security हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही इस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक

0: Amrit Udyan will be open to the general public from tomorrow till the 15th of next month. Our correspondent reports that the garden will remain open from 10 a.m. to 6 p.m. with the last entry at 5 p.m. It will remain closed on Mondays for maintenance. Now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi leads the nation in celebrating 80th Independence Day, urges citizens to dream big for a strong and self-reliant India. Prime Minister emphasizes on empowerment of youth and women for a Vikasit Bharat, unveils Saptadhara framework with aim of harnessing youth power to propel India to new heights. Prime Minister Modi announces target of 100 gigawatts nuclear power capacity by 2047. World leaders extend Independence Day greetings to India, praising its democratic journey, civilizational heritage, and expanding role in regional and global cooperation. In Indonesia, death toll in powerful earthquake rises to 47. Heavy rain alert issued in Arunachal Pradesh, Gangetic, West Bengal, Odisha, Uttar Pradesh, and Uttarakhand till tomorrow. In hockey, India defeat Wales 3-1 in Group D match of FIH World Cup in the Netherlands. And in cricket, India post 288 for 2 at stumps on day 1 of first test against host Sri Lanka. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 80वें यौमे आज़ादी का जश्न मनाने में मुल्क की क़यादत की और लोगों पर जोर दिया कि वो एक मजबूत और खुद कफील भारत के लिए बड़े ख्वाब देखें। वज़ीर आज़म ने विकसित भारत के लिए नौजवानों और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाए जाने पर जोर दिया और भारत को नई बुलंदियों पर ले जाने की खातिर नौजवानों की क़ुव्वत को बरूएकार लाने के मकसद से सप्तधारा फ्रेमवर्क का ऐलान किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट की एटमी बिजली की सलाहियत के निशाने का ऐलान किया। आलमी रहनुमाओं ने भारत के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद दी और उसके जमहूरी सफर, तहजीबी विरसे और इलाकाई और आलमी इश्तराक में उसके बढ़ते हुए रोल की सताइश की। इंडोनेशिया में शदीद जलजले में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 47 तक पहुंच गई है। अरुणाचल प्रदेश, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक शदीद बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की गई है। हॉकी में नीदरलैंड्स में FIH वर्ल्ड कप के ग्रुप डी के मैच में भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बना लिए थे। आज 80वां यौमे आजादी पूरी धूमधाम के साथ मनाया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में तारीखी लाल किले पर यौमे आजादी की तकरीबात में मुल्क की क़यादत की। वहां उनके पहुंचने के बाद लाल किले पर पहली मर्तबा कौमी गीत वंदे मातरम गाया गया। इस साल की तकरीबात में 2047 तक विकसित भारत की तामीर में नौजवानों के रोल को तस्लीम करते हुए युवा शक्ति की अहमियत उजागर की गई। लाल किले की फसील से कौम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुज़श्ता 12 साल के दौरान मुल्क के करोड़ों शहरियों ने अपने पुख्ता अज़्म और लगन के जरिए मुल्क को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए भरपूर कोशिश की। वज़ीर आज़म ने कहा कि इन कोशिशों की बदौलत 25 करोड़ लोग गुरबत से बाहर आ गए हैं। जनाब मोदी ने कहा कि भारत ने 2047 तक एक तरक्याफ्ता मुल्क बनने का बड़ा निशाना तय किया है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत जो कभी 5 कमजोर मईशतों वाले मुल्कों में शामिल था, अब दुनिया में एक बड़ी और सबसे तेज रफ्तार तरक्की करने वाली मईशत के तौर पर उभरा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोई मुल्क तभी तरक्की कर सकता है जब वो खुद अपने ख्वाब और अज़्म की ताकत के साथ कदम बढ़ाता है। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि बड़े ख्वाबों और मजबूत अज़्म से मुल्क की कोशिशों की सलाहियत में इजाफा होता है।
2: कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। बड़े सपने हमारी सोच को विस्तार देते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ता

0: तय निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
1: वज़ीर आज़म ने कहा कि तवानाई की यकीनी फराहमी मौजूदा दौर की बड़ी ज़रूरियात में से एक है और सरकार ने इस सिलसिले में कई अहम इकदाम किए हैं। उन्होंने कहा कि एटमी तवानाई मुल्क की तवानाई की यकीनी फराहमी का एक अहम वसीला है।
0: एनर्जी सिक्योरिटी हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही

0: नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है।
1: 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
2: वजीर आजम ने कहा कि सरकार ने साहिल समंदर के 99% इलाके खोल दिए हैं और सरकार अब समंदर की गहराइयों में तलाश का काम सरगर्मी के साथ अंजाम दे रही है और नए जखायर दरियाफ्त करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं।
1: हमने 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया और अब हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले वर्ष उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखते हुए समुद्र मंथन की घोषणा करके काम को गति देने का निर्णय कर लिया।
2: विकसित भारत के लिए नौजवानों और ख्वातीन को बाइख्तियार बनाए जाने पर जोर देते हुए जना मोदी ने मुख्तलिफ पब्लिक इम्तिहानात के लिए गरीब और मुतवस्सित तबके के कुनबों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग फराहम करने का ऐलान किया। वजीर आजम ने यह ऐलान भी किया कि सरकार ने यह फैसला किया है कि अगले एक साल में 1 करोड़ नौजवानों को AI की हुनरमंदी की तरबियत दी जाएगी। जना मोदी ने कहा कि इस तरह ये नौजवान आलमी सतह पर AI के शोबों में सरकर्दा रोल अदा कर सकेंगे।
1: हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
2: अपने खिताब में वजीर आजम ने मुल्क के लोगों पर जोर दिया कि वो कुव्वत की 7 धाराओं सप्त धारा को बरूए कार लाएं। जना मोदी ने कहा कि अगले 5-7 साल में मुल्क वो सब कुछ हासिल कर लेगा जो गुज़श्ता 5-7 दहाइयों में भी हासिल नहीं किया जा सका था।
1: आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूँ। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
2: वजीर आजम ने कहा कि अगले 7-8 साल में मजीद 5 से लेकर 8 सेमीकंडक्टर प्लांट्स काम करने लगेंगे। जना मोदी ने कहा कि 3 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में प्रोडक्शन का काम शुरू हो चुका है।
1: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं।
2: पेश है लाल किले पर यौम आजादी की तकरीबात के सिलसिले में हमारे नामा निगार की यह रिपोर्ट।
3: आज यौम आजादी की तकरीबात के साथ साथ कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने का जश्न भी मनाया गया। पहली मरतबा लाल किले पर इन तकरीबात के दौरान वंदे मातरम गाया गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह, दिफा के वजीर ममलकत संजय सेठ और महकमे दिफा के सेक्रेटरी राजेश सिंह ने लाल किले पहुंचने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया। वजीर आजम को पेश किए गए गार्ड ऑफ ऑनर के दस्ते में एक अफसर और फौज, बहरिया, फजाइया और दिल्ली पुलिस से ताल्लुक रखने वाले 24 अहलकार शामिल थे। वजीर आजम ने कौमी परचम लहराया और इसके साथ साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। तकरीब के मकाम पर भारतीय फजाइया के MI-17 तर्ज के 2 हेलीकॉप्टरों के जरिए फूल बरसाए गए। फौज के बैंड ने वंदे मातरम की धुन बजाई और लाल किले पर मौजूद सभी लोगों ने कौमी गीत गाया। इसके बाद कौमी तराना पेश किया गया। इस साल लाल किले पर यौम आजादी की तकरीब के लिए जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 5,000 खसूसी मेहमानों को मदु किया गया था। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं कौनैन हैदर।
2: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आलमी रहनुमाओं और गैर मुल्की मिशनों ने भारत के 80वें यौम आजादी के मौके पर मुबारकबाद दी और उसके जमहूरी सफर, तहजीबी विरासत और इलाकाई नीज आलमी इश्तराक में उसके बढ़ते हुए रोल की सताइश की। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भारत और अमरीका के दरमियान मुस्तहकम कलीदी साझेदारी को उजागर किया, जबकि सिंगापुर के सदर थर्मन शनमुगारत्नम ने हुनरमंदी के फरोग, डिजिटल शक्ल दिए जाने, पायदार निजाम और जदीद तर्ज की मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में बढ़ते हुए ताउन की अहमियत उजागर की। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों ने भी 80वें यौम आजादी पर भारत के तई नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इसराइल

के सदर आइजक हर्ट्ज़ोग ने अपना पैगाम हिंदी में भी शेयर करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और भारत के आवाम को मुबारकबाद पेश की। नेपाल के वजीर आजम बालेंद्र शाह ने भी मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, जबकि लातविया की वजारत खारजा ने भारत के लगातार पेशरफ्त, इत्तेहाद और खुशहाली के तई नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उधर इसराइल के सफीर, अर्जेंटीना के सफीर, श्रीलंका के हाई कमिश्नर, नीज नेपाल और फ्रांस के सिफारतखाने, ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी हाई कमिश्नर और कैनेडा के हाई कमीशन की जानब से भी मुबारकबाद के पैगाम मौसूल हुए हैं। इनमें भारत के विरसे और गुनागुनियत, इकतसादी सलाहियत और फरोग पाते हुए बामी ताल्लुकात को उजागर किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उन आलमी रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद दी। इनमें फ्रांस के सदर इमैनुअल मैखों और मालदीव के सदर मोहम्मद मोइज़ो शामिल हैं। नेपाल के वज़ीर आज़म बालेंद्र शाह की मुबारकबाद के पैगाम के जवाब में जनाब मोदी ने कहा कि वो दोनों मुल्कों के आवाम की बहबूद और बाहमी खुशहाली के लिए भारत और नेपाल के दरमियान कसीर रुखी और सदियों पुराने तहजीबी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने की खातिर मिलकर काम करने के पाबंद हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर भूटान के वजीर आजम शेरिंग तोगे के पैगाम के लिए उनके शुक्रिया अदा करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ खुसूसी और पायदार साझेदारी को बहुत कद्र की निगाह से देखता है, जो लगातार मजबूत होती जा रही है। स्लोवाकिया के सदर पीटर पेलेग्रिनी के पैगाम के जवाब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो भारत और स्लोवाकिया के दरमियान जामे साझेदारी को मजीद मुस्तहकम बनाए जाने के मुतमन्नी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन का तहरीर करदा एक मजमून शेयर किया है, जिसमें मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों और 2047 तक विकसित भारत की तामीर के अज़्म को उजागर किया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि इस मजमून में नायब सदर जमहूरिया के अंडमान और निकोबार जज़ायर के हालिया दौरे का तज़किरा किया गया है। उनका यह दौरा ऐसे वक्त हुआ जब भारत अपना 80वां यौम आज़ादी मना रहा है और पूरे मुल्क में मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को याद किया जा रहा है। सरकार ने सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करने वाली एक पोस्ट को खारिज कर दिया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी यौम आज़ादी पर 5,000 रुपए की नकद ग्रांट दे रहे हैं और इसके लिए लोगों के बैंक खाते की तफसीलात मांगी जा रही हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के हकायक का पता लगाने वाली यूनिट ने कहा है कि यह दावा फर्जी है। पीआईबी ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने यौम आज़ादी पर इस तरह की किसी भी नकद ग्रांट की कोई तायद नहीं की है। उसने लोगों को खबरदार किया है कि इस तरह के पैगाम के जरिए अक्सर जाति या माली जानकारी हासिल करने की कोशिश की जाती है। पीआईबी ने लोगों से जोर देकर कहा है कि वो चौकस रहें और इस तरह के पैगाम पर भरोसा करने या उन्हें दूसरों तक पहुंचाने से पहले सरकारी वसीलों से इस तरह के दावों की तस्दीक कर लें। इंडोनेशिया के फ्लोरेस जजीरे के करीब आज 7.7 शिद्दत का जलजला आया। इस वाकये में मरने वालों की तादाद बढ़कर 47 हो गई है। इस जबरदस्त जलजले के बाद कई झटके महसूस किए गए, जबकि राहत टीमों ने बुरी तरह मुतासर होने वाले इलाकों में पहुंचने की कोशिश जारी रखी। मुल्क के कई हिस्सों में कम से कम 1-1 मीटर सुनामी की लहरों की भी इत्तला है। भारतीय महकमे मौसमियात ने अरुणाचल प्रदेश, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश का सिलसिला जारी रखने के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी अगले 2-3 दिन के दौरान मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मुंबई के बांद्रा वेस्ट इलाके में स्टेशन रोड पर वाकई आज एक इमारत में आग लग गई। आग लगने के बाद कई लोगों का दम घुटने लगा। हुक्काम के मुताबिक मुतासिर लोगों को एक अस्पताल में ले जाया गया। बताया जाता है कि उनकी हालत मुस्तहकम है। हुक्काम का कहना है कि आग बुझाने वाले महकमे ने आग पर काबू पा लिया है। ये वाकया बांद्रा के एमके चेंबूर इलाके में पेश आया। भारत ने नीदरलैंड्स के आमस्टेलवेन में FIH हॉकी आलमी कप के ग्रुप डी के एक मैच में वेल्स को 1-3 गोल से हरा दिया। भारत की तरफ से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल किए, संजय राणा ने 1 गोल किया, वेल्स की तरफ से सैम वेल्श ने 1 गोल किया। गले में मेजबान श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी पहली इनिंग्स में 2 विकेट पर 288 रन बना लिए थे। आज जब खेल खत्म हुआ तो देवदत्त पडिक्कल ने 131 रन बना लिए थे, जबकि ऋषभ पंत 27 रन पर खेल रहे थे। इससे कबल यशस्वी जायसवाल ने 32 और कप्तान शुभमन गिल ने 16 रन बनाए। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 80वें यौम आज़ादी का जश्न मनाने में मुल्क की क्यादत की और लोगों पर जोर दिया कि वे एक मजबूत और खुदकफील भारत के लिए बड़े ख्वाब देखें। वजीर आजम ने विकसित भारत के लिए नौजवानों और ख्वातीन को बाख्तियार बनाए जाने पर जोर दिया।

0: और भारत को नई बुलंदियों पर ले जाने के खातिर नौजवानों की कुव्वत को बरूए-कार लाने के मकसद से सप्तधारा फ्रेमवर्क का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट की एटमी बिजली की सलाहियत के निशाने का ऐलान किया। आलमी रहनुमाओं ने भारत के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद दी और उसके जमहूरी सफर, तहजीबी विरसे और इलाकाई और आलमी इश्तराक में उसके बढ़ते हुए रोल की सताइश की। इंडोनेशिया में शदीद जलजले में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 47 तक पहुंच गई है। अरुणाचल प्रदेश, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक शदीद बारिश का सिलसिला जारी रखने की पेशगोई की गई है। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बना लिए थे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत का।

ये गीत था फिल्म राजनीति से और इस गीत को गाया है विजय प्रकाश ने। और अब अगला गीत जो आप सुनेंगे वो है फिल्म लव आजकल से। आवाजें दी हैं इसमें मास्टर सलीम और श्रीधर ने।

और ये गाना था फिल्म तुम्हारी सुलों से, जिसे गाया था कविता कृष्णमूर्ति ने। और अब जो आप अगला गाना सुनेंगे वो है आधा इश्क, और इसे गाया है श्रेया घोषाल ने। फिल्म है बैंड बाजा और बारात।

और अब इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, आपसे फिर होगी मुलाकात 11:10 पर, कार्यक्रम होगा आपकी फरमाइश।

0: ये आकाशवाणी है। आज के अखिल भारतीय संगीत कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है सुप्रसिद्ध सितार वादक श्री जुनैन खान का सितार वादन। मध्य प्रदेश के भोपाल में जन्मे जुनैन खान का बचपन मुंबई में बीता। मात्र 5 वर्ष की आयु में अपने पिता सुप्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान से सितार की शिक्षा प्रारंभ की। उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान ने अपने अभिनव जाफर खानी बास के माध्यम से सितार की रचना, वादन शैली, तकनीक और इस वाद्य की संभावनाओं को एक नई दिशा प्रदान की। जाफर खानी बास को लयात्मक नवाचार और स्वर की गहराई पर आधारित सितार वादन की एक दुर्लभ और अत्यंत परिष्कृत परंपरा के रूप में जाना जाता है। इस शैली के तकनीक के बारे में श्री जुनैन खान बताते हैं कि इसमें एक साथ 2 और कभी कभी 3 तारों का प्रयोग किया जाता है। इसमें बाएं हाथ की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों हाथों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होता है। श्री जुनैन खान हलीम अकादमी ऑफ सितार के कार्यकारी निदेशक हैं। यह भारत की पहली सितार अकादमी है जिसकी स्थापना वर्ष 1976 में उनके पिता उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान ने की थी। श्री जुनैन खान जाफर खानी शैली में भारत तथा विदेशों के विद्यार्थियों को सितार की शिक्षा प्रदान करते हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संगीत समारोहों का आयोजन करते हैं और अपने विद्यार्थियों को अपनी कला प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान करते हैं। श्री जुनैन खान ने भारत के अनेक प्रतिष्ठित संगीत समारोह और मंचों पर अपनी प्रस्तुति दी है। तानसेन समारोह ग्वालियर, संगीत नाटक अकादमी के तत्वाधान में आयोजित मारवाड़ समारोह, जिसे पूर्व में मंड समारोह के नाम से जाना जाता था, सामापा संगीत सम्मेलन नई दिल्ली, पंडित नंदकिशोर शर्मा स्मृति समारोह भोपाल, विश्व संगीत दिवस 2025 मैसूर, राष्ट्रीय ध्रुपद समारोह नई दिल्ली प्रमुख है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने प्रस्तुतियां दी है। फ्रांस के नांत में आयोजित फेस्टिवल द एते, इंटरनेशनल रोंडाला फ्लैट स्ट्रिंग फेस्टिवल फिलीपींस, जोंजू इंटरनेशनल सोरी फेस्टिवल दक्षिण कोरिया और अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित इंडिया कम्युनिटी सेंटर में आयोजित बसंत बहार में अपनी प्रस्तुतियां दी है। श्री जुनैन खान चीन के बीजिंग में आयोजित भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में भारत के आधिकारिक सांस्कृतिक प्रतिनिधि के रूप में भी भाग ले चुके हैं। अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। आप आकाशवाणी के अश्रेणीय कलाकार हैं। वर्ष 2018 में सोपोरी एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स द्वारा सामापा संगीत तेजस्वी सम्मान प्रदान किया गया। वर्ष 2022 में मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स अर्थात NCPA के सहयोग से गान वर्धन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद अर्थात ICCR द्वारा एस्टेब्लिश आर्टिस्ट के रूप में मान्यता प्राप्त है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है श्री जुनैन खान का सितार वादन। आज की प्रस्तुति का आरंभ वे करेंगे राग रागेश्री से। विलंबित गत 3 ताल में निबद्ध है और द्रुत गत भी 3 ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्री अनीश प्रधान।
1: दिस इज आकाशवाणी, वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। टुनाइट वी प्रेजेंट सितार रिसाइटल बाय रेनाउंड सितारिस्ट श्री जुनैन खान। Born in Bhopal, Madhya Pradesh, Zunain Khan grew up in Mumbai. He began playing sitar at the age of 5 under the tutelage of his father.

0: ये था राग रागेश्री। अपने सितार वादन को जारी रखते हुए श्री जुनैन खान अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग किरवानी। द्रुतगत 3 ताल में निबद्ध है।
1: That was Rag Rageshri by Shri Zunain Khan. He continues his sitar recital with Rag Kirwani. Drutgat set to Teen Taal.

0: आप सुन रहे थे राग किरवानी। आज के संगीत कार्यक्रम का समापन श्री जुनैन खान राग देश में धुन से कर रहे हैं। दादरा ताल में निबद्ध है।
1: यू आर लिसनिंग टू किरवानी। ही कंक्लूड्स हिज सितार रिसाइटल विद धुन इन राग देश सेट टू ताल दादरा।

0: ये थी राग देश में धुन। इसी के साथ आज के अखिल भारतीय संगीत कार्यक्रम में श्री जुनैन खान का सितार वादन संपन्न होता है। आपके साथ तबले पर थे श्री अनीश प्रधान। ये कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबई केंद्र में ध्वनि मुद्रित एवं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: That was धुन in राग देश and that concludes the sitar recital by श्री जुनैन खान। In tonight's national program of music, he was accompanied on the tabla by Shri Anish Pradhan. This program was recorded at the studio of Akashwani Mumbai and the broadcast came to you from Akashwani Delhi.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की शुभकामनाओं के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी तथा सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अमृत उद्यान कल से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। ये रखरखाव के चलते प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। इंडोनेशिया में आज फ्लोरेस के तट के पास आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई। भूकंप के बाद दर्जनों झटके महसूस किए गए। राहत और बचाव दल सबसे अधिक प्रभावित इलाकों तक पहुंचने के प्रयास में जुटे हैं। देश के कई हिस्सों में 1 मीटर से कम ऊंचाई की सुनामी लहरें भी दर्ज की गई। अधिकारियों के अनुसार कई प्रभावित इलाकों में अब भी लोगों के इमारतों के भीतर फंसे होने की आशंका है। नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में आज भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला मैच 17 अगस्त को इंग्लैंड से खेलेगा। श्रीलंका के साथ गोल में खेले जा रहे भारत के ऐतिहासिक 600वें टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। भारत की ओर से देवदत्त पडिक्कल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद रहे। श्रीलंका के लिए एकमात्र विकेट प्रभात जयसूर्या ने लिया। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के

0: 21, while Rishabh Pant was in 27 when stumps are drawn this evening. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं उपभोक्ता मामला विभाग भारत सरकार, जागो ग्राहक जागो।
2: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: और आज इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही हमारे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ चुके हैं जो चाहते हैं कि इस कार्यक्रम की शुरुआत एक देशभक्ति गीत से की जाए। तो पहले सुनते हैं ये देशभक्ति गीत और फिर बताते हैं कि किसने की है ये फरमाइश।

0: और इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई है। वसंत कुमार सिन्हा जी ने हमें मैसेज किया है, इसके साथ साथ जाकिर मुलानी का भी मैसेज हमारे पास आया है। जसबीर सिंह कहते हैं कि आकाशवाणी के सभी श्रोताओं और स्टाफ को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जी आप सभी को बहुत बहुत बहुत मुबारक हो। हम 80 साल के नौजवान जज्बे से भरे हुए भारतीय हैं। आप हमें मैसेज कर रहे हैं निम्नाबाद जिला जिंद हरियाणा से, आपके साथ हैं जसवीर सिंह और जतिंदर, गुरप्रीत, लवप्रीत और कमरजीत। आपने कहा कि देशभक्ति गीत, ऐसी ही फरमाइश हमारे पास आई है जाकिर की भी, और आप हमें मैसेज कर रहे हैं मुंगी सापुर से आप हमें मैसेज कर रहे हैं। आपके साथ हैं निशा शबिस्ता, नसीब, पलक, लुबना और यश। इसके साथ ही अनिल जैन ने हमें मैसेज किया है और आप हमें सरधना मेरठ से मैसेज कर रहे हैं। आपके साथ हैं जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जीवम जैन। आपने भी कहा है कि एक देशभक्ति गीत हमें सुनना है। दीदी मल्होत्रा जी का हमारे पास मैसेज आया है चंडीगढ़ से। आपके साथ हैं प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप। कालका से हैं शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। इसके साथ सिद्धार्थ गोंडाने जी ने हमें मैसेज किया है अमरावती महाराष्ट्र से। आपके साथ हैं अर्चना ताई, हीरामण और प्रणय प्रसिद्धि। और आपने भी कहा है कि देशभक्ति कोई भी गीत सुनवा दे। गगनदीप थांडी जी ने भी हमें मैसेज किया है और आपके साथ है पूरी डॉक्टर फैमिली। आप हमें मैसेज कर रहे हैं नवा शहर पंजाब से। आपके साथ है प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, वामिका और वाणी। मेहर अरोड़ा ने हमें मैसेज किया है राजस्थान श्रीगंगानगर से। आपके साथ है ममता, कीर्ति और भूमिका। मैसेज हमारे पास आया नबी हसन का और आप भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत सारी मुबारकबाद दे रहे हैं। आप हमें एटा से मैसेज कर रहे हैं। आपके साथ हैं शाहनवाज, नवेद, सुहेल, रशीद, अनम, यशफ और कदवई नगर से जुबैर अली खान और सबीहा अंजुम खान। मैसेज हमारे पास आया है रमेश कुमार का और आप हमें मलोट से मैसेज कर रहे हैं। आपके साथ हैं गीता रानी और गगनदीप थांडे। किशोर, नंद किशोर घाटे जी ने हमें मैसेज किया है। आप हमें बीड शहर महाराष्ट्र से मैसेज कर रहे हैं। आपके साथ हैं संगीता, साक्षी, अंजलि करवा और बाला साहेब करवा। बातें बहुत सारी हो गई हैं, मैसेज अभी और बहुत बाकी हैं। सुनते हैं एक आवश्यक सूचना।
1: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि

0: जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक, जागो उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो

0: की खुशबू, अपनी मिट्टी की खुशबू को महसूस कर पा रहे होंगे, वो उस जज्बे को जी रहे होंगे जो आज हम इस ज़मीन पर रहकर यहाँ पर जी रहे हैं। तो जी, हमारे पास और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं। हमारे पास रमेश कुमार ने मैसेज किया है, पटेल नगर मलोट से आपके साथ हैं। गीता रानी जजौरिया और गगनदीप अकरम हुसैन प्रिंस ने हमें मैसेज किया है, सीतामढ़ी बिहार से। भागुराम यादव हमें मैसेज कर रहे हैं और आपकी फरमाइश हम तक पहुंच चुकी है। आप हमें कांकेर से मैसेज कर रहे हैं, आपके साथ है ज्योति और ओजस्वी यादव। अनिल कुमार गवहांकर का हमारे पास मैसेज पहुंचा है। साथ ही राजेश वर्मा ने हमें मैसेज किया है, मऊनाथ भजनपुरा भजन उत्तर प्रदेश से। आपके साथ हैं प्रीति भी। और नरेन नेतम ने हमें मैसेज किया है, बिट्टू गगनेजा जी, उम्मीद है कि आप प्रोग्राम सुन रहे होंगे और अपनी पसंद आपने सुन ली होगी। आप हमें जलालाबाद वेस्ट से मैसेज कर रहे हैं। आपके साथ हैं विशाल प्रिया और दिशानी निमित आहूजा, पूनम गगनेजा और सूरज। साथ ही सतीश अनेजा ने हमें मैसेज किया है और आपको भी, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप हमें चंडीगढ़ से मैसेज कर रहे हैं, आपके साथ हैं बिमला अनेजा। ताज मोहम्मद ने हमें मैसेज किया है और आप हमें हरिद्वार से मैसेज कर रहे हैं, आपके साथ हैं गुलाम साबिर और मेराज। और इसके साथ साथ किशन सपकल का हमारे पास मैसेज आ गया है। अब सुनते हैं एक आवश्यक सूचना।
1: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: और ये सभी जानकारियां आपके ही हित में जारी की जा रही हैं। उम्मीद है कि आप इन सभी जानकारियों से लाभप्रद होंगे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। कार्यक्रम है आपकी फरमाइश और आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ तलत।

वाकई पता है, जब किसी चीज़ से दूरी बन जाती है तो उसकी अहमियत दिल में बहुत बहुत बढ़ जाती है। ऐसे ही हमारे बहुत से ऐसे श्रोता भी होंगे जो हमें सुन रहे होंगे, अपने देश से, अपनी ज़मीन से दूर होंगे, लेकिन आज आज वो इतनी दूरी से भी अपनी ज़मीन

और जी मैसेजेस आज हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। मैसेज हमारे पास आया है बोधराज खोरवाल जी का, और आप हमें उत्तम नगर दिल्ली से मैसेज कर रहे हैं। आपके साथ है कमला रानी और भानु खोरवाल। इसके साथ साथ मैसेज हमारे पास पहुंचा है छोटे अंसारी साहब का, और बहुत शुक्रिया, आज तो आपने मेरा नाम लेके ही मुझे मुखातिब किया है, नहीं तो आप चेतना को बहुत याद करते हैं। तो जी आप हमें संबल से मैसेज कर रहे हैं, आपके पर आपकी जो फरमाइश है वो हम तक पहुंच चुकी है। इंद्रभान सिंह ने हमें मैसेज किया है, और आप ने हमें कलारी से मैसेज किया है। आपके साथ हैं अनुभव, ऋषभ, राम, सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद और कालिंदरी लहरे। साथ ही मैसेज हमारे पास आया है फारूक अली खान का, और आप भी हमें मैसेज कर रहे हैं, कहाँ से आप हमें मैसेज कर रहे हैं, सऊदी अरब के रियाद से। अरे ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा कि आप

इतनी दूर बैठकर और आप चाहते हैं कि आप देश की सरजमी को याद करते हुए 15 अगस्त की मुबारकबाद आप सभी को दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि एक देशभक्ति गीत सुने। आपके साथ हैं फैजी खान और पापा फारूक अली खान। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी दूर से हमें मैसेज किया। और मैंने पहले ही कहा ना कि अपनी मिट्टी की जो खुशबू है ना, जो उसका लम्स है, जो उसका एक एहसास है, वो चाहे जितनी दूर जाएं आपके हाथ में वो रहता है। और दूर जाने के बाद ना यहाँ की खुशबू आपका पीछा करती है। गाज़ीपुर से हमें मैसेज कर रहे हैं आज़ाद अली अनवर रिजवान परवीन, और मऊ से मैसेज है मज़र अली अंसारी रज़िया बेगम और मोहम्मद सादिक का। मैसेज हमारे पास आया है रजीश शर्मा का, आप हमें मैसेज कर रहे हैं मलोट से। आपके साथ हैं मीना योगेश और निवान, सौरव शर्मा और शाइना शर्मा। मैसेज हमारे पास आया है श्रीयर का, श्रीयर जो हैं आप हमें कहाँ से, केरला से मैसेज कर रहे हैं। और आप भी बहुत सारी विशेष दे रहे हैं और आपकी फरमाइश हम तक पहुंच चुकी है। आपका मैं पहली बार इस प्रोग्राम में मैसेज देख रही हूं, बहुत बहुत आपका स्वागत है। मोहम्मद कमर ने हमें मैसेज किया है गुन्नूर से, और आपके साथ हैं आदिल और तस्दीक भी। कार्तिक वर्मा ने हमें मैसेज किया है दिल्ली नागलोई से, आपके साथ हैं राजेंद्र ऊषा और कार्तिक वर्मा का जी मैसेज शामिल हो गया है। इसके साथ मंटू शर्मा ने हमें मैसेज किया है, आप हमें मैसेज कर रहे हैं राजस्थान हनुमानगढ़ से। और आपके साथ हैं मंटू शर्मा, सोनू, सुशीला शर्मा और लीलाधर शर्मा। मैसेज हमारे पास अगला आया है सोमदत्त जी का, आप हमें ज़िला पटियाला पंजाब से मैसेज कर रहे हैं। आपके साथ हैं गौरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर और मनु। इसके साथ गुरमीत सिंह ने हमें मैसेज किया है साउथ एक्सटेंशन से, आपके साथ है मीता भी। हाजी मज़हर का हमारे पास मैसेज पहुंच चुका है, स्वीटी जोड़ा ने हमें मैसेज किया है कृष्णा पार्क दिल्ली से, आपके साथ हैं सीटी दीवान। और गीतांजलि करवा ने हमें मैसेज किया है, इसके साथ साथ दिग्दर्शन गौड़ का हमारे पास मैसेज आया है मेरठ कैंट से, आपके साथ हैं कविता गौड़ भी। मेहर अरोड़ा का हमारे पास मैसेज आया है पदमपुरा ज़िला श्री गंगानगर से। और सुनते हैं एक और बहुत खूबसूरत गीत, क्योंकि मैसेजेस बहुत सारे हैं, मुझे लगता है कि किसी का भी नाम छूटना नहीं चाहिए।

हर मजहब के लोग हैं मिलते इस बगिया में इस महफिल में हो हे, हम सारे हैं भारतवासी सब।

0: वाकई जब हम दूर होते हैं ना, या बहुत कई बार ऐसा होता है कि हम होते तो करीब ही हैं अपनी जमीन के, लेकिन कभी कभी उस बारे में हम सोचते नहीं, क्योंकि हम और बहुत सारी चीजें सोच रहे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मौके होते हैं, कुछ ऐसे खास दिन होते हैं जब दिल जो है और दिमाग जो है वो चाहता है कि आप उस बारे में सोचें, जिसे आप बहुत कमी से कभी कभार कोई ख्याल आ गया तो आ गया। और ऐसा ही ये जो ख्याल है, ये अक्सर हमारे दिल में रहना चाहिए। देशभक्ति की भावना हमारे दिल दिमाग में हमेशा जिंदा रहनी चाहिए, ताज़ा रहनी चाहिए, क्योंकि अगर देश है तभी हम सेफ हैं। तो देश की सलामती की दुआ रखें, उसके लिए कुर्बानी का जज्बा रखिए, और अपने देश को परवान चढ़ाने की जो कोशिश है उसमें लगे रहिए। हमारे पास और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं, लेकिन लेकिन लेकिन उससे पहले बहुत जो आपके लिए जरूरी मैसेज है वो अब आपको सुनवा रही हूँ।
1: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

और अब हमारे पास जो मैसेज आया है वो आया है प्रकाश वर्मा का। आप हमें देहरादून से मैसेज कर रहे हैं। इसके साथ ही मीरा सिंह ने हमें मैसेज किया है और आपका मैसेज हमारे पास बिहार के समस्तीपुर से आया है। आपके साथ हैं ज्योति सिंह रोहतास, बिहार से हैं सोनम सिंह और अनामिका सिंह। मैसेज हमारे पास आया है विनय भान का और आप कह रहे हैं कि आपने मुझे पहली बार सुना है। तो जी मेरे लिए खुशी की बात है कि आपने मुझे पहली बार सुना और आपने हमें मैसेज भी किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें मैसेज किया है दिल्ली सीपी से। और इसके अलावा मैसेज हमारे पास आया है सुदर्शन मुखी का। आपके साथ है अनीता मुखी सिमरन और आप शांतिनगर सोनीपत से मैसेज कर रहे हैं। इसके साथ ही जीतू प्रसाद ने हमें मैसेज किया है और आप हमें बक्सर से मैसेज कर रहे हैं। आपके साथ है आशीष गुप्ता, सतीश, आयुषी और आयुष और सानवी गुप्ता। इसके साथ ही मैसेज हमारे पास आया है जी आप हैं लव ए जी श्री निवासन और आप हमें कहाँ से मैसेज कर रहे हैं। आपने ये मैसेज हमें नहीं किया है कि आप हमें कहाँ से मैसेज। अच्छा जी हाँ, आप हमें त्रिवेंद्रम से आप हमें मैसेज कर रहे हैं। इसके साथ प्रकाश वर्मा का हमारे पास मैसेज आया है और छत्तीसगढ़ पलारी से आप हमें मैसेज कर रहे हैं। आपके साथ है प्रिंस निखिल और यशस्वी।

और वाकई जो शहीद हो जाते हैं, जो कुर्बान हो जाते हैं, उसी की कुर्बानी का ही रंग आज़ादी होता है, और वो कुर्बानी में जो खून बहता है वही आज़ादी की जो पौध है उसमें जान डालता है। हम आज़ाद हैं, हम सुरक्षित हैं, हम महफूज हैं अपने घरों में, अपनी छतों के अंदर, अपनी हर एक उस जगह पर जहां हम रहना चाहते हैं। तो उसकी सारी जिम्मेदारी हमारे उन प्रहरियों के पास है जो सीमा पर अपना सीना ताने खड़े हैं। आज इस कार्यक्रम में इस वक्त मैं अपनी तरफ से, अपने पूरे श्रोताओं की तरफ से, अपनी आकाशवाणी टीम की तरफ से उन सभी को सलाम करती हूँ। और अब कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, इसी के साथ अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुनते रहिए आकाशवाणी, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, और दिल में देश की मोहब्बत को ज़रूर ज़िंदा रखिए। जय हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अब 12 बजने को है, इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज 24x7 पर हमारे प्रसारण जारी है और अब से कुछ ही देर बाद समाचार होंगे। ठीक 12 बजे आप हिंदी में समाचार सुनेंगे और 12:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। 12:10 पर समय होगा कार्यक्रम शुरू का, सफरनामा का। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। राष्ट्र ने कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर

0: पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ। श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि पिछले 8 दशकों में देश कई बड़ी चुनौतियों से निकला है, लेकिन अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय परिसर में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ध्वजारोहण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि देश की यात्रा अब तक की उपलब्धियों के साथ समाप्त नहीं होती। उन्होंने कहा कि देश के कानूनी और न्यायिक संस्थानों ने भी देश के साथ उल्लेखनीय प्रगति की है और परिपक्व हुए हैं। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले पूरी हो गई है। ये भारत के स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को वैश्विक स्तर पर मनाने की अनूठी पहल है। इसने पूर्व में फिजी से लेकर पश्चिम में अमेरिका तक 54 देशों और कई टाइम जोन से गुजरते हुए अपनी यात्रा पूरी की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि सूर्यपथ तिरंगा पहल को हर घर तिरंगा अभियान के हिस्से के तौर पर मनाया गया। फिजी में भारत के उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले ने एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे की भावना को आगे बढ़ाया और दुनिया भर में भारतीय समुदाय और भारत के दोस्तों को एक साथ जोड़ा है। दूरसंचार विभाग पुणे में कल से 21 अगस्त तक ब्रिक्स सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT ट्रैक का आयोजन करेगा। इस वर्ष का विषय लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और बदलाव है। कार्यक्रम की शुरुआत 7वें ब्रिक्स ICT कार्य समूह की बैठक से होगी। इसमें सार्वभौमिक, सार्थक, किफायती, टिकाऊ और मजबूत कनेक्टिविटी के लिए ICC इकोसिस्टम विकसित करने, विश्वसनीय और सुरक्षित डिजिटल वातावरण तथा डिजिटल कौशल और क्षमता विकास जैसे प्रमुख विषयों पर चर्चा होगी। अमेरिका में वर्जीनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में हुई गोलीबारी में कम से कम 5 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। सभी घायलों को पास के अस्पतालों में ले जाया गया है। यूनिवर्सिटी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि गोलीबारी क्वाड एनेक्सेस इलाके में हुई। कई कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मदद से मामले की जाँच की जा रही है। इंडोनेशिया में फ्लोरेस के तट के पास आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। भूकंप के बाद दर्जनों झटके महसूस किए गए। राहत और बचाव दल सबसे अधिक प्रभावित इलाकों तक पहुंचने के प्रयास में जुटे हुए हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, कोकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश की संभावना है। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi has announced that the government will provide free online coaching to youth from poor

ये आकाशवाणी दिल्ली का यायार लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 12:10 और 10 सेकेंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुरों का सफरनामा।

श्रोताओं, ये है आकाशवाणी दिल्ली का यायार लाइव न्यूज 24/7 चैनल और कार्यक्रम है सुरों का सफरनामा। सिनेमा के गीत केवल धुन और आवाज का मेल नहीं होते, कई बार एक गीत में पूरा जीवन उतर आता है। कभी प्रार्थना बनकर, कभी प्रेम बनकर, कभी विरह बनकर और कभी इंसानियत की आवाज बनकर। आज का सफर एक ऐसे ही शब्द शिल्पी के साथ है जिनकी कलम ने हिंदी फिल्म संगीत को ऐसे गीत दिए जिन्हें सुनते हुए लगता है कि जैसे कविता खुद सुरों में चल पड़ी हो। नाम है पंडित भरत व्यास। जी हाँ, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, जोत से जोत जगाते चलो, आधा है चंद्रमा रात आदि। ये कौन चित्रकार है, दिल का खिलौना है टूट गया, जैसे गीतों की रचना करने वाले भरत व्यास की आज हम बात करेंगे कार्यक्रम सुरों का सफरनामा में।

जी हाँ, जब इस तरह की आवाज़ हो और उसके साथ इस तरह का गीत हो, उसके शब्द, उसके बोल इस तरह के हो, तो हर कोई इसमें डूब जाता है। और बात हो रही है भरत व्यास की, और उन्हीं का लिखा ये गीत आप मुकेश की आवाज़ में सुन रहे थे। भरत व्यास का जन्म 6 जनवरी 1918 को राजस्थान के बीकानेर में हुआ था। उनका मूल संबंध चुरू क्षेत्र से माना जाता है। बचपन से ही साहित्य और लेखनी में उनकी गहरी रुचि थी। आगे चलकर उन्होंने कलकत्ता में बीकॉम की पढ़ाई की।

बंबई का रुख किया। लेकिन भरत व्यास की पहचान केवल फिल्मी गीतकार की नहीं थी, वो कवि थे, लेखक थे, रंगमंच से जुड़े थे और संगीत की समझ रखने वाले रचनाकार भी थे। कहा जाता है कि उनके शुरुआती लेखन में देशभक्ति की भावना दिखाई देती थी। उनका आरंभिक गीत आओ वीरो हिल मिल गाएं वंदे मातरम, ये है लोग कहते हैं, यानी जिस कलम ने बाद में प्रेम भक्ति प्रकृति और जीवन दर्शन के गीतों में ढाला, उसकी स्याही की शुरुआत में संवेदना थी। जी हाँ, बहुत बड़ी संवेदना थी।

का वो साल था जब बहुत अच्छी तरह से दुनिया जानने लगी कि भरत व्यास नाम का जो कैंडिडेट है, जो गीतकार है, वो किस तरह से फिल्म इंडस्ट्री पर आने वाले दिनों में राज करने वाला है। फिल्म दुहाई, इसी फिल्म से भरत व्यास ने हिंदी सिनेमा में गीतकार के रूप में शुरुआत की। उपलब्ध स्रोतों के अनुसार उनकी ये फिल्म जो थी उसमें 9 गीत उन्होंने लिखे थे। ये उनके लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये वही दरवाजा था जिसके पार हिंदी सिनेमा की दुनिया उनका इंतजार कर रही थी। इसके बाद शालीमार पिक्चर्स के साथ उनका जुड़ाव हुआ। प्रेम संगीत के लिए उन्होंने गीत लिखे। 1994 में मन की जीत में उन्होंने गीत लिखे और इन सभी गीतों को लोकप्रियता मिली और उनकी जो संगीत की ये यात्रा थी ना, बहुत ही खुशहाल थी। और जिस तरह से हमने उनके गीत देखे, जिस तरह से हमने उनकी बात की और जिस तरह से उनके फिल्मों में उनके गाने होते थे और जो लिखावट होती थी उसका अंदाज़ जुदा होने के साथ साथ सबके दिलों पर बहुत ही अच्छी तरीके से राज करता था।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों का सफरनामा और आज बात कर रहे हैं हम गीतकार भरत व्यास की रचनात्मक दुनिया की। एक दिलचस्प बात यह है कि भरत व्यास केवल गीत लिखने तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने फिल्म निर्माण और निर्देशन में भी हाथ आजमाया। 1949 की फिल्म रंगीला राजस्थान का निर्देशन किया और उसके लिए भी गीत लिखने के साथ साथ तीनों गीतों की रचना भी की, लेकिन अंततः उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी गीतकार भरत व्यास के रूप में। उनकी कलम ने आने वाले सालों में हिंदी सिनेमा को कई महत्वपूर्ण गीत दिए, जिसकी झलक आपको

श्रोता हूँ, आप सुन रहे कार्यक्रम सुरों का सफरनामा और बात हो रही है भरत व्यास की। वी शांताराम की फिल्म नवरंग और भरत व्यास की कलम। इस फिल्म में उन्हें ऐसे गीत दिए और उनके लिखे गीत बेहद लोकप्रिय हुए। आधा है चंद्रमा रात आधी, जी हाँ, तू छुपी है कहाँ, जहां एक ओर आधा है चंद्रमा रात आधी चांदी रात और प्रेम की कल्पना है, तो वहीं तू छुपी है कहाँ विरह और तलाश है। ये माटी सभी की कहानी, जीवन और धरती का रिश्ता और कविराजा कविता के मत अब कविता पर खुद कविता। नौरंग के गीतों में भरत व्यास की भाषा का सौंदर्य साफ दिखाई देता है। फिल्म के गीतों में आधा है चंद्रमा तू छुपी है कहाँ, ये माटी सभी की कहानी और कविराजा कविता के मत अब शामिल है। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसा गीत जिसमें आधा चंद्रमा है, आधी रात है और पूरी तरह डूबी हुई कविता है।

क्या खूबसूरत कल्पना है। चांद आधा है, रात आधी है, लेकिन भावनाएं पूरी हैं। यही भरत व्यास की कविता का जादू था। भरत व्यास को प्रकृति से भी गहरा लगाव था। उनका गीत एक कौन चित्रकार है, प्रकृति को एक अदृश्य चित्रकार की कृति की तरह देखता है। आसमान, धरती, रंग, रोशनी और सृष्टि सब एक विराट चित्र का हिस्सा बन जाते हैं। उनकी गीतों की खूबी ये थी कि वो दृश्य को केवल देखते नहीं थे, उसके भीतर छिपे भाव को शब्द देते थे, जो इस गीत में साफ साफ दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है और एहसास से लबरेज हो रहा है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों का सफरनामा और बात हो रहा है आज गीत के जादूगर भरत व्यास की। ये जो बात हो रही है भरत व्यास की, उनकी जादू की, उनकी कलम की, लेखनी की, शब्दों की, भाषा की, मर्यादा की, वो सब हम सबके दिलों पर राज करती है। कुदरत के रंगों को शब्द देना आसान नहीं, लेकिन भरत व्यास ने प्रकृति को कविता का विषय ही नहीं बल्कि एक जीवंत अनुभव बनाया। उनकी गीतों की सूची पर नजर डालें तो एक बात स्पष्ट होती है, उनकी रचनात्मक दुनिया कितनी विस्तृत थी। गूंज उठी शहनाई, तूफान और दिया, रानी रूपमती, कवि कालिदास, अंगुलीमाल, संपूर्ण रामायण, स्त्री, बूंद जो बन गई, मोती, ऐसी फिल्मों में उनके गीत जब सुनाई देते थे तो एक ऐसा एहसास होता था कि कोई अपना हमें छू कर जा रहा है। आइए सुनते हैं एक और बहुत खूबसूरत सा गीत उन्हीं की फिल्म गूंज उठी शहनाई से।

जी हाँ, बात जब भरत व्यास के गानों की हो, गीतों की हो, लिखने की हो, तो दिल का खिलौना टूट गया जैसे गीत हमेशा हम सबको लुभाते हैं, बताते हैं और कहते हैं कि किस तरह से ये एहसास है जो हम सबके दिलों पर किसी न किसी पड़ाव पर हमें छोड़ जाता है। श्रोताओं, भरत व्यास के गीतों को सुनते हुए एक बात तो बार बार सामने आती है, भारतीयता। उनकी भाषा में मिट्टी की खुशबू है, उनके गीतों में भक्ति है लेकिन उपदेश नहीं, प्रेम है लेकिन केवल रोमांस नहीं, दर्द है लेकिन निराशा नहीं, और प्रकृति है लेकिन केवल सजावट नहीं। यही कारण है कि उनकी रचनाएं आज भी पुरानी होकर भी नई लगती हैं। ऐ मालिक तेरे बंदे हमें भीतर से देखने को कहता है, जोत से जोत जलाते चलो, दूसरों तक रोशनी पहुंचाने का संदेश देता है, और ये कौन चित्रकार है हमें प्रकृति को नए नजरिए से देखने की प्रेरणा देता है, और आधा है चंद्रमा हमें कविता के उस संसार में ले जाता है जहां आधी रात भी पूरी कहानी लगती है। यही है भरत व्यास की सबसे बड़ी विरासत।

जी हाँ, फिल्म थी ये जो दो आंखें बारह हाथ, संगीत वसंत देसाई का और आवाज लता मंगेशकर की। भरत व्यास जी की भाषा में संस्कृत निष्ठ शब्द भी मिलते हैं, लोक संवेदना भी, भक्ति भी और प्रेम की कोमलता भी।

सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक अलग अलग तरह की फिल्मों के गीत लिखे और इसी दौर में उनका जुड़ाव महान फिल्मकार भी शांताराम जैसी रचनाकारों के साथ हुआ और ये गीत उसी की एक वानगी है। ये गीत एक फिल्मी प्रार्थना से आगे बढ़कर भारतीय जनमानस की सामूहिक प्रार्थना जैसा बन गया। भरतव्यास की खासियत यही थी, वो बड़े विचारों को सरल शब्द में कह देते थे। तो श्रोताओं, आज इसी के साथ हम लेते हैं विदा। इस सफर में हमने जाना एक ऐसे गीतकार को जिन्होंने शब्दों को केवल गीत नहीं बनाया, उन्हें जीवन का हिस्सा बना दिया। राजस्थान की धरती से निकलकर मुंबई के फिल्म संसार तक पहुंचे भरतव्यास ने दर्शकों तक हिंदी सिनेमा को अपनी कविता से समृद्ध किया। उन्होंने हमें सिखाया कि गीत केवल मनोरंजन नहीं होता, गीत कभी प्रार्थना बन सकता है, कभी प्रेम पत्र, कभी विरह की आवाज, कभी प्रकृति का चित्र और कभी इंसानियत का संदेश। इसी के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं उनके एक और बहुत ही खूबसूरत से गीत के साथ। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का या लाइव न्यूज 24/7।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। राष्ट्र ने कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ। श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए

0: सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 35% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूँ, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि पिछले 8 दशकों में देश कई बड़ी चुनौतियों से निकला है, लेकिन अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय परिसर में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ध्वजारोहण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि देश की यात्रा अब तक की उपलब्धियों के साथ समाप्त नहीं होती। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने भी 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया। सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले पूरी हो गई है। यह भारत के स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को वैश्विक स्तर पर मनाने की अनूठी पहल है। इसने पूर्व में फिजी से लेकर पश्चिम में अमेरिका तक 54 देशों और कई टाइम जोन से गुजरते हुए अपनी यात्रा पूरी की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि सूर्यपथ तिरंगा पहल को हर घर तिरंगा अभियान के हिस्से के तौर पर मनाया गया। अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। ये रखरखाव के चलते प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अरुणाचल प्रदेश में वेस्ट कामेंग जिले की योजना और निवेश विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी और डिप्टी कमिश्नर पाक्के किसांग के ऑफिस को लोक प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य के लिए मुख्यमंत्री अवार्ड 2026 के लिए नामित किया गया है। ये सम्मान राज्य में सुशासन और लोक प्रशासन को मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता को दोहराता है। अमेरिका में वर्जीनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में हुए गोलीबारी में कम से कम 5 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। सभी घायलों को पास के अस्पतालों में ले जाया गया है। यूनिवर्सिटी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि गोलीबारी क्वाड एनेक्सेस इलाके में हुई। कई कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मदद से मामले की जाँच की जा रही है। नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में कल भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला मैच इंग्लैंड से खेलेगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, कुंकड़, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश की संभावना है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय महबश फातिमा। द नेशन सेलिब्रेटेड इट्स 80th इंडिपेंडेंस डे यस्टरडे। ऑन द ओकेजन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होस्टेड द नेशनल फ्लैग फ्रॉम द रैमपार्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट एंड मेड सेवरल इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स। Addressing the nation, the Prime Minister said, over the past 12 years, crores of citizens of the country, with their determination and dedication, made every possible effort to take the country to new heights. The Prime Minister stressed that higher dreams and stronger resolutions raise the overall scale and capability of the nation's efforts.
1: Koi bhi rashtra tab mahaan banta hai jab apne sapno, apne sankalpon aur apne samarth ke dam par

ये आकाशवाणी दिल्ली का यायार लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 1:10 और पूरे 10 सेकंड हो चुके हैं और ये वक्त होता है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम गीत सुनहरे का। जी हाँ, आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे, जिसमें आप सुनेंगे गोल्डन एरा के वो गाने जो आज भी हम सबके दिलों पर राज करते हैं, वो गाने जो सुनकर आज भी हम एक ऐसा सुकून महसूस करते हैं जिसकी दीवानगी हर दिल पर देखी जाती है।

सुनना मगर ये किसी से न कहना, तिनके गले के सहारा न बहना, बिन मौसम मल हार न गाना, आधी रात को मत चिल्लाना, वरना पकड़ लेगा पुलिस वाला।

0: मगर आपने तो कहा था कि
1: हिराब,
0: तुमने तो कहा था कि कुछ काम वाम करने का है। यहाँ तो कुछ गाड़ी वाली भी नहीं दिखाई देती, मैं मरम्मत किसकी करूंगा?
1: अरे गाड़ी की मरम्मत के सिवा और कोई दूसरा काम नहीं हो सकता।
0: और भला क्या काम हो सकता है?
1: और बहुत से काम हो सकते हैं।
0: जैसे?
1: कर सकोगे?
0: मैं हर काम कर सकता हूँ।
1: सोच लो।
0: सोच लिया।
1: और अगर ना कर सके तो?
0: हार मान जाऊंगा।
1: ऐसे नहीं, कोई शर्त होनी चाहिए।
0: क्या?
1: हाँ, अगर तुम हार गए तो ये टोकरी उठाकर सारा दिन साथ घूमना पड़ेगा।
0: टोकरी?
1: मंजूर।
0: मंजूर। काम तो बताइए।
1: जरा सोच तो लू।
0: हाँ हाँ।
1: वो देखते हो? वो?
0: हाँ हाँ।
1: क्या?
0: मुर्गी।
1: हाँ, पकड़ लाओ
0: मुर्गी।
1: हाँ।
0: ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, अभी पकड़ता हूँ। ये लीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। राष्ट्र ने कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ। श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूँ, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने भी 88वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को शुभकामनाएं दी।

उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले पूरी हो गई है। ये भारत के स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को वैश्विक स्तर पर मनाने की अनूठी पहल है। इसने पूर्व में फिजी से लेकर पश्चिम में अमेरिका तक 54 देशों और कई टाइम जोन से गुजरते हुए अपनी यात्रा पूरी की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि सूर्यपथ तिरंगा पहल को हर घर तिरंगा अभियान के हिस्से के तौर पर मनाया गया। सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5,000 रुपए के स्वतंत्रता दिवस नकद अनुदान की पेशकश और अमेज़न से आमजन से बैंक खाते की जानकारी मांगे जाने का दावा है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी स्वतंत्रता दिवस नकद सहायता योजना की घोषणा नहीं की है। ऐसे दावों की आधिकारिक पुष्टि करने की अपील की है। अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। ये रखरखाव के चलते प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में वेस्ट कामेंग जिले की योजना और निवेश विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी और डिप्टी कमिश्नर पाके केसांग के ऑफिस को लोक प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य के लिए मुख्यमंत्री अवार्ड 2026 के लिए नामित किया गया है। ये सम्मान राज्य में सुशासन और लोक प्रशासन को मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। अमेरिका में वर्जीनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में हुई गोलीबारी में कम से कम 5 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। सभी घायलों को पास के अस्पतालों में ले जाया गया है। यूनिवर्सिटी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि गोलीबारी क्वाड एनेक्सेस इलाके में हुई। कई कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मदद से मामले की जाँच की जा रही है। नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में कल भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला इंग्लैंड से खेलेगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। द नेशन सेलिब्रेटेड इट्स 80th इंडिपेंडेंस डे यस्टरडे। ऑन द ओकेजन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होस्टेड द नेशनल फ्लैग फ्रॉम द रैमपार्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट एंड मेड सेवरल इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स। Addressing the nation, the Prime Minister said, over the past 12 years, crores of citizens of the country, with their determination and dedication, made every possible effort to take the country to new heights. The Prime Minister stressed that higher dreams and stronger resolutions raise the overall scale and capability of the nation's efforts.
1: कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। बड़े सपने हमारी सोच को विस्तार देते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
0: Stressing on empowerment of youth and women for a Viksit Bharat, Prime Minister Modi announced to provide free online coaching for poor and middle class families for various public examination. He also announced that the government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year.

ये आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत बहार, नॉन स्टॉप फिल्म संगीत का एक खास कार्यक्रम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। राष्ट्र ने कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ। श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूँ, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने भी 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया। अजरबैजान में भारतीय दूतावास ने कल 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह और देशभक्त की भावना के साथ मनाया। इस कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों और अजरबैजान के नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभा को संबोधित करते हुए राजदूत अभय कुमार ने भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के असाधारण बलिदानों को याद किया और पिछले 8 दशकों में देश की शानदार यात्रा पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि कैसे 1947 में भारी चुनौतियों का सामना करने वाले एक नए स्वतंत्र देश से भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और ग्लोबल साउथ की एक प्रमुख आवाज बनकर उभरा है। सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले पूरी हो गई है। ये भारत के स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को वैश्विक स्तर पर मनाने की अनूठी पहल है। इसने पूर्व में फिजी से लेकर पश्चिम में अमेरिका तक 54 देशों और कई टाइम जोन से गुजरते हुए अपनी यात्रा पूरी की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि सूर्यपथ तिरंगा पहल को हर घर तिरंगा अभियान के हिस्से के तौर पर मनाया गया। सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5,000 रुपये के स्वतंत्रता दिवस नकद अनुदान की पेशकश और आमजन से बैंक खाते की जानकारी मांगे जाने का दावा फर्जी है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी स्वतंत्रता दिवस नकद सहायता योजना की घोषणा नहीं की है। PIB ने नागरिकों से सतर्क रहने और ऐसे दावों की आधिकारिक पुष्टि करने की अपील की है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने कहा है कि एकीकृत आदिवासी विकास एजेंसियों और परियोजनाओं ने ऐतिहासिक रूप से सरकारी कार्यक्रमों और जनजातीय समुदाय के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम किया है। उन्होंने ये बात ITDA और ITDP को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय ढांचा और ITDA और ITDP को मजबूत करने के लिए ऑपरेशनल गाइडलाइंस नामक 2 प्रकाशनों को जारी करते हुए कही। नीदरलैंड के एम्स्टेलविन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में कल भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला मैच इंग्लैंड से खेलेगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 3:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत गजल। सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन। कार्यक्रम की शुरुआत इस गजल के साथ।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आइए अब सुनते हैं नाद ब्रह्म कार्यक्रम। वोयलन पर संगत चंद्रशेखरन जी की है। राग शुभा पंतुवरली। घटम पर संगत की है सुकन्या राम गोपाल ने। तो आइए सुनते हैं नाद

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 16 अगस्त सन 2026। सुबह के 4:54 हुए हैं। इस मीटर पर हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं। हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की आपको जानकारी दे दें। 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 5:05 पर अंग्रेजी समाचार होंगे। 5:10 का समय आओ योग करें कार्यक्रम का है, जिसके अंतर्गत आज आप योग उष्ट्रांगासन और योग से संतुलित जीवन के बारे में जानेंगे। 5:20 का समय देशभक्ति गीत संगीत का है,

और प्रातः 5:30 पर आप सुनेंगे भारतीय शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत स्वर रंजनी कार्यक्रम, जिसमें आज आप बिमल मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत राग भटियार सुनेंगे। हमारी प्रातःकालीन सेवा आरंभ होगी 6:00 हिंदी समाचारों के साथ। 6:05 पर आप सुन सकते हैं अंग्रेजी में समाचार।

0: 6:10 का समय वंदना कार्यक्रम का है। 6:40 पर चिंतन कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे सरोजनी नायडू के विचारों पर चिंतन। इसके उपरांत 6:45 पर रामचरितमानस से भाग अयोध्या कांड भाग 19 आप सुन सकते हैं। श्रोताओं, ये थी संक्षिप्त जानकारी इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। प्रातः के 5 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी, उसके उपरांत अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्र ने कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ। श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
2: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूँ, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति के उपयोग का भी आह्वान किया। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने भी 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया। सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5,000 रूपए के स्वतंत्रता दिवस नकद अनुदान की पेशकश और अमेजन से बैंक खाते की जानकारी मांगे जाने का दावा फर्जी है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री ने ऐसे किसी स्वतंत्रता दिवस नकद सहायता योजना की घोषणा नहीं की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान वे चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई एकेडमिक और साहित्यिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपट्टू में SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 22वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज UGC नेट जून 2026, CSIR नेट और ICAR की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के लिए अंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगी। PhD कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा की उत्तर कुंजी भी आज जारी की जाएगी। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अंतिम उत्तर कुंजी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। एजेंसी ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वो केवल एजेंसी की आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। ये रखरखाव के चलते प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। दिल्ली सरकार ने DTC बसों में

महिलाओं के लिए पिंक टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार मुफ्त बस यात्रा की पात्र महिलाएं DTC और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। ये सुविधा पहले कल खत्म होनी थी और आज से पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड अनिवार्य होना था। अधिक महिलाओं को स्मार्ट कार्ड बनवाने का मौका देने के लिए सरकार ने कागजी टिकट की अवधि बढ़ाई है। पुरुष क्रिकेट में भारत आज गॉल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन अपनी पहली पारी 288 रन पर 2 विकेट से आगे बढ़ाएगा। कल खेल समाप्त होने तक देवदत्त पड्डीकल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद थे। KL राहुल 77 रन पर रिटायर हुए थे। बारिश के कारण कल खेल केवल 73 ओवर का हो सका। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश की संभावना है। अजरबैजान में भारतीय दूतावास ने कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया। इस कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों और अजरबैजान के नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी शौखंत, आपकी योग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे कि किस आसन को करने से आप अपनी दृष्टि दोष में लाभ पा सकते हैं। इसके लिए आज हम करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन जिसका नाम है ऊष्ट्रासन। ऊष्ट्र का अर्थ होता है ऊंट। तो आइए सीखते हैं कि किस प्रकार ऊष्ट्रासन किया जाता है। घुटनों को जमीन पर टिकाते हुए अपने दोनों पैरों की जांघ और पंजों को आपस में मिला लीजिए। पंजों को बाहर की तरफ रखते हुए जमीन पर फैला दें। घुटनों और पंजों के बीच 1 फुट की दूरी रखते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकने का प्रयास। इस बात का ध्यान रहे कि पीछे झुकते समय गर्दन में किसी भी प्रकार का कोई झटका ना लगे। पीछे की ओर झुकें और धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाएं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें। अंतिम स्थिति में जांघ को जमीन पर लंबवत रखते हुए सिर को हल्का सा पीछे की ओर खींचकर रखें। अगर संभव हो तो पूरे शरीर का भार अपनी भुजाओं और पैरों पर टिकाए रखें। यह हमारी ऊष्ट्रासन की स्थिति होती है। बहुत लोगों में देखा गया है कि वह ऊष्ट्रासन नहीं कर पाते, तो इसके लिए आप अर्धऊष्ट्रासन का भी प्रयास कर सकते हैं। अर्धऊष्ट्रासन के लिए आपको कुछ नहीं, बस अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर टिकाएं और धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन और वक्षस्थल के भाग को पीछे की ओर ले जाएं और उस स्थिति में कुछ क्षण रुके और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ही आगे सामान्य स्थिति में वापस आ जाए। तो यह अर्धऊष्ट्रासन की अभ्यास विधि है। ऊष्ट्रासन दृष्टि दोष में अत्यंत लाभदायक होता है, पर इसके लिए आपको ऊष्ट्रासन का अभ्यास प्रतिदिन करना जरूरी है और एक दिन एक सेशन में आप ऊष्ट्रासन का अभ्यास 3 से 4 बार अवश्य दोहराएं। ऊष्ट्रासन करने के बाद आप विश्राम स्थिति में वापस आ जाएं और कुछ क्षण वहीं रुकें। विश्राम स्थिति या तो आप वज्रासन में बैठ सकते हैं या आप दंडासन में भी विश्राम कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि किस प्रकार आप प्रतिदिन ऊष्ट्रासन

आसन करने के अभ्यास से अपने दृष्टि दोष को कैसे दूर कर सकते हैं और अपनी आई साइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।

0: किसी भी पोजीशन में और किसी भी काम को 20 मिनट से ज्यादा की अवधि में ना करें, 30 सेकंड का ब्रेक लेकर के आंखों को रिलैक्स किया, अपनी सांस को थोड़ी देर देख लिया, यानी थोड़ा आपे में आ जाना है, क्योंकि जो आपे में नहीं है फिर वो स्यापे में रहता है। तो हमें स्यापे में नहीं रहना
1: जी,
0: हमें आपे में जीवन जीना है
1: जी।
0: और हमारे गुरुदेव कहते हैं लैप जो है ना वो बच्चे को रखने के लिए होती है, टॉप को रखने के लिए नहीं होती,
1: बिल्कुल
0: है ना। तो एक तो इसे लैपटॉप को लैप में नहीं रखना, पहली चीज। अभी तो बहुत अच्छी अच्छी बेड टेबल्स भी आ जाती हैं, उनको रख के, यानी जब आप गोद में लैपटॉप को रखते हैं तो ये आपके जितने भी प्रजनन अंग हैं उनको हाँ इफेक्ट करता है एडवर्स रूप में। तो गोद में या जेब में मोबाइल फोन रखना, इससे बचें। और सर्वाइकल, जहाँ हम सर्वाइकल की बात करते हैं, चाहे वो सर्वाइकल स्पैज्म हो जाता है कुछ लोगों को, कुछ को स्पॉन्डिलाइटिस है या सर्वाइकल पेन है, तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि विजुअली तो हम नहीं दिखा सकते यहाँ रेडियो के माध्यम से, बस ये समझ लें कि हमें कॉन्शियसली अपने पॉस्चर को सही रखना है। और दूसरा काम ये कि जैसे हमने कहा 20 मिनट्स के बाद का ब्रेक, तो उस ब्रेक में आप कमर को बस सीधा करके बैठेंगे और गर्दन को पीछे लटका देंगे, पीछे बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। सिर्फ इतना भी यदि आप करते हैं 30 सेकंड्स के लिए हर 20 मिनट के बाद, तो आपको गर्दन में दर्द कभी नहीं हो सकता। हम क्या भोजन कर रहे हैं, कैसे पोस्चर में बैठ रहे हैं, किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये सब कुछ हमारे जीवन का निर्माण करता है, हमारी लाइफ का निर्माण करता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये यौगिक रूप से हम प्राप्त करते हैं। सुबह जल्दी उठिए तो रात को अपने आप समय पे नींद आनी आरंभ हो जाएगी, लेट्स डू इट वाइस वर्सा। तो ये एक सेल्फ टॉक थेरेपी आपको सुबह उठने में बहुत लाभ देगी। हम कहते हैं जो तुम्हारी दादी खाती थी अगर तुम वो खा लो तो तुम कभी बीमार ना पड़ो, क्योंकि हमारी जितने भी पूर्वज हैं, हमारी दादी दादा नाना नानी, वो सब हम उन्हीं के तो डीएनए है ना आगे, तो वो सब जानते थे, बस हम उन चीजों को थोड़ा सा रिवाइज करने की आवश्यकता है। देखिए आहार में तो हमें बस 3 नियम याद रखने हैं। पहला नियम कि पहले लोग घर पर भोजन करते थे और जब पेट में गुड़गुड़ होती थी तो बाहर जाते थे, है ना। और अभी उल्टा हो गया है, अभी हम जब भूख लगती है तो कहते हैं चलें बाहर, और जब पेट में गुड़गुड़ होती है तो कहते हैं चलें घर। ठीक है, पेट में गुड़गुड़ में घर जाना ही ओके, लेकिन जब पेट में भूख लगे तो बाहर नहीं दौड़े, यानी जो घर का भोजन है उसका सेवन करें। और आहार में हम सब ये ध्यान रखें, सिर्फ अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, हेल्दी होना चाहते हैं, सिर्फ इन चीजों का ध्यान रख लें कि जो भी भोजन डब्बे में पैक होकर के आ रहा है, तो चाहे वो कितना डिजाइनर डब्बा है या कितना देसी डब्बा है, डब्बे का भोजन यानी पैक्ड फूड अगर आप अपनी डाइट से पूरी तरह से हटा दें, और साथ में चीनी जो सफेद चीनी होती है उसे अपनी डाइट से हटा दें, रिप्लेस कर दें गुड़ से, शक्कर से, तो वो आपके लिए लाभकारी है। और बस जब आपके सामने भोजन आए तो अपने आप से ये कुछ प्रश्न करने, क्यों खाऊं, कैसे खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं, है ना। और अगर मन में आ रहा है, दुविधा है खाऊं कि ना खाऊं, तो बिल्कुल मत खाऊं, ठीक है, ये रूल याद रखना है, खाऊं कि ना खाऊं बिल्कुल मत खाओ, जाऊं कि ना जाऊं यानी फ्रेश होने तो जरूर जाओ, ये भी इतना भी अगर हम कर लें तो हमारा स्वास्थ्य निश्चित रूप से सही रहेगा। और एक चीज और इस यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगी कि हमारा जो बॉडी शेप है ना, हम सब चाहते हैं वी शेप हो, यानी अच्छी सी चेस्ट, उससे अच्छे ब्रॉड शोल्डर्स, चेस्ट और बिल्कुल पतली सी कमर, तो हम बस ऐसा भोजन ही करें कि अच्छा सा ब्रेकफास्ट, उससे कम लंच और छोटा सा डिनर। लेकिन अभी हम उल्टा करने लगे, हम भागते दौड़ते ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर हम ऑफिस में लंच करते हैं थोड़ा ज्यादा सा, और घर आके बहुत, इसीलिए अब हमारी बॉडी की शेप उल्टा भी बनती जा रही है ना, पेट तो इतने बड़े बड़े हो और अपर बॉडी आपकी कम हो, तो बस वी शेप भोजन करें तो निश्चित रूप से हम सब स्वस्थ रहेंगे।

0: नए कानून लोगों की भलाई पर जोर देते हैं, लेकिन जानकारी की कमी के चलते नए कानून को लेकर कई तरह की भ्रांतियां, सवाल और शंकाएं हैं। तो चलिए आज बात करते हैं नए कानूनों को लेकर फैलाए जा रहे मिथक और सच्चाई की। मिथक है कि नए आपराधिक कानून मौजूदा सख्त प्रावधानों की महज एक पुनर्पैकेजिंग है, लेकिन सच्चाई ये है कि पुराने कानून में औपनिवेशिक शासकों ने अपना राज कायम करने के लिए बनाए गए थे, जबकि नए कानून नागरिक केंद्रित हैं, जिनमें देशद्रोह, आतंकवादी कृत्य, मॉब लिंचिंग, संगठित अपराध, छोटे संगठित अपराध, झपटमारी आदि नए अपराधों को शामिल किया गया है। ब्रिटिश काल के राजद्रोह कानून को हटा दिया गया है, जो सरकार के असंतुष्टों और आलोचकों के खिलाफ दुरुपयोग की चिंताओं को संबोधित करता है। नए कानूनी ढांचे में समानता को बढ़ावा देते हुए लिंग तटस्थ भाषा को शामिल किया गया है। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी शब्दावली में सुधार किया गया है। पागलपन, उन्मादी, मूर्ख, विक्षिप्त मानसिकता और मंदबुद्धि जैसे शब्दों को हटाते हुए संवेदनशील दृष्टिकोण को दर्शाया गया है। भ्रष्ट सिविल सेवकों पर मुकदमा चलाने के लिए समयबद्ध मंजूरी प्रदान की गई है। आपराधिक मानहानि के लिए कारावास से सामुदायिक सेवा में स्थानांतरण पुनर्वास और सामाजिक योगदान पर जोर देता है।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अभी आप सुन रहे थे आओ योग करें कार्यक्रम। आइए अब सुनते हैं देशभक्ति गीत।

हम हमेशा अपनी प्रगति किसी और की तुलना में ही नापने के आदी होते हैं। हमारी पूरी शक्ति प्रतिस्पर्धा में खप जाती है। जीवन के बहुत क्षेत्र होंगे जिसमें शायद प्रतिस्पर्धा जरूरी होगी, लेकिन स्वयं के विकास के लिए तो प्रतिस्पर्धा उतनी प्रेरणा नहीं देती है जितनी कि खुद के साथ हर दिन स्पर्धा करते रहना। खुद के ही साथ स्पर्धा कीजिए, अच्छा करने की स्पर्धा, तेज गति से करने की स्पर्धा, और ज्यादा करने की स्पर्धा, और नई ऊंचाइयों पर पहुंचने की स्पर्धा अब खुद से कीजिए। बीते हुए कल से आज ज्यादा अच्छा हो, इस पर मन लगाइए और आप देखिए ये स्पर्धा की ताकत आपको इतना संतोष देगी, इतना आनंद देगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम लोग बड़े गर्व के साथ एथलीट सर्गेई बुबका का स्मरण करते हैं। इस एथलीट ने 35 बार खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा था। आप भी उसी लिहाज से आगे बढ़े तो आप देखिए आपको प्रगति के रास्ते पर कोई नहीं रोक सकता है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वर रंजनी। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे बिमल मुखर्जी का सितार वादन राग भटियार।